0: बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, श्रीकांत बनी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर दो अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मोजतमा की भी धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। अब आज जंतर मंत्र में सोनम वांगचुक के अनशन की, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अंबेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
5: अगर इतने उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
7: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
8: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजन सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
9: सोनम आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांचा अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय करते।
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया, तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा। आज तक ब्यूरो
0: वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ रही है। उनकी मांग यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनके पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवा दिया। जंतर मंतर पर उस समय क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं।
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
11: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
12: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
11: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
12: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची मेडिकल टीम के साथ पहुंची तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
11: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
10: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
11: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आती यूपी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं।
13: तो कौन आया?
14: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
15: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो, और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो।
14: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
15: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
14: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो
0: बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
16: পনেরো তারিখ হিয়ারিং এর জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিরা গেছিল এবং কিসের বেসিসে কমপ্লেনটা ফাইল হয়েছে, কমপ্লেনের একটা কপি চাওয়া হয়েছিল, সেই কমপ্লেনের কপি জেলা প্রশাসন দিতে পারেনি। এই গত 15 তারিখের কথা বলছি, আজ থেকে 2 দিন আগে, আজকে 18 তারিখ, সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতি যিনি ওএসডি রয়েছেন তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
0: अंतरिक्ष में भारत के दम के जहां पर इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, जिसके बाद से हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कारनामा किया है।
17: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
18: So well authorized by space, which is an authorizing company agency, regulator for space in India.
17: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
19: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
20: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स, द डिले, द टुक आवर हार्ट्स।
17: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
21: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
17: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
2: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
3: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
17: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो बिश्नोई गैंग की बात करेंगे जिसके जद में अब आमिर खान भी आते दिख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से जो धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या। अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद, चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे तब भी उतनी सजा है, जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है तो उससे तौबा करे और वापस होकर यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: अदब दुनिया की, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 7वें दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की तस्वीर सामने आई।
10: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
9: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता, शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परवार, कहा जो राम नवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, उन्हें देश की कीमत पर सत्ता चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड, श्रीकांत बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। और जॉर्डन के यूएस बेस पर 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, सुप्रीम लीडर मोजतबा की धमकी, हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। ईरान के खिलाफ आपको बता दें कि हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अमेरिका का कहना यह भी है कि इन हमलों का मकसद है हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कमजोर कर देना। आपको यह भी बता दें कि दावा यह किया गया है कि कार्रवाई ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका का 8वें दिन भी ईरान पर हमला लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाए, किसी भी तरह का खतरा वहां पर नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ये जो हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेडसेक ने जॉर्डन में ईरानी हमलों में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों का बदला अमेरिका के संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर देगा। हेडसेक ने कहा है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ईरान ने अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए हैं। कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार 7वीं रात किए गए हमलों के बाद की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत पर भी लगातार हमले हुए हैं, जिसमें एक डिसेलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन रोकना पड़ गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी सैन्य केंद्र कैंप अरीफ जान और साथ ही अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त धावा बोला है। वहीं कुवैत ने कई मिसाइलों और साथ ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की जानकारी भी दी है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीज, इन्होंने कहा है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक सुप्रीम लीडर के न भूलने वाले सबक का मतलब समझते तो वो एक पल भी गवाए बिना पीछे हट जाते। युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। खाड़ी के देशों पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कई ड्रोन्स एंड मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके बीच में ही खत्म कर दिया जा रहा है, और कई जगहों पर नुकसान होने की भी खबरें हैं।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने सुप्रीम लीडर के एकता के संदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च नेता का दूरदर्शी और एकजुटता बढ़ाने वाला संदेश राष्ट्रीय हितों और साथ ही इस्लामिक ईरान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। पेजिश्कियान ने कहा है कि मौजूदा ऐतिहासिक दौर में एकता बनाए रखना और आपसी मतभेदों से बचना ही जीत की कुंजी है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ईरान और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते के बार बार उल्लंघन से साबित होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई विश्वसनीयता नहीं रही। खामनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते संघर्ष विराम समझौता टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच लगातार हमले बने हुए हैं। इससे दोनों ही देशों के बीच फिर से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। ईरानी नेता ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरानी जनता और उसके सहयोगी गुटों से मिले सबक कभी नहीं भूलने चाहिए।

0: ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की तरफ से साफ कहा गया कि ट्रंप के हस्ताक्षर की विश्वसनीयता नहीं रही है। जिस तरीके से एमओयू पर साइन के बाद भी लगातार उल्लंघन किया गया और उसके बाद दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। साफ कहा गया है कि अब इस सबक को अमेरिका और उसके सहयोगियों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सातवें दिन दोनों ही ओर से जोरदार हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
1: अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। मुकाबला गोलों की बारिश से भरपूर रहा जिसमें इंग्लैंड ने पहले हाफ में 4 गोल दागकर बढ़त बना ली थी और दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे की अगुवाई में फ्रांस ने जोरदार वापसी की कोशिश की लेकिन बुकायो साका की हैट्रिक और जूड बेलिंगहैम के आखिरी मिनट के गोल ने इंग्लैंड की जीत को पक्का कर दिया। ये मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे ज्यादा गोल वाले तीसरे स्थान के मैचों में दर्ज हो गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे बड़े मुकाबले की दहलीज पर है। फुटबॉल के महाकुंभ का महामुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है जहां खिताब के लिए स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की निगाहें हैं इस फाइनल पर टिकी हुई। एक ओर स्पेन पहली बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगा तो दूसरी ओर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने की का सपना लेकर मैदान में उतरने वाला है। इस महामुकाबले की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप इससे पहले न्यूयॉर्क में फीफा रिसेप्शन में भी शामिल हुए थे और ऐसे में दुनिया की निगाहें अब इस ऐतिहासिक फाइनल पर और नए विश्व चैंपियन पर टिकी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया, लेकिन इस पर सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
2: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, article 32 is a free individual.
4: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेके जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
2: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
5: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
6: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
7: अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
8: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
2: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
9: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
10: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
2: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
11: सोनम वांगचुक ये उपोषण और बसलेट आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय हरकत आहे।
2: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया।

0: क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
1: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाए। दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंची और सोनम वांगचुक को लेकर चली गई जंतर मंतर पर। कैसे क्या हुआ उस समय, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
2: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
3: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथी प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
4: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहां पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
3: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
4: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनकी मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
3: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
2: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
3: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसी हुई है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दे रहे हैं, तो वहीं ताबड़तोड़ रैलियों में विपक्ष पर जमकर हमला भी कर रहे हैं।
5: देखो कौन आया।
6: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
7: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो,

0: अमृतसर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचाता जहां दंगे ना हो, और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो।
1: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
0: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
1: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के दम की, जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। एक दिन भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रमन लॉन्च किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिसने यह कारनामा कर दिखाया है।
3: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
4: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
5: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स, द डिले, द टुक आवर हार्ट्स।
3: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
6: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
3: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
7: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
8: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
3: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
10: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है क्या? सूर्य की वजह से बार बार हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है क्या? सूर्य आपको हृदय रोग भी दे सकता है? कौन सी हैं सूर्य की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
14: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org.

0: ईरान के हमले में जॉर्डन के यूएस बेस पर दो अमेरिकी सैनिकों की मौत। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामने की धमकी, कहा हमारा देश अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाला सबक। मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, एनसीपीआई में शामिल ममता के बागी सांसदों को भी न्योता, चढ़ावा चोरी और वांगचुक पर गर्मा गर्मी के आसार। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता, शिवसेना के लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का इशारों में अखिलेश परवार, कहा जो रामनवमी यात्रा को रोकते थे उन गुलामों से क्या उम्मीद, उन्हें देश की कीमत पर चाहिए सत्ता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आर्टिकल 370 के लिए आमिर गौतम को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड, श्रीकांत बने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बात करेंगे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन के बारे में, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से हटा दिया गया है, लेकिन इस पर जबरदस्त सियासत तेज हो गई है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
1: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
2: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के राष्ट्रपति।
1: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दिपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
3: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, article 32 is a free individual.
4: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
1: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
5: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
6: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
7: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
8: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
1: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
9: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
10: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहाँ गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
1: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा, नगीना की लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात भी शामिल हैं।
11: सोनम वालचंद ये उपासन और बसले आज वीस दिवस होते आता सरकार ने आदित्य त्यांना अंत पाहू नये हो ना काय म्हणायचं म्हणा पण चर्चा करायला काय करते।
1: समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में समा जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।
0: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाए। दिल्ली पुलिस मेडिकल जांच के बहाने पहुंची और सोनम वांगचुक को लेकर चली गई जंतर मंतर पर। कैसे क्या हुआ उस समय, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
12: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
13: शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर अचानक अफरा तफरी मच गई। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम धरना स्थल पर पहुंची। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी को समझ पाते, पुलिसकर्मी भागते दौड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। सुबह का वक्त था, इस वक्त भीड़ कम होती है। सोनम के साथ ही प्रदर्शनकारी रूटीन एक्टिविटी में थे, तब तक दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर धावा बोल देते हैं। मंच पर पहुंचते ही सफेद कपड़ों से पर्देदारी कर देते हैं ताकि सोनम वांगचुक को कोई देख भी ना पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने मंच से वांगचुक को उठाया और बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवान दौड़ते हुए आए और भागते हुए सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की संख्या इतनी थी कि प्रदर्शनकारी कम पड़ गए। जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो गया।
14: देखिए डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए आरएएफ के आपको जवान यहाँ पर नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी आएंगी और सिस्टमैटिक तरीके से देखिए इनको खड़ा किया गया है कि किसी भी तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं इस तरफ नहीं जाने देने का आदेश है।
13: सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और डॉक्टरों की सलाह कि सोनम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए।
14: मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार जो हाईकोर्ट है वो एक्सपर्ट जो है उनकी मेडिकल टीम उनका ध्यान रख रही थी, उनके मेडिकल कंडीशन पे लगातार नजर बनाए हुई थी। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक के पास जब पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम के साथ पहुंची, तो यहाँ हटाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी।
13: 13 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी सोनम वांगचुक की जांच की थी और तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की सलाह और कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को धरने से जबरिया उठाया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया।
12: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
13: सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी से सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शारीरिक मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी, परीक्षण और उपचार की आवश्यकता है। वांगचुक को इस तरह से उठाए जाने से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश है, राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करने का भी आदेश दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसी हुई है। योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं को हरी झंडी दे रहे हैं, तो वहीं ताबड़तोड़ रैलियों में विपक्ष पर जमकर हमला भी कर रहे हैं।
15: कौन आया?
16: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं।
17: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो?
16: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
17: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी।
16: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के दम की, जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। एक दिन भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रमन लॉन्च किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिसने यह कारनामा कर दिखाया है।
18: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, ये आसमान में बढ़ती देश की ताकत की तस्वीर है, ये अंतरिक्ष में भारत के दम की तस्वीर है। हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। विक्रम 1 को स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही की। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था।
19: So well authorized by space, which is authorizing moving agency, the regulator for space in India.
18: ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम 1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई थी। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया है। अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को हासिल है।
20: एक्चुअली वी आर वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी टू सी द लॉन्च लाइक फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट इनटू ऑर्बिट।
21: वी कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट, यू नो हाउ वी फेल्ट, यू नो दैट 5 मिनट्स, द डिले, द टुक आवर हार्ट्स।
18: स्काईरूट एयरस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने की थी। पीएम मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांदना से फोन पर बातचीत कर बधाई दी।
22: सबसे पहले तो आपको बहुत
2: और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी।
18: कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम 1450 किलोमीटर के पृथ्वी के सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मिशन का मकसद सैटेलाइट को उसके निर्धारित ऑर्बिट में स्थापित करना है।
15: इट्स ए ग्रेट मोमेंट, इट इज ए हिस्ट्री इज मेड।
22: तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज जबकि 12:05 पे सुबह विक्रम 1 जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का जो सबसे पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है।
18: भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम 1 रखा गया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिस गैंग की जद में अब आमिर खान भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस गैंग की ओर से आमिर खान को धमकी दी गई है जिसमें आमिर खान पर लव जिहाद के आरोप लगाए गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।

0: अब आमिर खान को मिली लॉरेंस गैंग से धमकी। आमिर पर लगाया लव जिहाद का आरोप। तीसरी शादी से भड़का लॉरेंस गैंग। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट जो इन दोनों फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान ने तीसरी शादी की तो अब ये बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हजम नहीं हुई। लॉरेंस गैंग की तरफ से एक लेटर और ऑडियो नोट जारी किया गया। चिट्ठी आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, जो हमारी देश की संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस धमकी के साथ ही लॉरेंस गैंग की ओर से ऑडियो भी जारी किया गया।
1: मैं आरजू बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। ये जो हमारे संस्कृति खिलाफ हमारे देश में आमिर खान जैसे लोग लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको चेतावनी है कि इसकी हरकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको, इसके साथियों को चेतावनी है कि जल्दी इनकी सांसें दबा दी जाएगी। जहां भी ये मिले इनको चमत्कार, ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि याद रखेंगे, आगे से ऐसी हरकत करने में सोचेंगे।
0: गैंग की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।
2: हम आमिर खान के मुंबई घर पर हैं, पाली स्थित बांद्रा में, पाली हिल में, और आप कह सकते हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त किसी भी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जो ऑडियो और जो टेक्स्ट सामने आया है वो सच में बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, इसकी पुष्टि वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि FBI ने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपनी पकड़ जो है वो यूरोप में, US में, कनाडा में बनाई है, उसके बाद जिस तरह से धमकी आई है वो उनकी जो तीसरी शादी है उससे रिलेटेड है, जिसमें समाज को वो खराब कर रहे हैं, इस तरह की बातें जो है उस लेटर में की गई है। अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस आमिर खान की टीम की तरफ से इस धमकी में नहीं दिया गया है। पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है, लेकिन अगर ये सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी हुई धमकी है तो पुलिस केस रजिस्टर कर आगे कार्रवाई करेगी।
0: इससे पहले लॉरेंस सलमान और शाहरुख को धमकी देता रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा उसने आमिर की शादी का उठाया। हालांकि इस शादी को लेकर पहले ही सियासत हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया था।
3: देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो उन्हें तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए।
4: नीतीश राणे ने जो कहा है वो बात एक तरीके से सही भी है। जो आप अभिनेता हो, आपकी तरफ देख के लोग एक्सप्रेशन उनको आता है, वो और कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं, कितना बड़ा स्टार है। अगर वो स्टार ही ऐसे काम करने लगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने लगा, तो उनसे हमने क्या सीख लेना चाहिए। इसलिए वो लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, लेकिन कॉमन आदमी के दिलों में वो छा नहीं सकता।
0: हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद आमिर के बचाव में भी कई नेता उतर आए थे।
5: आमिर खान ने तीन शादी किया, तुम चार करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई, तुमको क्या को जलन हो रहा है। अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है, आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको ही, आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना और वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है, इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: एक्टर आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई को शादी की। दोनों ने मुंबई के पाली हिल स्थित आमिर के घर पर शादी के कागजात पर साइन किए। यह एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी थी जिसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसमें आमिर की पहली दोनों पत्नियां भी थी। लेकिन इस शादी की तस्वीरों का विरोध भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। कई हिंदुवादी संगठन आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका पुतला फूंका और नारेबाजी की।
6: आमिर अब्बासी जी, आपको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्या? यह आमिर खान के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको पता है हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं या हिंदू क्या कर रहा है? उसका जवाब आपको मिल जाएगा देखने को। क्या आमिर खान हो या कोई नेता हो या अन्य कोई अभिनेता हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, हिंदुओं की नजर में, हिंदू संगठनों की नजर में लव जिहाद मतलब लव जिहाद। चाहे वो कोई भी करे, गरीब करे, तब भी उतनी सजा है। जो अमीर करेगा उसके लिए भी उतनी सजा है, नेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है, अभिनेता करेगा उसके लिए भी वही सजा है।
0: उधर संत समाज की ओर से भी आमिर की तीसरी शादी का विरोध किया गया, जिसे लव जिहाद से जोड़ा गया। वहीं आमिर को धमकी तक दी गई।
7: मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना, तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं?
0: आमिर खान से सिर्फ हिंदू संगठन ही नाराज नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु ने भी फतवा जारी किया, जिसमें आमिर खान के गैर मुस्लिम से विवाह करने का विरोध किया गया।
8: ऐसा शख्स गुनाहगार माना जाएगा और अल्लाह के सामने उसे जवाबदेही देनी होगी। तो ऐसे में अगर किसी भी शख्स ने कुरान के खिलाफ और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किया है, तो उससे तौबा करे और वापस होकर, यानी के ऐसे गुनाह से वापस हो जाए। तो ये मैंने कल एक शरई ओपिनियन पेश करते हुए फतवा आम जारी किया।
0: विवाद बढ़ा तो मामले में आमिर की सफाई भी आई। एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी तीनों शादियों का जिक्र किया, तो वहीं धर्म परिवर्तन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। गौरी, किरण या रीना में से किसी ने भी अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज के जरिए हुई थी। गौरी हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं करती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और मजेदार होती जा रही है। सबसे बड़ी बात जिस गौरी स्प्रेट से शादी को लेकर लव जिहाद पर हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं। इतना ही नहीं, आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके परिवार में बहनों और बच्चों की शादियां भी अलग अलग धर्म में हुई है। सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। बहरहाल, इस पूरे खेल में लॉरेंस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस भी सक्रिय हो गई है और धमकी को लेकर जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: क्या सूर्य की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है? क्या सूर्य की वजह से बार बार हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है? क्या सूर्य आपको हृदय रोग भी दे सकता है? कौन सी हैं सूर्य की बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
11: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Tune in's how-to.
12: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
15: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
16: After multiple assassination attempts, they can't even get.
17: They're reliable.
18: Always when I need them.
15: To live sports action.
19: One hand jam by LeBron on the break.
20: That's another three, Steph Curry.
15: And your favorite music.
21: Well, the dawn begins to crack.
15: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
22: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है. इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है. बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे. 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे. एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे. दुखद है, बहुत दुखद है.
23: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है.
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

अमेरिका की ताबड़तोड़ बमबारी से फिर दहला ईरान। जवाबी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। मुज्तबा बोले, ट्रंप को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। टीएमसी के बागियों की पार्टी को भी न्योता। पेपर लीक चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर उठा सकता है मुद्दा विपक्ष। मानसून सत्र से पहले उद्धव गुट को बड़ा झटका। शिंदे गुट में शामिल 6 सांसदों के विलय को स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना से लोकसभा सांसदों का आंकड़ा हुआ 13। संभल में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले, जो रोकते थे रामनवमी की यात्रा उनसे क्या उम्मीद। ओवैसी का पलटवार। अयोध्या की चोरी छुपाने की कोशिश। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बने हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड। श्रीकांत बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में प्रबल हो तो सामान्यतः आप स्वस्थ बने रहते हैं, लेकिन सूर्य के गड़बड़ होने पर विशेष तरह की बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य आपको कौन सी बीमारियां दे सकते हैं और उन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:12 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अपनी अच्छाइयां भी होती हैं और अपनी बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह कुंडली में अच्छा है तो शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करता है वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, अन्यथा उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। कुल मिलाकर ओवरऑल आपका हेल्थ बेहतर रखता है। सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में, हर तरीके से स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो गया, बाकी ग्रह अगर प्रबल भी हों

का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। सूर्य अलग अलग कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं देता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृषभ राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, सूर्य ओवरऑल हेल्थ का स्वामी है, लेकिन सबसे पहले जो समस्या देता है वो आंखों की समस्या है। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का, आंखों की रोशनी का कारक है। सूर्य अगर कमजोर हो जाए तो आंखों में समस्या पैदा होती है, आंखें कमजोर होती हैं। और अगर सूर्य खराब हो गया तो उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य खराब होने पर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है। सूर्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है। कमजोर होने में इतनी दिक्कत नहीं है, आपको चश्मा लग जाएगा, लेंस लग जाएगा, लेकिन अगर सूर्य खराब हो गया तो आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है या आंखों में गंभीर समस्या हो सकती है। अगर नेत्र से संबंधित बड़ी बीमारी हो रही है या आंखों से संबंधित बड़ा रोग हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सूर्य के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। घर के उस कमरे में रहिएगा जहां सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आता हो, या ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करने से भी नेत्र ज्योति के मामले में, आंखों की रोशनी के मामले में सुधार होगा। सूर्य की अन्य बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1993। जन्म का समय रात में 11:05। जन्म का स्थान है प्रयागराज। मीनाक्षी कह रही हैं कि मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनाक्षी, अभी थोड़ा समय और लगेगा आपके विवाह में। जून 2027 से दिसंबर 2027 का अच्छा समय है। इस समय में आपके विवाह की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं और आपका विवाह आपके जान पहचान में प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास ही होने की संभावना बनती है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ

तो हड्डियों की समस्या आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। क्या करता है सूर्य? सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है और सूर्य के कमजोरी से विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर ज्यादा खराब है तो हड्डियों का रोग होगा और चलने फिरने में मुश्किल आएगी। पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या सूर्य की वजह से परेशान करती है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो हड्डियों में आपको दर्द होगा और अगर सूर्य गड़बड़ होगा

पड़ेगा। सूर्य का खराब होना लगातार हड्डियों की तकलीफ देता है और सूर्य का कमजोर होना हड्डियों की समस्या देता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सूर्य देव के सामने उनके 21 नामों का उच्चारण करिएगा। प्रातः काल उगते हुए सूर्य के सामने पीठ करके कम से कम 10 मिनट तक बैठिएगा और सलाह लेकर एक बड़ा माणिक्य, लगभग 8-10 रत्ती का एक बड़ा माणिक्य धारण करिएगा। नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और डॉक्टर की दवाई लें, डॉक्टर का परामर्श माने, तो हड्डियों की समस्या को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। सूर्य की बीमारियों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आप

कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है, अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो सूर्य मुख्य रूप से आंखों की बीमारी, हड्डियों की समस्या देता है। सबसे बड़ी जो सूर्य समस्या देता है वो है हृदय रोग, कार्डियो प्रॉब्लम। तो अगर हृदय रोग है तो मामला क्या होता है? सूर्य अगर खराब है तो ये अक्सर हृदय रोग का कारण बनता है। सूर्य की खराबी आठवें स्थान में, खास तौर से सूर्य के जाने पर हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य शनि का संबंध हो या सूर्य राहु का संबंध हो तो हृदय रोग हो सकता है। अमावस्या का जन्म होने पर भी हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि अगर कुंडली में प्रभावित है, सिंह राशि में अगर ज्यादातर पाप ग्रह बैठे हैं तो हृदय रोग की प्रबल संभावना बन सकती है। सूर्य अगर कमजोर हो तो हृदय में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पल्पिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है या थोड़ा बहुत ब्लॉकेज भी हो सकता है। हालांकि ब्लॉकेज के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, चंद्रमा जिम्मेदार है, लेकिन सूर्य भी वहां पर भूमिका निभाता है। और अगर सूर्य खराब हुआ कुंडली में तब हृदय की बड़ी और जटिल संभावना होने की स्थिति बनती है। अब अगर सूर्य की वजह से कुंडली में हृदय रोग का योग है या हृदय रोग की शुरुआत हो चुकी है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका नित्य प्रातः एक बार पाठ करिएगा। तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा। अगर आप गंभीर हृदय रोग से गुजर रहे हैं तो आप स्वयं या आपके नाम से कोई भी राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करे तो उससे लाभ होगा। और सूर्य की खराबी अगर कुंडली में है जिसकी वजह से हृदय रोग की स्थिति बन रही है तो रविवार को गुड़ और आटे का दान करिए या रोटी में गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। ऐसा करने से लाभ होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठना और सूर्य से प्रार्थना करना, ऐसा करने से भी हृदय रोग में लाभ होना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्या से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए, अगर जल के छींटे पैरों पर पड़ेंगे तो अशुभ होगा। क्या ऐसा है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जल चढ़ाने का फायदा सर से लेकर के कमर तक के इलाकों में ज्यादा होता है। उसके बाद अगर जल के छींटे आपको पड़ जाते हैं पैर पर, तो ये कोई पाप नहीं है, कोई अशुभता नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर छींटे पड़ गए तो पड़ गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छींटे ना पड़े तो सामने एक बाल्टी रख लें और इस तरह जल चढ़ाएं कि बाल्टी में पानी गिरे, बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय आपके पैरों पर छींटे पड़ जाते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई अशुभ कार्य नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 9, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय
किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा।

कन्या राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। कुंभ राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है। आज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा और आज लिखा पढ़ी के काम को टालिएगा। लिखा पढ़ी के काम करने पर आज ज्यादातर लोगों को नुकसान होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वें दिन फिर से किया हमले। ईरान के दक्षिणी शहर सीरी के आसपास हवाई हमले किए गए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और जॉर्डन में ड्रोन और हमले किए हैं। कुवैत के कैंप अरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस को बनाया गया निशाना। हमलों के बीच कुवैत एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया। हमले में तेल व्यापार को भी नुकसान। ईरान के नए वीडियो का दावा किया गया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि हमला उनके पुलों, अस्पतालों, हवाई अड्डों पर की बमबारी के जवाब में किया गया है। ईरान ने उत्तरी इराक में कुर्द विपक्षी गुट के ठिकानों पर हमला किया। ईरान में इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को मिले न भूलने वाला है सबक। ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैनिकों की मौत की खबर। जॉर्डन में 2 और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने से आंकड़ा बढ़ा। ईरान का कुवैत के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला, कई घायल हुए, भारी नुकसान की खबर। ईरान के नए हमलों पर यूएई का बड़ा ऐतराज। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के समर्थन में उतरा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सोमवार से 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के एजेंडे में उठ सकता है सोनू वांगचुक का मुद्दा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त। सोनू वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता। सुधीर बंदोपाध्याय होंगे लोकसभा में एनसीपीआई नेता। टीएमसी के बागी सांसद गए थे एनसीपीआई। बागियों को अभिषेक बनर्जी की चुनौती। मुझसे दिक्कत है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं, वापस आए, मैं 1 घंटे में दूंगा इस्तीफा। उधर ठाकरे को बड़ा झटका। 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी। शिवसेना यूबीटी में नेता आनंद दुबे बोले, हमारे 6 सांसद हमसे छीन ले गए, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा, चोरी पर बोले, उज्जैन से अयोध्या तक घोटाले किए गए। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले उद्धव को भगवान राम की याद आ गई, राम रक्षा पाठ को राजनीति का कार्यक्रम न बनाए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले उद्धव के पिता की विचारधारा छोड़ी उन्होंने, सत्ता के लिए वो राम विरोधियों के साथ मिल गए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूपी सरकार से मांगा अतिरिक्त समय। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग। ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने की अपील। संभल में योगी बोले, एसपी के अत्याचारों को गरीब भुगत रहा है, जमीन पर कब्जे की कोशिश बर्दाश्त नहीं। 300 करोड़ से बनने वाले 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का भी शिलान्यास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश प्रसाद यादव को घेरा, कहा इनके नेता बेलगाम है, ये लोग श्री कृष्ण को नमाजी बताने वाले लोग हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा। रडार पर ट्रस्ट के जमीन सौदे और 50 कर्मचारी। रामपुर में आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार। सेशंस कोर्ट ने आजम की अपील को खारिज किया। 2019 के चुनावी भाषण के मामले में राहत नहीं। सहारनपुर में ओवैसी की योगी सरकार पर हमला, बोले मस्जिदों और जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाकर बीजेपी बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस भारत की कार्यनीति है। एमपी के 4 बीएड कॉलेजेस की होगी जांच, फर्जी बीएड कॉलेजेस पर सरकार सख्त है। एनसीटीई ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर सख्ती, ऑफिसर्स की हवाई यात्रा होगी सीमित, होटल्स में बैठकों पर रोक लगेगी, किराए के वाहन भी कम होंगे। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कट्टरपंथियों का किसी धर्म स्थान नहीं। ममता बनर्जी हो चुकी है नकली, तेजस्वी यादव पार्टी को गिरवी रख चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा का नया वीडियो वायरल हुआ, घर घर चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा माला पहनने से इनकार करते नजर आए, कहा माला वाला पीछे आ रहा है। मधेपुरा में आरएसएस कार्यक्रम का छात्रों ने विरोध किया, कई छात्र नेता हिरासत में ले गए। गुजरात एटीएस के पकड़े गए 5 आतंकवादियों को भरूच से कनेक्शन है। दारुल उलूम मदरसे के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को भेजा है जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, श्रीकांत को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड। फिल्म चन्नू चैंपियन में शानदार अभिनय के लिए मिला सम्मान। यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सम्मानित किया गया। मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया। फिल्म ब्रह्मयुगम में किया था बेहतरीन अभिनय। आर्टिकल 370 का मिला बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी कल्कि 2898 AD। फीफा वर्ल्ड कप में कायो साका का हैट्रिक की बदौलत इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने अर्जेंटीना और स्पेन। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों ही टीमें। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, पहली बार जापान बैडमिंटन ओपन के फाइनल में बनाई है जगह। सेमीफाइनल में चीन का वर्ल्ड नंबर 4 चीन यूफेई को हराया, अब यामागुची से होगा खिताबी मुकाबला। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई, खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। पहलगाम बालटाल रूट पर आज से दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद मौसम सुहाना, अभी तक 14,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में 20-21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश से चंबा के चुवाड़ी भराड़ी मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, मलबे में फंस गई थी गाड़ियां। किन्नौर के मस्तरंग में बादल फटने के बाद हड़कंप, आईटीबीपी कैंप ने आवाजाही ठप होने के बाद काम शुरू किया। राजौरी में भारी बारिश, सड़क पर बरसाती पानी के साथ आ गया था मलबा, ट्रैफिक बाधित हुआ। उत्तर पश्चिम और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले 6-7 दिनों तक जमकर बारिश के आसार है, मौसम विभाग ने सक्रिय मानसून की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। आज और कल उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक बारिश का अनुमान है, भूस्खलन और अचानक से बाढ़ का भी खतरा। शिमला में बारिश के अलर्ट के बीच मौसम सुहाना, मौसम का मजा लेते हुए नजर आए सैलानी। भारी बारिश के बाद अचानक से आई फ्लैश फ्लड ने करगिल संग्राह के पास तबाही मचाई, रास्ते बंद हैं, एक वाहन क्षतिग्रस्त। रक्सौल में नगर परिषद के कार्यशैली की दुकान घरों में पानी भर गया था, नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आईं। रोहतास में घंटे की बारिश के बाद शहर पानी पानी हुआ, अनुमंडल कार्यालय परिसर में जलमग्न सब कुछ। मेरठ में अतुल हत्याकांड में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से डसवा दिया, 4 की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में 13 साल का बच्चा डीएम के सामने बोला, आप लोगों को तो सिर्फ कमीशन दे दो बस। शर्म से हंसने लगे सभी अधिकारी, बोले ज्यादा नहीं बोलते। अहमदाबाद में पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक से आग लगी, पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने समय रहते काबू पाया। वडोदरा में मोबाइल शोरूम से चोरों ने 15 मिनट में चोरी कर डाली, करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन चुरा डाले। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम बकाया वसूल करने के लिए पहुंची तो टीम पर हमला किया गया, जमकर मारपीट हुई। शिवपुरी में 2 दिन से लापता 2 चचेरी बहनों के शव 70 फीट गहरे कुएं से बरामद किए गए, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर में मात्र 900 रुपए के आरोप के लिए हत्या कर डाली, हत्यारा दोस्त गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा अवैध मकान, दुकान और ढाबों को ध्वस्त किया गया। वाशिम में बिजली विभाग कार्यालय के सामने ही लेट गए ग्रामीण, रखी अपनी मांगे। मध्य प्रदेश के शिवपुर में पानी की टंकी पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, कहा पत्नी छोड़कर चली गई है। पटना की कोचिंग में छात्र के साथ मारपीट हुई, मामले में कोचिंग के शिक्षक और संचालक के खिलाफ FIR दर्ज। नौगछिया में दहशत फैलाने की साजिश नाकाम हुई, देशी कट्टा और 31 कारतूसों के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक पुलिस के स्पा सेंटर्स पर छापेमारी, 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां और 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया गया। फतेहपुर में कक्षा 9 की छात्रा के साथ गैर समुदाय के युवक ने रेप किया, साथ ही बनाया अश्लील वीडियो। बेतिया में पुल से महिला ने नदी में छलांग लगाई, ग्रामीण की बहादुरी से जान बची। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 8 की मौत हुई, धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे जवान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3 की गिरफ्तारी। इंदौर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने किया फरियादी के घर में तोड़फोड़ और मारपीट, 4 की गिरफ्तारी। अलवर में पुलिस ने एक दिन में 247 ठिकानों पर दबिश दी, 182 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में 27 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी, बकरीद की दावत से मिले सुराग से भोपाल से दबोचा गया। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोप में 9 की गिरफ्तारी, आरोपियों से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद। पटना में क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर कई खातों में पैसे मंगवाने वाले 4 साइबर गिरफ्तार, अब तक करोड़ों के ट्रांजेक्शन करवा चुके हैं। यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में घुसकर युवक ने उत्पात मचाया, दारोगा की कैप पहनकर फाड़े कागजात, वीडियो वायरल हुआ। भोजपुर के बिया में जर्जर दीवार गिरने से दबकर 2 मासूमों की मौत हुई, 1 बुजुर्ग घायल हुआ। इंदौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 5वां आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में सीआईएसएफ जवान पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के आरोप में शिक्षिका ने दर्ज करवाया है मामला। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, लिफ्ट में फंसे 6 यात्री, 30 मिनट के बाद दरवाजा काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। नू में दिल्ली मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई थी, 6 से 7 यात्री इसमें घायल हुए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिकअप और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई, हादसे में पिकअप गाड़ी में भरे आम लोगों को लूटने की होड़ में नजर आए लोग। बिहार के कैमूर में पुलिस का एक्शन, 1138 लीटर शराब जब्त की गई, 2 जगहों से तस्कर की गिरफ्तारी। गढ़वा के बडीहा प्रखंड के एक स्कूल में मिड डे मील में हो रहा था खराब तेल का इस्तेमाल, भनक लगते ही वीडियो ने कसा शिकंजा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची काशी, गंगा किनारे पर एक दिन पहले मनाया अपना बर्थडे, क्रूज में सवारों का गंगा का सौंदर्य निहारा। सीएम रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ दशाश्वमेध घाट भी पहुंचे, गंगा आरती में शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा काशी भारत की आत्मा है, यहां की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकजुटता पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। वैद्यनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज, देवघर जाने आने के लिए चलेंगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का डूरन कप, 135वें डूरन कप 2026 की ट्रॉफी रांची पहुंची। फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर रिलीज किया गया, एक बार फिर से दिखाई दिया सनी देओल का रौद्र रूप। प्रियंका चोपड़ा के 44वें बर्थडे पर राजमौली का बड़ा सरप्राइज, फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का धांसू लुक सामने आया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने धूमधाम से मनाया अपना बर्थडे, करीना ने खास पोस्ट कर के जरिए उन्हें विश किया। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का जीरो का टीजर रिलीज किया गया, 7 अगस्त को फिल्म रिलीज की जाएगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही है एक्ट्रेस अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चाओं में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. you can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
7: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
12: शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
14: विमल, बोलो जुबां केसरी।
15: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
16: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
15: हैट्रिक का दावा।
16: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
15: विश्वास पूरा।
16: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
15: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहाँ गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
17: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
18: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
19: मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है।
20: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।

0: दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि शनिवार सुबह सुबह जंतर मंतर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अनशन, बीच में कैसा चेहरा जो पिछले 21 दिनों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, और कुछ ही मिनटों में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया मेडिकल इमरजेंसी, हाईकोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह।
1: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
0: हालांकि परिवार इसे सिर्फ मेडिकल फैसला नहीं मानता। सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
2: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, article 32 is a free individual. So please be professional. This is a fundamental right.
3: आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का, वो मैं रखूंगा।
0: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। एक तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में चला जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद युद्ध हुआ भीषण। ईरान में कई शहरों में भारी बमबारी, मोजतबा का संदेश, ट्रंप को सिखाया न भूलने वाला सबक। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। टीएमसी के बागियों की पार्टी को भी न्योता। उद्धव के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता। अस्पताल में भी वांगचुक का जारी है अनशन। लिक्विड डाइट के लिए तैयार नहीं है परिवार। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर सरकार को घेरा। यूपी की चुनावी जंग में बयानों के 30 अमल में बोले योगी, जो रोकते थे रामनवमी की यात्रा उनसे क्या उम्मीद। ओवैसी का पलटवार, अयोध्या की चोरी छुपाने की कोशिश। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छा गए चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आर्टिकल 370 के लिए। यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड। श्रीकांत सबसे अच्छी हिंदी फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड पर पहुंच चुका है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अमेरिका का कहना यह है कि इन हमलों का मकसद है हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की, जो ईरान की क्षमता है, जो उसकी रणनीति है, उसको कमजोर कर देना। आपको यह भी बता दें कि दावा यह भी किया गया कि यह कार्रवाई ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हमलों के बाद जवाब के रूप में की गई है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव में क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका भी बढ़ गई है। तो लगातार भीषण हमले जारी हैं दोनों ही जगहों पर। ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में जिस तरीके से जबरदस्त अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी जबरदस्त जवाबी हमला अलग अलग रिहायशी इलाकों में ईरान के भीतर किए गए हैं। ईरान की तरफ से एक ही बात लगातार कही जा रही है कि अमेरिका के सामने ईरान झुकने वाला नहीं है। और मुज्तबा खामने की तरफ से कहा गया है कि यह एक बड़ा और सख्त सबक ईरान ने अमेरिका को सिखाया है। तो ईरान ने इराक के उत्तरी हिस्से में कुर्द विपक्षी समूह के ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक एरबिल और सुलेमानिया में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की तस्वीरें हैं। सरकारी जो मीडिया है ईरान का IRIB उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि एरबिल और साथ ही सुलेमानिया में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो ईरान ने अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए ड्रोन से मिसाइल हमले किए हैं। ये कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमलों के बाद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें एक डिटोनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी संचालन रोकना पड़ गया था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी सैन्य केंद्र कैंप अरीफ जान और साथ ही अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमले का दावा किया है। वहीं कुवैत ने कई मिसाइलों और साथ ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की भी जानकारी दी है। तो युद्ध भीषण हो चुका है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रमुख है इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा है और चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक सुप्रीम लीडर के न भूलने वाले सबक का मतलब समझते तो वो एक पल भी बिना गवाए पीछे हट चुके होते। और उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीथ हेगसेक ने जॉर्डन में ईरानी हमलों में दो अमेरिकी सैनिकों के मौत पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा है कि इन सैनिकों का बलिदान अमेरिका के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करेगा। पीथ हेगसेक ने कहा है कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियान ने सुप्रीम लीडर के एकता संदेश के बारे में समर्थन देते हुए कहा है कि देश के सर्वोच्च नेता का दूरदर्शी और एकजुटता वाला संदेश राष्ट्रीय हितों और इस्लामिक ईरान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। ब्रजेश क्या ने कहा कि मौजूदा ऐतिहासिक दौर में एकता बनाए रखना और आपसी मतभेदों से बचना ही जीत की कुंजी है, जीत के लिए जरूरी है। तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौतों के बार बार उल्लंघन से साबित हो जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। खामनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते संघर्ष विराम समझौता टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हमले हुए हैं। इससे दोनों ही देशों के बीच फिर से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। ईरानी नेता ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरान की जनता और उसके सहयोगी गुटों से मिले सबक कभी नहीं भूलने चाहिए। तो जो एमओयू साइन किया गया था और जिस तरीके से एक दूसरे पर जबरदस्त हमला किया गया उसके बीच मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि इन सिग्नेचर्स का ट्रंप की विश्वसनीयता से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच बड़ी और एक और अहम खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के हवाले से खबर यह है कि ईरान जिस तरह से सटीक हमले कर रहा है, यह अकेले तेहरान के बस की बात नहीं है। अमेरिकी मीडिया की माने तो रूस और चीन ईरान को इंटेलिजेंस और साथ ही सैटेलाइट डेटा शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दावा यह किया गया है कि रूस और चीन लगातार ईरान की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं और इसीलिए ईरान एकदम प्रिसाइजली अटैक कर पाने में सक्षम है। तो जिस तरीके से ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है, अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसके पीछे रूस और चीन है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ, ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब और ज्यादा भीषण हो गया युद्ध, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर खाड़ी के देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है अमेरिका के मरने वालों की।
1: बिल्कुल, दरअसल वही सबसे बड़ा मामला है, जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं इस 8 दिन के युद्ध के दौरान पहली बार जॉर्डन में, तो वो कहीं ना कहीं उसने अमेरिका को तिलमिलाया है और अमेरिका अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहां से उनसे न तो गलने को बनेगा न तो गुलने को बनेगा। लेकिन जाहिर है कि जिस अंदाज से लगातार जिस तरह पहले युद्ध के दौर में ईरान का पलटवार बड़ा सटीक होता था, उसी तरह अब की बार भी ईरान ने दिखाया है कि जब भी वो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। तो जाहिर है कि अभी तक हल्के में धमकियां जो है ईरान की अमेरिका ले रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एहसास हो गया है कि बिल्कुल जो हमने दावे किए थे अमेरिका ने, खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान की पूरी शक्ति जो है खत्म हो चुकी है, उनके पास कोई मिसाइल नहीं बचा है, उनके पास कोई नेवी नहीं बची है, लेकिन पिछले 8 दिन के दौरान ईरान ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि उनकी नेवी भी इंटैक्ट है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाए हुए है।
0: अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे तेहरान अकेला नहीं है, ईरान के बस की बात नहीं है, रूस और चाइना की तरफ से लगातार मदद दी जा रही है।
1: नहीं, वो तो उनको कहना ही है। दरअसल अगर हम कहें तो ये जिसमें कोई शक ही नहीं है, वो खुले आम की बात है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में है तेहरान के साथ खड़े चीन और रूस है, भले ही वो मैदान में ना हो, जिस तरह से यूक्रेन में हम देख रहे हैं रूस के साथ अलग अलग देशों के सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर वो मैदान में नहीं हो, लेकिन पहले दौर के युद्ध के दौरान भी ये साफ हुआ था कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट और जो सर्विलेंस है उसमें काफी मदद ईरान की दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, उतनी ज्यादा सैटेलाइट नहीं है जो सटीक जो है जानकारियां जुटा सकें अमेरिकी सेनाओं की, खासतौर से खाड़ी के अलग देशों में, उसमें चीन का।
0: और यही दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया की तरफ से कि तमाम जानकारियां रूस और साथ ही चाइना की तरफ से ईरान को दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ आपका। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया है 6-4 से। आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है इंग्लैंड ने। मुकाबला गोलों की बारिश से भरपूर रहा, जिसमें इंग्लैंड ने पहले हाफ में 4 गोल दागे थे और बढ़त बना ली थी। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे की अगुवाई में फ्रांस ने जोरदार वापसी कर डाली, लेकिन बुकायो साका की हैट्रिक और जूड बेलिंगहैम के आखिरी मिनट के गोल ने इंग्लैंड की जीत को पक्का कर दिया। ये मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे ज्यादा गोल वाले तीसरे स्थान के मैचों में दर्ज हो गया है। और अब फाइनल की बात करेंगे क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने सबसे बड़े मुकाबले की दहलीज पर है। फुटबॉल के महाकुंभ का महामुकाबला अब बस कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने जा रहा है, जहां खिताब के लिए स्पेन और अर्जेंटीना होंगे आमने सामने। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की निगाहें इस फाइनल पर टिकी हुई है। एक ओर स्पेन पहली बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगा मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने का सपना लेकर मैदान में उतरेगा। इस महामुकाबले की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस के साथ न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप इससे पहले न्यूयॉर्क में फीफा रिसेप्शन में भी शामिल हो चुके हैं और दुनिया की निगाहों में अब इस ऐतिहासिक फाइनल और नए विश्व चैंपियन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इंतजार है आज रात का। दुनिया भर की नजरें हैं और आपको बता दें कि बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है इस फाइनल मुकाबले के लिए। आज फीफा विश्व कप का फाइनल मैच है। दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, फुटबॉल प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐतिहासिक आज ये दिन होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप भी इस मुकाबले को देखने के लिए न्यू जर्सी पहुंचने वाले हैं और भव्यता के साथ इस मुकाबले में दो जो टीमें हैं जबरदस्त तरीके से आमने सामने होंगी, भिड़ंत होगी, क्योंकि एक तरफ स्पेन है जो पहली बार चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरने वाली है और सामने होगी उसके अर्जेंटीना जो लगातार दूसरी बार इस विश्व कप को जीतने का सपना लेकर मैदान में होगी। फीफा के बाद अब हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, क्योंकि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में आज होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला रोहित के लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि हिटमैन एक बार फिर से बल्ले से अपना दम दिखाना चाहेंगे। वनडे क्रिकेट में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाने वाले रोहित शर्मा की पारी पर करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें टिकी होंगी। वहीं टीम इंडिया सीरीज के निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज करके इंग्लैंड के दौरे का शानदार अंत करना चाहेगी। और अब बात करेंगे मौसम के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेज बारिश की वजह से कई नदियां और नाले जबरदस्त उफान पर हैं, काफी ज्यादा जलस्तर इनका बढ़ चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो यात्राओं को टाल दें, नदियों को और नालों को ना पार करें और कोशिश करें कि इनसे दूरी बनाए रखें। नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी जा रही है। तो रौद्र रूप आप देख सकते हैं और इसीलिए बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। और अब बात करेंगे मॉनसून सत्र के बारे में, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह 11 बजे संसद भवन में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई है। सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कई विवादित मुद्दों पर

0: সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এক্ষুনি চিফ জাস্টিসের মহামান্য প্রধান বিচারপতি যিনি ওএসডি রয়েছেন তাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছি।
1: और चलिए बात करेंगे जंतर मंतर के आंदोलन के बारे में, क्योंकि अब सिर्फ छात्रों के भविष्य की लड़ाई नहीं है बल्कि सियासी जंग का बड़ा मैदान बन चुका है जंतर मंतर। एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, रात में उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया था, दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने बगावत तेज कर दी है। इसी बीच जंतर मंतर पर स्याही फेंकने की घटना ने और ज्यादा माहौल को गर्मा दिया। सवाल अब यह है कि क्या यह आंदोलन अपने मकसद तक पहुंचेगा या फिर पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए।
2: जंतर मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच अचानक हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी।
3: गांधी जी और अम्बेडकर की फोटो के साथ चलेगा संविधान के रास्ते पर।
2: सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से हटने के बाद दीपके ने अब भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
4: हमें अगर आप रिपोर्ट नहीं दिखा रहे तो हम हमारे पेशेंट को या सर को दूसरे हॉस्पिटल में हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अभी ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, और ये अभी मैं पोटेशियम क्लोराइड उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। सिर्फ इस दवा की वजह से वांगचुक सर एडमिट है।
2: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। इस तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।
5: ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है, इस सरकार के पास न तो दिल है न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता।
6: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो।
7: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था।
8: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है।
2: उधर बीजेपी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है, वहीं राहुल गांधी के ना जाने पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है।
9: इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथा कथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया, क्या है पार्टी का एजेंडा?
10: माननीय न्यायालय का भी फैसला था और उसमें कहा था कि जीवन अमूल्य है और उसका कॉग्निजेंस सरकार ने लिया और वहां गए और जाके उनको अस्पताल में भर्ती कराया, कोई बल प्रयोग नहीं किया।
2: शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्ष
1: 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें श्रीकांत ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का सम्मान जीता है। साउथ के एक्टर ममूटी को चौथी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ममूटी के साथ ही एक्टर कार्तिक आर्यन को भी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं यामी गौतम ने आर्टिकल 370 फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। और चलिए इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
12: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विदइन हर मंथली बजट बिकॉज़

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं, तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
10: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
11: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: Savari. So-

0: अमेरिका ईरान के बीच बमबारी जारी, रात भर गर्जी मिसाइलें तबाही भारी, ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले, ईरान का पलटवार, अमेरिकी सैन्य बेस को भारी नुकसान। अमेरिका और ईरान के बीच घमासान और तेज हो गया है। अमेरिका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। सारी रात ईरान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके होते रहे। अमेरिका ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तबाही का तांडव साफ दिखाई दे रहा है। सेंटकॉम के दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान के जो ठिकाने थे, उनमें खुफिया निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड हथियार स्टोरेज सेंटर और समुद्री उपकरण शामिल है। इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप और बाकी सैन्य उपकरणों को लगाया गया था। मध्य पूर्व में मौजूद 50,000 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा ही एक वीडियो एक फाइटर जेट का है, जो एक वॉरशिप से ईरान पर हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिस जंगी जहाज की ये तस्वीरें हैं, वो F-35B लाइटनिंग टू प्लेन है और इसे USS बॉक्सर से लॉन्च किया जा रहा है। अब बंदर अब्बास की ओर जाने वाली सड़क का हाल देख लीजिए। अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार इस पर बम बरसाकर इसे पूरी तरह तबाह कर दिया है। खुद ईरान की मीडिया इसकी बर्बादी दिखा रही है। सड़क के साथ साथ कई वाहन भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। अमेरिका के ताजा हमले में बंदर अब्बास रुदान मार्ग पर स्थित 2 पुल बुरी तरह टूट गए हैं। साथ ही जस्ट के पास इस इलाके पर भी सैन्य हमला हुआ है। न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। बुशहर और सिरिक जैसे शहरों में भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते से हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये हमले कब तक जारी रहेंगे। अमेरिकी मीडिया भी लगातार ट्रंप से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लगता है कि ये युद्ध इस बार लंबा खींचेगा। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के इन हमलों के जवाब में उसके कई सैन्य बेस को निशाना बनाया है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के फ्यूल सपोर्ट सिस्टम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले को देखते हुए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। जॉर्डन के मुवाफक अल सुल्ती एयरबेस पर भी ईरान ने धावा बोला है। ईरान ने 2 मिसाइलों के हमले में नुकसान का दावा किया है। हालांकि जॉर्डन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमलों की बौछार कर दी है। दिन में बार बार एयर सायरन बज रहे हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन 136 बहरीन के आसमान में उड़ते देखे गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर बटेलको को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा नौसेना ने कुवैत में अमेरिकी सिग्नल और दूर संचार केंद्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ये दुआ भीषण। ईरान में कई शहरों में भारी बमबारी, मोजतबा का संदेश, ट्रंप को सिखाया न भूलने वाला सबक। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, टीएमसी के बागियों की पार्टी को भी दिया गया न्यौता। उद्धव के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता। अस्पताल में भी वांगचुक का जारी अनशन, लिक्विड डाइट के लिए तैयार नहीं परिवार। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर सरकार को घेरा। यूपी के चुनावी जंग में बयानों के तीर, संभल में बोले योगी, जो रोकते थे रामनवमी की यात्रा उनसे क्या उम्मीद हो। वैसी का पलटवार, अयोध्या का चोरी को छुपाने की हो रही है कोशिश। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छा गए चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड, श्रीकांत सबसे अच्छी हिंदी फिल्म।

अमेरिका ने ईरान पर लगातार आठवें दिन किया हमला। ईरान के दक्षिणी शहर सिरी के आसपास हवाई हमले किए गए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और जॉर्डन में ड्रोन और हमले किए। कुवैत के कैंप अरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमलों के बीच कुवैत एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया। हमले में तेल के व्यापार को भारी नुकसान। ईरान के नए वीडियो में दावा किया गया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाया था। ईरान ने कहा कि हमला उसके पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर हुई बमबारी के जवाब में किया गया है। ईरान के उत्तरी इलाके में ईरान ने उत्तरी इराक में कुर्द विपक्षी गुट के ठिकानों पर भी हमला किया। ईरान में इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिका को मिले सबक कभी नहीं भूलेगा अमेरिका। ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैनिकों की मौत हुई। जॉर्डन में दो और सैनिकों के मारे जाने से बढ़ गया आंकड़ा। ईरान का कुवैत के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला, कई घायल हुए, भारी नुकसान की आशंका। ईरान के नए हमलों पर यूएई का बड़ा एतराज, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के समर्थन में उतरा है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक, सोमवार से 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक एजेंडे में उठ सकता है सोनम वांगचुक का मुद्दा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 30 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक। राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता, सुदीप बंदोपाध्याय होंगे लोकसभा में एनसीपीआई के नेता। टीएमसी के बागी सांसद गए थे एनसीपीआई। बागियों को अभिषेक बनर्जी की चुनौती, मुझसे दिक्कत है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं वापस आए मैं एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 बागी के सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने को लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी। शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे बोले, हमारे 6 सांसद हमसे छीन लिए गए, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बोले, उज्जैन से अयोध्या तक घोटाले किए गए। उद्धव के बयानों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले उद्धव को भगवान राम की याद आ गई, राम रक्षा पाठ को राजनीतिक कार्यक्रम न बनाए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना, बोले उद्धव के पिता ने विचारधारा उन्होंने छोड़ दी थी, अपने पिता की विचारधारा, सत्ता के लिए वो राम विरोधियों से मिल गए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूपी सरकार से मांगा है अतिरिक्त समय। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में निर्मोही अखाड़ा का सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने की अपील। संभल में बोले सीएम योगी, एसपी के अत्याचारों को गरीब भुगत रहा है, जमीन पर कब्जे की कोशिश बर्दाश्त नहीं। 300 करोड़ से बनने वाले 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा इसके नेता बेलगाम है, ये लोग श्री कृष्ण को नमाजी बताने लग गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा, रडार पर ट्रस्ट की जमीन सौदे और 50 कर्मचारी। रामपुर में आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार, सेशंस कोर्ट ने आजम की अपील को खारिज किया। 2019 के चुनावी भाषण के मामले में राहत नहीं। सहारनपुर में अवैसी की योगी सरकार पर हमला, बोले मस्जिदों और जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाकर बीजेपी बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस भारत की कार्यनीति। मध्य प्रदेश के 4 बीएड कॉलेजेस पर जांच, फर्जी बीएड कॉलेजेस पर सरकार सख्त है, एनसीटी की जांच की कमेटी का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर सख्ती, ऑफिसर्स की हवाई यात्रा हुई, सीमित होटल्स में बैठकों पर लगी रोक, किराए के वाहनों में वो भी कम होंगे। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कट्टरपंथियों का किसी धर्म में स्थान नहीं। ममता बनर्जी हो चुकी है नकली, तेजस्वी यादव पार्टी को गिरवी रख चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा का नया वीडियो वायरल हुआ है, घर घर चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा को माला पहनाते हुए उन्होंने माला पहनने से इनकार किया, कहा माला वाला पीछे आ रहा है। मधेपुरा में आरएसएस कार्यक्रम का छात्रों ने विरोध किया, कई छात्र नेता हिरासत में लिए गए। गुजरात एटीएस के पकड़े गए 5 आतंकवादियों का भरूच से कनेक्शन है, दारुल उलूम मदरसे के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को भेज दिया जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, श्रीकांत को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड, फिल्म चंदू चैंपियन में शानदार अभिनय के लिए दिया गया सम्मान। यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सम्मानित की गई। मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया, फिल्म ब्रह्मयुग में किया है बेहतरीन अभिनय।
आर्टिकल 370 को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी कल्कि। फीफा वर्ल्ड कप में कायो साका की हैट्रिक की बदौलत इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, वर्ल्ड चैंपियन के लिए खिताब के लिए आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और स्पेन। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर दोनों ही टीमें। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रच दिया इतिहास, पहली बार जापान बैडमिंटन ओपन के फाइनल में बना ली है जगह। सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन यूफेई को हराया आबा यामागुची से खिताबी मुकाबला। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई, खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला, पहलगाम बालटाल रूट पर आज दोनों मार्गों को स्थगित किया गया। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, अभी तक 14,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हिमाचल में 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का खतरा है, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लगातार बारिश के बाद चंबा के जुवाड़ी भुराटी मार्ग पर भूस्खलन हुआ, मलबे में फंस गई थी गाड़ियां। किन्नौर के मस्तरंग में बादल फटने के बाद हड़कंप, आईडीबीपी कैंप के करीब आवाजाही ठप हुई। राजौरी में भारी बारिश, सड़क पर बरसता पानी के साथ आ गया था मलबा, ट्रैफिक बाधित हुआ। उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के अगले 6-7 दिनों तक जमकर बारिश के आसार है, मौसम विभाग ने सक्रिय मॉनसून की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। आज और कल उत्तराखंड में भारी से अत्यधिक बारिश की संभावना, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा। शिमला में बारिश के बीच अलर्ट और मौसम सुहाना हो गया है, मौसम का मजा लेते हुए नजर आए सैलानी। भारी बारिश के बाद अचानक से आई फ्लैश फ्लड ने करगिल संग्राह के पास तबाही मचाई, रास्ते बंद एक वाहन क्षतिग्रस्त। रक्सौल में नगर परिषद के कार्यशैली से दुकान के और घरों में घुस गया है पानी, लोगों में नाराजगी। रोहतास में एक घंटे की बारिश के बाद शहर पानी पानी हुआ, अनुमंडल कार्यालय परिसर में पूरा पानी ही पानी। मेरठ में अतुल हत्याकांड में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से डसवा दिया, 4 की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में 13 साल का बच्चा डीएम के सामने बोला, आप लोगों को तो सिर्फ कमीशन दे दो बस, शर्म से हंसने लगे सभी अधिकारी, बोले ज्यादा नहीं बोलते। अहमदाबाद में पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक से भीषण आग लगी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से समय रहते काबू पाया गया। वडोदरा में मोबाइल शोरूम से चोरों ने 15 मिनट में चोरी कर डाली, करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल फोनों पर हाथ साफ। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम बकाया वसूल करने पहुंची तो टीम पर हमला किया गया, जमकर मारपीट। शिवपुरी में 2 दिन के लापता चचेरी बहनों के शव 70 फीट गहरे कुएं से बरामद किए गए, पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर में मात्र 9 रुपए के आरोप में फ्रेंड को मार डाला, हत्यारा दोस्त गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में चलाया गया बुलडोजर, 50 से ज्यादा अवैध दुकान मकान और ढाबों को ध्वस्त किया गया। वाशिम में बिजली विभाग कार्यालय के सामने ही लेट गए थे ग्रामीण, रखी अपनी मांगे। मध्य प्रदेश के शिवपुर में पानी की टंकी पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी छोड़कर चली गई इसीलिए हंगामा किया। पटना की कोचिंग में छात्र के साथ मारपीट हुई, मामले में कोचिंग के शिक्षक और संचालक के खिलाफ FIR। नौगछिया में दहशत फैलाने का साजिश को नाकाम किया गया, देसी कट्टा और 31 कारतूसों के साथ 2 की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार की सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने स्पा सेंटर की छापेमारी करके 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को और 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया है। फतेहपुर में कक्षा 9 की छात्रा के साथ गैर समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया, साथी बनाया था अश्लील वीडियो, वायरल हुआ। बेतिया में पुल से महिला ने नदी में छलांग लगा दी, ग्रामीणों की बहादुरी की वजह से बच गई जान। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 8 की मौत हुई, धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंच गए थे जवान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह के भंडाफोड़ करने के बाद 3 की गिरफ्तारी की गई। इंदौर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने फरियादी के घर में तोड़फोड़ कर डाली, मारपीट भी की गई, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। अलवर में पुलिस ने एक दिन में 247 ठिकानों पर दबिश दी, 182 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में 27 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी, बकरी की दावत से मिले सुराग से भोपाल से दबोचा गया। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोप में 9 की गिरफ्तारी, आरोपियों से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए। पटना में क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे कई खातों में पैसे मंगवाने वाले 4 साइबर गिरफ्तार किए गए, अब तक करोड़ों की कर चुके हैं ठगी।
यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में युवक ने घुसकर उत्पात मचाया। दारोगा की कैप पहनकर फाड़े कागजात, वीडियो वायरल हुआ। भोजपुर में बिहार में जर्जर दीवार गिरने से दबकर दो मासूमों की जान गई, बुजुर्ग बुरी तरह से घायल। इंदौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का कथा शिकंजा, पांचवा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय में सीआईएसएफ जवान पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के आरोप, शिक्षिका ने दर्ज करवाया है मामला। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, लिफ्ट में फंसे थे 6 यात्री, 30 मिनट के बाद दरवाजा काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। नौवें दिल्ली मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई, 6 से 7 यात्रियों के घायल होने की खबर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिकअप और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई, हादसे में पिकअप गाड़ी में भरे आम लूटने की भीड़ में होड़ मची। बिहार के कैमूर में पुलिस का एक्शन, 1338 लीटर शराब को जब्त किया गया, 2 जगहों से तस्करों की गिरफ्तारी। गढ़वा के बर्डिया प्रखंड में एक स्कूल में मिड डे मील में हो रहा था खराब तेल का इस्तेमाल, भनक लगते ही वीडियो ने कसा शिकंजा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पहुंची काशी, गंगा किनारे एक दिन पहले मनाया अपना बर्थडे, क्रूज में सवारों को गंगा को सौंदर्य को निहारा। सीएम रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ दशाश्वमेध घाट पर भी पहुंची, गंगा आरती में शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा काशी भारत की आत्मा है, यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकजुटता पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। केदारनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज, देवघर जाने आने के लिए चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल डूरंड कप, 135वें डूरंड कप 2026 में रांची पहुंची। फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर रिलीज किया गया, एक बार फिर से सनी देओल का रौद्र रूप नजर आया। प्रियंका चोपड़ा के 44वें बर्थडे पर राजा मौली का बड़ा सरप्राइज, फिल्म वाराणसी की फायर मंदाकिनी का धांसू लुक सामने आया। प्रियंका चोपड़ा ने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, करीना ने खास पोस्ट के जरिए विश किया। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज किया गया, 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी फिल्म। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस सदा शर्मा, सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्म गजरा को लेकर चर्चाओं में है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में प्रबल हो तो सामान्यतः आप स्वस्थ बने रहते हैं, लेकिन सूर्य के गड़बड़ होने पर विशेष तरह की बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य आपको कौन सी बीमारियां दे सकते हैं और उन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:12 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अपनी अच्छाइयां भी होती हैं और अपनी बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह के कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह कुंडली में अच्छा है तो शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करता है वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, अन्यथा उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। कुल मिलाकर ओवरऑल आपका हेल्थ बेहतर रखता है। सूर्य शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में, हर तरीके से स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो गया, बाकी ग्रह अगर प्रबल भी हों

का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। सूर्य अलग अलग कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं देता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

वृषभ राशि, करियर की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, सूर्य ओवरऑल हेल्थ का स्वामी है, लेकिन सबसे पहले जो समस्या देता है वो आंखों की समस्या है। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का, आंखों की रोशनी का कारक है। सूर्य अगर कमजोर हो जाए तो आंखों में समस्या पैदा होती है, आंखें कमजोर होती हैं। और अगर सूर्य खराब हो गया तो उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य खराब होने पर आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है। सूर्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है। कमजोर होने में इतनी दिक्कत नहीं है, आपको चश्मा लग जाएगा, लेंस लग जाएगा, लेकिन अगर सूर्य खराब हो गया तो आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है या आंखों में गंभीर समस्या हो सकती है। अगर नेत्र से संबंधित बड़ी बीमारी हो रही है या आंखों से संबंधित बड़ा रोग हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सूर्य के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। घर के उस कमरे में रहिएगा जहां सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आता हो, या ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करने से भी नेत्र ज्योति के मामले में, आंखों की रोशनी के मामले में सुधार होगा। सूर्य की अन्य बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, धन की दशा में सुधार होगा, करियर की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें प्रयागराज से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1993। जन्म का समय रात में 11:05। जन्म का स्थान है प्रयागराज। मीनाक्षी कह रही हैं कि मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मीनाक्षी, अभी थोड़ा समय और लगेगा आपके विवाह में। जून 2027 से दिसंबर 2027 का अच्छा समय है। इस समय में आपके विवाह की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं और आपका विवाह आपके जान पहचान में प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास ही होने की संभावना बनती है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और हर बृहस्पतिवार को प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य शरीर में सबसे ज्यादा असर डालता है आपकी हड्डियों पर, बोन के स्ट्रक्चर पर। तो सूर्य अगर गड़बड़ हुआ तो हड्डियों की समस्या आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। क्या करता है सूर्य? सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है और सूर्य के कमजोरी से विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर ज्यादा खराब है तो हड्डियों का रोग होगा और चलने फिरने में मुश्किल आएगी। पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या सूर्य की वजह से परेशान करती है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो हड्डियों में आपको दर्द होगा और अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो

पड़ेगा। सूर्य का खराब होना लगातार हड्डियों की तकलीफ देता है और सूर्य का कमजोर होना हड्डियों की समस्या देता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल प्लेन वाटर, और सूर्य देव के सामने उनके 21 नामों का उच्चारण करिएगा। प्रातः काल उगते हुए सूर्य के सामने पीठ करके कम से कम 10 मिनट तक बैठिएगा और सलाह लेकर एक बड़ा माणिक्य, लगभग 8-10 रत्ती का एक बड़ा माणिक्य धारण करिएगा। नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और डॉक्टर की दवाई लें, डॉक्टर का परामर्श माने, तो हड्डियों की समस्या को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। सूर्य की बीमारियों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आप

कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, संपत्ति

योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो सूर्य मुख्य रूप से आंखों की बीमारी, हड्डियों की समस्या देता है। सबसे बड़ी जो सूर्य समस्या देता है वो है हृदय रोग, कार्डियो प्रॉब्लम। तो अगर हृदय रोग है तो मामला क्या होता है? सूर्य अगर खराब है तो ये अक्सर हृदय रोग का कारण बनता है। सूर्य की खराबी आठवें स्थान में, खास तौर से सूर्य के जाने पर हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य शनि का संबंध हो या सूर्य राहु का संबंध हो तो हृदय रोग हो सकता है। अमावस्या का जन्म होने पर भी हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि अगर कुंडली में प्रभावित है, सिंह राशि में अगर ज्यादातर पाप ग्रह बैठे हैं तो हृदय रोग की प्रबल संभावना बन सकती है। सूर्य अगर कमजोर हो तो हृदय में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पल्पिटेशन हो सकता है, पेन हो सकता है या थोड़ा बहुत ब्लॉकेज भी हो सकता है। हालांकि ब्लॉकेज के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है, चंद्रमा जिम्मेदार है, लेकिन सूर्य भी वहां पर भूमिका निभाता है। और अगर सूर्य खराब हुआ कुंडली में तब हृदय की बड़ी और जटिल संभावना होने की स्थिति बनती है। अब अगर सूर्य की वजह से कुंडली में हृदय रोग का योग है या हृदय रोग की शुरुआत हो चुकी है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका नित्य प्रातः एक बार पाठ करिएगा। तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा। अगर आप गंभीर हृदय रोग से गुजर रहे हैं तो आप स्वयं या आपके नाम से कोई भी राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करे तो उससे लाभ होगा। और सूर्य की खराबी अगर कुंडली में है जिसकी वजह से हृदय रोग की स्थिति बन रही है तो रविवार को गुड़ और आटे का दान करिए या रोटी में गुड़ रख करके गाय को खिलाइएगा। ऐसा करने से लाभ होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठना और सूर्य से प्रार्थना करना, ऐसा करने से भी हृदय रोग में लाभ होना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, वाद विवाद हो सकता है, परिवार की समस्या से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा, धन आसानी से मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए, अगर जल के छींटे पैरों पर पड़ेंगे तो अशुभ होगा। क्या ऐसा है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जल चढ़ाने का फायदा सर से लेकर के कमर तक के इलाकों में ज्यादा होता है। उसके बाद अगर जल के छींटे आपको पड़ जाते हैं पैर पर तो ये कोई पाप नहीं है, कोई अशुभता नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर छींटे पड़ गए तो पड़ गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छींटे ना पड़े तो सामने एक बाल्टी रख लें और इस तरह जल चढ़ाएं कि बाल्टी में पानी गिरे, बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय आपके पैरों पर छींटे पड़ जाते हैं तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई अशुभ कार्य नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 9, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक,
इस समय में दीपक जलाकर प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर धरना कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया है। तो लंबे समय से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी था, तमाम नाराजगी जाहिर की जा रही थी इन लोगों की तरफ से। छतरपुर जिले के कुपी में अंडा ब्रिज के नीचे 14 दिन से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। वरान नदी के तट पर आंदोलनकारी डटे हुए थे, लेकिन सुबह सुबह पुलिस पहुंची और अनशन कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया है। भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उचित मुआवजे की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले 14 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी था। मांग ये थी कि उचित मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए और इसीलिए तमाम ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि जो अमित भटनागर इन तमाम लोगों के किसान नेता हैं, भूख हड़ताल पर थे, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आज सुबह सुबह यहाँ आंदोलनकारियों के पास पहुंचकर पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती इन्हें उठाया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं। रवीश, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर?
1: देखिए, आपको बता दें कि ये मामला क्योंकि लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, पिछले कई दिनों से जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, वो इस आंदोलन में शरीक हो रहे थे और नए नए तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो आदिवासी किसान है जो विस्थापित हो चुके हैं, उनको उचित मुआवजा मिल नहीं रहा है और तकरीबन 14 दिनों से ये हड़ताल चल रही थी जिसमें कई किसान संगठन भी शामिल हुए थे। लेकिन आज अचानक से सुबह जो ब्रिज के नीचे जो आंदोलन चल रहा था, जहां पे कभी पानी में चिता बना करके किसान प्रदर्शन कर रहे थे और पानी में रह करके प्रदर्शन कर रहे थे, तो सुबह तकरीबन 4:30 के आसपास जो है भारी पुलिस बल वहां पहुंचता है और जो प्रदर्शनकारी है उनको गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल ये पूरा जो विवाद था इस बात को लेकर था कि जो किसान है उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है अधिग्रहण के बाद, लेकिन सरकार का और प्रशासन का कहना है कि योजना के तहत जो भी अधिग्रहण हुआ है उसमें जो तय सीमाएं थी मुआवजे की, उससे कहीं ज्यादा मुआवजा जो है किसानों को दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद किसान जो है वो जल सत्याग्रह पर अड़े हुए थे और इसकी वजह से जो केन बेतवा जैसी महत्वपूर्ण एक परियोजना है मध्य प्रदेश सरकार की, उस पर रुकावट आ रही थी बार बार, तो उसी को लेकर के आज तड़के पुलिस पहुंचती है छतरपुर जिले की और सैकड़ों पुलिस जवान जो है वहां पे मौजूद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर के जो प्रदर्शन स्थल उसे
0: खारिज बने रहे हैं। आप हमारे साथ जिला कलेक्टर की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं।
2: जिसे पिछले कुछ 10 से 15 दिनों से ग्राम कुपी तहसील बिजावर में लगभग 150 के करीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों से हमारे तहसील के अधिकारियों के द्वारा जब उनका सर्वे कराया गया तो लगभग 176 लोग निकल के आए। सभी लोग पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं। उनकी कुछ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड उनकी शिकायतें हैं, कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं मिला या कुछ लोग छूट गए हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से यही अपील है और कि आप अपनी कॉम्पनसेशन की जो भी कंप्लेंट्स हैं आप उसको उचित फोरम पे रखें, क्योंकि वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आई अपील एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट देम कि आप अगर पन्ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर अपनी मांगे रखेंगे तो वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमने भी यहाँ से जो भी उनकी कंप्लेंट्स निकली हैं हमने पन्ना एडमिनिस्ट्रेशन को उनको भेजी हैं और उनका समय सीमा में हम निराकरण भी करवाएंगे।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अमित, हम उनका रुख करेंगे। मैं सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लगातार लोगों का जुड़ना यहां जारी था, 14 दिन से हड़ताल चल रही थी। अभी जानकारी ये है कि जो भूख हड़ताल कर रहे थे किसान नेता अमित भटनागर, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
3: बिल्कुल शशि, देखिए दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी पे छतरपुर और पन्ना के बीच एक जगह केन बेतवाल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, भारत का बहुत ही

0: एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, जिसमें केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो भूमि अधिग्रहण है वो मध्य प्रदेश सरकार को करना है, इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ चल रही थी। लेकिन जो किसान है, खासतौर पे ट्राइबल समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, बंजारा समुदाय से और पिछड़ी जातियों के किसान इस इलाके में रहते थे, जंगल पर डिपेंडेंट थे, पन्ना फॉरेस्ट रिजर्व उनका बहुत बड़ा डिपेंडेंसी का सोर्स था, इनकम का सोर्स था, जहां से तेंदू लीफ से लेके तमाम उत्पाद वो जंगल का लेकर अपना जीवन व्यापन भी करते थे और शहर में बेच के भी उससे पैसा कमाते थे। अब उनका कहना है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो जो कॉम्पनसेशन उनको दिया जा रहा है, मुआवजा उनको दिया जा रहा है, वो फेयर तरीके से नहीं दिया गया। उनका आरोप था कि कई सारे केसेस हम मिले भी ऐसे किसानों से, वो कागज दिखाकर कह रहे थे कि देखिए ये सरकारी रिकॉर्ड्स में तो इरिगेटेड जमीन है, सिंचित जमीन है, लेकिन जब सर्वे कराया गया तो उसमें सिर्फ दो पट्टे को दिखाया गया कि इरिगेटेड जमीन है और बाकी चार पट्टों को नॉन इरिगेटेड जमीन में दिखा दिया गया, जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन का अमाउंट, मुआवजे का अमाउंट लगभग लगभग 50-60% कम हो गया।
1: जी
0: मैंने कल यही सवाल पार्थ जायसवाल से पूछा था कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन ये कैसे होने दे सकता है कि एक व्यक्ति 6 जुलाई से भूख हड़ताल पे है और आपका कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए, कोई मेडिकल टीम मिलने
1: बिल्कुल
0: के लिए नहीं जा रही है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: ये एक बहुत बड़ा सवाल था और अब कहा जा रहा है कि इन्हें उठा लिया गया वहां से और अब बार बार कहा जा रहा है कि उचित प्लेटफॉर्म तक अपनी पूरी की पूरी मांगों को पहुंचाएं जिससे कि सोल्यूशन निकाला जा सके। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे युद्ध के बारे में जो और ज्यादा भीषण हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में। तनाव बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाइयां की गई हैं। अमेरिका का कहना यह है कि इन हमलों का मकसद है हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर देना। दावा यह भी किया गया है कि कार्रवाई ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से जॉर्डन में जो अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया था जिसमें दो अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की खबर है उसके बाद किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव ने क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ईरान ने इराक के उत्तरी हिस्से में कुर्द विपक्षी समूहों के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। ईरानी सरकारी जो मीडिया है IRIB, उनके मुताबिक एरबिल और सुलेमानिया में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पूरी तरह से इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ये जो हमला है, ईरान ने इराक के उत्तरी हिस्से में कुर्द विपक्षी समूह के ठिकानों पर बोला है। ईरानी सरकारी मीडिया IRIB ने कहा है कि एरबिल और साथी सुलेमानिया में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के जो ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया, उसके ऑफिस को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए ड्रोन और मिसाइल हमले के बारे में जानकारी दिया। कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमलों के बाद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पर भी लगातार हमले हुए हैं जिसमें एक डिसेलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालन को रोकना पड़ गया था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी सैन्य केंद्र कैंप अरीफ जान और साथी अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमले का दावा किया। वहीं कुवैत ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा है और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक सुप्रीम लीडर के न भूलने वाले सबक का मतलब समझ जाते तो वो एक पल गवाए बिना पीछे हट चुके होते। और उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेडसेक ने जॉर्डन में ईरानी हमलों में दो अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों का बलिदान अमेरिका के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। हेडसेक ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो दोनों ही तरफ से भयंकर हालात हैं और आपको बता दें कि दो सैनिकों के मारे जाने के बाद भी अमेरिका ने और हमले तीव्र करने की चेतावनी दी है। उधर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं मोजतवा खाम ने, उन्होंने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते के बाद बार बार उल्लंघन ये साबित करता रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की कोई विश्वसनीयता नहीं है। हमने का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते संघर्ष विराम समझौता टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच हमले शुरू हुए हैं जबरदस्त तरीके से और ये भीषण हो गए हैं। इसमें दोनों ही देशों के बीच फिर से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा है। ईरानी नेता ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को ईरानी जनता और उसके सहयोगी गुटों से मिले सबक कभी नहीं भूलने चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद युद्ध हुआ भीषण। ईरान में कई शहरों में भारी बमबारी। मुज्तबा का संदेश, ट्रंप को सिखाया न भूलने वाला सबक। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। टीएमसी के बागियों की पार्टी को भी न्योता। उद्धव के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता। अस्पताल में वांगचुक का जारी है अनशन। संदेश जारी करके लिखा, 20 जुलाई को आजादी की दूसरी का आंदोलन। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर सरकार को घेरा। केंद्रीय व आंदोलनकारियों पर सुबह सुबह एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। 14 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अमित भटनागर अस्पताल में भर्ती। अंडरग्राउंड निर्माण ब्रिज का हवाला। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश। राजौरी में फ्लैश फ्लड में बह गई कई गाड़ियां। कई जगहों पर लबालब पानी। नदी नाले उफान पर अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा को रोका गया।

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। पहलगाम बालटाल रूट पर आज से दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। अभी तक 14,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में 20 से 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का खतरा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश के बाद चंबा और चुवाटी में भराड़ी मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। मलबे में फंस गई थी गाड़ी। कन्नौर के मस्तरंग में बादल फटने के बाद हड़कंप। आईटीबीपी कैंप के करीब आवाजाही पूरी तरह से ठप। राजौरी में भारी बारिश, सड़क पर बरसात के पानी के साथ मलबा भी आया, ट्रैफिक बाधित हुआ। उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले 6-7 दिनों तक जमकर बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने सक्रिय मानसून की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की बात कही गई। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया गया। भूस्खलन और अचानक से बाढ़ का भी खतरा। मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट के बीच मौसम का मजा लेते हुए सैलानी नजर आए। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सोमवार को 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक एजेंडे में उठ सकते हैं सोनम वांगचुक का मुद्दा भी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त। सोनम वांगचुक का संदेश 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान। कहा, भयमुक्त भारत अन्याय मुक्त भारत के लिए आंदोलन को सफल बनाएं। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता। सुधीर बंदोपाध्याय होंगे लोकसभा में एनसीपीआई के नेता। टीएमसी के बागी सांसद गए थे एनसीपीआई। बागियों को अभिषेक बनर्जी की चुनौती, मुझसे अगर दिक्कत है तो इस्तीफा देने को तैयार, वापस आए मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 बागी के सांसदों को शिंदे गुट में शामिल करने का लोकसभा स्पीकर ने उन्हें मान्यता दी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले, हमारे 6 सांसद हमसे छीन लिए गए हैं, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले, उज्जैन से लेकर अयोध्या तक घोटाले किए गए। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले उद्धव को भगवान राम की आ गई है याद, राम रक्षा पाठ को राजनीति से न जोड़े। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधा, बोले उद्धव ने पिता की विचारधारा को छोड़ दिया था, सत्ता के लिए वो राम विरोधियों से मिल गए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट देने के लिए सरकार से समय मांगा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने की अपील। संभल में बोले सीएम योगी, एसपी के अत्याचार को गरीब भुगत रहा है, जमीन पर कब्जे की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। 300 करोड़ से बनने वाले 24 कोसीय परियोजना मार्ग का शिलान्यास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा इनके नेता बेलगाम है, ये लोग कृष्ण को बता रहे हैं नमाजी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा, रडार पर हैं ट्रस्ट के 50 कर्मचारी और जमीन सौदे भी। रामपुर में आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार है। सेशंस कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज किया। 2019 के चुनावी भाषण में राहत नहीं। सहारनपुर में ओवैसी का योगी सरकार पर हमला, बोले मस्जिद और जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाकर बीजेपी बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस भारत की कार्यनीति। एमपी के 4 बीएड कॉलेजेस की जांच होगी, फर्जी बीएड कॉलेजेस पर सरकार सख्त है, एनसीटीई ने जांच कमेटी का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर सख्ती, ऑफिसर्स की हवाई यात्रा सीमित होगी, होटल्स में बैठकों पर रोक लगेगी, किराए के वाहन भी कम होंगे। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कट्टरपंथियों का किसी धर्म स्थान नहीं है, ममता बनर्जी हो चुकी है नकली, तेजस्वी यादव की पार्टी को गिरवी रख चुके हैं तेजस्वी। नरोत्तम मिश्रा का नया वीडियो वायरल हुआ, घर घर चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा का माला पहनने से साफ इनकार, का माला पहनने के लिए पीछे आ रहा है। मधेपुरा में आरएसएस कार्यक्रम का छात्रों ने विरोध किया, कई छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। गुजरात एटीएस के पकड़े गए 5 आतंकवादियों का भरूच से कनेक्शन है। दारुल उलूम मदरसे से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को भेजा है जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, श्रीकांत को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड। फिल्म चंदू चैंपियन में शानदार अभिनय के लिए दिया गया सम्मान। यामी गौतम को बेस्ट हीरोइन का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सम्मानित। मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुन लिया गया, फिल्म ब्रह्मयुगम में बेहतरीन अभिनय किया। आर्टिकल 370 को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी कल्कि। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वें दिन किए हैं हमले। ईरान के दक्षिणी शहर सीरिक के आसपास हवाई हमले किए गए।
ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत जॉर्डन में ड्रोन से हमले किए। कुवैत के कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमलों के बीच कुवैत एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया है। हमलों में तेल व्यापार को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के नए वीडियो में दावा किया गया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि हमला उनके पुलों, अस्पतालों, हवाई अड्डों पर किया गया। बमबारी में कई चीजें तबाह। ईरान के उत्तरी इराक में कुर्द विपक्षी गुटों पर ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान में इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए लिखा, अमेरिका को मिले न भूलने वाले सबक। ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैनिकों की मौत के बाद जॉर्डन में 2 और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद बढ़ गया आंकड़ा। ईरान का कुवैत के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला, कई लोग घायल हुए, भारी नुकसान की खबर। ईरान के नए हमलों पर यूएई का कड़ा एक्शन। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के समर्थन में उतरा। फीफा वर्ल्ड कप में कायो साका की हैट्रिक के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा वर्ल्ड चैंपियन के लिए खिताब के लिए आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और स्पेन। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों ही टीमें। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रच दिया इतिहास। पहली बार जापान बैडमिंटन ओपन के फाइनल में बनाई है जगह। सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर 4 चेन युफेई को हराया। अब यामागुची से होगा खिताबी मुकाबला। भारी बारिश के बाद अचानक से आई थी फ्लैश फ्लड। करगिल संग्रह पर तबाही देखी गई। रास्ते बंद, एक वाहन क्षतिग्रस्त। रक्सौल में नगर परिषद के कार्यशैली से दुकान में घरों में भर गया पानी। नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया। रोहतास में घंटे के बारिश के बाद शहर हुआ है पानी पानी। अनुमंडल कार्यालय परिसर में पानी भरा। मेरठ में अतुल हत्याकांड में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से दसवा दिया। 4 की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में 13 साल का बच्चा डीएम से सामने बोला, आप लोगों को सिर्फ कमीशन से मतलब है। सभी हंसने लगे और अधिकारी बोले, ज्यादा नहीं बोलते। अहमदाबाद के पार्किंग में खड़ी हुई एक कार में अचानक से भीषण आग लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते काबू पाया। वडोदरा में मोबाइल के शोरूम से चोरों ने 15 मिनट के अंदर चोरी कर डाली। करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम बकाया वसूल करने के लिए जब पहुंची तो टीम पर जबरदस्त हमला किया गया, जमकर मारपीट की गई। शिवपुरी में 2 दिन से लापता चचेरी बहनों के शव 70 फीट गहरे कुएं से बरामद किए गए। पुलिस ने जांच शुरू की। कानपुर में मात्र 900 रुपए के लिए आरोप है कि फ्रेंड ने ही अपने दोस्त को मार डाला, गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा अवैध मकान, दुकान और ढाबों को ध्वस्त किया गया। पाश्चिम में बिजली विभाग कार्यालय से सामने ही लेट गए थे ग्रामीण, अपनी मांगों को सामने रखा। एमपी के श्योपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, हाई वोल्टेज ड्रामा किया, कहा पत्नी छोड़कर चली गई है। पटना में एक कोचिंग के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामले में कोचिंग के शिक्षक और संचालक के खिलाफ FIR दर्ज। नौगछिया में दहशत फैलाने की साजिश नाकाम हुई। देसी कट्टा और 31 कारतूसों के साथ 2 की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को और 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को गिरफ्तार किया गया। फतेहपुर में कक्षा 9 की छात्रा के साथ गैर समुदाय के युवक ने रेप किया, साथ ही वीडियो भी बनाया, वीडियो वायरल हुआ। बेतिया में पुलिस ने महिला ने नदी में छलांग लगा दी थी, ग्रामीण की बहादुरी की वजह से बच गई जान। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 8 की मौत की खबर। धमाका सुनते ही रेस्क्यू टीम के लिए तमाम लोग पहुंचे। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, 3 की गिरफ्तारी। इंदौर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने किया फरियादी के घर में तोड़फोड़ और मारपीट, 4 की गिरफ्तारी। अलवर में पुलिस ने एक दिन में 247 ठिकानों पर दी दबिश, 182 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में 27 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी, बकरीद की दावत मिलने से सुराग से भोपाल से दबोचा गया। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोप में 9 की गिरफ्तारी, आरोपियों से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद। पटना में क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर कई खातों में पैसे मंगवाने वाले 4 की गिरफ्तारी, अब तक करोड़ों का लगा चुके हैं चूना। यूपी के हापुड़ में पुलिस चौकी में घुसकर युवक ने मचाया उत्पात, दरोगा की कैप पहनकर फाड़े कागजात, वीडियो वायरल हुआ। भोजपुर के बिहार में जर्जर दीवार गिरने की वजह से दबकर 2 मासूमों की जान गई, एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल।
इंदौर में ड्रग तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का कसा शिकंजा, पांचवा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में सीआईएसएफ जवान पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के आरोप में शिक्षिका ने दर्ज करवाया मामला। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, लिफ्ट में फंसे 6 यात्री 30 मिनट तक दरवाजा काटकर उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। नू में दिल्ली मुंबई हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट गई थी, 6 से 7 यात्री बुरी तरह से घायल हुए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिकअप और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई, हादसे में पिकअप गाड़ी में भरे आमों को लूटने के लिए लग गई थी होड़। बिहार के कैमूर में पुलिस का एक्शन, 1138 लीटर शराब को जब्त किया गया, 2 की गिरफ्तारी। गढ़वा के बर्डिया प्रखंड में एक स्कूल में मिड डे मील में खराब तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, भनक लगते ही बीडीओ ने कसा शिकंजा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी काशी गंगा किनारे, एक दिन पहले अपना बर्थडे मनाया, क्रूज में सवार होकर गंगा का सौंदर्य निहारा। सीएम रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ दशाश्वमेध घाट भी पहुंची, गंगा आरती में शामिल हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी भारत की आत्मा है, यहां की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकजुटता पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत। वैद्यनाथ धाम जाने के लिए शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज है, देवघर जाने आने के लिए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रांची में 26 जुलाई को फुटबॉल का डूरंड कप, 135वें डूरंड कप 2026 के लिए ट्रॉफी रांची पहुंचे। फिल्म बटवारा 1947 का दूसरा टीजर सामने आया, एक बार फिर से सनी देओल का रौद्र रूप नजर आया। प्रियंका चोपड़ा ने अपने 44वें बर्थडे पर राजा मौली का बड़ा सरप्राइज, उन्हें मिला फिल्म वाराणसी का फायर मंदाकिनी का धांसू लुक सामने आया। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, करीना ने खास पोस्ट के जरिए उन्हें विश किया। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 टीजर रिलीज किया गया, इसका 7 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस अदा शर्मा, सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चाओं में है।

0: और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और साथी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। अब यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ने लगा है। पत्र में आरोप यह लगाया गया है कि श्रद्धालुओं के दान के जो पैसे थे उनका दुरुपयोग किया गया। आरोपों को निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट के वित्तीय खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दोनों ही नेताओं ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ उनकी हैसियत से परे जाकर कार्रवाई हो। फिलहाल इन आरोपों पर सरकार और ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, वैसे भी हम देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है जबरदस्त गरमाया हुआ है और अब चिट्ठी लिख दी गई है, क्या इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक आई है?
1: संसद सत्र से ठीक पहले चिट्ठी लिखा जाना दोनों एलओपी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जाहिर है ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है, पूरा विपक्ष उठाने वाला है। और अगर आप चिट्ठी में देखें तो साफ तौर पर कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड इम्पार्शियल, और दोषियों को सजा मिले। इसमें सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए कि जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें जो लोगों को अपॉइंट किया गया था वो सरकार के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि संसद के अंदर आप सरकार को घेरेंगे, सवाल पूछेंगे। आप मान के चलिए कि प्रोटेस्ट वगैरह भी प्लान किए जाएंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसको इसका फायदा मिल सकता है। देश भर के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि इस मुद्दे के बल पर कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर और साथ ही साथ देश भर के अंदर जो लोग नाराज हैं उनको अपनी तरफ ला सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राहुल आपका। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चढ़ावा चोरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, खातों के लेनदेन सार्वजनिक करने की मांग की गई है, चिट्ठी लिखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तेज बारिश की वजह से जिले की जो नदियां हैं और नाले हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरत के यात्रा न करने और साथ ही नदियों और नालों और बाढ़ संभावित जो इलाके हैं उनसे दूर रहने की अपील की है। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनसे विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की अपील की गई है, उन्हें सलाह दी गई है। तो तमाम नदियों और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि नदी नालों के किनारे न जाएं और जो आसपास बसे हुए लोग हैं वो भी सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। देखिए किस तरह से तमाम चीजें जो है दरिया बनी हुई नजर आ रही है। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह के हालात हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह तेज बहाव के बीच में जो भी आएगा सब नेस्त नाबूद हो जाएगा और इसीलिए प्रशासन लगातार चाक चौबंद है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और लगातार प्रशासन की नजर रही है। देखिए जरा किस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए हैं। तो प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से फ्लैश फ्लड के बाद हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सब कुछ डूबा हुआ वो भी मलबे के ढेर में। दूसरी तरफ रौद्र रूप इस फ्लैश फ्लड के बाद अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और आपको ये भी बता दें कि अभी तो कहा जा रहा है कि कई और इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद ये स्थिति और ज्यादा खराब होगी। और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हाय एवरीवन, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
7: आगे आगे उधर उधर करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: हमें स्वस्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.
5: अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया. ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है.
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है. ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है. छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे. लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है. सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है. सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है. ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
7: मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार कितनी निर्दयी है. इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है. बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे. 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे. एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे. दुखद है, बहुत दुखद है.
8: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
11: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस. चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर.
12: Now, the Bay Bridge spokesbirds.
13: Go to baybridge.com.
14: Spike, is that you inside a giant egg?
15: Otis, I'm hatching a plan to avoid Bay Bridge traffic.
14: Great idea, Spike. Does it involve baybridge.com?
15: You bet, Otis. Tell him, lady.
12: Hatch your plan for smooth travel when crossing the bay at baybridge.com. Get traffic info and live cameras all in one spot.
14: Baybridge.com. Now that's how you hatch a plan.
16: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि शनिवार सुबह सुबह जंतर मंतर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अनशन, बीच में एक ऐसा चेहरा जो पिछले 21 दिनों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, और कुछ ही मिनटों में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया मेडिकल इमरजेंसी, हाईकोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह।
3: ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन।
2: हालांकि परिवार इसे सिर्फ मेडिकल फैसला नहीं मानता। सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा।
4: Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, article 32 is a free individual. So please be professional. This is a fundamental right.
5: आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब, ठीक है? पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज का, वो मैं
4: रखूंगा।
5: तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आप नॉट आंसर।
2: किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। एक तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में चला जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने चढ़ावे चोरी पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, निष्पक्ष जांच की मांग की, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक करने की मांग। अस्पताल में भी वांगचुक का जारी अनशन, संदेश जारी करके लिखा 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन, राहुल गांधी ने जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर सरकार को घेरा। खेनवेतवा आंदोलनकारियों पर सुबह सुबह एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, 14 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अमित भटनागर अस्पताल में भर्ती, अंडरग्राउंड निर्माण ब्रिज का हवाला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, राजौरी में फ्लैश फ्लड से बह गई गाड़ियां, अब तक 4 लोगों की मौत, कई इलाके लबालब, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। और जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद युद्ध हुआ भीषण, ईरान में कई शहरों में भारी बमबारी, मोजतबा का संदेश ट्रंप को।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। आज शो में देखिए कैसे ईरान के एक गलत कदम और डोनाल्ड ट्रंप के इशारे भर से अमेरिका ईरान जंग नए और विनाशकारी दौर में पहुंच गया। जहां ट्रंप को ईरान से कड़ी टक्कर मिल रही है, अमेरिका जहां हमले के जरिए डिप्लोमेसी कर रहा है, वहीं ईरान फिर से अपने पड़ोसियों से ही हिसाब चुकता कर रहा है। हम इस तनाव को डीकोड करेंगे। वहीं बात पड़ोसी पाकिस्तान की होगी जो टूटने की कगार पर है। पीओजेके में हिंसक प्रदर्शनों के बीच बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है। इस गृह युद्ध की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे और आखिर में दिखाएंगे ब्लैक सी की वो तस्वीरें जहां यूक्रेन के मरीन ड्रोन्स ने रूसी जंगी जहाजों को समुन्दर में तबाह कर दिया है और कैसे बातचीत की तरफ बढ़ते बढ़ते रूस यूक्रेन युद्ध मैदान में फिर आमने सामने है।
1: इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी है। जंग लगातार सातवें दिन भी जारी है और अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गए हैं। रात भर ईरान में पुलों और पानी से जुड़े ढांचों पर हमले हुए, जबकि ईरान ने भी खाड़ी के उन देशों में अहम ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। क्या ये जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट।
0: यूएस और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष बहुत संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 5 महीनों से जारी एक युद्ध मौसमी होता जा रहा है, जिसमें आगे क्या होगा ये ठीक ठीक बता पाना, उसका पूर्वानुमान लगा पाना जानकारों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध लगातार हर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा पेच है। एक तरफ जहां दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस युद्ध का नया फेज क्या है, कहां कहां हमले हो रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है।

0: हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने बता दिया था कि ईरान युद्ध किस तरफ जा रहा है। ट्रंप की धमकी है कि अगला निशाना ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। और जवाब में ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि उसके निशाने पर फिर खाड़ी देश होंगे।
1: The criminal United States continues its reckless conduct and its attempts to destabilize the region. First, we reiterate in the clearest possible terms, under no circumstances and by no means will we permit the United States, a country from outside the region, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. If the recent threats by the President of the United States to target the infrastructure of the Islamic Republic of Iran are carried out, then everything that has thus far remained untouched solely because of Iran's restraint, that is, every piece of infrastructure throughout the region, will be destroyed by the powerful armed forces of the Islamic Republic of Iran.
0: ये हमले बता रहे हैं कि जंग अब भी जारी है। बातचीत के लिए माहौल तैयार करने का काम बमों से लिया जा रहा है।
2: They better behave.

0: दरअसल ईरान ने हॉर्मुज पर ओमान के क्षेत्र में हमले किए तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने हमलों का दायरा काफी बढ़ा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान के कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकानों को तबाह करना है, जिससे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहे। तेहरान से करीब 110 मील पूर्व में स्थित सेमनान एयरपोर्ट के हिस्सों पर यूएस ने हवाई हमले किए। ये इलाका ईरान की मिसाइल टेस्टिंग और स्पेस लॉन्च के लिए जाना जाता है। दक्षिण में ईरानी नौसेना के बेस बंदर अब्बास और ग्रेटर तुम्ब आइलैंड पर क्रूज मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही सिरिक और केशम द्वीप पर भी अमेरिकी बमबारी हुई। ईरान के तेल समृद्ध प्रांत खुजेस्तान की राजधानी अवाज को भी यूएस ने अपने निशाने पर लिया। इस इलाके से कई धमाके सुने गए। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान से 155 मील दूर मध्य ईरान में खोंदाब को अमेरिका ने सोमवार से तीसरी बार निशाना बनाया। साउथ ईस्ट ईरान की पाकिस्तान सीमा के पास के रस्क और चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया गया। अमेरिका के हमलों का ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि जॉर्डन ने ईरान की 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत पर भी ईरान ने हमले किए। इराक के इरबिल पर भी ईरान ने ड्रोन से हमला जरूर किया। हालांकि दावा किया गया कि आसमान में ही 8 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया गया। इस युद्ध का एक और बड़ा मोर्चा समुद्र है। ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने फिर ब्लॉकेड लगा दिया है, जिससे ये जलमार्ग फिर से एक बार दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्ग में तब्दील हो चुका है। नाफरमानी का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है। यूएस की चेतावनी के बावजूद ऐसा करने वालों को अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल से अब तक ऐसा 10 बार हो चुका है जब अमेरिकी हमलों में जहाज नष्ट हुए।
1: तो मैं ये मान के चलना चाहता हूँ कि दोनों देश की गलती है और दोनों को मिलकर पूरी वर्ल्ड पावर्स को इन पर दोनों पर एक दबाव डालना पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी, कि आप दोनों के मसले आप आपस में सुलझाइए। बहुत आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन ये हॉर्मुज को खोलिए, इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। तो मैं ये होप करता हूँ कि वर्ल्ड प्रेशर से दोनों देश मान जाएंगे, ईरान भी और यूएस भी, कि किसी प्रकार के हॉर्मुज को खोला जाए और वर्ल्ड को इतना परेशान ना किया जाए।
0: अब सवाल है कि अमेरिका आगे करना क्या चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की बैठक में सैन्य ऑपरेशन के विकल्पों पर भी विचार किया गया। अमेरिका के पास मुख्य रूप से 3 बड़े विकल्प हैं। पहला, पिकैक्स माउंटेन पर बमबारी। ये ईरान का एक बेहद सुरक्षित और जमीन से 300 से 475 फीट नीचे ग्रेनाइट की पहाड़ियों में बना अंडरग्राउंड बेस है, जिसे परमाणु गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इतनी गहराई में होने के कारण अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के लिए भी इसे पूरी तरह नष्ट करना आसान नहीं होगा। दूसरा विकल्प है खार्ग आइलैंड पर कब्जा। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात का केंद्र है। अगर अमेरिकी सेना इस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये बेहद रिस्क भरा होगा। तीसरा, डिप्लोमेसी। इन तमाम विकल्पों के बावजूद ट्रंप प्रशासन अभी भी पर्दे के पीछे बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है। डिप्लोमेसी और अटैक साथ साथ चलते रहेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग की शुरुआत से ही आम लोगों से लेकर अधिकांश विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला से मुश्किल होगा। लेकिन जो पहले केवल मुश्किल लग रहा था, अब वो असंभव सा होता दिख रहा है। जंग अपने 20वें हफ्ते में यानी करीब 137 दिनों से भी आगे बढ़ चला।
2: पश्चिमी एशिया की यह जंग एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सुपर पावर अमेरिका के सारे दांव फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस सैन्य अभियान को केवल 4 से 6 हफ्ते में समेटने का दावा किया था वो खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा।

0: spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love. And they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way.
1: युद्ध नीति या विदेश नीति या कहें ट्रंप नीति, इन दो बयानों से अंदाजा लगाइए कि वॉशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है। इस यूटर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसके आगे सुपर पावर को भी अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ रही है। पहले समझिए कि क्यों ट्रंप को अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा। बात शुरू होती है ईरान के खिलाफ जंग के 136वें दिन से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक फैसला लिया, जैसा वह अमूमन करते हैं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के बदले अमेरिका उन पर टोल टैक्स वसूलेगा। लेकिन ठीक अगले दिन यानी 137वें दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला वापस ले लिया। कारण बताया गया खाड़ी देशों का विरोध। सवाल है कि क्या हमले और बातचीत के बीच अमेरिकी रणनीति अनिश्चितता की ओर जा रही है।
2: वेनेजुएला में एक ऑटोक्रेटिक बंदा बैठा हुआ था, इन्होंने उसके अंदर घुस के इंटेलिजेंस से कॉम्प्रोमाइज करके किया है। ईरान एक सिविलाइजेशन है, एक आइडियोलॉजिकल 40-50 साल से चल रही हुकूमत है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो एक तरीके से ट्रैप में डाल दिया कि वो चाहते थे कि अगर हम बमबारी करें और उनकी जो एयर फोर्स नेवी जिसकी बातें करते हैं अगर उसको बर्बाद कर दें तो उसके बाद शायद लोग अंदर से इतने तंग हैं कोई उनकी इंटेलिजेंस में कि वो खड़े हो जाएंगे। ना वो अंदर वाले खड़े हुए, ना कर्ड्स आए ऊपर से कुर्दिस्तान से, और इसके जो खमेनाई की हत्या होगी पहले दिन उससे जो लोग डिफरेंट ओपिनियन भी रखते थे वो अपने देश के लिए अंडर द फ्लैग कहते हैं ना इकट्ठे होना, एकदम से दृढ़ता से इकट्ठे हो गए। तो और चलते चलते उनके हाथ में हॉर्मुज आ गई और उनको कभी सोचा नहीं था कि हॉर्मुज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी यहां से शुरू से ही जो प्लानिंग थी वो फॉल्टी थी।
1: विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया भर में अमेरिकी ताकत का लोहा मनवाया है। नाटो देशों से सैन्य खर्च बढ़वाना हो या वेनेजुएला में कमांडो रेड कराना, लेकिन ईरान के मामले में उनकी ये रणनीति फंस गई।
3: ईरान के अंदर इनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत हो गई। इन्होंने सोचा था कि हम रजीम चेंज करा देंगे एक आयतुल्ला को मार के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सारी उनकी असेसमेंट गलत निकली, सारी उनकी जो ऑब्जेक्टिव है गलत निकले और इसी वजह से उनका एम भी गलत निकला।
1: जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक रुख को कई जगह किस्मत का साथ मिला, लेकिन पिछले 47 वर्षों के इतिहास को देखते हुए तेहरान से किसी तरह के समझौते की उम्मीद करना एक बड़ी भूल से ज्यादा कुछ नहीं है। जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिकी सरकार, थिंक टैंक्स और नीति निर्माताओं ने ईरान के सैन्य और मजहबी ढांचे के गठजोड़ को कम करके आंका और ये मान लिया कि हवाई हमलों और सोशल मीडिया पोस्ट से ये राजनीतिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब नतीजा ये है कि ट्रंप के दावे के उलट शिप ट्रैकर क्लेपर का डेटा बता रहा है कि जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। ईरान भी लगातार अपने बताए गए जलमार्ग को लेकर अटल है और अमेरिका ब्लॉकेड को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फारस की खाड़ी के बाहर जाने वाले कच्चे तेल के शिपमेंट्स को देखें और 2025 का औसत स्तर 100 माने तो जनवरी से फरवरी 2026 तक तेल की आवाजाही सामान्य थी। शिपमेंट्स 80 से 120 के स्तर के आसपास चल रहे थे। फरवरी के आखिर से मार्च की शुरुआत में अचानक भारी गिरावट आई। मार्च के दूसरे सप्ताह तक तेल का निर्यात लगभग शून्य पर पहुंच गया। मार्च से जून के मध्य तक बहुत कम या लगभग न के बराबर तेल के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकले। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी, लेकिन शिपमेंट्स अभी भी सामान्य स्तर से बहुत नीचे रहे। 16 जुलाई 2026 तक भी तेल का निर्यात सामान्य स्थिति में वापस नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की सहमति के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अमेरिका को या तो बहुत बड़ा नौसैनिक एस्कॉर्ट मिशन चलाना होगा या फिर दक्षिणी ईरान पर एक बड़ा जमीनी हमला करना होगा। ये दोनों ही विकल्प अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ ट्रंप के राजनीतिक भविष्य के लिए भी जोखिम भरे हैं।
4: डोनाल्ड ट्रंप की ये हिम्मत नहीं रही है कि वो बोट्स ऑन ग्राउंड करे या एम्फीबियस ऑपरेशन करे। उसके तीन चार रीजन हैं। देखो, ईरान एक छोटा देश नहीं, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। ईरान ज्यादातर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर कोई बोट्स ऑन ग्राउंड करेगा अमेरिका तो उसको बहुत ज्यादा ट्रुप्स चाहिए, और इतने ट्रुप्स वो ला नहीं पाएगा क्योंकि मेन लैंड से काफी दूर है। दूसरी बात यह है, अगर जमीन पे आते हैं अमेरिकन ट्रुप्स तो उनकी भारी कैजुअल्टी होगी और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका, और बॉडी बैग जो है अमेरिका पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी। दूसरा, जो एम्फीबियस ऑपरेशन की बात होती, जो नेवल ऑपरेशन जैसे कि खर्क आइलैंड में, जहां की

0: है उन टारगेट्स को हिट कर रही है जो ट्रंप बता रहे हैं, ऐसा क्या?
1: देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दिक्कत श्वेता यह है कि अब उनको डिलीवर करके देखना देना होगा। देखिए, मिड टर्म करीब आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने जब 2025 में 2026 में इतने बड़े ऑपरेशन चलाए तो आपने आखिरकार हासिल क्या किया, क्योंकि ईरान के रिजिम दोबारा से पहले कंपैरेटिवली ज्यादा सॉलिड हो गया, ज्यादा मजबूत हो गया, यहां तक कि लोग की जो आपके से रिजिम को लेकर जो भावनाएं थी वो कंसोलिडेट हो गई है, वो अपने लोग अपने देश के साथ खड़ी है, और ना तो आप उनका एनरिच यूरेनियम हासिल कर पाए और ना ही उनकी कैपेबिलिटीज को कमजोर कर पाए, और यहां तक कि आपने एक नया अब चैलेंज खड़ा कर दिया पूरे दुनिया के सामने, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि अब उसका मुकाबला करके एक मैसेज दिया जा सके पूरी दुनिया में कि अमेरिका की सुप्रीमेसी अभी भी कमजोर नहीं हुई। दूसरी तरफ एक और बड़ा चैलेंज था कि अमेरिका ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने जो एमओयू साइन किया वो पूरे टाइम को उसने अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइव करने के लिए, अपनी रीइंफोर्समेंट करने के लिए किया, और शायद इसी वजह से अपने जो फ्रेश ऑपरेशन हम देख रहे हैं और जो अटैक हम देख रहे हैं वो सीधे संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका का पूरी कोशिश है कि पूरी कोस्टल लाइन को करीबन 2450 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है ईरान की, उसको आप पूरी तरीके से क्लीन कर दे, उसको पूरी तरीके से आईआरजीसी को वाइप आउट कर दे, ताकि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनके शिप और अमेरिका की जो आप कैसे मुस्तैदी है उसको बढ़ाया जा सके।
0: पर ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, उसकी मिसाइल ताकत को देखते हुए क्या अमेरिका के लिए उसे घेर पाना इतना आसान होगा?
1: देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो आईआरजीसी को या फिर ईरान के अंदर बड़े विध्वंसक अटैक भी कर दे तब भी वो ईरान को इस समय झुका नहीं पाएगा। ईरान ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो अपने साइलोस तैयार किए, अपने मिसाइल पावर तैयार की, अपने ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, वो शायद अमेरिका ने आप कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टूड कर लिया या फिर उसका आकलन सही अमेरिका नहीं कर पाया। अभी के ताजा हालातों में अमेरिका के सामने एक ही चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो यथास्थिति को 28 फरवरी से पहले कायम कर दे, और ये प्रेशर ना सिर्फ अमेरिका पर दुनिया भर से बल्कि मिडल ईस्ट के उन देशों पर है जिनके लिए अमेरिका एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। तो ऐसे में अमेरिका की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, बाकी चीजों को लेकर अमेरिका को लगता है वो बातचीत के जरिए या फिर सैंक्शंस को कम कर या फिर मुस्तफा खमनई को लेकर एंगेज कर वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसमें ना सिर्फ अपने मिलिट्री एसर्ट्स को, अपनी साख को खोया, बल्कि अमेरिका ने इन पूरे इलाके में अपनी उस विश्वास को भी खो दिया जो मिडल ईस्ट के देश लगातार अमेरिका पे करते रहे थे।
0: इस युद्ध में एक और चीज जो शुरुआत से चलती रही है वो है विरोधाभासी बयान। ईरान एक तरफ हमले की धमकी दे रहा है, फिर अमेरिकी नागरिक को रिहा करने की खबर ट्रंप दुनिया को देते हैं, हालांकि ईरान कहता है कि कोई प्रिजनर स्वॉप नहीं हुआ है, पर क्या इस सब के बीच बैक चैनल में लगातार बातचीत चल रही है?
1: देखिए, एक बात तो हमेशा तय होती है युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, एक ही चीज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होती है, वो है बातचीत। डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी वॉर। और अभी के ताजा हालात में अगर आप देखें, अमेरिका भी बैकडोर में बात कर रहा, ईरान भी बात कर रहा, एंगेजमेंट दोनों तरफ से, लेकिन एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है। डेडलॉक इस बात को लेकर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सुप्रीमेसी किसकी होगी। ईरान को समझ में आ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर उसने अपनी सुप्रीमेसी कोई नहीं बरकरार रखी तो ना सिर्फ उसे स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फायदा मिलेगा, एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट रहेगा, ईरान अपनी बातें जो है, अपनी शर्तें जो हैं वो ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि मिडल ईस्ट के देशों को भी मनवा पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को ये पूरा आप कह सकते हैं कि इलाका या फिर ये पूरा मौका जो है अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के तौर पर भी देख रहा है। ईरान को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पैसा उसको मिलेगा, जो लगातार टैक्स उसको वो वसूलेगा, वो उसकी इकोनॉमी को और उसके सैंक्शंस के बावजूद उसको रिवाइव करने में बहुत मददगार साबित होगा। ईरान की जो मिलिट्री पावर है उससे उसका भी इजाफा होगा। तो आप मान के चलिए कि अभी ईरान अपनी इन चीजों को लूज नहीं करना चाहेगा, ईरान ये पूरी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ बनाए रखे। वहीं अमेरिका ये चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो परिस्थितियां ठीक हो सके, और मिडिल ईस्ट के जो देश है, जो क्लोजनेस, जो लगातार जो उनका जुड़ाव हुआ था ईरान के साथ में, वो ऐसा ज्यादा टूट जाए कि ले देकर उनको अमेरिका के पास ही आना पड़े, और शायद इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेकर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कितने हिस्सों में टूटने वाला है पाकिस्तान, कैसे विरोध विद्रोह की शक्ल वहां पर ले रहा है। देखते रहिए आज तक, बने रहिए वॉर रूम में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
6: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
7: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
8: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
6: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: You don't have to put everything on hold to earn your degree. WGU's accredited online programs fit your life. Study on your schedule and build skills for where work is going. Learn more at WGU.edu.
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Right field, and it will.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: सवारी जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
7: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
8: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
6: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

लिए बैठक से ठीक पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने चढ़ावे चोरी पर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, निष्पक्ष जांच की मांग की, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक करने की डिमांड। अस्पताल में वांगचुक का जारी अनशन संदेश जारी कर लिखा, 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन, राहुल गांधी ने जंतर मंतर से जबरदस्ती हटाने पर सरकार को घेरा। केन बेतवा आंदोलनकारियों पर सुबह सुबह एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, 14 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अमित भटनागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, अंडरग्राउंड निर्माण ब्रिज का हवाला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, राजौरी में फ्लैश फ्लड से बह गई हैं गाड़ियां, अब तक 4 लोगों की मौत, कई इलाके लबालब, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। और पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी, अकाने यामाउची को सीधे गेम में 21-17 से हराकर 3 साल के बाद जीता बड़ा टूर्नामेंट।

0: पाकिस्तान एक तरफ दुनिया का पीस मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके अपने ही घर में आग लगी हुई है। पहले बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनवा और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विद्रोह की आग लगातार फैलती जा रही है। अहम बात यह है कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इसके सहारे राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां आटे की भी जबरदस्त किल्लत है। खैर, आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हर ओर से सड़कों से चुनौती मिल रही है। वहां के लोग साफ कह रहे हैं, अब और नहीं।
1: इस वक्त की एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करने के बाद दोनों सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सीजफायर का उल्लंघन हुआ है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। ये नारेबाजी, ये शोर यूं ही तो नहीं। ये हाल है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का। यहाँ की आवाम लगातार सड़कों पर है और सरकारी तंत्र उसको लगातार निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आने के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क के अंदरूनी हालात खराब हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए।
2: वो जो जमात जिसे नून लीग कहते हैं, उसकी तारीख गवाह है कि वो हमेशा चोर दरवाजे से आती है, हमेशा चोर दरवाजे।
1: मांग हक की है, राशन की है, मूलभूत सुविधाओं की है और जवाब में जनरल मुनीर के रेंजर्स की गोलियां हैं। लेकिन इस बार मुनीर को चुनौती बाहर से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर से मिल रही है। जमीयत ए इस्लामी फजलुर रहमान के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे आर्मी चीफ को ललकारा है।
3: सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। हमने
1: यहाँ पर मौलाना का गुस्सा सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि सरकार पर भी फूटा।
3: और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूँ। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी, पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने दो तीन दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं।
1: पाकिस्तानी फौज की जो बर्बरता बलूचिस्तान में दिखती है वही क्रूरता अब पीओजे के में भी दोहराई जा रही है। 14 जुलाई को रावलकोट में हक के लिए इकट्ठा हुई बेगुनाह भीड़ पर रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई। पिछले महीने जून में भी रावलकोट में ऐसी ही हिंसा हुई थी, तब 15 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं को देखकर साफ पता चलता है कि शहबाज सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब हक का जवाब सिर्फ गोली है।
2: ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, لیکن یہ متنازع نہیں ہے، یہ مقبوضہ علاقہ ہے، یہ مقبوضہ علاقہ، اس پر قبضہ ہے، اس پر قبضہ ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے. جس متنازع علاقے میں عوام کے پاس یہ رائٹ ہے، جموں کشمیر کے مسئلے کے متعلق جو بات کرنے کا اختیار ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ ان خواتین کے پاس ہے، وہ ان مردوں کے پاس ہے، ان کی اولادوں کے پاس ہے، وہ ریاست کے شہریوں کے پاس ہے، اور اس پہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. اس تحریک میں شہید بھی ہو جائے تو ہمیں یقین ہے ہماری اولادیں اس علم کو بلند رکھیں گی، اس جھنڈے کو بلند رکھیں گی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس علم کو بلند رکھیں گی. اور فتح سے پہلے ہم سارے مارے جائیں، فتح سے پہلے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ ختم اب یہ حقوق کی جنگ ختم.
1: कमेटी के नेता सरदार अमन खान के इस तेवर ने सीधे जनरल मुनीर की दुखती रग पर हाथ रख दिया है. अमन खान अपनी 38 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को 22 जुलाई तक का वक्त दिया है.
4: पाकिस्तान की ये हालत है आज कि बलूचिस्तान में एक फ्रंट खुला हुआ है. टीटीपी जो पख्तूनवा में है उसने बलूचिस्तान में भी स्पेस ले ली है. बमबारी चाहे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की है और उससे लड़ाई अलग चल रही है. تو بلوچستان جو انگورنیبل ہو گیا ہے، ایک طریقے سے وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ جتنی مرضی فوج لگا دیں اتنی ٹیریٹری کو کنٹرول کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہے. تو یہ 3-4 فرنٹس پہ جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے، یہ میرا خیال اتنی بری حالت ان کی میں نے 40-50 سال پیچھے سے نہیں دیکھی. بنگلہ دیش کے بعد یہ پہلی بار ہے جو ان کی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن اتنی خراب ہے اور اس کو وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں اور باقیوں لوگوں کی صلاح کرا رہے ہیں، اپنے گھر کا انہیں پتہ نہیں ہے. اور ایک دن یہ بم پھٹے گا اور ہمیں بڑا چکنا رہنا چاہیے، کیونکہ سپل اوور ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے وہ پی او کے کا ہو، چاہے پختونخوا کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، ہمارے اوپر بھی سپل اوور آئے گا. تو آئی ایم شیور ہمارے لوگ جو ہیں وہ سچیت ہیں اور انہوں نے سارے سٹیپس لیے ہوں گے پری ایمٹیو کی، کوئی ایسی نہ ہو چیز جس پہ ہمارے اوپر اثر آئے اس کا.
1: دوسری طرف بلوچستان بھی شانت نہیں ہوا، وہاں بغاوت کی چنگاری اب آزادی کی آگ بن چکی ہے. بتا دیں کہ بلوچستان نے خود کو آزاد ملک گھوشت کر دیا ہے. بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کے حملے پہلے سے کہیں زیادہ گھاتک ہو چکے ہیں. مستونگ جلے کے کھڑکوچا میں بی ایل اے کے فتح اسکواڈ نے سینا کے قافلے پر ایک بڑا دھماکہ کیا، سینکوں کی بسوں کو نشانہ بنایا. بی ایل اے کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں 45 سے زیادہ پاکستانی سینک مارے گئے ہیں. پہلے بسوں کو اڑایا گیا اور بعد میں موقع پر پہنچی اترکت سینیہ ٹکڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے 1 سے 14 جولائی کے بیچ بھی بی ایل اے 48 حملوں میں 40 سے زیادہ سینکوں کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے. پی او جے کے کا ودروہ اور دوسری طرف بلوچستان کے یہ بیک ٹو بیک حملے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر پائپ پی رہا ہے. لیکن بھارت کو یہاں سترک رہنے کی ضرورت ہے. گجرات سے پکڑے گئے آتنکی اسی اور اشارہ کر رہے ہیں.
0: सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास. अशरफ, पीओजेके में जो कुछ चल रहा है वहां की जनता पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ एक तरीके से आर पार की जंग लड़ रही है, और अभी से नहीं पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह का विद्रोह वहां पर दिख रहा है. क्या हम समझें कि इस बात का संकेत है कि 1971 की तरह पाकिस्तान एक बार फिर बिखर जाएगा और टूटेगा?
5: जी श्वेता, अगर हम پاکستانی قبضے والے کشمیر کی بات کریں، یہ معاملہ نیا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے. اس کی شروعات 1990 میں ہوئی جب پاکستان نے پاکستانی قبضے والے کشمیر کو دیش کے خلاف یعنی بھارت کے خلاف آتنکواد کے لیے ایک بہت بڑا مرکز بنایا تھا. تب ہزاروں کی تعداد میں جموں کشمیر سے جو یوا گئے تھے پرشکشن کے لیے آتنکوادی بننے کے لیے پاکستانی قبضے والے کشمیر میں، ان میں سے ادھکتر جو ہے وہیں پر رہ گئے. قریب 80% ہزاروں کی تعداد میں جو یوا ہے وہ وہیں پر رہے، اور انہوں نے سیما پار کر کے واپس آنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھارت واپس آ کر کیا انجام ہوگا. जाहिर है कि वही अब जो है बहुत ज्यादा परिवार जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गए हैं। उनको पहले मुहाजिर कहा जाता था, उनको खास रियायतें थी, उनको माहाना 8,000 रुपये प्रति परिवार जो है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो सभी रियायतें उन परिवारों को जो है ख़त्म कर दी गई हैं। वो एक कारण है इस बड़े आंदोलन के जो कई महीनों से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ चल रहा है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन लोगों को जो सरकार की तरफ से रियायतें मिलती हैं उनसे जो है अलग कर दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ उन पर जो है अब हर तरह का सरकार का अंकुश लगा है, जिससे वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हैं। और उन पर जिस अंदाज से प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सरकार और सेना ने ताकत का बल का इस्तेमाल किया, कई सारे दर्जनों लोग मारे गए प्रदर्शनकारी, उससे इस पूरे आंदोलन में एक उबाल सा आ गया है और पाकिस्तानी सरकार के लिए अब बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बन गया है, क्योंकि अब वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। जी श्वेता।
0: अच्छा, बलूचिस्तान में क्या अशोक, वहां पर तो अपने अपनी आजादी घोषित उन लोगों ने कर दी है, तो क्या हम समझें कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में अपना नियंत्रण पूरी तरह खो चुकी है?
5: बिल्कुल, अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन पहली बार नहीं चल रहा है, बल्कि दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि दशकों से बलोच लिबरेशन आर्मी हो या फिर बलोच के जो विद्रोही हो, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो बाधा आ रही है इसमें यही है कि अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान आतंकवादी सूची में डालने में जो है कामयाब हुआ है। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो दूसरा रुख है अमेरिका का हो या वेस्ट का हो, कि वो अपने अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार जो है आतंकवादी संगठन भी बनाते हैं और उनको जो है उन पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। उसी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी पर जो है प्रतिबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही कारण है कि उनकी स्वायत्तता जो है वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार से भी मांग की थी कि उन्हें जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मान्यता मिले, लेकिन भारत भी जो है डिप्लोमेटिक तौर पर फिलहाल इस मामले को लेकर दूसरे देश में मुदाखलत मान रहा है। और यही कारण है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ स्वायत्तता की जो है घोषणा की, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कुछ पासपोर्ट बनाने की बात भी की थी, अलग से पासपोर्ट बने, लेकिन उस अलग पासपोर्ट को क्या कोई देश मानेगा, वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर विद्रोह की बात करें तो वो भी पाकिस्तान सरकार के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती, दशकों से और खासतौर से पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर रहा है।
0: तो पाकिस्तान सरकार के पास रास्ता क्या बचा है? क्या हम ये समझें कि वहां पर मार्शल लॉ लगने के हालात बन चुके हैं? क्या करेगी पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां?
5: पाकिस्तान के भीतर अब जो मात्र 5 प्रांत बचे हैं, उनमें से अगर हम कहें तो 3 प्रांतों में कम से कम सिंध और पंजाब को छोड़कर बहुत ज़्यादा बगावत पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है। आज से नहीं, महीनों से, सालों से चल रही है। उसमें चाहे पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो जिसको नॉर्दर्न एरिया के नाम से पाकिस्तान जो है अपने साथ मिला चुका है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भी इसी तरह जो है लगातार आंदोलन और स्वायत्तता और आज़ादी की बात सामने आई है। और पिछले कुछ महीनों के दौरान जब से तालिबान के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं, खासतौर से तहरीक तालिबान ने जिस अंदाज से पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा था, उस बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर जो कार्रवाई पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से अफगानिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में हुई है, उसमें बहुत सारे आम नागरिक मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और यही कारण है कि क्योंकि पठान वो पूरा कबीला है, वो खैबर पख्तून के इलाके में कबीलों में रहते हैं, और वो इस तरह की जाति न कभी बर्दाश्त करते हैं, न उन्होंने कभी इस तरह की कोई जुल्म जो है बर्दाश्त किया है। और यही कारण है कि अब बलूचिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से छुटकारा चाहता है। और पाकिस्तान इस वक्त अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा परेशानियों से देश के भीतर जूझ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाजों पर जो सुइसाइड मरीन ड्रोन से हमला किया है वो पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये सी रूट रूस के लिए काफी अहम है। हमले के बाद रूस की तरफ से किसी भी तरह की बातचीत के लिए ना कह दिया गया है। वहीं अमेरिका का टैरिफ बॉम्ब भी रूस पर बरस पड़ा है, यानी रूस के लिए चक्रव्यूह की रचना हो रही।
1: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करके तबाही मचाई है। शनिवार को यूक्रेन के 370 से ज्यादा ड्रोन्स ने रूस की राजधानी को निशाना बनाया, जिसमें मॉस्को के एक लॉजिस्टिक्स सेंटर पर हुए हमले में 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि ये 4 साल से जारी रूसी हमलों का करारा जवाब है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: ईरान अमेरिका से हटकर दुनिया के दूसरे छोर पर युद्ध एक बार फिर बढ़ गया है। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी। यूक्रेन ने अब अजोव सागर में रूसी जहाजों को निशाना बना शुरू कर दिया। मॉस्को ने कीव के हमलों की तुलना आतंकवादी हमलों से की।
1: Чем занимается украинский режим? Пират хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто вот нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать, и на африканском континенте.
0: Азов Сагар – एक अहम सी रूट है, जहां से रूस अपने अनाज के निर्यात का लगभग एक चौथाई हिस्सा भेजता है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर के मुताबिक ड्रोन ने 11 जहाजों पर हमला किया।
2: देखिए, आपने देखा होगा कि यूक्रेन जिस प्रकार से हमला कर रहा है शिप्स के ऊपर, वो बेसिकली बाय ड्रोन्स है। ड्रोन्स की ताकत यूक्रेन के अंदर बहुत आगे बढ़ गई है। वो न केवल समुद्र के अंदर बल्कि डीप इनसाइड रशिया भी यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उनसे एनर्जी स्टेशंस पर हमला कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली बिकॉज नाउ यूक्रेन हैज गॉट अ वेरी गुड सोफिस्टिकेटेड, वेरी रिलायबल एंड पोटेंट ड्रोन आर्सेनल। उसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और जब तक इसकी ड्रोन कैपेबिलिटी और रहेगी तब तक ये सक्सेसफुल होता रहेगा। सो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रोन कैपेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स आल्सो बैक्ड अप विद सम मिसाइल कैपेबिलिटी।
0: इस समुद्री मार्ग पर रूस का तेल व्यापार निर्भर करता है। जाहिर है, इस मार्ग पर यूक्रेन का हमला करना यानी रूस पर सीधे तौर पर दबाव बनाना, ये हमले एक बड़े अभियान का हिस्सा है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। कीव का कहना है कि वो केवल सैन्य ठिकानों या ऐसी सुविधाओं पर ही हमला करता है जो सीधे तौर पर रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करती है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसने रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर भी टैरिफ बम फोड़ दिया। इसमें भी यूरोप और भारत के पीछे अमेरिका ने भेदभाव किया।
3: We are closely following these developments and we are aware of the proposed legislation. That is what I have to say. Especially on the number of Indian vessels which are there in the Persian Gulf, as of today, we have, as you all know, that you know there is regular traffic between India and the Persian Gulf region. We have 7 Indian ships which are there in Persian Gulf.
0: रूस-यूक्रेन युद्ध को करीब 4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध और तेज होने के संकेत हैं।
4: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: थोड़ी देर में मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। मीटिंग से पहले सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने चढ़ावे चोरी पर पीएम को लिखी चिट्ठी। जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। अस्पताल में भी वांगचुक का जारी है अनशन संदेश। जारी करके लिखा 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराकर मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। केंद्रीय वेतन आंदोलनकारियों पर सुबह सुबह एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। 14 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अमित भटनागर अस्पताल में भर्ती। अंडरग्राउंड निर्माण ब्रिज का हवाला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश। राजौरी में फ्लैश फ्लड में बह गई गाड़ियां, अब तक 4 की मौत हुई। कई इलाके लबालब, नदी नाले उफान पर हैं। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। और पीवी सिंधु ने रचाया इतिहास। जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी ओकाने। यामागुची को सीधे गेम में 21-17 से हराकर 3 साल के बाद जीता बड़ा टूर्नामेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हो रही है और ये सर्वदलीय बैठक संसद के मानसून सत्र को लेकर है। कल से मानसून का सत्र शुरू हो जाएगा और उसी के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी विपक्षी दलों के सहयोग मांगने के लिए आज की अहम बैठक को बुलाया है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों ही सदनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई प्रमुख विधेयकों पर चर्चा होनी है, उनके पारित कराए जाने की संभावना है। सत्र से पहले ही राहुल गांधी और खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और संकेत दिया है कि इस बार इस मामले पर सरकार पर हमले तेज होंगे। तो सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम दलों के नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस से जयराम रमेश हैं, प्रमोद तिवारी हैं, सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं जॉन विटास, इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, टीएमसी के सौगत रॉय और महुआ मोइत्रा, जेएमएम की महुआ मांझी और आरएसपी के एमके प्रेमचंद्रन भी पहुंच चुके हैं। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बयान आया है सर्वदलीय बैठक को लेकर किरण रिजिजू का। संसद में हंगामा होने से कुछ नहीं होता, किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस सत्र के लिहाज से।
1: पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले मैं भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूँ कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स, बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे।
0: तो हर लिहाज से मानसून सत्र बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है और कैसे विपक्ष और पक्ष दोनों ही तरफ से इस सत्र को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए।

0: विपक्षी मोर्चा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। सरकार को सदन में घेरने का मौका फिर आया है। लड़ाई अब सदन में होने वाली है तो उस सियासी घमासान के लिए सभी विपक्षी दल एक स्वर में अपनी एकजुटता की कसम खा रहे हैं। विरोधियों के घेरेबंदी प्लान के बीच सरकार की ओर से भी कोशिशें तेज हैं। कोशिश सदन को सुचारू रूप से चलाने की, कोशिश सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन विपक्ष की दलील है कि सरकार की मंशा सही नहीं। समाजवादी पार्टी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि सरकार साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है।
1: जोड़ू तोड़ू सरकार है, इसका तो काम ही है, कोशिश ये करेगी बाई हुक बाई क्रूक किसी तरह से अपने मकसद को हासिल करें और जनता को और अपोजिशन को वोट को डिवाइड करें परिसीमन करके और अपने आगे सरकार साम दाम दंड भेद सभी तरीके से बना लेंगे।
0: विपक्ष के मुद्दे तय हैं कि सदन में किन किन मुद्दों पर शोर शराबा तय है। उनमें सबसे अहम मुद्दा है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ, साथ ही नीट पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पेट्रोल विवाद, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर सरकार भी अपने तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान, संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला और वो विवादित संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। इन मुद्दों पर कामयाबी के लिए सरकार की चुनौती भी कम नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अभी भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसीलिए मानसून सत्र से पहले सियासी जोड़तोड़, दल बदल और नए समीकरण चर्चा के केंद्र में है, लिहाजा नंबर गेम जारी है। अभी एक दिन पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी, तो दूसरी ओर NCPI सांसद के रूप में ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों को सदन में अलग बैठने की व्यवस्था पर मुहर लग गई और फिर उन्हें आज के सर्वदलीय बैठक के लिए भी रिजिजू ने न्योता दे दिया। सरकार एडी चोटी का जोर लगा रही है, वही कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार को हर हाल में मात दी जाए। कांग्रेस कह चुकी है कि वो परिसीमन बिल का विरोध करेगी और ये भी कि पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन तभी करेगी जब इसे मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। कांग्रेस लगातार केंद्र को चुनौती दे रही है।
2: लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
0: ऐसी बयानबाजी के बीच BJP आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों पर ही भरोसा नहीं।
3: कि सबसे बड़ा मुद्दा सत्र में क्या है, विनम्रता और दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में तोड़फोड़ हो रही है? मैं पूछ रहा हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व है राज्यसभा और लोकसभा में? क्या आपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को लिखित में दिया है कि अमुक अमुक दल इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और इन सारे दलों ने मिलकर अमुक नेता को इंडी गठबंधन का नेता चुना है? यदि यह नहीं है तो जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसके विखंडन के लिए आप दूसरों पर तोहमत लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास मत करिए।
0: आज हो रही सर्वदलीय बैठक के बाद देखना है कि सरकार की अपील पर विपक्ष क्या रुख अपनाता है और मानसून सत्र के दौरान सदन में कितनी कामयाबी मिलती है। राहुल गौतम और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से पत्र लिखा गया है बैठक से ठीक पहले, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या माना जाए कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर तैयारी कर चुका है?
5: विपक्ष तैयारी कर चुका है, चाहे नीट का मामला हो, सोनम वांगचुक का मामला हो, या इथेनॉल का मामला हो, राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला आया है उसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो दोनों ही सदनों के अंदर नेता प्रतिपक्ष है दोनों ने चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि इस पर चर्चा हो, तो कहीं ना कहीं जो इस बार सत्र है ये ज्यादा हंगामेदार नजर आएगा। एक तरफ क्योंकि जो विपक्षी दल है वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ गए हैं, तो एक तरफ सरकार को ये लगता है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उनको पास कराया जा सकता है, जिसके अंदर जो है संविधान में 130वां संशोधन बिल है उसको वो पास करवा सकते हैं, उनके पास एक तरीके से दो तिहाई बहुमत के करीब वो पहुंच चुके हैं। अगर कुछ और छोटे दल उनके साथ आते हैं तो इस बिल को वो पास करवा पाएंगे जो विशेष सत्र के अंदर अप्रैल में वो नहीं करवा पाए थे। दूसरी तरफ विपक्ष को ये लगता है कि चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, सोनम वांगचू का मामला हो, या एथेनॉल का मामला हो, उसके साथ साथ बढ़ती महंगाई हो और साथ में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, ये तमाम ऐसे इशू हैं जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है और इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता।
4: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका। और अपने दर्शकों को बता दें कि मॉनसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी तेज है, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं।
6: अगर आप मुद्दों की फेहरिस्त देखें आपस में जुड़े हुए हैं और वो सब के सब गवर्नेंस के फेलियर से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर राम मंदिर, चंदा डकैती की बात करूं, नीट के लीकेज की बात करूं, ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करूं, हेल्थ सिस्टम की बात करूं, मतलब अगर आप देखें उसमें जोड़ लीजिए आय की असमानता का सवाल हो, जिस पर कमोबेश अपने दल की ओर से मैं हर इसमें बोलता हूं, हर सत्र में बात रखता हूं, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़,
7: कांग्रेस के क्या मुद्दे होंगे ये कहो कि एनडीए की सरकार इस सत्र में देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो करने वाले हैं वो बड़े मुद्दे होंगे। कांग्रेस का तो क्या है मुद्दे लेके आएंगे, जब पार्लियामेंट चलती है सीटें खाली पड़ी रहती हैं इनकी, क्या मुद्दे लेके आएंगे।
4: और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां हैं और कोशिश ये है सरकार की कि इस बार मुद्दों पर बात हो, ज्यादा शोर शराबा और हंगामा संसद के भीतर ना हो इस मॉनसून सत्र में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, हालांकि विपक्ष ने संकेत दे दिए और ऐसे में सोनम वांगचुक का मामला हो या फिर जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा को लेकर चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी साफ है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार बहस, जोरदार मांग विपक्ष की तरफ से की जाएगी संसद में।
8: देखिए शशि, जो चिट्ठी लिखी गई है दोनों एलओपी के द्वारा यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उसने एक प्रकार से टोन को सेट कर दिया है। जब कल पार्लियामेंट शुरू होगा आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ खुद बल्कि वो कोशिश करेगी विपक्षी एकता की ताकत को आगे बढ़ाकर सरकार को इस मामले पर घेरे, सरकार से जवाब मांगे जाए, टाइम बाउंड इंक्वायरी की मांग की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आपकी भूल है, आपकी गलती है, बीजेपी सरकार ने लोगों को अपॉइंट किया है। तो राम मंदिर चंदा जो चोरी का जो मामला है वो बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके अलावा सोनम वांगचुक, नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तमाम चीजें जो विपक्ष है उनको लेकर हमलावर आपको दिखेगा।
4: इसके अलावा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता।
8: देखिए विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो तमाम जो चीजें हैं बदली गई हैं, ऐसे ये सरकार की एक चालाकी है। सरकार जब बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी वो हंगामा करती थी, हमारे मंत्रियों को नहीं बोलने देती थी, वॉकआउट करती थी, तो ये कोई नई प्रथा हमने नहीं चलाई है। और जाहिर है जो दायित्व है पार्लियामेंट चलाने का, वो सरकार के ऊपर होता है, ना कि विपक्ष के ऊपर होता है। ऐसे में आपको ग्राउंड कंसीड करना पड़ेगा, आपको स्पेस देना पड़ेगा ऑपोजिशन वॉइसेस को, तभी चर्चा सार्थक तौर पर होगी और लोगों को या लोगों के जो मुद्दे हैं उनको स्थान मिलेगा। तो लगातार विपक्ष तो उल्टा सरकार पर आरोप लगाता है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं या आप जो समन्वय की स्थिति है उसको नहीं बनाते हैं। जब जयराम रमेश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने सुनाई उसमें मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है ये मात्र एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पर तब हमको बोलने नहीं दिया जाता, सरकार के कुछ नुमाइंदे ही अपनी बात रखते हैं और फिर ये मुलाकात खत्म, ये जो मीटिंग है सर्वदलीय ये खत्म हो जाती है। तो विपक्ष को आप ये कहिए कि पहले से इसी मूड में है कि कल जब सत्र शुरू होगा हंगामेदार होगा, कई मुद्दे उनके तर्कश में है जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा या चिंता है वो है परिसीमन बिल की, आखिर सरकार क्या परिसीमन बिल लेकर आने वाली है और अगर लेकर आती है तो क्या उसके पास दो तिहाई का बहुमत है या नहीं, यही चिंता फिलहाल कांग्रेस के मन में है।
4: बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साथ ही अपने दर्शकों को सुना दें कि विपक्षी नेताओं की तरफ से इस संसद को लेकर क्या कहा गया है।
9: आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के सांसदों को किस तरह से भाजपा अपने अपने तरफ की है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अभी भी 6 सीट शायद कम है उनके पास, तो इसलिए इंडिया ऑपोजिशन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि पिछली बार जिस तरह से डिलिमिटेशन के सामने महिला आरक्षण बिल को रखकर, जबकि महिला आरक्षण बिल को हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही पारित कर दिया था, उसमें कोई शंका नहीं थी, हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उसको सामने रखकर वो लोग जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाना चाह रहे थे और उसमें डिलिमिटेशन आयोग की बात की गई थी, आयोग में जो लोग होंगे उनको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं थी कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको कहीं वो सीमांकन में कोई परेशानी ना हो, विशेष रूप से जैसे झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा तो हो सकता है, जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे।
10: आखिर 75 साल से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है बीजेपी वालों का उसमें विश्वास क्यों नहीं है, क्यों आखिर इतना डेस्परेट है?
11: The left parties, the Shiv Sena UPT, have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank you.

0: अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं, हाउ दे कैन डू
1: बोलेंगे
0: तीनों नाम डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। मोहित्रा जी ने जो सवाल पैदा उठाया उस सवाल के साथ हम सब लोग हैं, और ये पार्टी में जो टूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना ये इनकी नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है, और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत करना पड़ा।
2: मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ, और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। हम सभी लोगों ने वॉकआउट किया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो अभी टूट कर जो लोग आए हैं उनको अभी तक स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है, इसके बावजूद उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ इन्वाइट किया है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। इसका हम विरोध करते हैं जेएमएम की तरफ से।
3: और आपको बता दें कि संविधान की रक्षा के लिए वॉकआउट किया गया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। चाहे
4: पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया स्पीकर के, तो हम इसको खिलाते।
5: इसको प्रोटेस्ट कैसे करेंगे आप लोग?
4: मीटिंग से पहले क्यों आपको बोलेंगे?
5: थैंक यू।
4: आज ही ऑल पार्टी मीटिंग में सबमिट कर देंगे, और वहां स्पीकर को पर भी आज ही सबमिट कर दिया।
5: अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा,
4: उनका चाहत यह है। वन पॉइंट, इलेक्शन कमीशन हैज रिकॉग्नाइज दिस पार्टी, दैट पेपर यू सबमिट कॉपी,
5: ओके,
4: तो दैट कॉपी यू सबमिट।
6: अभिषेक बनर्जी जी का कहना है कि जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं दीदी के साथ आ जाएं, वो एक मिनट में इस्तीफा दे देंगे।
4: ये तो उन्होंने उनका बात कहा, और कौन एमपी का एमएलए का डिसीशन क्या होगा उन्होंने खुद लेंगे, मैं कैसे कहूंगा।
5: ठीक है, ठीक है। सीपीआई को अलग से अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है।
4: ये उन्होंने कहा कि कल जो इलेक्शन कमीशन का माध्यम से ये स्वीकृत दल है वो कॉपी इलेक्शन कमीशन का हमको आज सबमिट कीजिए।
6: अभिषेक
5: क्या कहेंगे आप सर? छोटा सा आपका एक सेकंड बस, हम भी सर क्या कहेंगे आप?
7: एक सेकंड, ये कुंभा निश्चित रूप से इंडिया का बड़ा हक है, और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में इलेक्शन दर इलेक्शन देखे हैं। लास्ट आपने बंगाल का चुनाव देखा, उससे पहले बिहार का चुनाव, और बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास एनडीए के काम के प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति होकर क्या है। और कोई भी बात जब होती है स्पीकर साहब का फैसला अंतिम फैसला।
3: तो बागियों को बैठक में बुलाने से विपक्ष भड़क उठा है, और उसके बाद सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया है। स्पीकर ने बागियों को भी मान्यता नहीं दी ये कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, शिंदे ग्रुप में शामिल हुए छह जो सांसद थे उन्हें तो मान्यता मिल गई थी, टीएमसी को लेकर नाराजगी जताई गई है कि विपक्ष की तरफ से।
8: देखिए बिल्कुल, टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उनको स्पीकर ने मान्यता नहीं दी, लेकिन जेएनयू की तरफ से जो है उनको एनसीपीआई के तौर पर जो है।
3: हिमांशु को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बिना मान्यता के बैठक में कैसे बुलाया गया ये विपक्ष के सवाल है, और आपको बता दें कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस बैठक से वॉकआउट किया है, संविधान बचाने के लिए वॉकआउट किया गया है ये विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है। और इस बैठक से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी राम मंदिर चढ़ावे को लेकर भी प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें कई सवाल उनकी तरफ से पूछे गए थे और स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। बागियों को बैठक में बुलाने के बाद अब विपक्ष भड़क उठा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सदन के शुरू होने से पहले ही ये बैठक जो सामंजस्य के लिए बुलाई गई थी वो

0: भी हंगामेदार रही है। राहुल गौतम तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उस सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए वॉकआउट किया गया। आपको यह भी बता दें कि जो 6 सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे उद्धव गुट से, उन्हें मान्यता मिल गई थी, लेकिन टीएमसी के सांसदों को भी मान्यता नहीं मिली है। फिर से सर्वदलीय बैठक में पहुंचे विपक्षी सांसद, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से इस बैठक में तमाम विपक्षी सांसद पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले वॉकआउट किया गया था, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि तमाम विपक्षी सांसद एक बार फिर से इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्या विपक्षी सांसदों की बात मान ली गई है, दोबारा से बैठक में पहुंच गए सभी?
1: नहीं नहीं, देखिए जितने विपक्षी दल थे उन्होंने एक विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि एनसीपीआई को अभी तक जो है स्पीकर की तरफ से मान्यता नहीं मिली है, और ऐसे में अगर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से उनको इनवाइट भेजा गया है तो ये ठीक नहीं है, ये सही परंपरा नहीं है, कानूनी तौर पर जो है संसदीय परंपराओं के तहत ठीक नहीं है। उसके लिए उन्होंने विरोध दर्ज कराया और फिर बहिष्कार किया बैठक का। मीडिया से मुखातिब होने के बाद जो है सभी विपक्षी दल के सांसद एक बार फिर से वो बैठक में पहुंच गए, तो विरोध जरूर दर्ज कराया, लेकिन क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक है और संसद का जो मानसून सत्र है उसके लिए बुलाई गई है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक है। हाँ, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, पहले बहिष्कार किया और फिर वो बैठक से दोबारा से पहुंचे हैं
0: और बैठक शुरू हो गई है।
1: जी, एक बार फिर से बैठक जो है वो शुरू हो गई है।
0: तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सांकेतिक विरोध के लिए ये वॉकआउट किया गया था, जिसमें तमाम विपक्ष के सांसदों की तरफ से कहा गया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वॉकआउट किया गया, सबने एकजुट होकर वॉकआउट किया था। टीएमसी के सांसदों को मान्यता नहीं मिलने के बाद भी, इन्विटेशन मिलने के बाद ये नाराजगी जाहिर की गई थी और एक बार फिर से इस बैठक में तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो शामिल हुए हैं, बैठक शुरू हो गई है। तो बैठक शुरू हो चुकी है, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
6: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet to
5: get The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
9: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से
10: शारदा यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी।
12: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
13: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
12: हैट्रिक का दावा।
13: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
12: विश्वास पूरा।
13: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
12: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहाँ गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह 11:30 बजे बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों के बारे में। जो पहली खबर है वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, जिसकी जांच के बीच अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसी के साथ हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के अनशन की भी, जिसे लेकर संसद के मानसून सत्र में टकराव के आसार हैं। बात केन बेतवा लिंक परियोजना की भी करेंगे, जिसका विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया है। उसके साथ ही बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते वहां किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वदलीय बैठक के बारे में, क्योंकि छिड़े हुए सियासी संग्राम के बीच अब आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जिससे पहले बुलाई गई आज जो सर्वदलीय बैठक है, सियासी हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ है। बवाल, बागी टीएमसी के सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर मचा है, क्योंकि सवाल ये उठाया गया जब स्पीकर ने मान्यता ही नहीं दी है तो बागी सांसदों को बुलाया क्यों गया। हालांकि अब विपक्षी सांसद सर्वदलीय बैठक में दोबारा पहुंच गए हैं। सांकेतिक तौर पर वॉकआउट करने के बाद एक बार फिर से सभी विपक्षी सांसद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष और सरकार दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू होने के तुरंत बाद तमाम विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया कुछ देर के लिए और नाराजगी जाहिर की।
1: टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तैमूर कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपी का, वो 20 एमपी के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।
0: तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, बैठक शुरू हो गई है लेकिन इस वॉकआउट के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया, क्योंकि अलोकतांत्रिक कहा गया, लोकतंत्र की हत्या कहा गया, जब मान्यता ही नहीं मिली तो इन तमाम टीएमसी के सांसदों को इन्विटेशन क्यों दिया गया था किरण रिजिजू की तरफ से?
2: देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री के बीच में जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कल जो पार्टी पोजीशन लोकसभा की वेबसाइट पे है उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो 28 सांसद हैं उनकी संख्या 28 ही दिखाई गई है, जबकि 20 बागी सांसदों की तरफ से एनसीपीआई ज्वाइन करने का मुलाकात उन्होंने स्पीकर से किया था और साथ ही साथ पत्र भी दिया था, लेकिन इस पे अभी स्पीकर ऑफिस की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 2/3 सांसद जो है वो दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं या विलय कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी स्पीकर का फैसला नहीं हुआ। कल स्पीकर ने यह फैसला जरूर लिया था कि यूबीटी के जो 6 सांसद हैं उनको एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसमें विलय के लिए अनुमति मिल गई थी और उसको लेकर पार्टी पोजिशन क्लियर कर दी गई थी कि अब एकनाथ शिंदे ग्रुप के 13 सांसद हैं, लेकिन टीएमसी के सांसदों की जो संख्या है वो लोकसभा की साइट पर जो है 28 दिखाई जा रही है, जबकि 20 बाकी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय करने का आवेदन स्पीकर को दिया हुआ है, उस पर फैसला नहीं हुआ। और संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो उनको निमंत्रण दिया गया है जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय और उस गुट के जो चीफ व्हिप है काकुली दफ्तवार, उनको बुलाया गया है, तो इसको लेकर एक विरोध दर्ज कराया गया। सांकेतिक तौर पर विपक्षी दल बाहर आए और उन्होंने अपना दर्ज कराया और उसके बाद वो फिर से बैठक में पहुंचे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिला जो स्पीकर की तरफ से अभी मान्यता नहीं मिली, तो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो है वो उनको क्यों इस बैठक के अंदर बुलाया गया, उन 20 बागी सांसदों के गुट को।
0: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। साथ ही अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि किस तरीके से वॉकआउट के समय तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी गई।
3: देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के लोगों को इन लोगों ने अलाउ किया, जिन लोगों ने एक तरह से बगावत करके अपनी पार्टी से वो बाहर आए और उनको अभी तक स्पीकर ने अप्रूव नहीं किया है, उनकी मान्यता प्राप्त नहीं है, इस अभी वो अभी पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद कैसे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उनको यहाँ पर इस मीटिंग में इनवाइट किया, उसको लेकर ये वॉकआउट किया गया है अपोजिशन की तरफ से।
4: देखिए जिस तरह संविधान को अवहेला करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
0: और अब बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीति की। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत गर्माती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। चिट्ठी में चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग हुई है। साथ ही साथ कहा गया है कि ट्रस्ट के खातों को भी सार्वजनिक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। तो विपक्ष चढ़ावा चोरी मामले में जबरदस्त तरीके से हमलावर है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जिसमें स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ इस जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इस चिट्ठी के बाद सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी तक?
5: नहीं, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जाहिर है एक तरीके से ट्रेलर देखने को मिला कि जिस प्रकार से इस बैठक के अंदर तमाम जो लोग हैं उन्होंने, जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जो रेबल एमपीज हैं उनको क्यों मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। कुल मिलाकर आप देखिए कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में, जिसको कोशिश तो की जा रही है कि पाटा जाए इसी ऑल पार्टी मीटिंग के थ्रू, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो सरकार लाना चाहती है जिन पर चर्चा हो, लेकिन वो तभी संभव है जब विपक्ष की आवाज को आप अलाउ करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हमारे जो जो ग्रीवांसेज हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो पीपल, जो लोगों से जुड़े इशू हैं, अगर जब तक आप हमें वो उठाने नहीं देंगे तब तक पार्लियामेंट चलाने का विपक्ष के लिए कम से कम कुछ मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि जो आज घटा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर वो एक ट्रेलर था और एक तरीके से ये दर्शाया उसने कि आने वाले सत्र के अंदर क्या क्या होगा, कितना हंगामेदार वो होगा। क्योंकि अगर ऑल पार्टी मीटिंग के लिए अंदर भी अगर समन्वय नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्र के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन होगा सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एक हंगामेदार सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार रही और कल भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जब कल पार्लियामेंट शुरू होगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका राहुल। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी खबर यह है, जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया है कि नौकरी लगने के कुछ ही समय के बाद उसने चढ़ावे चोरी की शुरुआत कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की बात भी सामने आई है। अब पुलिस आरोपियों के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ करके निवेश से जुड़ी जानकारियों को पुख्ता कर रही है। तो टिन्नू यादव को तमाम ये जानकारी थी कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रहा है, जमीन और साथ ही महंगे उपहार इस चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदे जा रहे थे। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष की नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दो तीन अन्य और लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच जारी है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल करके वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन करवाने की बात भी कबूल की है। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है और परत दर परत तमाम खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त सियासत चल रही है और अब यह लड़ाई महाराष्ट्र तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना यूपी की प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन करने की जरूरत है, जिसके जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे तो राम की बात ना करें, उन्हें राम की याद आ गई यही बड़ी बात है।
6: मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान दिले उद्धव ठाकरेंनी रामरक्षा बोलून दाखवावी। मी आज त्यांना त्यांच्याच गावात येऊन सांगतोय की फडणवीसजी रामरक्षा म्हणणं जरी तुमचं काम असलं तरी रामरक्षा करणं हे आमच्या राम भक्तांचं काम आहे। आम्ही रामरक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि रामरक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
0: और अब बात करेंगे आंदोलन अनशन से जुड़ी दो बड़ी और अहम खबरों के बारे में, क्योंकि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में आदेश पर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती करवाया था लेकिन उनका अनशन खत्म नहीं हुआ है, अस्पताल में भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। वहीं दूसरी बड़ी और अहम खबर है मध्य प्रदेश से, जहां छतरपुर में कई दिनों से चल रहे केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह को पुलिस प्रशासन ने खत्म करवा दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनके स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल की ओर से अपडेट जारी किया गया है, अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया है कि सोनम वांगचुक के सभी वाइटल्स पैरामीटर्स स्थिर हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार सोनम की निगरानी कर रही है, तो स्थिति उनकी स्थिर है, तमाम जो उनके वाइटल्स हैं वो पूरी तरह से स्थिर हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में है सोनम वांगचुक। हालांकि अस्पताल में भी उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है, वहां पर भी वो अनशन पर हैं।
7: अटेंड किया, उनको एग्जामिन किया, उनको एसेस किया और उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, पल्स रेट नॉर्मल हैं, वो फुल सेंसेस में हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं। हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आईवी फ्लूइड्स और आईवी इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें। और जैसा कि मैम ने बताया, वी आर फॉलोइंग वट एवर बेस्ट वी कैन डू फॉर हिम एंड ट्राइंग आर बेस्ट दैट वी कैन गेट हिम बेटर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।
0: और इसी बीच अस्पताल से सोनम वांगचुक के संदेश को उनकी पत्नी गीतांजलि ने पोस्ट किया है, जिसमें लिखा हुआ है 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। तो उनकी पत्नी की तरफ से इसे पोस्ट किया गया है, आपको बता दें, जिसमें उन्होंने लिखा है 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत।

0: साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी की पत्नी गीतांजलि ने बताया है देशवासियों के नाम एक संदेश जारी करके, जिसमें उन्होंने बताया है कि अस्पताल में भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 20 तारीख को होने वाले संसद मार्च जारी रखने की अपील उनकी तरफ से की गई है।
1: सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है, उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था बट उन्होंने मना कर दिया है, तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे।
0: और अब बात करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म करा दिया गया है। आज तड़के भारी पुलिस बल ने धरने स्थल को खाली करवाया। धरने पर बैठे हुए 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं। छतरपुर के कुपी में वरान नदी के तट पर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। उचित मुआवजे की और पुनर्वास की मांग की जा रही थी। महिलाएं गले तक पानी में खड़ी हुई थी जबकि कई प्रदर्शनकारी चिता सत्याग्रह कर रहे थे। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने गिरफ्तारी से इनकार किया। उनका कहना यह था कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही किसी को हिरासत में लिया गया। पन्ना जिले से आए लोगों को बसों में वापस भेजा गया है जबकि 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर की तबीयत को देखते हुए उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना यह है कि जिस अंडरब्रिज के नीचे आंदोलन चल रहा था वहां निर्माण कार्य जारी है और सुरक्षा कारणों से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें करीब 44,000 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने के पानी के मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा यह भी है कि इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होगी और साथ ही लाखों लोगों को पेयजल मिल जाएगा। लेकिन परियोजना के लिए छतरपुर और पन्ना के कई गांवों का विस्थापन भी तय है।
2: भटनागर जी, ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
3: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह खून से पत्र लिखना सैकड़ों बार आवेदन निवेदन सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं धमकी देना डराना मारना पुलिस के ऊपर मारना हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे ऐसा कर रहे जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
4: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पेंसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर, प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: और अब बात जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच मचे हुए हाहाकार के बारे में करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड और उफनती हुई नदियां जिंदगी पर आफत बनती जा रही हैं। भारी बारिश के बीच पुंछ में 3 जबकि राजौरी में 1 शख्स के जान जाने की भी खबर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, और ऊपर से हो रही लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशान कर रही है, खलल डाल रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें, और खास तौर से नदी नालों के किनारे लोग जो रहते हैं उन्हें खास तौर से सतर्कता बरतने की जरूरत है। फ्लैश फ्लड के बाद अलग अलग जगहों पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से उफनता हुआ सैलाब यहाँ लोगों की जिंदगी के लिए भारी पड़ रहा है।
5: ये देख सकते हैं आप,
0: गाड़ियां, घर, सब कुछ पूरी तरह से जलमग्न। अभी आपको बता दें कि 4 लोगों की जान जा चुकी है, और पानी के बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी के साथ और रौद्र रूप के साथ कई चीजों को बहाते हुए ले जा रहा है ये खौफनाक जल।
6: इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, जहाँ बीती रात राजौरी में तबाही का मंजर देखने को मिला। मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ, आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस बेला एरिया में तबाही हुई है। सबसे पहले आप पीछे देखें तस्वीरें, ये जो गाड़ियां आप देखें, यहाँ 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर आकर अट गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी, ये बस अड्डा तबाह हुआ है पूरी तरह से, बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहाँ पर अटके हैं। भारी नुकसान यहाँ पर इन तमाम गाड़ियों को हुआ है। वो नीचे बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ बस स्टैंड का, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं, ये देखिए, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये छड है, पैसेंजर छड जिसे बोलते हैं वो है, लेकिन उसकी हालत देखें किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है, और लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा ये नदी आप देखें, बिल्कुल मैं आपको घुमा के कैमरा दिखाना चाहता हूँ, ये देखें ये नदी, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो यहाँ पर मैं आपको दिखा, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और ये गाड़ी यहाँ पर ही अटक गई।
0: तो बुरे हालात हैं और लोगों से सतर्क रहने की बार बार सलाह दी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
3: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
4: मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है।
5: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सर्वदलीय बैठक में देखिए मॉनसून सत्र की बानगी। टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष। सरकार पर संविधान तोड़ने का आरोप राहुल खड़गे और चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री को लिखा खत। अस्पताल में भी वांगचुक का जारी अनशन संदेश जारी करके लिखा 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन। दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। खेन बेतवा आंदोलनकारियों पर सुबह सुबह एक्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। 14 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अमित भटनागर अस्पताल में भर्ती। अंडरग्राउंड निर्माण ब्रिज का हवाला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश। राजौरी में फ्लैश फ्लड में रह गई गाड़ियां। अब तक 4 लोगों की मौत हुई। कई इलाके लबालब। नदी नाले उफान पर है। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। और पीवी सिंधु ने रच दिया है इतिहास। जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी ओकाने यामागुची को सीधे गेम में 21-17 से हराकर 3 साल के बाद जीता बड़ा टूर्नामेंट।

0: कितनी ही सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन एक हृदय जो कभी नष्ट नहीं हुआ,
1: श्री कृष्ण का वो हृदय जो कभी समाप्त नहीं हुआ।
0: उस हृदय के संरक्षक उसे देखने वाले क्यों कभी उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते?
2: उसके अंदर में पूरा अंधकार रहते हैं, एक दीप जलता है,
3: पर किसी से बोल नहीं सकते हैं।
2: वो तो गुप्त कथा है, उसको बोलना नहीं है।
0: समूचे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे देखने वाले केवल 4 लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, जो कहते हैं आज भी जीवित हैं भगवान कृष्ण।
3: पृथ्वी पर केवल 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।
2: ये कलयुग में जीवित भगवान है।

0: जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मथुरा वृंदावन, गोवर्धन पर्वत से लेकर द्वारका नगरी तक, लेकिन द्वारका नगरी से आगे कहाँ? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में ब्रह्मांड का वो रहस्य है जिसके उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, वो ब्रह्म पदार्थ। श्री कृष्ण का वो दिल, श्री कृष्ण का वो हृदय जो कभी समाप्त नहीं हुआ, उनकी जीवन लीला के बाद भी इस संसार में उनकी लीला समाप्त नहीं हुई। और आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको वही अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें बताएंगे जो कि आज भी अद्भुत बन के हम सबके बीच जीवित है।
1: छंदाम

0: सबसे बड़ी अद्भुत धार्मिक रथ यात्रा है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत है। यहाँ पे आके तो कुछ अलग सी भावना हो जाती है।
0: ये दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली रथ यात्रा है। श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनने दुनिया के तमाम देशों से आते हैं।
2: जगन्नाथ का डियर लॉर्ड जगन्नाथ प्लीज,
3: हम भगवान जगन्नाथ से ये मांगते हैं कि वो हमारी प्रार्थना पूरी करें और हमें सेवा करने का मौका दें। मुझे पहली बार ये मौका मिला है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का।
0: अद्भुत हैं भगवान के रथ जो कई मंजिला ऊंचे होते हैं, लेकिन कभी इनके निर्माण में लोहे की एक कील तक नहीं लगी। सब कुछ हाथ से बनता है।
4: हाँ, सब कुछ हाथ से बनता है। नसीब से कुछ नहीं है कि दो मशीन टेबल कुछ नहीं, एक हाथ का लकड़ी है, उसी हाथ के अंगूठी के ये सब नाप लेके ही रथ बनता है।
0: अच्छा, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है?
4: हमेशा ही ऐसे ही, हम जैसे हम तो जब से जन्म हुए तब से देख रहे हैं, हमारे पापा जी जब से जन्म हुए, हम जैसे ही सब हाथ से होता है। हाँ। कुछ मशीन बुच कुछ भी टेप बुच सब यूज नहीं होगा, सब हाथ पे ही होता।
0: अविश्वसनीय है वो श्रद्धा जिसमें रथ के यात्रा पथ को पुरी के राजा सोने की झाड़ू से स्वयं साफ करने आते हैं। अकल्पनीय है वो विश्वास जो भक्तों को ये भरोसा दिलाता है कि भगवान खुद मंदिर छोड़कर उनसे मिलने चले आए हैं।
5: ये हमारा जो भगवान है वो ओरिजिनल पूरा मूला भगवान आते हैं रथ का ऊपर में। वो भगवान भक्त के लिए ये जगत की दर्शन के लिए जगन्नाथ है। उसकी नाम जो है जगन्नाथ, वो जगत का नाथ है।
0: मान्यता है कि जिसने रथ की रस्सी खींची उसका जीवन धन्य हुआ।
5: जिस का ऊपर में कृपा हो तो वो जाकर उसको रथ को छुपाते हैं, उसको रस्सी को खींचते हैं, जो खींचते हैं जो उसका मन में जो भावना है वो जरूर पूरा होता है।
0: कहते हैं कि जिसकी दृष्टि भी रथ पर पड़ गई उसका बेड़ा पार हुआ।
6: महाप्रभु के रथ में दर्शन मात्र से ही भक्तों को मुक्ति मिल जाता है। तो आज सभी भक्त आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से काफी बारिश हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना भीड़ है, लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। जस्ट भगवान का एक दर्शन के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं।
0: और सबसे अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय भक्ति भाव ये है कि लोगों को ये महसूस होता है कि भगवान जागृत है, जीवित है और उनका हृदय युगों युगों से आज भी धड़क रहा है। क्या ये केवल मान्यता है, क्या ये केवल एहसास है, या फिर इसमें कोई अनसुना अबूझा रहस्य है? मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अंदर जो हृदय धड़क रहा है वो भगवान कृष्ण का हृदय है। पर ये कैसे संभव है? क्या है भगवान जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंध? क्यों है भगवान के हृदय के आज भी प्रतिमा में होने की मान्यता? आज अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में सभी रहस्यों की कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वापर में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए और अपनी लीलाएं पूर्ण करके वापस बैकुंठ लौट गए। लेकिन क्या उनका हृदय पृथ्वी पर ही रह गया?
7: श्री जगन्नाथपुरी से कैसे जुड़ती है यहाँ की?
8: नीलमाधव ब्रह्मा जी के पहाड़ में भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज रूप लेकर यहाँ पर सृष्टि होता है।
0: तो क्या आज भी भगवान कृष्ण का हृदय निरंतर धड़कता रहता है?
5: 19 में जो नवकलबल हुआ था, उसी में जो पदार्थ ब्रह्म के साथ में मिलाकर तुलसी, सुगंध फूल, चंदन जैसे वो रखा था, 19 साल का बाद में 2015 में जब निकलेंगे तो उसी प्रकार जीवित भी है।
0: क्या किसी ने अपनी आंखों से धड़कते हृदय को देखा है?
7: उस समय आप लोग देखते हैं? आप लोग?
8: हाँ देखते हैं।
7: आप लोग देखते हैं, पर क्या होता है किसी से नहीं?
8: किसी को बोलेगा नहीं।
7: अब कहाँ से?
8: जब बोलेगा बहुत हमारा खेती हो जाएगा।
7: अच्छा,
8: इसलिए बोलेगा नहीं।
0: पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में द्वारका से कुछ किलोमीटर दूर भालका में जरा नाम के भेलिये का तीर पैर में लग जाने के बाद भगवान कृष्ण ने शरीर त्याग दिया था। अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार समुद्र तट पर किया, लेकिन कहा जाता है कि भगवान का हृदय धड़कता रहा, जिसे अर्जुन ने भरे मन से लकड़ी के तख्ते पर रखकर समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया। लेकिन द्वारका से हजारों किलोमीटर दूर पूरी जगन्नाथ तक कैसे आया भगवान का हृदय? क्या नव कलेवर उत्सव में यही हृदय पुरानी से नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है?
8: परम परिवर्तन एक जगह को और जगह चेंज होता है। जो लकड़ी में महाप्रभु बनता है वो लकड़ी नष्ट हो गया बाद में, और दूसरा लकड़ी में चल गया ब्रह्म परिवर्तन।
0: क्यों नवकलेवर की रात पूरा शहर डूब जाता है अंधकार में?
9: जो भगवान का जो ब्रह्म परिवर्तन होता है वो अंदर कब लाइट बंद हो जाता है,
10: कुछ दिखाई देता है, कुछ कोई
9: बाहर आदमी को कोई नहीं देखेगा, वो सेवक जो है वो अंदर सब काम करेगा ना।
10: हाँ,
9: अब बाहर लोग कोई नहीं देखे,
10: सब कुछ बंद रहता है,
9: सब कुछ बंद रहता है।
10: कोई ऐसा नहीं होता है कि उत्सुकता में कोई आता है?
9: ऐसा नहीं होता,
10: सब चुपचाप,
9: सब साइलेंस।
0: सनातन मान्यताओं में भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना गया है, क्योंकि उनकी कथा सतयुग से शुरू होती है, त्रेता युग की यात्रा करती है, द्वापर में पूर्ण लीलाओं में बदलती है और कलयुग में भी जारी मानी गई है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ही भगवान कृष्ण हैं, जो कलयुग में आज भी जीवित रूप में साक्षात उपस्थित हैं।
5: ये कलयुग में जीवित भगवान है। आदमी जैसे बात करते हैं, आदमी जैसे खाते हैं, आदमी जैसे लोक की कथा सुनते हैं, वो भगवान भी ऐसे हैं।

0: पूरे साल में केवल 15 दिन, केवल 15 दिन जब भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान नहीं होते हैं, उनको बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है क्योंकि स्नान एकादशी के बाद मौसम बदल रहा है और उनका तापमान बढ़ जाता है। बुखार होने के कारण यहाँ पर मंदिर में निवास नहीं करते हैं, यहाँ से दूर। अब आप भगवान अलारनाथ को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी प्रतिमा देख रहे हैं और उनके रूप में आप भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यानी भगवान जगन्नाथ की जो ये मानव लीला है उसका पल पल अद्भुत है।
1: जगन्नाथ भगवान रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भक्तों के लिए ये भावना और भावुकता दोनों का संगम है।
2: कोई को दर्शन करने का बिल्कुल लाभ मिलता है और इस बार बहुत अच्छे से हम सबका दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सवेरे 4 बजे से निकले थे भुवनेश्वर से और यहाँ आके बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। पूरे परिवार के साथ हम लोग आए थे और बहुत खुशी लग रहा है।
3: इन्हीं रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।

0: यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ ने स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलशों के जल से स्नान किया था। मानव लीला का ये सुंदर रूप देखिए कि बदलते मौसम में इस स्नान के कारण वो बीमार पड़ गए और 15 दिनों के लिए भक्तों को उनके दर्शन प्रतिबंधित हो गए। अब ठीक हुए हैं तो रत्न जड़ित सिंहासन छोड़कर खुद भक्तों से मिलने आए हैं।
1: स्कंद पुराण में है भगवान जी का आविर्भाव देवस्नान पूर्णिमा, उसकी जन्म तिथि उसको बोलते हैं जन्म उत्सव, उसी दिन हुए थे स्नान पूर्णिमा में। स्नान पूर्णिमा में जन्म होकर वो जब नहा लिए है ज्यादा, जैसे आदमी ज्यादा नहाने के बाद उसको बुखार होता है, भगवान जगन्नाथ जी को भी बुखार है।
0: संयोग कहिए या कुछ और, जब COVID-19 महामारी चल रही थी तब संक्रमित होने पर क्वारंटाइन पीरियड भी 14 दिन का होता था और तब हर किसी से मिलना जुलना या छूना मना होता था। अभी लौटते हैं भगवान जगन्नाथ की भूमि पर उनकी अद्भुत यात्रा में। भक्तों के मन में एक ही आस है, रथ को छू लें, रस्सी से रथ दो कदम खींच लें या बस दूर से भगवान को पल भर निहार लें तो जीवन का उद्धार हो जाए।
2: तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
3: I come from England originally and never see anything.
4: मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ये एक अद्भुत दृश्य है, मैंने ऐसी निष्ठा जगन्नाथ जी को लेकर कभी नहीं देखी।
0: जो परंपरा शुरुआत से रही यानी कि 220 कारीगर ही मिलकर इस पूरे रथ को तैयार करेंगे वो आज भी परंपरा जारी है, यानी कि आज आपके पास और भी विकल्प हैं, मशीनें आ गई हैं, बहुत तरह की चीजें आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परंपरा पूरी होनी चाहिए। भगवान की रथ यात्रा कोई एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा।

0: ने वो फिर नया भगवान को लाकर बिठाकर उसको भी बनाने इतना टाइम लगता है। चारों आदमी जाते हैं उसके अंदर में, उसके अंदर में पूरा अंधकार रहते हैं, एक दीप जलता है, उसी में जो ब्रह्म की जो पट निकलते हैं उसके बाद में जो अलौकिक लाइटिंग होता है उसी में सब दिखाई जाता है।
1: दुनिया में केवल चार लोग हैं जो आस्था की इस अविश्वसनीय प्रक्रिया के साक्षी हैं, जो सदियों से जीवित ईश्वरीय हृदय को प्रतिमा में स्थानांतरित करते हैं। उन चार में से इन दो व्यक्तियों की बात आपने सुनी, हम आगे आपको इनकी पूरी बात सुनाएंगे। पहले प्रश्न ये कि हृदय कहाँ से आया। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण का हृदय उनके देहोत्सर्ग के बाद भी धड़कता रहा था। यहीं से हमें हमारी कहानी को जोड़ने का एक सिरा मिला जो पुरी से दूर समुद्र में ब्रह्माद्रि पर्वत की ओर ले गया।
2: ये उड़ीसा की महानदी है, हम महानदी तक आए हैं। ये 100 किलोमीटर की दूरी इसकी जगन्नाथपुरी मंदिर से है, लेकिन द्वारका से इसकी दूरी करीब करीब 2500 किलोमीटर जमीनी हो जाती है। द्वारका से इसकी दूरी हम क्यों दिखा रहे हैं, वही इस कहानी का सबसे अद्भुत सिरा है। चलिए हमारे साथ, हम यहाँ पर नाव में सवार होकर आपको आगे लिए चलते हैं कहीं। तो ये पूरा एरिया जब आप देखेंगे तो ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वैसे तो उड़ीसा जो राज्य है वो समुद्र से लगा हुआ एक राज्य है, लेकिन ये एक नदी है और साथ में है एक पहाड़ी रेंज। और इसी के साथ जब हम गुजरात के द्वारका से जुड़ती हुई कहानी यहाँ से सुनाते हैं तो उसके कई सिरे जो हैं वो अविश्वसनीय लगते हुए भी बहुत अद्भुत लगते हैं।
1: हमें बताया गया कि ब्रह्माद्रि पर्वत की चोटी पर नील माधव की पूजा होती है। जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उस मान्यता का भगवान कृष्ण के धड़कते हृदय और भगवान जगन्नाथ के हृदय स्थानांतरण से क्या संबंध था, हम इसी सत्य की खोज में निकले।
2: सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान वहां से 1.5 किलोमीटर करीब आगे जाकर हमें वो स्थान मिला जहां पर एक ऐसी कहानी लिखी हुई थी और जहां के लोग हमें ये बता रहे थे, जिसके बाद हमने तय किया कि हम वहां से लगभग 2500 किलोमीटर दूर ये यात्रा करें उड़ीसा में। यहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी पूरे धूमधाम के साथ निकलती है, बड़ा उत्सव मनता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन दूर दूर से लोग आते हैं। लोग आज भी मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ जो है वो साक्षात भगवान जगन्नाथ में यहाँ है, वो जीवित है, जीवंत है। लेकिन वहाँ कृष्ण जी अपनी नगरी गुजरात के द्वारका, जो आगे सोमनाथ से जो कहानी जुड़ती है, वहाँ से यहाँ तक का इस छोर का, इस महानदी का किस्सा जुड़ता है। आज हम यहाँ पर इस नाव में सवार होकर आगे की ओर जा रहे हैं तो आपको वही अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय कहानी सुनाने के लिए। ये नदी का क्या नाम हुआ?
3: महानदी।
2: और ये जो पहाड़ी दिख रही है
3: वो जो पहाड़ी है ब्रह्मंदी पहाड़ है।
2: अच्छा, तो इसी नदी से कहते हैं कि
3: हाँ, यहाँ पर जो पहाड़ है ना,
2: हाँ,
3: वहाँ पर सबरराज विश्वावस्तु रहते थे।
2: हाँ,
3: वहाँ से वो नदी में,
2: हाँ,
3: नाव में यहाँ पर आए और उधर ऊपर जाके,
2: हाँ,
3: भगवान को पूछते थे।
2: अच्छा, तो भगवान कहाँ से आए थे यहाँ पर?
3: हाँ, भगवान द्वारिका से आए थे।
2: द्वारिका से, इसी नदी से होते हुए?
3: हाँ, इसी नदी से।
2: तो उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ था?
3: नहीं हुआ,
2: इसी नदी से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा था।
3: हाँ।
2: कितने पहले की बात होगी है?
3: वो तो
2: हजारों साल पहले,
3: उससे भी ज्यादा होगा।
2: हाँ।
3: हमको का नाम, बच्चे लोग का नाम को मालूम नहीं,
2: किसी और युग की बात है ये।

मैं खुद कुछ समय पहले समुद्र के अंदर डुबकी लगाकर उस द्वारका के अद्भुत दृश्यों की साक्षी बनी थी जो समुद्र में डूब गई थी। मुझे वो स्थान भी मिला जहां कहा गया कि भगवान कृष्ण देह त्याग कर स्वर्गारोहण कर गए थे। ये भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की भूमि है, जहां पर आप श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर देख रहे हैं वही जगह है जहां पर उन्होंने अपने मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम वो गए थे। यहीं पर उनका शरीर कहा जाता है, चूंकि नदी के साथ होते हुए ये त्रिवेणी संगम में और फिर सागर में समाहित हो जाता है ये जल। तो मान्यता है कि यहाँ से जब उनका शरीर प्रवाहित किया गया तो उनका दिल जो था वो जाकर उस सागर के रास्ते से होते हुए जगन्नाथ पुरी तक पहुंचा। हमें अब उससे आगे की कहानी जाननी थी, जिसके लिए हम महानदी पार करके ब्रह्माद्री पर्वत तक आए। यहाँ से सीढ़ियाँ और आगे तीन नदियों का संगम है। यहाँ पर तीन नदियों का यहाँ पर संगम है और यहाँ पर आगे ये सीढ़ियों का रास्ता है। इन सीढ़ियों से ऊपर होकर हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे। हमें ये जानना था कि क्या नील माधव का मंदिर ही हमारी वो मिसिंग कड़ी है जो भगवान कृष्ण के जगन्नाथ रूप में जीवित हृदय के साथ स्थापित होने के सवालों की खोज पूरी करती है।

0: तो नाव ने जिस तट पर हमें उतारा है उसी तट से आकर लगे थे। और यहाँ पर जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं इन सीढ़ियों से, तो इसी ब्रह्मागिरी पर्वत पर आज भी पूजा होती है, लेकिन एक समय पर उसकी मान्यता ही अलग थी। पुजारी जी से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या यही इसी नदी के तट पर आकर भगवान कृष्ण का जीवित हृदय लगा था।
1: नील माधव को फर्स्ट ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे यहाँ पर 1000 वर्ष। ब्रह्मा जी के बाद में पृथ्वी राजा पूजा कर थे, पृथ्वी राजा के बाद में नारद मुनि पूजा कर, नारद मुनि के बाद में हमार जो विश्वावसु सबर यहाँ पर पूजा करते। विश्वावसु का बाद हम लोग कलि युग में ब्राह्मण का रूप में यहाँ पर पूजा करते। त्रेता युग में क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण लास्ट समय का जो अपना वंश को निजे ध्वंस करने के बाद सियाली का लता में यही सो जाता है। उनको जो जारा सबर कथा बोलेगा, जारा सबर आसेगा उनको मार दिया तीर में, तीर में जल मार देगा तो उनका प्राण चल जाएगा, श्री कृष्ण जी का मानव शरीर रूप श्री कृष्ण चल जाएगा। तो उनका जो पंचु पांडव होता है, पंचु पांडव उनके आसे की अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार में जो बोलाता है जोटा ब्रह्म पॉइंट नहीं संस्कार होता है, तो उनके लिए उनके प्रशांत महासागर हाँ। उनके फिंगा देता है यहाँ पर हाँ। तो इन किसी नहीं से सबाई लोकाचार मत में बोला जाए जे से जो ब्रह्म पॉइंट हाँ। तो अभी भी जगन्नाथ का प्राण केंद्र में स्थापित होता है वर्तमान यही पर आता है आकर।
0: हमें पुजारी जी से जो पता चला वो इस प्रकार था। नील माधव सतयुग से भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन उनकी पूजा आदिवासी विश्ववसु किया करते थे। वहां आदिवासियों के अलावा किसी और की उपस्थिति निषेध थी। वर्तमान मध्य प्रदेश के प्राचीन महाजनपद अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने अपने विश्वस्त विद्यापति को पता लगाने के लिए भेजा। विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्वसु की बेटी से विवाह कर लिया और फिर आग्रह किया कि उन्हें नील माधव के दर्शन करवाए जाएं। पहले विश्वसु ने मना किया, लेकिन बेटी के कहने पर वो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए जिनमें बाद में फूल निकल आए। विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई तो राजा रास्ता देखते हुए मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां से नीलमाधव अंतर ध्यान हो चुके थे।
2: ये विष्णु, ये स्वयं विष्णु नीलमाधव नारायण भगवान, अब जहां भी भगवान जी का दर्शन करेंगे भारतवर्ष में सभी तो भगवान जी नारायण है, लेकिन इधर कोई अलग है जो भगवान जी का रूप बहुत अलग है। क्यों ना इधर दोनों ऊपर भुज में शंकर चक्र और नीचे दोनों भुज में गदा पद्म नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता और सरस्वती माता श्रीदेवी भूदेवी उन्हें दोनों चरण में है, और इसलिए भगवान जी का बाव चरण में गंगा, जैसा हमारे शरीर से पसीना निकलता है बिंदु बिंदु आकर से, भगवान जी का बाव चरण का छोटा अंगुली होता है ना कानी अंगुली, उनका बिंदु बिंदु आकर से गंगा आता है, ये गुप्त गंगा होता है।
1: जो पनस का शरीर हम उड़ीसा में जो पनस होता है जैकफ्रूट, अच्छा। जैकफ्रूट का शरीर जो एकदम काटा काटा अच्छा है, कटहल कटहल कटहल का शरीर कटा कटा है, भगवान का टोटल शरीर यहाँ पर कटा कटा है।
0: इससे आगे की कहानी स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य खंड में बताया गया है कि भगवान नीलमाधव के दर्शन न हो पाने के कारण राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए, लेकिन तभी उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी कि अब नील माधव के दर्शन उन्हें पुरी के तट पर लकड़ी के लट्ठे के अंदर होंगे।
2: भगवान जी कलयुग में दारू का रूप ले लिया हाँ। पुरी में हाँ। तो इधर चार युग का ठाकुर है, सत्ययुग तृतीयुग और द्वापर युग कलयुग, ये पहला युग है जो भगवान जी नील माधव सत्ययुग का है। नील यानी जगन्नाथ, महा यानी सुभद्रा और धाव यानी बलदेव। भगवान जी बोले थे जे मैं कलयुग में दारू के रूप में दर्शन दूंगा हाँ। सही भक्त लोग भी दर्शन दूंगा हाँ। इसलिए भगवान जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीनों पुरी में लीला कर रहे हैं हाँ। लेकिन ये होता है मुख्य हाँ। नील माधव ब्रह्मा जी। पहला दर्शन जगन्नाथ जी को, उसके बाद नीलमाधव। जब तक नीलमाधव जी का दर्शन नहीं होगा तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन पुण्य नहीं होगा।
0: दारू का मतलब लकड़ी का लट्ठा ही होता है, जो एक दिन राजा को समुद्र में तैरते हुए दिखा। उस पर शंख कमल गदा के चिन्ह बने हुए थे। मान्यता है कि यही वो लकड़ी थी जिस पर भगवान कृष्ण का हृदय रखा था। राजा ने तय किया कि वो इसी लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनवाएंगे। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा कारीगर के रूप में वहाँ खुद आए और 21 दिन का समय मांगा मूर्तियां बनाने के लिए, लेकिन शर्त रखी बीच में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा की पत्नी ने 15 दिन बाद ही कौतूहलवश दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा रूप में भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। हृदय सहित तब तक कृष्ण बलराम सुभद्रा की अधूरी प्रतिमाएं बन चुकी थीं। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के उपासक थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के नाम पर ही जगन्नाथ यानी सारे जगत के नाथ के रूप में प्रतिमाएं उसी स्थिति में स्थापित करवा दी। ये प्रतिमाएं लकड़ी की थी। इन्हें दारू ब्रह्म यानी लकड़ी से निर्मित भगवान भी कहा जाता है। पवित्र तिथि में भगवान का नव क्लेवर उत्सव होता है। नव कलेवर का अर्थ होता है नव यानी नया, कलेवर यानी शरीर, यानी भगवान के नया शरीर धारण करने का उत्सव।
3: ये जो नवकलवल की जो रीति है वो रामनवमी का बाद जो दशमी आता है चैत्र दशमी तिथि से वो शुरू होता है। वो 4 महीना चलता है। 2 महीना जो लकड़ी जंगल से लाने के लिए जाते हैं, 2 महीना रथ यात्रा होता है। 2 महीना क्या होता है, 15 दिन पुराना भगवान को स्नान मंडप में स्नान कराते हैं, वो बुखार में पड़ते हैं, फिर 15 दिन बनाने के लिए नया भगवान को लाते हैं।
0: भगवान की प्रतिमाएं जब नई प्रतिमाओं में बदली जाती हैं, तब कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो जीवित हृदय था वो इसी समय नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रह्म परिवर्तन या ब्रह्म स्थापन कहते हैं।
4: ब्रह्म परिवर्तन क्या जी, भगवान है ईश्वर, सारा विश्व का मालिक, सूर्य का प्रतीक रूप। सूर्य होते हैं सारा विश्व का शक्ति का आधार। ब्रह्म परिवर्तन क्या होता है ये तो बोलना शक्ति नहीं है। हाँ,
3: जो दैत्यपति वंश में जो जन्म हुए हैं, हमारा सबसे एंड का काम है, लास्ट का काम है भगवान जगन्नाथ जी का ब्रह्म का परिवर्तन करने के लिए। उसको चेंज करेंगे, उसको नहाएंगे, उसको बाद में उसको फिर नूतन भगवान की शरीर में उसको स्थापन करने के लिए।
0: ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को न कोई देख सकता है और न ही किसी को आजीवन बता सकता है।
5: राम अवतार में जो बाली को मार रहे थे, सिवली लट्टा जो है वो एक पेड़ था, पेड़ के पीछे रहकर भगवान बाली को तीर मारा छुपके। हाँ, उसी टाइम भगवान बाली को कहा, मैंने आपको छुपके जब सर मारा, इसके बाद आप भी मुझे मारेंगे जरूर। जब भगवान का कृष्ण जन्म हुआ, कृष्ण जन्म के अवतार में बाली ने भगवान को सर मारा, उस टाइम भगवान ने कृष्ण ने उनको याद दिला दिए जो बाली का जो अवतार था, जो राम अवतार था, उसी टाइम का याद दिला दिए।
0: ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को प्रमुख सेवकों जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है उनके हाथों से संपन्न कराया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ही ब्रह्म स्थापन की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। दैत्यपति दरअसल आदिवासी राजा विश्वावसु के वंशज कहे जाते हैं और भगवान को छूने का अधिकार हजारों वर्षों से उन्हें ही प्राप्त है। प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया।
6: आप कितने आयु के थे, कितने वर्ष के थे आपके सामने? अच्छा, आपको 4 बार अवसर मिला है। अच्छा, पर किसी से बोल नहीं सकते हैं?
7: नहीं, बोलेगा नहीं।
4: क्या होता है किसको बोला है?
6: अपने अंदर हमेशा रखना है इस बात को,
4: हमेशा रखना है किसको बोलेगा नहीं।
6: तो उस समय आप लोग देखते हैं, आप लोग
4: देखते हैं,
6: आप लोग देखते हैं, पर क्या होता है किसी से नहीं आप वर्णन कर सकते हैं। अब कहाँ से
4: जब बोलेगा हाँ, बहुत हमारा खेती हो जाएगा।
6: अच्छा,
4: इसलिए बोलेगा नहीं,
3: वो तो गुप्त कथा है, उसको बोलना नहीं है।
0: भगवान की पुरानी प्रतिमाओं को मंदिर के अंदर ही एक हिस्से में समाधि दे दी जाती है, जिसकी प्रक्रिया भी ये दैतापति सेवक ही पूरी करते हैं।
3: हमारा जो है मत्स्य मंडल में देह वही, माने जो मत्स्य मंडल में जन्म होता है वो देवता होले भी मरता है, जैसे आदमी मरते हैं भगवान भी शरीर त्याग करते हैं। जब जोड़ा आषाढ़ का महीना पड़ेगा तो वो 19 साल में हो सकते हैं, 12 साल में हो सकते हैं, 7 साल में, जब पड़ेगे जोड़ा आषाढ़ महीना तो भगवान की शरीर की त्याग की समय हो जाएगा। हम लोग जगन्नाथ जी का परिवार है, जैसे आपके घर में कोई मर जाएंगे तो मंडन वगैरह आप जैसे करते हैं, हम भी जाते हैं, नरेंद्र हमारा मारकुंड पुष्करिणी है, हम वहाँ जाते हैं, जल उसको देते हैं, फिर आते हैं, फिर 10 दिन के बाद में फिर मंडन वगैरह काज हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के भी करते हैं नवकलवल में।
0: भगवान जगन्नाथ को भक्त जागृत अवस्था में मानते हैं और उन्हीं के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम आकर चार युगों की कथा पूरी होती है। सतयुग से नील माधव की मान्यता का सिरा, त्रेता में भगवान राम ने बाली का छुप कर संहार किया था, द्वापर में जब बहेलिये ने भगवान कृष्ण पर छुप कर तीर चलाया तो बहेलिये ने क्षमा मांगी, तब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने उसे त्रेता युग के कर्म फल की याद दिलाई।
5: ब्रह्म को कोई दिखना नहीं चाहिए, ब्रह्म ऐसे स्वरूप है जो कि वो पूरा ब्रह्मांड का विश्व है, इसलिए उनको अंधेरे में कोई आएगा लाकर भगवान के अगली एक स्वरूप में रखेगा, और जो पुराना स्वरूप है जगन्नाथ जी का उनको पाताली किया जाएगा भगवान जो मंदिर के अंदर, हाँ, इसलिए वहाँ पर पूरा चारों तरफ अंधेरा रहता है, पूरा मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ सेवक और भगवान का सेवा चलेगा।
0: कलयुग में भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ रूप में विराजमान माने जाते हैं। सनातन धर्म के चार प्रमुख तीर्थ हैं, उनमें बद्रीनाथ रामेश्वरम द्वारका के साथ जगन्नाथ पुरी शामिल है। युगों और सदियों के अंतराल में निश्चित है कुछ कड़ियां खो जाएं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सारी कहानी एक फ्रेम में सुना देती। नील माधव मंदिर में हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें स्पष्ट हो रही थी भगवान कृष्ण से लेकर जगन्नाथ तक की यात्रा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, भगवान कृष्ण के हृदय स्थान से एक प्रकाश निकल रहा है और नीचे भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाएं दर्शाई गई। मान्यताएं भी यही कहती हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थित है, यानी द्वारका से जगन्नाथ मंदिर के बीच का केंद्र नील माधव मंदिर को कहा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण एक समय अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूरी भ्रमण पर आए थे और जनता ने उनका स्वागत किया था। कहते हैं रथ यात्रा के माध्यम से वो युगों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है, लोगों का विश्वास तो यही है।
6: इस विश्व में असंख्य रंग और हर रंग भगवान के, इसीलिए तो हमारे आज के अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में आपको इतने रंग दिखे जिन्हें समेट कर हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अभी के लिए इतना ही, अभिषेक सिंह, अजय कुमार नाथ और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
8: इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे। सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 2036 तक 3 लाख का सेंसेस हो जाएगा।
9: स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा कि सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है इन द वर्ल्ड। सी देयर आर ओनली टू थिंग्स, प्राइस एंड वैल्यू। बफेट साहब ने एक सबसे बड़ी चीज सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड। एक का हजार दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं। बाजार आपको डराएगा रोज आकर, एक का कनेक्शन, दो का कनेक्शन, तू आ ना भाई, हमारा तो पार्टी चालू रहेगा। हम वही के वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वही से हैं अभी भी।

0: little everyday frustrations adding up? Elite checking from NASA Federal can help. Get your paycheck up to 2 days early. Enjoy cell phone protection, roadside assistance, and identity theft aid for peace of mind. Even earn dividends on your balance. If your checking account isn't working hard for you, switch to Elite Checking from NASA Federal at nasafcu.com/elite. NASA Federal Credit Union. Smart. NASA smart. Federally insured by NCUA.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल. अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत. अब देखिए आज तक वर्टिकल.
4: देखो देखो कौन आया.
5: यूपी चुनाव से पहले योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जहां मुद्दा अपराध और विकास का है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं.
6: 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो. मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो, और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो.
5: योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियां बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं.
6: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी.
5: वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों से मुलाकात की है. मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ ही सीएम योगी ने जांच में लापरवाही बरतने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललिता गौतम के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया. साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. मई महीने में हुई ललिता गौतम की मौत को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था, जिसके बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात की. आज तक ब्यूरो.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच मचे हाहाकार के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में तेज बारिश, लैंडस्लाइड और उफनती हुई नदियां जिंदगी पर आफत बनती जा रही हैं। भारी बारिश के बीच पुंछ में 10 जबकि राजौरी में एक शख्स के जान जाने की खबर है, यानी कुल 11 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। निचले इलाके लबालब हैं और आपको ये भी बता दें कि लगातार हो रही बारिश और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा रही है। पुंछ में 10 लोगों की जान चली गई है, राजौरी में एक शख्स की जान गई है, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और जो फ्लैश फ्लड है वो पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और फ्लैश फ्लड और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ा देता है। किस तरह से गाड़ियां, घर, सब कुछ कीचड़ और पानी में बहा हुआ और ढका हुआ नजर आ रहा है। राजौरी की तस्वीरें देखिए, 11 लोगों की कुल अभी तक इसमें जान जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से अलग अलग जगहों पर बुरे हालात है। निचले इलाकों में जबरदस्त पानी भरा हुआ है।
5: इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, जहाँ बीती रात राजौरी में तबाही का मंजर देखने को मिला। मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ, आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस बेला एरिया में तबाही हुई है। सबसे पहले आप पीछे देखें तस्वीरें, ये जो गाड़ियां आप देखें, यहाँ 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर आकर अटक गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी, ये बस अड्डा तबाह हुआ है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहाँ पर अटके हैं। भारी नुकसान यहाँ पर इन तमाम गाड़ियों को हुआ है। वो नीचे बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ बस स्टैंड का, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये शेड है, पैसेंजर शेड जिसे बोलते हैं वो है, लेकिन उसकी हालत देखें किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है और लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा ये नदी आप देखें, बिल्कुल मैं आपको घुमा के कैमरा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें ये नदी, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो यहाँ पर मैं आपको दिखा, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और ये गाड़ी यहाँ पर ही अटक गई।
4: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ गए। सुनील जी, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है?
6: आपको बता दो, बीती रात से ही इलाकों में भारी वर्षा हो रही है, उसके कारण कई इलाकों में जो है बाढ़ हो गई है। अगर हम बात करें राजौरी और पुंछ जिलों की, दोनों जिले जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी आ गया है, लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है, पैसों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी से बह गई। राजौरी का जो बस स्टैंड है वहाँ पर
4: बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, कुल 11 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह की परिस्थितियां अभी वहां बनी हुई हैं, और इसीलिए प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि नदी नालों के किनारे जितना हो सके न जाएं और अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर भी न निकलें। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही, पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर बहे, 10 लोगों की मौत, राजौरी में बह गई गाड़ियां, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। सर्वदलीय बैठक में दिखी मानसून सत्र की वानगी, टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, परिसीमन बिल पर डीएमके चौंकाएगी, शर्तों के साथ दे सकती है समर्थन। मानसून में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर, नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक करने की मांग। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद युद्ध हुआ भीषण, ईरान में कई शहरों पर भारी बमबारी, मोजतवा का संदेश, ट्रंप को सिखाया न भूलने वाला सबक। और लॉर्ड्स में आज करो या मरो का मुकाबला, सीरीज पर कब्जे के लिए भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीम, चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह ऑलराउंडर हर्ष दुबे की एंट्री, अंतिम 11 में केएल राहुल की हो सकती है वापसी।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। भारत की सभ्यता में कुछ स्थान सिर्फ शहर नहीं होते, वो इतिहास, आस्था और पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। अयोध्या, काशी, संभल, द्वारका और फिलहाल मथुरा, इन सब के केंद्र में एक ही सवाल बार बार लौटता है, क्या इतिहास में जो हुआ उसका फैसला आज होगा? श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान कर दिया है। आज कहानी में हम मथुरा को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास से लेकर अदालत तक, आस्था से लेकर राजनीति तक, आज कहानी कृष्ण जन्मभूमि की।

0: 9 अगस्त कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है। सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
1: अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासकीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है?
2: पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है।
1: गौशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है?
3: आज जो ये हो रहा है इस पर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए।
1: कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहाँ बोर्ड लगा हुआ है।
4: मथुरा वो नगरी जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। मान्यता है कि यहीं कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इसी जन्मभूमि को लेकर सदियों पुराना विवाद आज फिर देश की सबसे बड़ी बहस बनता जा रहा है। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान हो चुका है, संत समाज सक्रिय हो चुका है, सियासत गर्म है और अदालत के बाहर मामले को सुलझाने की कोशिश भी जारी है।
5: ये मथुरा है, कान्हा की नगरी।

0: ब्रज की वो पावन धरती जहाँ मान्यता है कि कंस की कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था।
1: राधे रानी का, बाके बिहारी का, इसी का ही भाव होता
2: है। ठाकुर जी आगे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और हमारे साथ अच्छे मस्ती में डांस में चल रहे हैं।
1: साक्षात दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में हो साक्षात दर्शन होते हैं हमको। जो प्रभु करा दे हमारे से और हम कर ले वही बहुत है।
0: यहाँ हर सुबह शंखनाद से जागती है, हर शाम आरती की लौ में सिमट जाती है। यहाँ राधे राधे सिर्फ अभिवादन नहीं, जीवन जीने का मंत्र है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट, हर गली, हर मोड़ कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है।

यही वो भूमि है जहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते हैं। किसी के लिए ये मोक्ष का मार्ग है तो किसी के लिए जीवन भर की सबसे बड़ी आस्था।

0: ब्रज की परिक्रमा हो, बांके बिहारी के जयकारे हो, या जन्मभूमि में माथा टेकने की इच्छा, आस्था का हर रास्ता आकर इसी नगरी में ठहरता है। लेकिन इस बार मथुरा की पहचान सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि बहस भी है।
1: जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आजाद होना चाहिए।
2: कार सेवा जरूर होना चाहिए, सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है।
3: विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया, हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हों।
4: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो।
5: जो इस जन्मभूमि स्थान है वहां पर भगवान कृष्ण ही विराजमान होना चाहिए।
0: चर्चा है 9 अगस्त की, चर्चा है उस कार सेवा की जिसका ऐलान हो चुका है, चर्चा है उस आह्वान की जिसने एक बार फिर संत समाज को मथुरा चलने का संदेश दिया है।
6: हमें अपना श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर का स्थान लेना है और वहां पर मंदिर बनाना है।
7: कार सेवा होनी चाहिए क्योंकि सभी सनातनी हिंदुओं को मंदिर चाहिए है।
8: अब समय आ गया है कार सेवक का करने का, संतों ने जो ऐलान किया, संत समाज श्री धाम वृंदावन से उन संतों के साथ है।
0: आज कहानी में इन जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे, आखिर 9 अगस्त को मथुरा में क्या होने वाला है, कार सेवा का मकसद क्या है, संत समाज इस आह्वान के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का केस क्या है और क्या है मथुरा से जुड़ा पूरा विवाद। लेकिन फिलहाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने देश भर के साधु संतों से 9 अगस्त को मथुरा पहुंचने की अपील की है।
9: देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे।
10: मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहां मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने।
0: जिस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये आह्वान किया है उसे देश के सनातन अखाड़ों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था माना जाता है। परिषद का दावा है कि उसके साथ 50 लाख से ज्यादा साधु संत, सन्यासी और नागा जुड़े हैं। इसमें 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं, जिनमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन परंपरा के अखाड़े शामिल हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों से लेकर सनातन से जुड़े बड़े मुद्दों तक अखाड़ा परिषद की राय को संत समाज में अहम माना जाता है।
11: भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश भी जारी है। हाल ही में विशेष लोक अदालत में सुनवाई हुई लेकिन दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आए। अब अगस्त में फिर बातचीत की कोशिश होगी, यानी एक तरफ अदालत समाधान का रास्ता तलाश रही है और दूसरी तरफ कार सेवा की तैयारियां तेज हो रही हैं।
12: पोजीशन ये है कि भी एप्लीकेशंस काफी हैं, वो चल रही हैं और इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है उसको देखते हुए जब सब क्लियर हो जाएगा तो उच्च न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
0: मथुरा की हलचल अब सिर्फ धार्मिक या कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष से पूछ रहे हैं, अगर आस्था की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर क्यों नहीं बोलते।
13: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।
0: उधर समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही है। अखिलेश यादव पहले अयोध्या में चढ़ावे के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे और अब मथुरा को लेकर भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।
14: हर दिन राधे राधे कहते
0: हैं। यानी एक तरफ संत समाज 9 अगस्त की तैयारी में जुटा है, दूसरी तरफ अदालत समाधान का रास्ता तलाश रही है और तीसरी तरफ मथुरा एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बहस के केंद्र में खड़ा है।
15: गिरिराज भी उठाना जानते हैं और लट्ठ चलाना भी जानते हैं, तो कार सेवक के रूप में समस्त ब्रजवासी तैयार है।
16: बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हमको ये मंदिर हमारे वापस मिलेंगे नहीं।
17: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर विशाल रूप से बनना चाहिए।
18: मथुरा और वृंदावन हमारी जो है कर्म भूमि रही है, तो ये रणभूमि अगर बन जाए तो अच्छी बात है।
5: उम्मीद तो यही है कि हम सब अपनी एकता का जब परिचय देंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा।
0: अब इंतजार 9 अगस्त का है, क्योंकि उस दिन सिर्फ कार सेवा नहीं होगी बल्कि ये भी तय होगा कि मथुरा की गूंज सिर्फ मंदिरों की घंटियों तक सीमित रहती है या फिर अदालतों से लेकर सियासत के गलियारों तक और तेज सुनाई देती है।
19: अदालत में जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई लगातार चल रही है, तो सवाल यही है कि आखिर 13.37 एकड़ जमीन का पूरा विवाद आखिरकार है क्या, इतिहास क्या कहता है, दोनों पक्षों के दावे क्या हैं और अदालत में मामला अभी किस मोड़ पर पहुंच चुका है।
20: तकरीबन 3,500 ऐसे मस्जिदें हैं जिनके ऊपर इनका दावा है कि हमारे मंदिर थे।
21: ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना, ये तो मेरा था ना, जो मेरा था अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है।
22: अभी गले मुर्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
23: मेरे ही जीवन काल में मुझे लगता है कि अयोध्या के जैसे मथुरा में भी भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा।
0: यहाँ आस्था और इतिहास सदियों से साथ साथ चलते आए हैं, लेकिन इसी मथुरा में एक ऐसी जमीन भी है जिस पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं।

0: आस्था के अपने दावे हैं और कानून की अपनी सीमाएं। करीब 13.37 एकड़ जमीन जिस पर दशकों से अदालतों में सुनवाई चल रही है और जिसके भविष्य पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले समझिए कि विवाद आखिर है किस बात का। पूरा मामला मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके की 13.37 एकड़ जमीन का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। उनका कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यहां बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके एक हिस्से पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया, लिहाजा हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ भूमि पर अपना अधिकार चाहता है।
1: टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी बकबोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी बकबोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिका हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए।
0: वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से स्थापित है और 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद उसका प्रबंधन वैध तरीके से ईदगाह कमेटी के पास है। यानी यही वो बिंदु है जहां से दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का भी हवाला देते हैं जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे बदला नहीं जा सकता।
2: नाम रोशन हो, समाज में हमारा नाम फैले, राजनीति में हमारा नाम आए, इसलिए दावे दायर किए गए हैं।
0: अब जरा इतिहास को समझिए। इतिहासकारों और अलग अलग दस्तावेजों के अनुसार ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ भगवान केशव देव का भव्य मंदिर बनवाया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसके बाद शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। बाद में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर अंग्रेजी शासन आया और 1815 में यह जमीन नीलाम हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीदा और स्वतंत्रता के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का गठन हुआ। यहीं से आधुनिक कानूनी लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस दस्तावेज की होती है वो है 1968 का समझौता। 17 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के मुताबिक मंदिर और मस्जिद दोनों अपनी अपनी जगह बने रहेंगे। मुस्लिम पक्ष आज भी इसी समझौते को अपनी सबसे बड़ी कानूनी ताकत मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता करने वाली संस्था को ऐसा अधिकार ही नहीं था। इसीलिए आज अदालत में सबसे बड़ी बहस 1968 के उसी समझौते की वैधता पर भी चल रही है।
3: जब से औरंगजेब ने कब्जा किया उसके बाद कब्जा तो मराठों का शासन था, मराठों ने शासन किया करीब 30 साल, उसमें खत्म हो गया था। 1815 में इसका जमीन का की नीलामी हुई, उस नीलामी में राजा पटनीमल जो बनारस के थे उन्होंने सारी जमीन 13.36 एकड़ खरीद दिया और उस समय कोई मस्जिद नहीं थी। ये बाद में कुछ योग है 47 के बाद जो यहाँ के कांग्रेसी शासन था राजनीतिक वजह से वहाँ कब्जा कर लिया गया और फिर से ढांचा तैयार कर दिया गया और उसमें बहुत सी जमीनें 1968 के बाद मिला दी गई। तो सारी बातें कोर्ट सामने सब सामने आएंगी।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे अलग अलग याचिकाओं के रूप में दायर किए जा चुके हैं। इनकी मुख्य सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। यहीं भूमि के स्वामित्व, 1968 के समझौते की वैधता और अन्य जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए समाधान तलाशने का रास्ता सुझाया। मामला विशेष लोक अदालत भेजा गया। 4 जुलाई को सुनवाई थी लेकिन मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ। अब 21, 22 और 23 अगस्त को फिर बातचीत की कोशिश होगी।
4: यहाँ तक के मथुरा और बनारस की ताल्लुक है, जो मस्जिदें वहाँ बनाई गईं और जिन पर डिस्प्यूट है, तो उनका जिक्र

0: और बनारस के, तो उसमें दो राय नहीं है।
1: अदालत अभी भी ये संभावना खत्म नहीं मान रही कि बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहीदगाह परिसर का कोर्ट मॉनिटर वैज्ञानिक सर्वे कराने की अनुमति दी थी, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं हुआ है और दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी आधार पर अदालत में डटे हुए हैं।
2: वक्त एक ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काशी और संभल की कहानी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
9: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से
10: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
11: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट।
14: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this.

0: Just search Classical Hits and start listening now.
1: Patrick Savary. So.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
5: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
4: हैट्रिक का दावा।
5: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
4: विश्वास पूरा
5: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
4: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहाँ गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही, पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर बहे, 10 लोगों की मौत, राजौरी में बह गई गाड़ियां, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। सर्वदलीय बैठक में देखिए मानसून सत्र की वानगी, टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, परिसीमन बिल पर डीएमके चौंकाएगी, शर्तों के साथ दे सकती है समर्थन। मानसून में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर, नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक करने की मांग। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद युद्ध हुआ भीषण, ईरान में कई शहरों पर भारी बमबारी, मोजतवा का संदेश, ट्रंप को सिखाया न भूलने वाला सबक। और लॉर्ड्स में आज करो या मरो का मुकाबला, सीरीज पर कब्जे के लिए भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीम, चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह ऑलराउंडर हर्ष दुबे की एंट्री, अंतिम 11 में केएल राहुल की हो सकती है वापसी।

मस्जिद के नीचे क्या है, इस सवाल की सबसे बड़ी तलाश अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय शुरू हुई थी। विवाद 5 शताब्दियों तक रहा, करीब 134 साल कानूनी लड़ाई चली और फिर 2019 में सुप्रीम आदेश के बाद वो विवाद शांत हो गया। अब वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन काशी में विवाद अब तक नहीं सुलझा है और अब अदालत को फैसला करना है कि मस्जिद के नीचे क्या है।

0: जहाँ महादेव स्वयं काशी के कण कण में विराजते हैं। जहाँ गंगा की लहरें सदियों से हर हर महादेव का उद्घोष सुनती आई हैं। जहाँ मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है, वही काशी आज एक ऐसे सवाल के बीच खड़ी है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों से लेकर अदालत की चौखट तक तलाशा जा रहा है।
1: रोंगटे खड़े हो गए, मैं खाली सामने देखा, बस एक दीवार है, उसके बगल में सिर्फ बाबा हैं पीछे।
2: अपना काम करता है लेकिन सहयोग वाराणसी नहीं करेगा तो सहयोग नहीं हो पाएगा।
3: कौन करेगा? हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते।
0: काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में खड़ी ज्ञानवापी मस्जिद एक तरफ स्वर्ण शिखर से सजा बाबा विश्वनाथ का धाम और दूसरी तरफ सदियों पुराना विवाद। दावा यह है कि जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देती है वहीं कभी काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर हुआ करता था।
4: शिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है, वो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए।
5: मेरे घर परिवार वाले बताते हैं, चाचा पिताजी लोग बताते हैं कि बाकायदे एकदम भव्य मंदिर हुआ करता था, अंदर जाके दर्शन पूजा पाठ लोग करते थे
6: और ये हौसला करते हैं कि हम फिर आगे पहुँच जाए और वो हर एक का राइट है।
7: इस मसले को सोचना चाहिए और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर है उन्हें समझना चाहिए कि मसले मुल्क को किधर लेकर निकल।
0: यानी एक ही परिसर दो दावे और इतिहास के इस दौर की एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी काशी की गलियों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक सुनाई दे रही है।
8: साई ने ऐसा ओपिनियन दिया और ऐसा लिखा है साई ने कि 17वीं शताब्दी में करीब यहाँ पे जो हिंदू मंदिर था प्री एग्जिस्टिंग उसको तोड़ा गया है और ये बात एएसआई ने रिलाई की है। इसके लिए मजरिसे आलमगिरी पे भी एएसआई ने रिलाई किया है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ा गया, साथ ही साथ वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल 1965 में एएसआई के पास था और वो इंस्क्रिप्शन इस समय आधा टूटा हुआ इन्हीं की मस्जिद के कमरे से एएसआई को सर्वे के दौरान मिला।
0: कहा जाता है मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई दारा शिकोह बनारस के ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव से बेहद प्रभावित था। औरंगजेब को दारा शिकोह का काशी और हिंदू धर्म के प्रति यह आकर्षण पसंद नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों में मंदिरों और हिंदू धार्मिक शिक्षा संस्थानों को लेकर कई कड़े आदेशों का उल्लेख मिलता है। मासीरे आलमगिरी नाम की पुस्तक में दर्ज विवरण के अनुसार बनारस में ब्राह्मणों की ओर से धार्मिक शिक्षा दिए जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी दौर में काशी विश्वनाथ का प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर भी ध्वस्त किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी पुस्तक काशी का इतिहास में लिखा है कि विश्वेश्वरनाथ मंदिर को सिर्फ गिराया ही नहीं गया बल्कि उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिराई गई, छोटे मंदिरों को जमींदोज किया गया, मंदिर के पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी द्वार बंद कर दिए गए, द्वारों पर उठे शिखर गिराए गए और उनकी जगह गुंबद स्थापित किए गए। दावा यह भी है कि जिस स्थान पर कभी गर्भगृह था उसे मस्जिद के मुख्य दालान में बदल दिया गया।
7: मैं ये बात कहता हूँ कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं, उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है, हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती ले करके वहां मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते।
0: समय बीता, शासन बदले, लेकिन काशी में आस्था की ज्योति नहीं बुझी। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज जिस मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं वो मंदिर उसी पुनर्निर्माण की विरासत है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर उस मूल स्थान पर नहीं है जहां प्राचीन विश्वेश्वरनाथ मंदिर हुआ करता था। उनका दावा है कि मूल मंदिर की जगह आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है।
9: महादेव के बुलंद नारों से जिस काशी की पहचान है वो काशी बाबा विश्वनाथ से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ देखती है। इस धाम से बहुत लगाव जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों को हमेशा, लेकिन कई बार आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किया, पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ पर इस समय स्थापित देख रहे हैं, एक तरह से इन्हें शुक्रिया करने का भी तरीका है, इनकी विरासत को याद रखने का तरीका है कि 1780 में इन्होंने ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था।
0: अदालत में किसी भी दावे का फैसला सिर्फ आस्था से नहीं, सबूतों और कानून के आधार पर होना है। सर्वे से जुड़े दावों और रिपोर्ट पर अदालत में सुनवाई चल रही है और इसी कानूनी लड़ाई के बीच एक ऐसा दावा भी है जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की प्रतिमा से जुड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सदियों से नंदी विराजमान है। सनातन परंपरा में नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल माने जाते हैं। हिंदू मान्यता है कि नंदी का मुख सदैव अपने आराध्य शिव की ओर होता है और इसी आस्था के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी की दृष्टि ज्ञानवापी परिसर के भीतर मौजूद उस स्थान की ओर है जहां हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग होने का दावा करता है।
9: काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा हमेशा से भोले बाबा के साथ, और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ जो नागर शैली के की कलाकृतियों का नमूना होता है वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है।
0: ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष अपने दावों के साथ अदालत में है, मुस्लिम पक्ष अपने कानूनी तर्कों के साथ। सर्वे के दावे हैं, इतिहास के दस्तावेज हैं, आस्था की अपनी मान्यताएं हैं और संविधान का अपना कानून। लेकिन इस पूरे विवाद का अंतिम फैसला न किसी नारे से होगा, न किसी दावे से फैसला होगा, सबूतों की कसौटी पर, कानून की चौखट पर और अदालत के निर्णय से होगा।
10: हिंदू शास्त्रों में संभल का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं में ये दावा किया जाता है कि भविष्य में संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सत्ययुग की शुरुआत हो जाएगी। इसी संभल में 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है।
11: किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने के लिए सनातन अनुमति नहीं देता और मंदिरों के तोड़ने के लिए, मंदिरों को तोड़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। लेकिन इतिहास को जानने का अधिकार तो है ना हमें।
12: जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है। इंशाल्लाह कोर्ट से भी हर एतबार से भी जीत हमारी होगी, क्योंकि मस्जिद खुद अपने आप में एक शहादत देती है।
13: सच्चाई ये है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि बाबर ने और इस अकबर ने सब आ करके कई बार औरंगजेब ने जहाँ जिसको जो मिला उस समय जो प्राचीन जगह हुआ करती थी वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाते थे लोग, मंदिर को तोड़ देते थे। दरगाह की भी वही स्थिति है।
14: तो भाई अगर से मस्जिद का मसला है, मस्जिद किसकी है, तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जिम्मेदार लोग हैं, ये बैठ जाए, ये बैठ के मसले हल कर दे, और कुछ नहीं है तो न्यायालय है, न्यायालय बैठ के हल कर दे।
15: और अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धर्म बिगाड़ने, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है, और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं, इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन।
0: संभल एक ऐसा शहर जिसे हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु के भविष्य के कल्कि अवतार की भूमि माना जाता है। कहा जाता है कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में संभल की धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन इसी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान वाले संभल में आज एक ऐसा विवाद खड़ा है जिसकी जड़ें इतिहास की किताबों में तलाश की जा रही हैं और जिसका फैसला अदालत की चौखट पर होना है।
16: सनातन धर्म के सब जगह लिखा हुआ है कि जो कल्कि जी का अवतार होगा यानी भगवान अब की बार कलयुग में वही अवतार लेंगे हरिहर मंदिर संभल में था, पूजा पाठ होती थी। बाबर के जमाने में जब आक्रमण हुआ तो इन आक्रांताओं ने उसे गिरा दिया और एक ढांचा खड़ा कर दिया, पर तो कमीशन गया था, कमीशन ने देखा है तो सारे मंदिर प्रमाण है, सारे चीज मंदिर के हैं, उसके जगह जगह पर जो कुछ बिल्डिंग में है वो सब नोट कर दिया गया है। रिपोर्ट अभी कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी केस रुका हुआ है, जब आगे होगा तो आगे केस बढ़ेगा और ये भी जगह हम स्वतंत्र कराएंगे और यहाँ हरिहर मंदिर पुनः स्थापित होगी।
0: सवाल यह है कि संभल की शाही जामा मस्जिद क्या कभी किसी प्राचीन मंदिर की जगह पर बनाई गई थी या फिर सदियों से मौजूद मस्जिद को लेकर आज इतिहास की अलग अलग व्याख्याओं के आधार पर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। यही सवाल संभल की सड़कों पर है, अदालत में है और सियासत के बीच भी है। संभल में विवाद का सिलसिला शुरू होता है जब वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ता संभल की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत पहुंचते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदुओं के शताब्दियों पुराने पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल की शाही जामा मस्जिद बनवाई गई है। इसके पक्ष में अदालत के सामने 95 पन्नों की याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में 3 प्रमुख ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया गया। याचिका का आधार नंबर 1 है बाबरनामा, याचिका का आधार नंबर 2 आईने अकबरी और याचिका का आधार नंबर 3 ASI रिपोर्ट। ये पहली बार नहीं हुआ है जब संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा किया गया हो या फिर मस्जिद में मंदिर के निशान होने की बात उठाई गई हो। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार करवाया था। उस समय सरकारी गजेटियर में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोर्ट के ऊपर बने हरि मंदिर ही लिखा गया था।
15: अगर अपने मंदिर को मंदिर कहा जाए और ये धार्मिक माहौल बिगाड़ने की बात है तो गलत है। ये मंदिर ही है और जो लोग कह रहे हैं शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है और वो मस्जिद होती तो इतने सारे सबूत कहाँ से आते हैं, इतने सारे सबूत मिल रहे हैं दिन पे दिन।
0: केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी याचिकाकर्ता भी हैं, अपने दावे के पक्ष में एक नक्शा दिखा रहे हैं। इस नक्शे को शक संवत 987 का बताया जा रहा है। इस नक्शे में उस जगह को जहां आज जामा मस्जिद मौजूद है हरिहर मंदिर के रूप में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है। संभल को इसमें तीर्थराज संभल लिखा गया है और संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों का भी उल्लेख होने का दावा है। लेकिन इतिहास की यही कहानी मुस्लिम पक्ष पूरी तरह खारिज करता है। जामा मस्जिद के सदर का दावा है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी में बाबर के आदेश पर बनवाई गई थी, लेकिन उनके मुताबिक इसे किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बल्कि समतल जमीन पर बनाया गया था।
17: सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी बल्कि वो खुद उसकी जगह थी वहां पर, मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं।
0: यानी एक तरफ बाबरनामा का हवाला है दूसरी तरफ आईने अकबरी का उल्लेख है, तीसरी तरफ एएसआई की पुरानी रिपोर्ट है, सरकारी गजेटियर है, पुराने नक्शे हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद शुरू से ही मस्जिद थी। संभल का सच इतिहास की किताबों के नीचे दबा है। आज दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य लेकर अदालत में।
10: जिस तरह से एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे सामने आ रहे हैं, उससे देश के सामने एक बड़ा धर्म संकट शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से देश भर में सैकड़ों हजारों मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। अब हम आपको वो दावे और कुछ ऐसी मस्जिदों की जानकारी देते हैं जहां मस्जिद के नीचे क्या है का विवाद लगातार कई दशकों से चला आ रहा है।

0: अयोध्या से काशी और काशी से संभल तक मंदिर मस्जिद विवादों की एक कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों की कहानी नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों की भी है जिन्हें लेकर आज भी दावे और सवाल आमने सामने खड़े हैं। कहीं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा है।
1: आज हम एक एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे।
0: कहीं पुराने ढांचे में मंदिर के अवशेष होने की बात कही जाती है।
2: वो नहीं बोलता है कि जो मथुरा में हमारी जो वहाँ पे भगवान की मेन मंदिर है उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है उसको हमें वापस दीजिए। क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियाँ कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए। क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए उसको सही किया जाए।
0: और कहीं इतिहास की किताबों पुरातत्व रिपोर्टों और दस्तावेजों को सबूत बनाया जाता है। लेकिन इन दावों के बीच एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है, आखिर देश में ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं जिनके अतीत को लेकर विवाद चल रहा है।
3: काशी मथुरा और जितनी भी जगह हैं, उन सब को हम स्वतंत्र कराते रहेंगे। पूरे देश में अभियान चल रहा है, मैं और मेरी टीम सक्षम है और जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उस जगह वापस लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और हम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि हम सारी जगहों को स्वतंत्र कराकर रहेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें हमको धीरे धीरे सफलता मिल रही है।
0: विवादित मस्जिद मंदिर की लिस्ट बहुत लंबी है। अलग अलग लोगों की रिसर्च में ये संख्या अलग अलग बताई गई है। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप लेखकों के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। ये किताब दो खंडों में लिखी गई। इस किताब में अलग अलग राज्यों में करीब 1800 से अधिक मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों और विवादित ढांचों की बात कही गई है। राज्यवार अगर देखा जाए तो इस किताब में आंध्र प्रदेश में 142, असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102, बिहार में 77, दिल्ली में 72, गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 151, राजस्थान में 170, तमिलनाडु में 175, उत्तर प्रदेश में 299, हिमाचल प्रदेश में 1, दीव में भी जो एक जामा मस्जिद है उसके बारे में यही दावा किया गया है कि वो भी मंदिर तोड़कर बनवाई गई।
4: एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे देवता यहाँ पे स्थापित थे उनको भंजित किया गया है, वहीं पे आज देवता विराजमान है, वहीं पे मूर्तियां विराजमान है, सीढ़ियों पे नमाज पढ़ के कुछ चलते हुए जा रहे हैं, तो इसका इस बात का कोई मोल नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के वहां बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ के उसकी मलबे से बनाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। कटी हुई मूर्तियां हैं सर, कटे हुए क्या आप, मतलब क्या आप हम लोग को एक नेशनल शेम के लिए आप वहां पे भेज रहे हो और अगर अपने सम्मान के लिए अपनी अस्मिता के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा तो आप कह रहे हो कि कहां का ये बात। वो है कि एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं।
0: साल 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने मंदिर तोड़कर मस्जिदों को लेकर जो बयान दिया उसके मुताबिक विवादित स्थलों की संख्या 36,000 है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुगल काल में देश भर के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए जिनमें से 3,000 मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई।
4: ज्ञान व्यापी के केस में एसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है, भोशाला के केस में एसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है, राम मंदिर में एसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है। तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही है। आप मुझे कैसे कहोगे कि मैं केस अपना साबित करूं? अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बनी क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी?
5: देश भर में ये संख्या तो हजारों में,
4: तो हजारों मंदिर तोड़े भी तो गए। अगर हजारों मंदिर तोड़े गए हैं तो क्या हमारे जो हिंदू शासकीय नियम है उसका कोई मोल नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल।
0: आंकड़े अलग अलग हैं, दावे अलग अलग हैं, इतिहास की व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन विवाद एक ही है, क्या किसी धार्मिक स्थल का अतीत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद रहना चाहिए या फिर इतिहास के उन दावों की जांच होनी चाहिए जो आज भी समाज और सियासत दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद संभल और अब मथुरा, मंदिर मस्जिद विवादों की एक कहानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही।
6: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।
7: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
8: मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है।
9: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
11: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
11: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष। सांकेतिक वॉकआउट, परिसीमन बिल पर शर्तों के साथ समर्थन दे सकती है डीएमके। कल वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। मॉनसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में आ रहा यूसीसी कानून ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी। कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही। पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर बहे, 10 लोगों की मौत। राजौरी में बह गई गाड़ियां, नदी नाले उफान पर। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। ऑलॉड्स में आज करो या मरो का मुकाबला। सीरीज पर कब्जे के लिए भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीमें। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह। ऑलराउंडर हर्ष दुबे की एंट्री। अंतिम 11 में केएल राहुल की हो सकती है वापसी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे और इस बुलेटिन में कई अहम और बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। इस आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं कि रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं।
1: ये मुद्दे लेके आएंगे ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन NCPI 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है, लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरियट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना, वो तो लोकसभा के सदस्य है, 20 लोग है, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा।
2: लेकिन अगर लाया जाता है तो आपको भरोसा है कि और पार्टियों का समर्थन आपको हासिल होगा, 2/3 बहुमत?
1: देखिए, फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरियट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त
0: तो किरण रिजिजू को आपने सुना। मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बहुत अहम रही है और ये बैठक खत्म हो गई है। सिंबॉलिकली सांकेतिक तौर पर वॉकआउट किया गया था विपक्ष की तरफ से और उसके बाद दोबारा से इस बैठक को ज्वाइन किया गया। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है और आपको बता दें कि अच्छे माहौल में सबने अपनी अपनी बात कही है, रिजिजू की तरफ से बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरी है कि अपनी बात रखें लेकिन सदन की कार्रवाई होने दें, उसे उसमें रुकावट न डालें क्योंकि उससे नुकसान होता है, जनता चाहती है कि काम हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ और निकल कर आया? लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है।
3: देखिए, जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी साफ करा गया है कि वो किस क्या चाहते हैं। जैसे JMM की तरफ से कहा गया कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा तो इसमें कुछ ट्राइबल सीटें कम हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले सरकार की तरफ से बिल दोबारा आए और उसके बाद जो है वो फिर से विचार कर सकते हैं। तो एक तरीके से JMM भी अभी जो है वो क्लियर नहीं है कि वो बिल के समर्थन में है या खिलाफ है। तो बहुत सी ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि सरकार इस बिल में नए कौन कौन से क्लॉजेस के साथ आ रही है उसको देखना चाहते हैं, उसके बाद जो है डिसाइड करें। लेकिन DMK की तरफ से कहा गया है कि वो अभी फिलहाल इस बिल के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल को जो है वो जब पास हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन में 2029 से पहले सरकार चाहती है महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, और इसीलिए सरकार जो है नंबर दिवस को लेकर जो है सजग है। आप देखें चाहे टीएमसी के 20 बागी सांसद हों उनको साथ लाने की कोशिश है, एनसीपी शरद पवार की पार्टी है उनसे उनकी बातचीत चल रही है, यूबीटी के 6 सांसद जो है एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से जो है नंबर गेम को अपने पक्ष में लाना चाहती है। जो अप्रैल के अंदर जब ये बिल लेकर आई थी सरकार के पास नंबर्स नहीं थे 2/3 के, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोशिश की थी, उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आज हमारे पास नंबर नहीं है लेकिन हम इस बिल को जरूर लाएंगे। तो वो इस बार सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को जो है इस अपने साथ लाया जाए। उसके साथ साथ सरकार विपक्षी दलों की कई मुद्दों को लेकर मांग है, नीट को लेकर वो चर्चा चाहते हैं, उसके साथ साथ
0: और तमाम मुद्दों पर यहां बात हुई जिसमें किरण रिजिजू ने कहा भी कि अपनी बात संसद में रखें जरूर लेकिन रुकावट न डालें। बड़ी और अहम खबर यह भी है कि वंदे मातरम बिल सोमवार को राज्यसभा में आएगा और इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करने वाले हैं। जी हां, बड़ी और अहम खबर, कल ही यानी कि सोमवार को इस बिल को, वंदे मातरम बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल को पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ये साफ कर दिया गया है कि कल और ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है सदन और राज्यसभा में गृहमंत्री पेश करेंगे इस बिल को।
3: देखिए, जो एक पार्लियामेंट की तरफ से जो बिजनेस जारी किया जाता है संसद के लिए नेक्स्ट डे क्या बिजनेस रहेगा, तो उसमें राज्यसभा के अंदर जो है ये हमको अभी तक जानकारी मिली है कि कल वंदे मातरम बिल जो है वो पेश करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। और किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर नए नए नॉर्म्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, तो गृहमंत्री अमित शाह अगर उस बिल को पेश कर रहे हैं तो विपक्ष क्या इस बिल के साथ है या खिलाफ है, इसको लेकर विरोध दर्ज कराएगा, ये तमाम इश्यूज जो कहीं ना कहीं संसद के पहला दिन जो है वो हंगामेदार रहने वाला है। क्योंकि गृहमंत्री जब इस तरीके का बिल लेके आए और विपक्ष चाहता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, तो तमाम इश्यूज के ऊपर जो है विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि पहले जिन इश्यूज को वो चर्चा चाहते हैं, जिन मुद्दों पे वो चर्चा चाहते हैं उन पर चर्चा हो जाए। नीट का मामला है, इथेनॉल का मामला है, उसके साथ साथ राम मंदिर का मामला है, विपक्ष की ये कोशिश रहेगी। लेकिन हाँ, कल गृहमंत्री अमित शाह जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद जो है राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें तय किया जाएगा कि इस बिल को कब पासिंग एंड कंसीडरेशन के लिए रखा जाएगा सदन के अंदर। इंट्रोड्यूस करना एक है, पासिंग एंड कंसीडरेशन में क्योंकि चर्चा होती है और चर्चा के लिए कितना समय किस दिन दिया जाएगा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक दिख गई है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसका कई विरोधी दलों ने, सांसदों ने सांकेतिक रूप से बायकॉट किया और सरकार को बता दिया कि आगे लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली है। बवाल 20 बागी टीएमसी के सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर शुरू हुआ था। सवाल उठाया गया कि जब स्पीकर ने मान्यता ही नहीं दी है तो बागी सांसदों को बुलाया क्यों गया। हालांकि बाद में विपक्षी सांसद सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए।
4: सर्वदलीय बैठक की एक तस्वीर ये है। रिजिजू, राजनाथ, नड्डा और अन्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। तभी एक और तस्वीर आई। मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
5: I've all walked out of the all party meeting in protest because the so called NCPI which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate bloc. So on what grounds did the parliamentary affairs minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest.
4: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले ही सुदीप बंदोपाध्याय को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर एनसीपीआई नेता पहुंच भी गए। इसी बात पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
6: जिस तरह संविधान को अवहेला करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
4: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक टीएमसी के बाकी सांसदों की एनसीपीआई को मान्यता नहीं दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के सांसदों के साथ न बैठने की मांग को मानकर उन्हें अलग जगह बैठने की मंजूरी दी है। रिजिजू का यही न्योता अब विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बाकी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
7: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
4: वैसे विपक्ष की नाराजगी सिर्फ बाकी सांसदों को लेकर ही नहीं, कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सदन में शोर शराबा तय है। उनमें सबसे अहम मुद्दा है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ। साथ ही नीट पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पेट्रोल विवाद, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है।
8: वो 20 MPs के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।
4: सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर सरकार भी अपने तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फार्मूला और वो विवादित संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे।
1: हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे।
4: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो टीएमसी ने एनसीपीआई नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर सवाल उठाए तो एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए।
9: तो स्पीकर रिकॉग्नाइज किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चिट्ठी दिया, तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए। हम लोग तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिलने के बाद हम लोग आए, अच्छा से नाम लिखा था,
0: तो
9: वो जवाब मैं कैसे दूंगा।
0: सर आप लोगों ने आज क्या क्या मुद्दे उठाए?
9: वी आर दी फर्म बिलीवर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल डीजल क्यों इतना बाहर चले जाते हैं? रुपी का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितना दूर तक फल करेंगे? ये देश का इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिमांड करते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, बट अल्टीमेटली इफ इट इज द सिचुएशन दीज इम्पोर्टेंट मैटर्स आर टू बी टेकन। आई हैव सेड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे आर टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस एंड इफ नेसेसरी गवर्नमेंट शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड हाउस शुड रन प्रॉपरली।
0: और उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आज शाम 5 बजे इस बैठक को बुलाया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से इस लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को बुलाया गया है और समय है शाम 5 बजे। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और मांग ये की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों पर एक्शन लिया जाए। संयुक्त रूप से लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाले लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने ही की थी और ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा है कि इस मसले पर चुप्पी स्वीकार्य नहीं होगी। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और सबके सामने इस जांच रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना चाहिए। तो आज सुबह ही ये चिट्ठी लिखी गई है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक से पहले इस चिट्ठी का आना और उसके बाद कल से संसद सत्र का शुरू हुआ, यानी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है।
6: ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया, लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई। शुरुआत तभी हो गई थी जब शिला पूजन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये लूट की है। मैं आरोप को दोहराता हूँ, सीधे सीधे जब उन्हीं को ट्रस्ट बनाना था, उन्हीं को मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट बनाना था, तो अगर लूट हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है। ये छोटे छोटे प्यादे, इनको जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है। अब बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी अगर किसी का नाम है दोहरा दूं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का नाम बीजेपी अब होना चाहिए।
0: और एक और बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से, मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को मंजूरी दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: और अगली खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। एक दिन पहले संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर कब्जे की वारदातों को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जे की कोशिश करेगा तो उसे कब्र से भी निकाल लेंगे।
11: और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसके जिनको हम 100 साल के बाद भी उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य रखेंगे? नहीं कर पाएगा कोई। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया

0: यादव पर भी कल बड़ा तंज कसा था।
1: यात्रा के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके।
0: और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, जिसकी जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया है कि नौकरी लगने के कुछ ही दिनों के बाद उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में बताया कि टिन्नू यादव की भूमिका क्या रही इस पूरे के पूरे मामले में। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की पूरी जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी, उसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की बात भी कबूली गई है। अब पुलिस आरोपियों के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ करके निवेश से जुड़ी हुई जानकारियों का पता लगा रही है। और इसी बीच सूत्रों से खबर यह भी है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार कर लिया है कि उसी ने मनीष को नौकरी पर रखा था और उसे चोरी की पूरी जानकारी रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका जांच के घेरे में है। और इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी से एक्सेस का इस्तेमाल किया और वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन करवाने की बात भी कबूल ली है। तो तमाम खुलासे परत दर परत होते चले जा रहे हैं, जो चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से साठ गांठ में टिन्नू यादव पूरी तरह से शामिल था। उसे पता था कि किस तरह से चोरी हो रही है और उस पैसे से महंगे उपहार और साथ ही जमीनें प्रॉपर्टीज खरीदी गई। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: K-pop takes center stage, bold sounds, global energy and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: Sokudo.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
6: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
7: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी
3: ऑल स्पोर्ट्स ऑल द टाइम राइट हियर ऑन ट्यून इन. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: Talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
0: Savari. So.
7: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
9: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
10: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
11: YouTube पर अब देखिए आज तक वर्टिकल.
12: अरे भाई फिर घुमा रहे हैं.
11: छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब आज तक वर्टिकल.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके से भी सवाल। मॉनसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर, नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी है प्रधानमंत्री को चिट्ठी, जांच रिपोर्ट, मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में आ रहा है यूसीसी कानून ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही, पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर बहे, 10 लोगों की मौत, राजौरी में बही गाड़ियां, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी। लॉर्ड्स में आज करो या मरो का मुकाबला, सीरीज पर कब्जे के लिए भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीम, चोटिल वॉशिंगटन, सुंदर की जगह ऑलराउंडर हर्ष दुबे की एंट्री, अंतिम 11 में केएल राहुल की हो सकती है वापसी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। पहाड़ों पर एक बार फिर से आफत वाली बारिश की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार है जम्मू कश्मीर में, जहां बाढ़ जैसे हालात के बीच 11 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसे में संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो बुरे हालात हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, अलग अलग जगहों पर जबरदस्त बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। घर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं, 11 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बारिश और फ्लैश फ्लड से बचने के लिए जरूरी है कि इस तरह के इलाकों में न जाएं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के हाल की, क्योंकि देर रात बादल फटने के बाद भारी तबाही यहां मची। राजौरी में नदी नाले उफान पर आ गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश और हो रही है, उसके बीच संकट और ज्यादा बढ़ गया है। चार तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। खासतौर से निचले इलाकों में पूरी तरह से जो घर है जलमग्न है, दुकानें डूबी हुई हैं, गाड़ियां पूरी तरह से समाई हुई हैं पानी और कीचड़ में, और इसी तरह के हालात निचले इलाकों में भी बने हुए हैं। इसीलिए प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाएं। राजौरी में उफनता हुआ सैलाब आप देख सकते हैं, चारों तरफ गाड़ियां और साथ ही साथ घर और दुकानें पूरी तरह से कीचड़ और मलबे में दबी हुई।
1: ये देख सकते हैं आप गाड़ियों,
0: अभी तक 11 लोगों की जान जाने की खबर है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद बुरे हालात यहां नजर आए।
2: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। हालात ऐसे है कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
3: पहले आप पीछे देखें तस्वीरें, ये जो गाड़ियां आप देखें, यहां 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर आकर अटक गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी, ये बस अड्डा तबाह हुआ है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहाँ पर अटके हैं। भारी नुकसान यहाँ पर इन तमाम गाड़ियों को हुआ है। वो नीचे बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ बस स्टैंड का, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये छड़ है, पैसेंजर छड़ जिसे बोलते हैं वो है। लेकिन उसकी हालत देखें किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है और लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा ये नदी आप देखें, बिल्कुल मैं आपको घुमा के कैमरा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये नदी, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
2: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
4: पानी डाला है, अभी खतरा कोई नहीं डाला, ये सैलाब जोरों पर इस वक्त, इसका 4 बजे जो था ये अपनी जोश पर था 4 बजे। उसके बाद हम देखते रहे, हम अपनी छतों पर देखते रहे कि भैया खूब बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि ये हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
2: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
3: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मंजर जो है आज रात का है राजौरी जिला का। ये सतलुज नदी है जहाँ उफान पर थी और किस तरह से गाड़ियां यहाँ बह गई, मकानों को नुकसान पहुंचा, लोग बेघर हो गए, तबाही का मंजर को मिला और भारी तबाही है। ये बीती रात का मंजर है और ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं। ये जो सड़क है, ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो राजौरी शहर को आधे शहर को जहाँ जोड़ रही थी, हाईवे से कनेक्ट कर रही थी, ये सड़क जो है वो टूट गई है। और सड़क के टूटने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है रास्ता, यानी अब आने जाने का कोई रास्ता जो लोगों के लिए नहीं बचा है।
2: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ गए अखनूर से। सुनील, इस पूरे मामले में अभी क्या जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि कई लोगों के लापता होने की खबर है, कई जगहों से संपर्क टूट गया है और कई जगहों पर अभी भी जबरदस्त बारिश हो रही है।
5: जी बिल्कुल शशि, ये जो बारिश हुई है कल रात से ही, इसके कारण जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी क्षति हुई है। जो रिहायशी इलाके हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मकान ढह गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी आ गया है। अगर हम यहाँ अखनूर की बात करें तो अखनूर में जो चिनाब नदी है इसका जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ, देखिए अखनूर में जो चिनाब नदी है इसका जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जल प्रवाह भी काफ़ी तीव्र है, इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो नदियों से दूर रहे। लेकिन जो सबसे अधिक तबाही हुई है वो राजौरी और पुंछ जिलों में हुई है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी आ गया है, मकान ढह गए हैं और जो आधिकारिक सूत्र है उनका कहना है कि अब तक 9 शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो है प्रयास जारी है, कई लोग लापता भी हैं और इस बचाव और राहत कार्य में इस समय तमाम एजेंसियां जुट चुकी हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो। राजौरी में कई क्षेत्रों में जो है अगर हम देखें तो भारतीय सेना हो और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने, एसडीआरएफ एनडीआरएफ हो, उन्होंने कई लोगों को जो है सुरक्षित बचा लिया है जो कि बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। लेकिन स्थिति काफी भयावह है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो अभी आने वाले दिनों में और भी वर्षा होने जा रही है। राजौरी जिले में जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, वहां पर जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बह चुकी हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन अपनी टीम्स जो है प्रभावित क्षेत्रों में भेज रहा है, प्राथमिकता यही है कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, उन दोनों ने जो है स्थिति की समीक्षा की है और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रभावित लोगों तक सहायता जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। लेकिन कई इलाकों में जो है भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिराए हैं, कई सड़कों पर जो है यातायात बंद हो गया है, इसके कारण दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन प्रशासन लगातार तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि जिन सड़कों पर मलबा गिराया है, जिन सड़कों पर पत्थर गिराए हैं उसको जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए ताकि यातायात बहाल हो। लेकिन लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लोगों के घर ढह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, उनके
0: परिजन। हमारे साथ रियासी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर लबालब भरे हुए डैम की तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो डैम के गेट्स को खोलना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए जरा, आसमान से किस तरीके से आफत बरस रही है, अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये रियासी का डैम हम आपको दिखा रहे हैं, ये डैम भरा हुआ है और अब कहा जा रहा है किसी तरह से अगर पानी यहां आता रहा तो बहुत ही जल्द कुछ गेट्स को खोलना पड़ेगा। बादल फटने से भारी तबाही हुई है अलग अलग इलाकों में, फ्लैश फ्लड और लगातार हो रही बारिश के बाद बुरे हालात हैं निचले इलाकों में, खासतौर से चाहे वो दुकान है, मकान है, गाड़ियां हैं, पूरी तरह से कीचड़ और पानी में धंसी हुई नजर आ रही हैं। अभी तक 11 लोगों की कुल जान जा चुकी है इस आसमानी आफत से। रियासी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन भी मुस्तैद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। अमित शाह ने राजौरी के हालात का जायजा लिया, केंद्र सरकार की ओर से हर मदद का भरोसा दिया। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार रेस्क्यू टीम मौजूद है लोगों के बीच में। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, निचले इलाकों से खासतौर से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बहती हुई गाड़ियां, दुकानें, घर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह के हालात यहां पर देखने को मिले हैं। राजौरी की ये तस्वीरें हैं। हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की तरफ से दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक मौत हुई है राजौरी में। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में तबाही की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां, घर, दुकानें, सब कुछ बह गया है फ्लैश फ्लड में। बादल फटने के बाद ये तबाही यहां देखी गई है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुंछ, किश्तवाड़ और गुरेज, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में हालात तो और ज्यादा खराब हैं, इसीलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। और खास तौर से ज्यादा जान माल का नुकसान जहां फ्लैश फ्लड और बादल फटते हैं वहां देखने को मिलता है।
6: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
7: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है। तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस लाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया और हमारी आटा चक्कीज हैं, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई हैं और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन ले के बिजनेस खड़ा करते हैं और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
6: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट लगातार बने हुए। सुनील जी भट्ट, अभी किस तरह की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अभी भी कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है?
5: जी शशि, मैं आपको बता दूं कि अगर मौसम विभाग की माने तो अभी अगले एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वर्षा होने जा रही है। इसीलिए अगर हम देखें तो प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है, माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है और साथ ही में शिवखोड़ी यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। और तमाम श्रद्धालुओं को, यात्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर वो इस समय है वो वहीं रहें, उन स्थानों पर ना जाएं जहां पर यात्रा शुरू होगी क्योंकि यात्रा मार्ग बंद है और यात्रियों को कठिनाई होने जा रही है। इसलिए यात्रियों को अवगत किया जा रहा है कि वो जिस स्थान पर इस समय है वहीं रहे और वहां पर वो सुरक्षित है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की नदियों की तो नदियां इस समय उफान पर है, इसीलिए प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों को सख्त हिदायत दे रहा है कि वो नदियों से दूर रहे। अभी की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं शशि, ये चिनाब नदी है जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है, इस समय उफान पर है। अखनूर में स्थिति देखिए भयावह हो सकती है अगर जलस्तर और अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन आप देखिए इस समय जलस्तर कितना बढ़ चुका है, तीव्र जल प्रवाह है और प्रशासन जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर SDRF की टीम्स आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स आई थी और लोगों से अपील कर रही थी कि वो यहां नदी के तट से दूर रहे क्योंकि स्थिति भयावह हो सकती है, इसीलिए एहतियातन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदियों से दूर रहे। यही स्थिति जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की भी है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की तो उनका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है क्योंकि बीती रात से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है, इसके कारण जो जलस्तर है नदियों का वो काफी बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं राजौरी हो पुंछ हो वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है, जानों माल का नुकसान हुआ है, लोगों के घर ढह गए हैं और कई लोग अभी भी लापता है, मलबे में फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार अपनी टीम जो है प्रभावित इलाकों में भेज रहा है और जो क्षति हुई है उसका आकलन भी हो रहा है और जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता भी पहुंचाई जा रही है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है और उनको हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, NDRF, SDRF, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है, खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर दी गई है, प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग
0: लगातार लोगों के रेस्क्यू के तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है और अलग अलग जगहों पर आफत चारों तरफ से, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जरा गुरेज से तस्वीरें देखने को मिली हैं, कई जगहों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। देखिए जरा पूरा का पूरा पहाड़ किस तरीके से भर भरा कर गिरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, गुरेज की तस्वीरें हैं। तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड है, रास्ते बंद हैं, रौद्र रूप नदियों का, नालों का और तमाम लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है और इस जल संकट की वजह से, इस जल तबाही की वजह से 11 जाने अभी तक जा चुकी हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनको तलाशने में तमाम टीम SDRF, NDRF, सेना, लोकल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। गृहमंत्री की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात करके आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर सांगला घाटी में आई बाढ़ की चपेट में आने की वजह से ITBP का कैंप बह गया था, बाढ़ के चलते यहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा बाढ़ में किस तरीके से पूरी तरह से ITBP का जो कैंप था उससे संपर्क कट गया था, ये पूरा का पूरा कैंप यहां से बह गया था। सांगला घाटी की तस्वीरें हैं और बाढ़ की चपेट में यहां पर ये कैंप आ गया है जिसके चलते कई घरों को भी यहां नुकसान पहुंचा है। किस तरह से सामान तितर बितर पड़ा हुआ है देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचने का मौका इस तरह तबाही वाला पानी कभी नहीं देता। उत्तराखंड के बागेश्वर से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे गिरा। देखिए जरा भयावह तस्वीरें, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। जानकारी ये भी मिली थी कि कुछ गाड़ियां यहां बाल बाल बची हैं। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक पहाड़ का पूरा हिस्सा किस तरीके से नीचे गिरा है, हालांकि रास्तों को भी साफ करने का काम लगातार जारी है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम
9: And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
12: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
11: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
13: Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, साकेत एक बॉयकॉट कांग्रेस, परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। मानसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर, नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में आ रहा यूसीसी कानून, ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान में महातबाही, पुंछ में फ्लैश फ्लड से कई घर बहे, 10 लोगों की मौत, राजौरी में गाड़ियां बही, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुक गई है। और लॉर्ड्स में आज करो या मरो का मुकाबला, सीरीज पर कब्जे के लिए भिड़ेंगी भारत और इंग्लैंड की टीम, अंतिम 11 में खेल राहुल, कुलदीप की हो सकती है वापसी, चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह हर्ष दुबे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 100 शहर 100 खबर के। पुंछ में फ्लैश फ्लड का कहर, मौत का आंकड़ा पहुंचा 10। सूरनकोट में एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 9 लोगों की मौत, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ाया। राजौरी में फ्लैश फ्लड से तबाही, बस स्टैंड समेत कई इलाके जलमग्न, तेज बहाव में बहे वाहन, सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। राजौरी में बादल फटने के बाद से बाढ़ जैसे हालात और दरहली नदी के ने सुरक्षा दीवार तोड़ी, निचले इलाकों में पानी घुसा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का इम्पैक्ट, राजौरी में सबसे ज्यादा 103 mm बारिश दर्ज, रियासी में 106.5 mm तो पुंछ में 77 mm बारिश। भारी बारिश से राजौरी में बाढ़ जैसे हालत, बस स्टैंड में घुसा पानी, 300 से 400 वाहनों के बहने का भी दावा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के स्थगित, खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला, पहलगाम बालटाल रूट पर आज से दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारिश का कहर, कई जगहों पर यातायात बाधित, जखैनी चेनानी के बीच में मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग प्रभावित, NHAI का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। लगातार बारिश से राजौरी में बढ़ी चिंता, नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह, निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया है। किश्तवाड़ में फटा बादल, डचन के सुरनो इलाके में भारी तबाही हुई है, 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त, कृषि भूमि को नुकसान, जनहानि नहीं हुई। हिमाचल के मंडी में मौसम का मिजाज बदला, ड्रोन विजुअल्स में कोहरे का असर दिखा, अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। पुंछ में फ्लैश फ्लड का कहर दिखा, स्कूल में घुसे विशाल बोल्डर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और परिसर को बड़ा नुकसान। राजौरी में सैलाब के बीच फंसे 2 युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फैजान और ताहिर को बचाने में जुटी SDRF, पुलिस और सेना भी। गुरेज में बादल फटा, दीवार को बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ और दावर में भूस्खलन से मार्ग बंद, खोलने में जुटा है टीम। किश्तवाड़ में बारिश बनी आफत, मलबे संग आया फ्लैश फ्लड, घर दुकानें मस्जिद मदरसा खेतों को बड़ा नुकसान। चंबा में भी लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई, देखते देखते भर भरा कर गिरा पूरा पहाड़ का हिस्सा, लाहड़ू सिहुंता मार्ग फिलहाल बंद, बड़ा हादसा हालांकि टला। किन्नौर में बाढ़ का कहर, ITPP कैंप के पास में पानी घुस गया, मंदिर गैराज कैंप परिसर को भी नुकसान पहुंचा, सड़कों पर मलबे का अंबार है। बागेश्वर में भर भरा कर दरका पहाड़, मंधुरा में विशाल लैंडस्लाइड, संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का वीडियो आया सामने। देहरादून में बारिश के कहर, भर भरा कर गिरी बड़ी दीवार, नूनरखेड़ा में मचा हड़कंप, लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में भारी भीड़, स्टेडियम हुआ ओझल, आंधी तूफान के साथ बरसा पानी। अमेरिका में एयर क्वालिटी अलर्ट, बारिश के बाद से न्यूजर्सी में हवा में सुधार। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर सियासी वार पलटवार, संजय झा ने पीएम मोदी की संकट प्रबंधन क्षमता को सराहा। सूत्रों के हवाले से खबर, संजय झा के बयान पर CPM सांसद जॉन ब्रिटास बोले कि संकट के पीछे तो PM के दोस्त जिम्मेदार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, ऑल पार्टी मीटिंग में उत्तर बिहार की बाढ़ का मुद्दा भी गूंजा, संजय झा ने नेपाल से आने वाले पानी पर जताई चिंता, हाई डैम को बताया समाधान। सूत्रों के हवाले से खबर कि बाढ़ पर बिहार के नेताओं की एकजुट मांग है, उत्तर बिहार के हालात पर अलग चर्चा की मांग, RJD के अभय कुशवाहा और LJP ने भी, अरुण भारती ने भी समर्थन दिया है। अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल की भू व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा की है और गृहमंत्री ने अधिकारियों को राज्य की सुरक्षा स्थिति पर मंथन भी किया। सर्वदलीय बैठक में मानसून की स्थिति की बात भी हुई है, TMC के बागियों को बुलाए जाने पर आज दूसरी तरफ विपक्ष भड़का दिखाई दिया, सरकार पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, शाम 5 बजे होगी बैठक, सदन के कामकाज पर चर्चा। राज्यसभा में सोमवार को पेश होगा वंदे मातरम बिल, गृहमंत्री अमित शाह सदन में रखेंगे विधेयक। DMK का परिसीमन पर बड़ा बैन, कानून से नहीं दक्षिण की हिस्सेदारी घटने से आपत्ति है, TKS एलंगोवन बोले कि सीटें बढ़ाने की योजना में दक्षिणी राज्यों के साथ तो न्याय होना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी का बंगाल पुलिस पर बड़ा हमला, वर्दी में चोरी का लगाया आरोप, TMC दफ्तर तोड़े जाने पर बोले कि पुलिस ने सामान उठाया, कानून का तो उल्लंघन हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में राहुल खड़गे का पीएम मोदी को पत्र, ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच की सीधी मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पूछताछ में मनीष यादव ने के खुलासे किए, चोरी की रकम से भंडारे, महंगे उपहार, जमीन में निवेश की बात आई सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस, आरोपी ने पेंशन खाता खोलने की गुहार लगाए और कोर्ट से निकासी पर रोक हटाने की भी मांग, 21 जुलाई को सुनवाई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ चयन प्रक्रिया 30 के अंतिम दिन लगभग 2300 आवेदन छंटने की प्रक्रिया शुरू। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की में सीईओ चयन का अगला चरण अब शुरू, चयन समिति इंटरव्यू के बाद ट्रस्ट को सौंपेंगे 3 नाम। केन बेतवा लिंक परियोजना विरोधी किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने हटाया, 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे किसान नेता, अमित भटनागर को भी अस्पताल में भेजा गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट की यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी, सीएम मोहन यादव बोले कि विधानसभा में मानसून सत्र में 20 जुलाई को पेश होगा ये बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रवाना, मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में लाल बाग बचाओ अभियान, तेजस्वी सूर्या ने बांटे पोस्टर और पर्चे, बीजेपी सांसद का आरोप, कर्नाटक सरकार लाल बाग की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करना चाहती है। कर्नाटक में स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर फिलहाल लगेगी रोक, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बर्गर, पिज्जा और सरकार ने यह कदम उठाया। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कट्टरपंथियों का किसी धर्म से धर्म स्थान नहीं है, ममता बनर्जी अब नकली हो चुके हैं, तेजस्वी यादव पार्टी को तो गिरवी रख चुके। नरोत्तम मिश्रा का नया वीडियो हुआ वायरल, घर घर चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम का माला पहनने से इनकार, कहा कि माला वाला पीछे आ रहा है। मधेपुरा में आरएसएस कार्यक्रम का छात्रों ने किया विरोध, कई छात्र नेता हिरासत में लिए गए। गुजरात एटीएस में पकड़े गए 5 आतंकवादियों का भरूच से कनेक्शन निकला, दारुल उलूम मदरसे के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को भेजा जेल, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लोकसभा स्पीकर ने दी मान्यता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले कि हमारे 6 सांसद हमसे छीन लिए गए, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले कि उज्जैन से अयोध्या तक घोटाले हुए। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले कि उद्धव को भगवान राम की याद आ गई और राम रक्षा पाठ को इन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम ये ना बनाए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले कि उद्धव ने अपने पिता की विचारधारा छोड़ दी सत्ता के लिए तो वो राम विरोधियों के साथ जा मिले। सोनम वांगचू का संदेश, 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान किया, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत के लिए आंदोलन को सफल बनाए। सोनम वांगचू की सेहत पर सफदरजंग अस्पताल का अपडेट, डॉक्टर्स के मुताबिक सभी वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं, लगातार निगरानी जारी है। सोनम वांगचू की पत्नी गीतांजलि पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, रिहाई और मेडिकल रिपोर्ट की मांग, निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की गुहार। लखनऊ में सीएम योगी का संबोधन, बोले कि मानव वन्यजीव संघर्ष को भी आपदा की श्रेणी में लाया गया, बोले कि पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने उठाया कदम। केरल में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का खुमार, कल स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद, सीएम वीडी सतीशन ने छुट्टी का दिया निर्देश, सुबह के मैच के बाद छात्रों को राहत। आज होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप में कायो साका की हैट्रिक की बदौलत इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरे और अंतिम वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान में ओपन 750 बैडमिंटन खिताब जीता, अकाने यामागुची को सीधे गेम में उन्होंने हराया और जापान ओपन चैंपियनशिप जीती। पीवी सिंधु का शानदार कमबैक, 3 साल के बाद जीता बड़ा खिताब, फाइनल में यामागुची को 21-17 से उन्होंने हराया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, श्रीकांत को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड, कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का नेशनल अवार्ड, फिल्म चंदू चैंपियन के लिए शानदार अध्ययन के लिए सम्मान मिला। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए नेशनल अवार्ड मिला, एक्ट्रेस बोले कि 14 साल की मेहनत, संघर्ष और सिनेमा के प्रति प्यार का ही सम्मान। मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार ममूटी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुना गया, फिल्म ब्रह्मयुगम में किया बेहतरीन अभिनय। आर्टिकल 370 को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बने कल की 2898 एडी। संजय मिश्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, फिल्म भक्षक के लिए उनको यह सम्मान दिया गया। विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला। स्त्री 2 के सॉन्ग आज की रात के लिए उन्हें सम्मान। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में गीतकार मनोज मुंतशिर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फिल्म मैदान के गाने जाने दो के बोल के लिए उन्हें सम्मानित। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए शाश्वत सचदेव को अवार्ड मिला है। आर्टिकल 370 की म्यूजिक के लिए यह अवार्ड। लकी भास्कर फिल्म के लिए वेंकी एटलूरी को मिला बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वें दिन फिर से किए हमले। ईरान के दक्षिण शहर सिरिक के आसपास हवाई क्षेत्र में बड़ा हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और जॉर्डन में ड्रोन और बड़े हमले भी किए। कुवैत के कैंप अरिफजान और अली अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमलों के बीच में कुवैत एयरपोर्ट पर संचालन रोक दिया गया है। हमले में तेल व्यापार को नुकसान पहुंचा। ईरान के नए वीडियो में दावा किया गया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन और अजरा के बेस को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि हमला उसके पुलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में किया गया। ईरान ने उत्तरी इराक के कुर्द में विपक्षी गुटों के ठिकानों पर हमला किया। ईरान में इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को मिले नाम भूलने वाले सबक। ईरान युद्ध में अमेरिका के 16 सैनिकों की मौत हुई। जॉर्डन में 2 और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा। ईरान का कुवैत के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला, कई लोग इसमें घायल, बड़ा नुकसान भी पहुंचा। ईरान के नए हमलों में यूएई का कड़ा एतराज। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के समर्थन में उतरा। अहमदाबाद में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। वडोदरा में मोबाइल शोरूम में चोरों ने 15 मिनट में कर दी चोरी। लगभग 50 लाख रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ किया साफ। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम बकाया वसूली करने के लिए पहुंची तो टीम पर हमला हुआ, जमकर मारपीट भी। शिवपुरी में 2 दिन से लापता 2 चचेरी बहनों के शव 70 फीट गहरे कुएं में बरामद, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में मात्र 900 रुपए के आरोप के लिए हत्यारा दोस्त गिरफ्तार। मुंगेर में चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा अवैध मकान, दुकान और ढाबों को किया गया ध्वस्त। वाशिम में बिजली विभाग कार्यालय के सामने ही लेट हुए ग्रामीण, रखी अपनी मांग। एमपी के शिवपुर में पानी की टंकी पर चढ़े युवा का हाई वोल्टेज ड्रामा, कहा कि पत्नी छोड़कर चले गई है। पटना के कोचिंग में छात्र के साथ मारपीट मामले में कोचिंग के शिक्षक और संचालक के खिलाफ FIR। नौगछिया में दहशत फैलाने की साजिश नाकाम, देशी कट्टा और 31 कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने स्पा सेंटर पर की छापेमारी। 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों और 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया गया। फतेहपुर में कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ गैर समुदाय के युवक ने किया रेप और अश्लील वीडियो भी बनाया। बेतिया में पुल से महिला ने नदी में लगा दे चालन, ग्रामीणों की बहादुरी के चलते बची जान। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 लोगों की मौत। धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंच गए जवान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर आया सामने, एक बार फिर से दिखा इसमें सनी देओल का रौद्र रूप। प्रियंका चोपड़ा के 44वें जन्मदिन पर राजा मौली का बड़ा सरप्राइज। फिल्म वाराणसी में फायर मंदाकिनी का धांसु लुक आया सामने। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने धूमधाम के साथ मनाया अपना जन्मदिन। करीना ने खास पोस्ट के जरिए किया विश। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर हुआ रिलीज। 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर आएगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस अदा शर्मा सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चा में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
0: अब बड़ी खबर आपको देते हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह अब खत्म कर दिया गया है। आज तड़के बड़ी संख्या में पुलिस बल ने धरना स्थल को खाली करवा दिया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटेल ने इस गिरफ्तारी से हालांकि इनकार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं है, उन्होंने कहा कि किसी को भी न गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में लिया गया है। पन्ना जिले से आए हुए लोगों को बसों से फिर वापस भेजा गया, जबकि 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर की तबीयत को देखते हुए उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस अंडरब्रिज के नीचे आंदोलन चल रहा था वहां निर्माण कार्य चल रहा है, सुरक्षा कारणों के चलते वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित होगी, लाखों लोगों को इससे पेयजल पीने का पानी मिलेगा। लेकिन परियोजना के लिए छतरपुर और पन्ना के कई गांवों का विस्थापन भी तय है। प्रोटेस्ट चल रहा था और उसको हटा दिया गया है।
2: यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
3: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं लड़कियां जो दिव्या हरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
4: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पेंसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर है जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहां का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पेंसेशन दिया जाए।
0: छतरपुर के कुपी बरान नदी के तट पर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर उनका यह प्रदर्शन चल रहा था। महिलाएं गले तक में पानी में खड़ी हुई थी, जबकि कई प्रदर्शनकारी वहां चिता सत्याग्रह करते हुए दिखाए दिए।
4: कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो शहरी इलाकों में रहता है उसके लिए इस पानी में नेविगेट करना, आगे बढ़ पाना ही बहुत मुश्किल का काम है। मैं देख रहा हूं बीते 1 घंटे से अम्मा इसी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, चिता सत्याग्रह यहां चल रहा है और समर्थन में वो खुद भी पूरा शरीर उनका डूबा हुआ है। सिर्फ
5: इस पे मिट्टी लगा रखी है आपने?
6: हाँ।
5: क्यों
6: क्यों जब हमारी मिट्टी छीन ली है अपनी।

0: और कई सारे लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जो पात्र लोग हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।
1: देखिए युवा हैं यहाँ जो कह रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाएं, फेयर कॉम्पनसेशन मिल जाए, लेकिन माता जी कह रही हैं कि जंगल भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, गांव भी चाहिए। ये अनोखा सत्याग्रह है जो इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रहा है और भारत के पहले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद है, भूमि अधिग्रहण का विवाद है, उसको लेकर हो रहा है। और कई तस्वीरें हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल झकझोर देने वाली तस्वीरें। काफी देर से ये चिता पे लेटे हुए हैं, मिट्टी लगाकर, कुछ लोग फांसी लगाकर खड़े हैं।
2: दरअसल किसान प्रशासन के किसान सीमा विवाद के खेल में ये किसान फंस गए हैं। छतरपुर के जिला कलेक्टर से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि वो हमारे जिले के हैं ही नहीं, उन्हें तो पन्ना जिले में जाकर अपना मुआवजा मांगना चाहिए।
3: जिसे पिछले कुछ 10 से 15 दिनों से ग्राम कुपी तहसील बिजावर में लगभग 150 के करीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों से हमारे तहसील के अधिकारियों के द्वारा जब उनका सर्वे कराया गया तो लगभग 176 लोग निकल के आए। सभी लोग पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं। उनकी कुछ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड उनकी शिकायतें हैं, कॉम्पनसेशन पर्याप्त नहीं मिला या कुछ लोग छूट गए हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से यही अपील है और कि आप अपनी कॉम्पनसेशन की जो भी कंप्लेंट्स हैं आप उसको उचित फोरम पे रखें, क्योंकि वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आई अपील एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट देम कि आप अगर पन्ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर अपनी मांगे रखेंगे तो वो बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमने भी यहाँ से जो भी उनकी कंप्लेंट्स निकली हैं हमने पन्ना एडमिनिस्ट्रेशन को उनको भेजी हैं और उनका समय सीमा में हम निराकरण भी करवाएंगे।
2: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
9: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आगे आगे
4: अरे उधर उधर
3: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: To right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: And that's the ballgame.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
6: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से
7: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
6: Vimal. Bolo zuba kesri.
9: Aaj tak lagatar har yuva ki latki naukri ki ladai ladta hai. Pariksha dekar bhi joining ke liye bhatak rahe hain. 8 saal se inki naukri latki hui. Hazaron chhatra result revise karne se pareshan hain. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया
10: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत.
1: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ, डीएमके के भी सवाल। मानसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर, नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखा पत्र पीएम मोदी को, जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी कानून लाया जाएगा, ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, कल विधानसभा सत्र में पहले दिन सदन में पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान से तबाही आई, पुंछ में फ्लैश फ्लड में कई घर बहे, 10 लोगों की मौत, राजौरी में बही गाड़ियां, नदी नाले उफान पर, अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रुकी।

0: और अब खबर संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक की करते हैं। इस बैठक में विपक्ष ने सरकार के सामने नाराजगी खुलकर कोई एक नहीं कई मुद्दों पर जाहिर की है। सूत्रों के हवाले से खबर है और बड़ी खबर है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की तारीफ की है। जेडीयू का स्वाभाविक है भी, उन्होंने पीएम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में इस समय जो स्थिति बनी है वो पीएम मोदी के द्वारा पैदा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट किया है वो असाधारण है, तारीफ की उन्होंने। संजय झा ने बयान दिया और बयान देने के बाद फिर सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जो हालात बने हैं वो पीएम मोदी के दोस्त के कारण बने हैं। संजय झा ने उत्तरी बिहार में बाढ़ का जिक्र भी किया। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने नेपाल से पानी छोड़ने के कारण उत्तरी बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। संजय झा के इस बयान का समर्थन आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा और एलजेपी सांसद अरुण भारती ने भी किया। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, वंदे मातरम बिल सोमवार को राज्यसभा में आएगा और इस बिल को खुद गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल ये जो है आएगा और कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। और आपको ये जानकारी दे दें कि इस बिल को खुद गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। और पहले राज्यसभा में बताया जा रहा है कि यह बिल लाया जाएगा। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक भी दिख गई है, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों के द्वारा सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया गया और सरकार को बता दिया गया कि आगे की लड़ाई और तेज होने वाली है। बवाल 20 बागी टीएमसी सांसदों की मीटिंग में बुलाने पर मचा। सवाल उठा कि जब स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है तो बागी सांसदों को क्यों बुलाया गया। हालांकि बाद में विपक्षी सांसद सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए।
1: सर्वदलीय बैठक की एक तस्वीर ये है। रिजिजू, राजनाथ, नड्डा और अन्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। तभी एक और तस्वीर आई। मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: Have all walked out of the all party meeting in protest because the so called NCPI which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate bloc. So on what grounds did the parliamentary affairs minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest.
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले ही सुदीप बंदोपाध्याय को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर एनसीपीआई नेता पहुंच भी गए। इसी बात पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक टीएमसी के बाकी सांसदों की एनसीपीआई को मान्यता नहीं दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के सांसदों के साथ न बैठने की मांग को मानकर उन्हें अलग जगह बैठने की मंजूरी दी है। रिजिजू का यही न्योता अब विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो, और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: वैसे विपक्ष की नाराजगी सिर्फ बाकी सांसदों को लेकर ही नहीं, कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सदन में शोर शराबा तय है। उनमें सबसे अहम मुद्दा है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ, साथ ही नीट पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पेट्रोल विवाद, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है।
5: वो 20 MPs के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।
1: सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर सरकार भी अपने तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फार्मूला और वो विवादित संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे।
6: हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से शांतिपूर्वक चर्चा की अपील की है। कहा कि हंगामा होने से संसद में पहले काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन एक बात साफ है कि हंगामे के चलते किसी को राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है।
6: पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं।
0: टीएमसी ने एनसीपीआई नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं, तो एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने उन सवालों का जवाब भी दिया।
7: तो स्पीकर रिकॉग्नाइज किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चिट्ठी दिया, तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए। हम लोग तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिलने के बाद हम लोग आए, अच्छा से नाम लिखा था, तो वो जवाब मैं कैसे दूंगा।
8: सर आप लोगों ने आज क्या क्या मुद्दे उठाए?
7: वी आर दी फर्म बिलीवर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल डीजल क्यों इतना बाहर चले जाते हैं? रुपी का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितना दूर तक फल करेंगे? ये देश का इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिमांड करते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, बट अल्टीमेटली इफ इट इज द सिचुएशन दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स आर टू बी टेकन। आई हैव सेड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे आर टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस एंड इफ नेसेसरी गवर्नमेंट शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड हाउस शुड रन प्रॉपरली।
0: तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज शाम को 5 बजे बुलाई है। तो एक बड़ी खबर आपको दे दें, बीएससी की बैठक आज शाम को 5 बजे बुलाई गई है और इस जो कमेटी है इसका मुख्य कार्य यही होता है कि समय सारणी की टाइम टेबल, कामकाज का प्रबंधन करना, किस सत्र में कितने दिन चलेगा, कितनी देर बहस होगी, ये सब तमाम चीजें बीएससी ही तय करती है। तो आज शाम को 5 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है और तो चर्चा होगी। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले एक चिट्ठी जो कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। मांग भी की गई है कि मामले की तुरंत जांच कराई जाए, दोषियों पर एक्शन भी हो। संयुक्त रूप से लिखी गई चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई करके दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने ही की थी, सरकार ने, और ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस बीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा, राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मसले पर चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो उनका ट्रस्ट का तमाम पैसा है वो भी सार्वजनिक होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस।
9: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया, लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार, मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई। शुरुआत तभी हो गई थी जब शिला पूजन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये लूट की है। मैं आरोप को दोहराता हूँ, सीधे सीधे जब उन्हीं को ट्रस्ट बनाना था, उन्हीं को मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट बनाना था, तो अगर लूट हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है। ये छोटे छोटे प्यादे, इनको जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है अब बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी अगर किसी का नाम है दोहरा दूं, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का नाम बीजेपी अब होना चाहिए।
0: एक बड़ी खबर भी समय मध्य प्रदेश से आपको देते हैं। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को मंजूरी दे दी है।
10: कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों पर एक बार फिर से आफत वाली बारिश की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बर्बादी की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार जम्मू कश्मीर में मचा हुआ जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों में ही तेज बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में यह संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं, जहां पर देर रात बादल फटा और उससे तबाही मची है। राजौरी में नदी नाले इस समय उफान पर हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश के बीच में जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। ये चार तस्वीरें भी आपके सामने, जहां नदी उफान पर आपको दिखाई देगी, घरों को नुकसान पहुंचा है और गाड़ियां तो आपको दिखाई देगा कि उनको कितना नुकसान पहुंचा है। सड़कें तक टूटकर नदी के साथ बह गई हैं।

0: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
1: पहले आप पीछे देखें तस्वीरें, ये जो गाड़ियां आप देखें, यहां 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहां पर आकर अटक गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी, ये बस अड्डा तबाह हुआ है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहां पर अटके हैं। भारी नुकसान यहां पर इन तमाम गाड़ियों को हुआ है। वो नीचे बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूं बस स्टैंड का, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये छड है, पैसेंजर छड जिसे बोलते हैं वो है, लेकिन उसकी हालत देखें किस तरह से यहां पर बनी हुई है और लोग जो है वो यहां पर आ रहे हैं। तो ये पूरा ये नदी आप देखें, बिल्कुल मैं आपको घुमा के कैमरा दिखाना चाहता हूं। ये देखें ये नदी, यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहां पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
0: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
2: पानी डाला है, अभी खतरा कोई नहीं डाला, ये सैलाब जोरों पर इस वक्त इसका 4 बजे जो था ये अपनी जोश पर था 4 बजे। उसके बाद हम देखते रहे, हम अपनी छतों पर देखते रहे कि भैया
1: खौफ कितना था,
2: खौफ बहुत ज्यादा था। तो हमने सोचा पता नहीं कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
0: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
1: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को, और इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मंजर जो है आज रात का है राजौरी जिला का। ये सतलुज नदी है जहां उफान पर थी और किस तरह से गाड़ियां यहां बह गई, मकानों को नुकसान पहुंचा, लोग बेघर हो गए, तबाही का मंजर को मिला और भारी तबाही है। ये बीती रात का मंजर है और ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं। ये जो सड़क है, ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो राजौरी शहर को आधे शहर को जहां जोड़ रही थी, हाईवे से कनेक्ट कर रही थी, ये सड़क जो है वो टूट गई है और सड़क के टूटने के बाद यहां पर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है रास्ता, यानी अब आने जाने का कोई रास्ता जो है लोगों के लिए नहीं बचा है।
0: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के साथ मनोज सिन्हा के साथ बातचीत की है। गृहमंत्री शाह ने राजौरी के हालात का जो है जायजा भी लिया, उनसे बातचीत करके तमाम चीजों को समझा है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया है। तो एलजी मनोज सिन्हा से भी गृहमंत्री शाह ने बातचीत की है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। जम्मू कश्मीर में अब तक हुई बारिश में 11 लोगों की मौत हो गई है, पुंछ में 10 लोगों की जान गई है, जबकि एक मौत राजौरी में हुई है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। 3 तस्वीरें, जहां किश्तवाड़ में जो नदी है वो तो विकराल रूप धारण किए हुए डरा रहे, बिल्कुल वही हाल पुंछ में भी है और गुरेज में भी बिल्कुल वही दृश्य।
4: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंज के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंज के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंज जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
5: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है, तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और हमारी आटा चक्कीज है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई है, और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
4: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहां संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
7: Bharat ki apni electric sawari.
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
9: Sokudo,

0: इन एसोसिएशन विद हिंड, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन NCPI 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है, और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है, लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरियट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना, वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
6: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
7: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
2: In association with
3: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.

कांग्रेस पर इसिमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। मानसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, जांच रिपोर्ट को मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग की। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी अब आ रहा है यूसीसी कानून। ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में पेश होगा यह बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही, पुंछ से फ्लैश फ्लड के कई घर बहे, 10 लोगों की मौत। राजौरी में बही गाड़ियां, नदी नाले भी उफान पर। अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई।

0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। आप याद कीजिए, 28 फरवरी को जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो ये अमेरिका और इसराइल बनाम ईरान की जंग थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये जंग सीधे तौर पर मिडल ईस्ट बनाम ईरान होती जा रही है। भले ईरान अमेरिका के बेसिस को टारगेट कर रहा हो, लेकिन पूरी तरीके से मिडल ईस्ट के देशों में अशांति और अव्यवस्था फैल गई है। यहां तक कि जॉर्डन तक भी इसकी आग पहुंचने लग गई है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी कल मिली है, जहां पर ईरान के हमलों में अमेरिका के दो सैनिक मारे गए। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कभी भी ईरान पर अपने सैनिकों की मौजूदगी का ऐलान कर सकते हैं या फिर उनकी मूवमेंट का ऐलान कर सकते हैं। आज रणभूमि में बात होगी इन तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन आपको बताते हैं कि रणभूमि में आपके लिए आज क्या कुछ खास होने वाला है। रणभूमि स्पेशल में आज ईरान अमेरिका से लेकर रूस और यूक्रेन वॉर की बात भी हम करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आपके लिए सबसे पहली खबर क्या होगी। हम आपको बताएंगे कि ईरानी हमलों में जॉर्डन में मारे गए दो अमेरिकी सैनिकों ने ट्रंप को पूरी तरीके से बौखला दिया है और अब वो बड़े बदले की तैयारियां कर रहे हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों ईरान लगातार जॉर्डन पर भीषण हमले कर रहा है। 5 दिन में 4 बार जॉर्डन पर हमले किए गए हैं। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर हम आपको बताएंगे दूसरे मोर्चे यानी रूस और यूक्रेन की खबरों के बारे में, जहां पर एक बार फिर कल रात रूस ने कीव पर बड़े और घातक हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही मची है। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर हम आपको नॉर्वे की खबर दिखाएंगे, जहां पर खौफनाक तस्वीरें सामने आई है, जिसमें जंगल की आग अब रिहायशी इलाकों में फैलती नजर आ रही है। और हमारे साथ रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर भी रहेंगे, जिनका विश्लेषण हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रणभूमि स्पेशल की सबसे पहली खबर के बारे में। ईरान और अमेरिका में युद्ध के उन शोलों से हर दिन के साथ और भड़कती आग के बारे में। लगातार 8वें दिन भी अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर निशाना बनाया, अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने भी कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेसिस पर पलटवार किया। जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिससे अब माना जा रहा है कि ट्रंप और हमलावर रुख अपना सकते हैं। उधर मुस्तफा खामनेई ने भी अमेरिका को धमकी देकर चिंगारी को और सुलगा दिया है। माना जा रहा है कि दोनों तरफ से अब बड़ी जंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
1: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा कि लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है, जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हाजियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी है। दरअसल जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले से ट्रंप बौखला गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी लापता है। 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ईरान ने जॉर्डन के अलावा कुवैत के अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है और दावा है कि यूएस सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। ईरान से युद्ध में अमेरिका के अब तक 16 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सलाहकार मोहसिन रेजाई ने धमकी दी है कि अगर 1 या 2 दिन के भीतर अमेरिका युद्ध जारी रखता है तो वो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे।
2: मैं ऐलान करूं तमाम शुद هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن، ما ممکنه وارد همون مرحله تهاجمی بشیم، از حالت تدافعی خارج بشیم، از حالت بازدارندگی و مقابله به مصر خارج بشیم.
1: اس بیچ ایران کے سروچ دھارمک نیتا مجتبی خامنه‌ای نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سمجھوتے کا امریکہ بار بار الگھن کر رہا ہے. سچائی یہ ہے کہ امریکی راشٹرپتی کے ہستاکشر کی کوئی وشوسنیتا نہیں ہے. ایران اور امریکہ کے راشٹرپتیوں کے بیچ ہوئے سمجھوتے کا گریٹ شیطان امریکہ دوارا بار بار الگھن کرنے سے ایک بار پھر یہ سچ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکی راشٹرپتی کے ہستاکشر پوری طرح بیکار اور امانیہ ہے. دادا گیری ورچسو کی چاہت اور بربرتا امریکی سوچ اور ویوہار کا ابھن حصہ ہے. اب جب امریکی دشمن یدھ بھڑکانا چاہتا ہے اور بھی بھاری قیمت چکانے اور زیادہ بدنامی جھیلنے کی اور بڑھ رہا ہے، تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ایران کی پیاری جنتا اور ریزسٹنس فرنٹ کے پاس اس کے لیے ایسے سبق ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. یہ طے ہے کہ فی الحال یدھ رکنے والا نہیں ہے، اور آشنکا ہے کہ امریکی ایران کو روکنے کے لیے اب اس کے پرمانو ٹھکانوں اور ارجا سنیتروں کو بھی برباد کر سکتا ہے. ظاہر ہے ایسے میں ایران بھی اپنا پلٹوار اور بھیشن کرے گا. آج تک بیورو.
0: پچھلے 8 دنوں میں جنگ کے کاش صورتحال ہوا ہے، یہ تو آپ نے اس رپورٹ میں دیکھ لیا. لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کویت میں، جہاں پر امریکہ کے 2 اہم ٹھکانوں پر ایران نے ڈرون اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں. اس کی باقاعدہ اب تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے ایران اپنے ہتھیاروں کو لانچ کر رہا ہے، اور اس کو لے کر آئی آر جی سی نے ایک باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہم امریکہ کا جواب اسی طریقے سے دیں گے جیسے امریکہ ہم پر اٹیک کر رہا ہے، اور امریکہ کے کویت اور جارڈن میں موجود سینی ٹھکانوں پر یہ بڑے حملے کیے گئے، اور جس کا ویڈیو بھی آئی آر جی سی نے جاری کیا ہے.

0: और देखिए एक तरफ तो कुवैत के ऊपर जारी वीडियो को IRGC ने जारी किया, तो वहीं पेंटागन ने भी ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। पेंटागन ने अपने ऑपरेशन 8 वेव के तहत ईरान पर किए गए नए हमलों का एक वीडियो फुटेज जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिकी फाइटर जेट्स पर हमले की उड़ान भर रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ये दिखाई जा रही है कि पेंटागन भी ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि हम भी ईरान पर जो हमले कर रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइलों के वीडियो भी सार्वजनिक किए गए हैं। देखिए इस बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कुवैत पर या फिर आप कह सकते हैं कि जॉर्डन पर हुए ताजा हमले, जिसमें जॉर्डन के अर्ज़ाक एयरबेस पर ईरान के हमलों का मंजर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ईरान ने जॉर्डन के अर्ज़ाक एयरबेस पर मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही भी मची है। यह हमला ईरान ने अपने पुलों, अस्पताल और हवाई अड्डों पर बमबारी के जवाब में किया है। जॉर्डन इस समय सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है जिस पर ईरान सबसे बड़े अटैक इस समय कर रहा है और ये सारे अटैक अमेरिकी बेसिस पे किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन अब आपको सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर, जो आपको दिखाएंगी कि कैसे अमेरिका के कई बेसिस के ऊपर, खासतौर पर जो उनका मुकवा अल बस बेस है उस पर किस तरीके से अटैक हुआ, यानी मुकफक अल सॉल्टी एयरबेस पर क्या अटैक हुआ है, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कैसा था, यह हैंगर है, दरअसल ये वो हैंगर है जहां पर अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करता था। और पहले कैसा था और अब पिछले 4-5 दिन में जब अटैक किए गए हैं, अगर आप देखें इन हैंगर्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। इन हैंगर्स के पास अगर आप देखें, हैंगर्स के साथ साथ आपको छोटे व्हीकल्स भी नजर आ जाएंगे और दूसरे हैंगर्स को भी इससे नुकसान पहुंचा है। और ये इसलिए है क्योंकि वहां के जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको सीधे तौर पर अमेरिका के नुकसान पहुंचाना चाहता है ईरान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर इस समय जॉर्डन पर भी है। जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के जो बेसिस हैं उनको सीधे तौर पर अब ईरान अटैक कर रहा है। और ये एक तरीके की कवायद है क्योंकि अब जंग के दायरे को वो ना सिर्फ UAE, सऊदी अरब, बहरीन तक सीमित रखना चाहता, बल्कि जॉर्डन हो या फिर कुवैत हो, इन इलाकों पर भी बड़े अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि आखिरकार एकाएक जॉर्डन पर ईरान के अटैक एकदम से क्यों शुरू हो गए, ये भी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों जॉर्डन को पिन पॉइंटेड तरीके से या अलग अलग बार या पिछले 4 दिनों में अटैक किया जा रहा है। अगर आप देखें जॉर्डन पर बार बार ईरान के हमले और 5 दिन में 4 बार ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी हैं। देखिए आप जॉर्डन कितनी दूर है ईरान और सीधा यहां से जॉर्डन पर अटैक किया जा रहा है। ये इसलिए भी क्योंकि जॉर्डन पर अमेरिका के कई जो उनके आप कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके रडार सिस्टम्स हैं, वो वहां पर तैनात है। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब 40 दिन की जंग हुई थी तब अमेरिका ने कई जगहों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और दूसरे इलाकों में तैनात कर दिया था, रीलोकेट कर दिया था। शायद अमेरिका को अंदेशा पहले से था कि ईरान आने वाले वक्त में इस तरीके के अटैक करेगा और इसी वजह से अब इन 5 जगहों पर बड़ी तादाद में अटैक किया जा रहा है। जॉर्डन में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मौजूद है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल लगातार अमेरिका कर रहा है ईरान पर अटैक करने के। जॉर्डन में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात किए गए हैं जिनको रीलोकेट भी अमेरिका ने किया था। अब इसके अलावा क्या बात है, अगर आप देखें हमने आपको तमाम बड़ी चीजें बताई कि अगर बहरीन कुवैत के बाद सबसे बड़ा बेस अगर कहीं है तो वो जॉर्डन में है। अमेरिकी सैन्य अड्डों में जो अल सॉल्टी एयर बेस है सबसे अहम है और इसी बेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इस समय ईरान का पहुंचा हुआ है। ईरान का फोकस इस समय इस बेस पर ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का। इसराइल की सुरक्षा के लिए भी अमेरिकी सैन्य हथियार यहां पर मौजूद है क्योंकि इसराइल से जॉर्डन की करीबी बहुत ज्यादा है। और आपको यह भी बता दूं कि लगातार इसका इस्तेमाल इससे पहले हमेशा हूती की तरफ से आ रहे अटैक या हिजबुल्ला की तरफ से आ रहे अटैक या ईरान की तरफ से आ रहे अटैक के लिए किया जाता था क्योंकि यहां पर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरीके का संरक्षण इसराइल को देता था। अब किंग फैजल एयरबेस पर भी ईरान का पहला हमला देखने को मिला है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले कभी भी जॉर्डन पर इस तरीके के अटैक ईरान नहीं करता था। अब पूर्वी बेस पर हमले में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा है। फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनके ड्रोन, उनके हैंगर, सब जगहों को टारगेट इस समय ईरान कर रहा है और ये पूरा फोकस रख रहा है कि आने वाले वक्त में इसराइल पर अगर अटैक करना पड़े तो उस इलाके के आसपास अमेरिका के कोई एयरबेस पर या फिर कोई एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर ईरान की मिसाइलों को चैलेंज करने के लिए वो नहा बचे। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने खास तौर पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ईरान का दावा है कि IRGC नेवी ने अमेरिकी सेना के MQ-9 ड्रोन को ध्वस्त कर दिया, जिसके मलबे के इकट्ठा करने की तस्वीरें भी IRGC ने सार्वजनिक की है। दरअसल ये बात लगातार ईरान कहता आया है कि उसने अब तक कई 30 के करीब जो MQ-9 ड्रोन हैं वो अमेरिका के मार गिराए हैं, और IRGC इस बात का वीडियो भी लगातार सार्वजनिक करता है, और ऐसी तस्वीरें एक बार फिर से ईरान की तरफ से जारी की गई है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजय सोई सर। संजय सोई सर, हमने ये तो बता दिया कि देखिए जंग का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन आखिरकार जॉर्डन पर इतना अटैक क्यों? क्योंकि जॉर्डन पर इससे पहले हमने इस तरीके के अटैक कभी नहीं देखे। 5 दिन में 4 बार अटैक किए गए और चारों बार ज्यादा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है।
1: बिल्कुल सुमित, जो आपने एक बात कही थी उसी बात को मैं कहूंगा, मैंने भी वही चीज नोट की थी कि जॉर्डन पे खास प्रेम क्यों है जॉर्डन के साथ। देखिए जॉर्डन बिल्कुल जो आप कह रहे थे मिसाइल के रास्ते में पड़ता है, जो ईरान से सीधा मिसाइल इसराइल के लिए जाती है वो सारी मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से उड़ते हुए जाती है, उनके ड्रोन हो, मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो। पिछली बार भी जब अटैक हुए थे तो जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी की मिसाइल रस्ते में गिराई थी, तो ईरान यहाँ पर पहले इनको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, साथ साथ जब कभी इसराइल पर हमला करना पड़े तो उनको एयर डिफेंस सिस्टम काफी नुकसान हो चुके, जैसा हम देख रहे हैं कि पैट्रियट सिस्टम, उनके जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, MQ-9 ड्रोन हैं, जमीन पे काफी नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी बात यह है कि एक काफी नजदीक पड़ता है, अमेरिका को रिएक्शन टाइम कम मिलता है। तीसरी बात यह है कि वहां पे जैसे कि कुवैत और बहरीन के बाद तीसरी बहुत बड़ी बेस है जहां से काफी नुकसान को फायदा हो जाता है ईरान को हमले करने का, तो डेफिनेटली ये एक टारगेट है और ईरान को सफलताएं भी मिल रही है क्योंकि ये एक मिक्स कर रहे हैं, सरप्राइज मेंटेन कर रहे हैं, कुछ डिकॉय जाते हैं, कुछ ड्रोन जाते हैं, बीच में मिसाइल चली जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सारा मिक्स भेजते हैं ताकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ड्रोन में उलट जाता है, वहां पर अटक जाता है, उसके बाद मिसाइल जाती है टारगेट के ऊपर जाती है। और सुमित ये भी खबर आ रही है कि कुछ मिलिशियाज भी इनको मदद कर रहे हैं, जो आसपास जो ईरान समर्थित ग्रुप्स हैं वो वहां से भी कुछ फायर कर दे रहे हैं रॉकेट वगैरह।
0: इसी वजह से कुर्दिस्तान के अंदर हमने देखा था ईरान ने बड़ी मिसाइलें दागी। आपका दोबारा से रुख करूंगा सर, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं क्योंकि आपने कुर्दिस्तान का जिक्र भी किया कि देखिए कुर्द लगातार वहां से अटैक कर रहे थे, इसलिए कोशिश की गई ईरान की तरफ से कि वहां पर भी मिसाइल दागी जाए, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान से जुड़ी, जहां पर जिसमें हूतियों ने निर्देश दिया है कि अगर अमेरिकी उनके परमाणु संयंत्रों पर अटैक करते हैं तो हूती भी बाब अल मंदेब को बंद कर सकते हैं। हूती ईरान का बड़ा समर्थित ग्रुप है, प्रॉक्सी है, जो यमन से ऑपरेट करता है। आपको बता चुके हैं कि वो लगातार इजराइल और अमेरिका के समर्थन देशों को पर भी जहाजों पर हमला कर चुका है, और कहा यह जा रहा है कि हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु संयंत्रों पर या फिर उस पर अटैक जारी रखे तो फिर वो रेड सी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब एक और बड़ी चुनौती दुनिया के सामने खड़ी होने वाली है, वो है रेड सी। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाब अल मंदेब इतना अहम क्यों है, क्यों पूरी दुनिया के लिए ये इतना खास है, और आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले आप बताइए क्या खास बातें हैं। दरअसल बाब अल मंदेब की बात कर दुनिया के 10-12% तेल और प्राकृतिक गैस इसी से शिफ्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आखिरकार है कहां, यह है रेड सी का इलाका, यह है बाब अल मंदेब, और अगर आप ऊपर जाते हैं वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यानी अगर आप देखें ये दो रूट हैं जहां से लगातार मिडिल ईस्ट के देशों में या फिर आगे की तरफ यूरोप की तरफ साजो सामान या चीजें, तेल और गैस, नेचुरल गैस आगे बढ़ती थी। ये भी एक तरीके का स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही छोटा सा गलियारा है जहां पर हूतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अब हूती की तरफ से कहा गया है कि बाब अल मंदेब को वो बंद कर देंगे, यानी पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब है, और अब उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब यहां पर रुक जाएगा, और अगर ऐसा होता तो फिर शिप्स को घूम कर जाना पड़ेगा नीचे की तरफ से यूरोप, जिसमें टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है, भारत, चीन और एशिया देशों का यूरोप से व्यापार मुक्त व्यापार का जो सपना है या फिर उस पर दखल पड़ेगा, और यूरोप से व्यापार का मुख्य मार्ग यही है। सभी इसी वजह से लगातार कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका दबाव तमाम देशों पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी से पेट्रोलियम और गैस के परिवहन में भी अहम भूमिका यह निभाता है। आपको बता चुका कि फारस की खाड़ी में भी तब भी इसकी जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ एक तरीके का पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दोनों तरफ से काम करता है, और अगर दोनों प्रभावित हुए तो दुनिया पर करीबन दुनिया के तेल निर्यात पर लगातार काम करने के तरीका 35% से ज्यादा का इस पर असर पड़ेगा। बाब अल मंदेब और हॉर्मूज के रास्ते विश्व की करीब 25% तेल और गैस सप्लाई या 30% जो है वो इससे प्रभावित होगी, और फिर उसके बाद इनको घूम कर जाना पड़ेगा, रास्ता लंबा लेना पड़ेगा, इससे पैसा भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इससे चैलेंज हो जाएंगी। अब लाल सागर और अदन की खाड़ी में जोड़ने का एक जरिया है, और यही बात है कि इस ब्रिज को या फिर इस छोटे से स्ट्रेट को, गलियारे को बंद करने का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे पहले ही दुनिया बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से जूझ चुकी है, लगातार परेशान है, और ऐसे में अगर लाल सागर बंद हो जाएगा तो फिर इसका प्रभाव और ज्यादा दुनिया पर पड़ेगा। ये हमने आपको तमाम बड़ी बातें बताई और ये भी बताने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से ये चीजें बदलती जा रही है। और हमारे साथ संजय सोई सर भी हैं। संजय सोई सर, ये बात तो हम तय मान रहे थे कि देखिए हूती हमेशा से ईरान के साथ में ही खड़े हैं, लेकिन अगर अमेरिका नहीं रुका, अगर अमेरिका इसी तरीके से काम करता रहा तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का चैलेंज, दूसरी तरफ रेड सी का चैलेंज, और ये दोनों चैलेंज सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं होंगे, सीधे तौर पर भारत जैसे देशों के लिए या दूसरे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़े हो जाएंगे।
1: तो मैं जो आप कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये बंद हो जाता है, बाबल मंदेब भी वो बंद करने में सफल हो जाते हैं तो पूरा केप ऑफ गुड होप से घूम के आना पड़ेगा, या यहाँ से शिप निकलेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ जाएगी, वहां से 10 से 12 दिन ज्यादा शिप टाइम लगेंगे तो उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, जिसका असर ये पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा, तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। और पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित है, उसके बाद में बाब अल मंदेब भी बंद होने से 25% अगर तेल पे असर पड़ता है तो दुनिया में अभी देखिए $73 से $83 से ज्यादा कीमत आ चुकी है, ये वापस दोबारा लग रहा है मुझे अगर इस तरह चला तो $110 पे दोबारा चली जाएगी। और इसका असर सुमित खाली चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर ही नहीं पड़ेगा, इसके अलावा जो गल्फ के देश है जो जिनकी इकॉनमी तेल पर चल रही है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा।
0: सर एक बात बताइए, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हम आपसे मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि ये अमेरिका के लिए करना नामुमकिन है जब तक उसकी ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं करती, लेकिन उसके लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी तो कहां जाएंगी, किसको बेस बनाएगी, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर उसके आप कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो कहां से मूव करेंगे, क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि अमेरिका सच में अपनी ग्राउंड फोर्सेज की मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो खार्क द्वीप हो या दूसरे द्वीप हो, बंदर अब्बास का इलाका, क्या उसके पास ऐसी स्पेशलाइजेशन है, ऐसी क्षमता है कि वो ऐसा कर सकता है?
1: तो मैं जो आपने एक दो बातें बोली ना बीच में, बिल्कुल उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ, रिपीट करूंगा, नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये नैरो पैसेजेस हैं, यहाँ पर अगर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर या ग्राउंड लैंडिंग ट्रूप जाते हैं

0: तो एक टारगेट बन जाते हैं ईरान की मिसाइल ड्रोन्स और उनके रॉकेट्स के, आर्टिलरी के, एंटी शिप मिसाइल्स के। दूसरी बात यह है कि अगर वो जमीन पर ऑपरेशन करे तो कहाँ करेंगे। एक टारगेट दिखता है बार बार जिसका नाम आता है खर्ग आइलैंड, जिसका भी आपने जिक्र किया था, जो एक काफी वल्नरेबल होता है, लेकिन वहां पर भी ईरान ने काफी हद तक तैयार है कि माइंस लगा दिए,
1: जी
0: रुस बढ़ा दिए वहां पे, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल काफी

0: काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया, अगर वहां पर भी करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और साथ में अगर उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए जो टारगेट्स हैं वहां के लिए, तो बहुत ही मुश्किल है कि वहां पे वो ग्राउंड ट्रूप्स करें। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस समय में ग्राउंड ट्रूप्स के मूड में है। वो पूरा हवाई रॉकेट और मिसाइल के द्वारा ही वो इस समय में
1: बल्कि
0: नुकसान
1: आप कह
0: पहुंचाने
1: सकते हैं कि सर
0: की।
1: एयर डोमिनेंस को दोबारा से स्टेब्लिश करना। आप सर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको रूस और यूक्रेन की खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बिहार से भी आ रही है। बिहार के सीतामढ़ी में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बागमती नदी में एक बड़ा नाव हादसा होते होते टल गया। नाव में ज्यादातर लोग सवार हो गए थे और ज्यादा लोगों की संख्या के बाद ये नाव पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी नाव सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तस्वीर आप देखिए, आप समझिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने नाव में सवार इन तमाम लोगों को वहां से सुरक्षित बचा लिया। फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
5: आज तक

0: 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: इस मांग को आगे बढ़ाया और उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: कनाडा से लेकर यूरोप के कई देश इन दिनों जंगल की भीषण आग का खामियाजा भुगत रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल स्पेन जर्मनी का है और कनाडा भी जंगल की आग में झुलस रहा है। कनाडा की जंगल की आग से निकल रहा धुआं अमेरिका को परेशान कर रहा है। स्पेन के उत्तरी पूर्वी इलाके के एरेगेन में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहाँ आग ने अब तक 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। यहाँ करीब 500 दमकल कर्मी और विमान आग बुझाने की कोशिशों में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी और सूखे मौसम की वजह से जंगल की आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्पेन की तरह जर्मनी भी जंगल की आग में जल रहा है। यहाँ के म्यूरिज नेशनल पार्क में जंगल की आग फैल चुकी है और यहाँ सेना को आग पर काबू पाने के लिए उतारा गया है। सबसे पहले सोमवार को उस इलाके में आग लगी थी जो कभी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र हुआ करता था। इस इलाके में अब भी बड़ी संख्या में पुराने बिना फटे गोला बारूद मौजूद हैं और आग की गर्मी की वजह से इनमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिससे दमकल कर्मियों के लिए कई हिस्सों में पहुँचना बेहद खतरनाक हो गया है। जबकि कनाडा के 6 राज्यों में करीब 800 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। अब तक करीब 24 लाख हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। हजारों लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। ओंटारियो, मैनिटोबा और सस्केचुआन इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। कनाडा में जंगलों में लगी आग का खामियाजा पड़ोसी देश अमेरिका भी भुगत रहा है। धुएं की वजह से शुक्रवार को अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में वायु गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की गई। धुएं की मोटी परत ने व्हाइट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे बड़ी चिंता रविवार को न्यू जर्सी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर है, जहां अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले इस महामुकाबले को देखने के लिए 82,000 से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल देखने पहुंच सकते हैं। ऐसे में कनाडा के जंगल का धुआं फीफा के महामुकाबले पर संकट की तरह मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अप।
1: ब्रेक के बाद रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर ईरान की आईआरजीसी ने फिर से हमला किया है। आईआरजीसी ने इसका एक वीडियो भी सार्वजनिक किया है। आईआरजीसी नेवी ने घोषणा किया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य तक बंद रहेगा जब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की हरकतें खत्म नहीं हो जाती या फिर ईरान पर अटैक बंद नहीं हो जाते। इसका तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे एक ड्रोन की मदद से आईआरजीसी ने इस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। और देखिए अमेरिका और ईरान के बीच तो ये जंग चल रही है, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट के देशों में सीधे तौर पर जंग का एक और बड़ा खतरा बन गया है। जिस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें ईरान ने सऊदी अरब और ओमान से कहा है कि वो यूएई पर बड़े पैमाने पर निशाना बनाने की योजना बना रहा है। ये खबर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आई है, जिसके मुताबिक ईरान ने यूएई पर हमले का प्लान बना लिया है और मुमकिन है कि अगले 24 से 48 घंटे में यूएई पर भी बड़ी मिसाइलें दागी जाए। आपको बता दें कि यूएई इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई टेलीविजन चैनल्स पर यूएई के साथ जंग को लेकर कई टेलीकास्ट किए गए थे। सीधे तौर पर माना गया था कि कई अमेरिकी हमलों के साथ साथ यूएई के बने अपने ड्रोन भी अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका भी ईरान को तबाह कर रहा। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ईरान के किन किन शहरों पर अमेरिका ने बमबारी की है और आखिरकार अभी ईरान की अमेरिका की स्ट्रेटजीज क्या क्या है। अगर आप मुख्य रूप से देखें, यह है पूरा का पूरा वो इलाके जहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इससे पहले जब 40 दिन की जंग हुई थी तब यहां पर, यानी अगर आप कहें इश्वान के ऊपर, तेहरान पर और इश्वान जैसे इलाकों पर अटैक सबसे ज्यादा किए गए थे, लेकिन अब जो दोबारा से नई स्ट्रेटजीज के साथ अमेरिका ने अटैक किया है वो है वो ये कोस्टल एरियाज हैं, यानी वो समुद्री इलाके जहां पर सबसे ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। करीबन 2500 किलोमीटर की ये सीमा है जहां पर अगर आप देखें अहवाज का इलाका जहां पर अभी भी अटैक किए जा रहे हैं, खरगदीप ये इलाका, बुशेर का इलाका जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तौर पर मशहूर है, यहां पर रशियंस की मौजूदगी थी साइंटिस्ट की, इसको डेवलप किया गया था रशिया के द्वारा, और शिराज का इलाका, बंदर अब्बास का इलाका जो यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है और यहां से ही आईआरजीसी इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा सिस्तान का इलाका, सिस्तान के साथ साथ चाबार का इलाका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहां पर मेंशन करेंगे कि चाबार के इलाके पर भी अमेरिका ने पहली बार अटैक करने शुरू किया है। इसके अलावा यात का इलाका, इश्वाहान इसलिए क्योंकि तेहरान के बाद सबसे ज्यादा मौजूदगी अगर आईआरजीसी की कहीं रहती है तो इश्वाहान के शहर पर रहती है और यहीं पर इनकी जो ग्राउंड फोर्सेस है उनके डिफेंस सिस्टम्स की सबसे ज्यादा तैनाती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ऊपर के इलाके यानी जो नॉर्दर्न इलाके हैं वहां पर अगर आप देख करम शाह का इलाका हो, इलम का इलाका और हामेदान का इलाका हो, हामेदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेहरान के ऊपर अगर आप जाएं वो कोस्टल एरियाज हैं जहां पर तीन बड़े पोर्ट यहां पर ईरान के पड़ते हैं और इसी वजह से इस जगह को भी टारगेट किया अब ईरान ने, अमेरिका ने करना शुरू कर दिया। यानी अगर आप तमाम देशों को देखें तो अभी ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है अमेरिका की कि वो सिर्फ कोस्टल एरियाज को सिक्योर करना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना सिर्फ आवाजाही शुरू सुनिश्चित की जा सके बल्कि जो ओमान की खाड़ी पर यहां पर अमेरिका के शिप मौजूद है उनके लिए एक सेफ पैसेज हो, वो और करीब आए और फिर यहां पर अपना डोमिनेंस जमा सके, या फिर जो माइन स्वैपिंग का काम है यानी माइन हटाने का काम है वो अमेरिकी फोर्सेज यहां पर कर सके। शायद इसी वजह से लगातार इस इलाके में अटैक किया जा रहा है। अगर आप दोबारा से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी ये इलाका फारस की खाड़ी का इलाका हो, आपके से ओमान की खाड़ी का इलाका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं इलाकों से लगातार आईआरजीसी मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रही थी और आईआरजीसी के इन्हीं इलाकों में अच्छी पकड़ होने की वजह से वो ऑयल टैंकर्स की रूट के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रही थी। ये वो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। दरअसल ईरान ये मानता है कि जो नॉर्थ रूट है, यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दो रूट बन गए हैं, पहला रूट है नॉर्थ का रूट जो ईरान मानता है कि वही रूट सही है और ईरान के मुताबिक है, दूसरा रूट है ये ओमान के साथ लगता हुआ साउथ रूट। साउथ रूट अमेरिका टैंकर्स को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है लेकिन ईरान इसी वजह से जो जो टैंकर इस साउथ रूट से निकल रहे हैं वहां पर अटैक कर रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप मानिए कि अब एक नई स्ट्रेटजी हो गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी अब दो भागों में बट गया है, पहला भाग ईरान के डोमिनेंस का है, दूसरा भाग वो है जो लगातार 8 किलोमीटर का करीब वो अमेरिका चाहता है कि वो एक पूरी तरीके से एक फ्री पैसेज बने और शायद इसी वजह से दोनों के बीच में जंग लगातार जारी है। और हमने आपको ये तमाम तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस वक्त एक जॉर्डन से भी एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें वहां एक नागरिक ने जॉर्डन के ऊपर से गुजरते ईरानी मिसाइलों को और दिखाते हुए इशारा किया कि कैसे जॉर्डन पर लगातार ईरान के अटैक किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वहां के नागरिक ऐसी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं जहां पर अमेरिकी बेसिस पर जॉर्डन में ईरान की तरफ से बड़े अटैक भी किए गए जिसमें दो अमेरिकी सोल्जर्स के मारे जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चेताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसकी कार्रवाई बड़ी की जाएगी। देखिए इस अटैक ने पूरी दुनिया में एक चर्चा स्थापित कर दी है कि आखिरकार अमेरिका इन हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा। अमेरिकी मीडिया और विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोई भी मजबूत ढांचा इस समय ईरानी मिसाइलों का सामना करने के लिए ठीक नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की जान नहीं बच सकती या फिर उनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। ये बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए अपने तरीकों को नए तरीकों को विकसित किया जिसके लिए वो ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है जो बहुत तेजी गति से उड़ान भरती और लक्ष्य से टकराते ठीक पहले अपनी दिशा बदल देती है। यानी जो उसकी मनूवर है, यानी अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो लगातार लास्ट मोमेंट पर अपने टारगेट के साथ ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसी वजह से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स उसको इंटरसेप्ट या रोक नहीं पा रहे हैं। संजय सोई सर, पूरे यूक्रेन ने इस जंग को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स के बूते पर आप कह सकते हैं लड़ता रहा, 5 साल से लगातार लड़ रहा है। लेकिन जब बात ईरान की मिसाइलों की आ रही है तो यही एयर डिफेंस सिस्टम्स, यही रडार सिस्टम्स लगातार विफल साबित होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया पर अमेरिका के इन सिस्टम्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है ईरान की इन मिसाइलों में जो लगातार अमेरिका के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया, खासतौर पर उनके अपने सोल्जर्स के लिए?
2: बिल्कुल सुमित, ऐसा है कि दो तीन कारण है। एक तो पहले तो देखिए लोकल लोगों में और लोकल जो गल्फ के देश हैं उनके अंदर अभी अमेरिका के लिए भरोसा खत्म होता जा रहा है कि आप हमें बचा नहीं पा रहे और आपके कारण हमारे ऊपर अटैक आ रहे हैं। वहां की जैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जनता कितनी खौफ में होगी, जॉर्डन, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, यहाँ पे आम आदमी के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर से मिसाइल जा रही है, रॉकेट जा रहे हैं, जंग हो रही है। तो ये तो एक तो वहां पे मोनार्की है यानी कि राजशाही, जिसकी वजह से वो उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि ईरान कई तरीके के इस्तेमाल कर रहा है, एक तो बहुत बड़ी संख्या में भेज रहा है, फिर डिकॉयज भेज रहा है, नकली जो डिस्ट्रक्शन के लिए भेजता है कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, सस्ते पहले बड़ी संख्या में ड्रोन जाते हैं जो रडार को अटका देते हैं, वहां पे रडार उनमें होम ऑन हो जाता है, फिर बीच में बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं जिनकी फ्लाइट पाथ सीधे ऊपर जाके सीधा नीचे बहुत तेजी से जाती है, रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, खासतौर से जो देश पास में जैसे कि जॉर्डन, बहरीन, जो देश बिल्कुल समुद्र की खाड़ी पार करते हैं तो समय बहुत कम मिलता है। तीसरी बात यह है कि जो क्रूज मिसाइल है वो जमीन से सटी हुई जाती है, तो अलग अलग टाइप की जब मिसाइल भेजती है तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान ने दिखा दिया अभी कि अभी भी उनके अंदर ताकत है, उनके पास अभी भी इतना असला है, अभी भी इतने भारी अटैक कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो दुनिया में प्रोपेगेंडा वाली लड़ाई है, यहां तक मैं देख रहा हूं कि ईरान काफी आगे, जमीन पे भले ही अमेरिका ज्यादा।
1: एक और बात, क्योंकि आप लगातार इस युद्ध को बहुत करीब से देख रहे हैं, अभी ईरान के जिन कोस्टल एरियाज में टारगेट हो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, बुशर का इलाका हो, बंदरअबास का इलाका हो, सिरक का इलाका हो, सारे वो इलाके हैं, चाहे वो चवार के पास भी अगर बात कर लीजिए जहां पर आईआरजीसी की मौजूदगी रहती। लेकिन अब जो अटैक नॉर्थ में हो रहे हैं खासतौर पे ऊपरी इलाकों में, वो क्या स्ट्रैटेजी दिखा रही है? क्या अब अमेरिका चाहता है कि हर तरफ बड़े अटैक किए जा सके ताकि ईरान के अंदर पैनिक फैल सके, या फिर कोई बड़े इनपुट है जो जिसके बेसिस पर अमेरिका ऐसे अटैक कर रहा है?
2: दो तीन बातें देखिए सुमित जी, एक तो तकरीबन पूरा कोस्टल एरिया ही कवर कर रहे हैं, खासतौर से आप देखिए देखा होगा पिछले दो तीन दिन में बंदर अब्बास पर और उसके आगे सिरिक और क्वेश्चन आइलैंड पे काफी हमले, क्योंकि वहां से घूम के जाते हैं शिप, एक तो ये इलाका हो गया। उसके नॉर्थ में बुशहर और उसके नीचे के इलाकों में काफी फायर किया, क्योंकि बुशहर में भी इनका कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट है। तीसरी बात ये कि खर्ग आइलैंड जो है बुशहर से 55 किलोमीटर तकरीबन दूर है, तो वहां से भी एक अगर उस इलाके को पूरा न्यूट्रलाइज करते तो अगर खर्ग आइलैंड में उनका कुछ प्लान है ऑपरेशनल प्लान है तो उसमें मदद मिलेगी। और चौथी बात ये कि ज्यादातर शिप वहीं फंसे, जब वो चलना शुरू करते हैं तो ऊपर से उनको पता चल जाता है और एंटी शिप मिसाइल्स और रॉकेट और ड्रोन के द्वारा वो हमला करते हैं, क्योंकि बुशहर के आगे नॉर्थ की तरफ ही फारस की खाड़ी में ज्यादातर शिप फंसे हुए। तो यही कई कारण है कि जो वहां पर वो लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है
1: बिल्कुल सर,
2: कि
1: देखिए आपको
2: अमेरिका
1: बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से, जहां पर अमेरिका ने ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संकट के अचानक बढ़ने की संभावना को दिखाते हुए एक ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति जटिल और अस्थिर है और अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में मौजूद अपने नागरिकों, खासतौर पर उन लोगों को जो मध्य पूर्व या फिर वहां जाने की योजना बना रहे हैं, अपील की है कि वो ज्यादा सतर्क रहें, जरूरी सावधानियां बरतें और सुरक्षा से जुड़ी ताजा सलाह का पालन करते रहें। यानी अब अमेरिका ने ना सिर्फ एक रीजन वाइज, यानी पहले पर्टिकुलर देशों के हिसाब से ये एडवाइजरी आती थी, लेकिन एक ग्लोबल एडवाइजरी अपने लोगों को जारी किया। आपको हमने ईरान और अमेरिका के बीच में तो लगातार बढ़ते हुए जंग के बारे में बताया, लेकिन अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के भी, जहां पर रूसी हमले में यूक्रेन की लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। ताजा हमले रूसी राजधानी मॉस्को में हुए, जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्र, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना भी बनाया, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि भी की है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखलाकर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब रुख करते हैं नॉर्वे का, जहां पे नॉर्वे के ड्रामेन शहर में पास मौजूद पहाड़ियों पर लगी भीषण आग ने 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह है कि इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की और लापता होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रशासन बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चला रहा है। फिर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Goodness gracious, great balls of fire.
7: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.

0: कई हफ्तों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरते हुए पूछ रहा है कि आखिर सरकार जनता पर एथेनॉल क्यों थोप रही है। महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री और शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, पेट्रोल में जबरन एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और उनके इंजन खराब हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर चल रही ज्यादातर पुरानी गाड़ियां इस ईंधन के अनुकूल नहीं है। इसलिए सरकार को जनता पर एथेनॉल थोपने की जगह पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दोनों का विकल्प देना चाहिए, जिससे लोग अपनी मर्जी से फैसला ले सके। एथेनॉल का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की ज्यादा खेती की जा रही है, जिससे देश में पानी की किल्लत के बीच जल संकट और गहरा सकता है। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि एथेनॉल की अधिकता वाली नीति से आम नागरिकों के बजाय बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंच रहा है। हालांकि सरकार और इस नीति के समर्थकों का तर्क है कि एथेनॉल के इस्तेमाल से महंगे कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा।
1: आज जो जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ
2: पहली तो बात ऐसी है कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता
1: जी,
2: मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की
1: जी,
2: अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, CNG, मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ।
1: पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों?
2: पहली बात मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ,
1: हाँ।
2: क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई
1: अभी तक तो नहीं?
2: आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे दो लोगों के नाम बता सकती हैं मुझे?
1: अपना पर्सनल जान पहचान के?
2: हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई?
1: नहीं, YouTube पे वीडियोस देखे हैं।
2: मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया, अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है।
0: सवाल है कि विपक्ष के विरोध और जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया के बाद क्या सरकार एथेनॉल पर यूटर्न लेगी या फिर सरकार जनता को अपना ईंधन चुनने का विकल्प देगी?

त्योहारों का मौसम आते ही हर घर में पकवानों की खुशबू और खुशियों का माहौल बनने लगता है। मध्यम वर्गीय परिवारों में उत्सव की तैयारियां बजट को देखकर तय होती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों की मिठास पर महंगाई का साया मंडराने लगा है। आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर से दबाव में आता दिखाई दे रहा है। दरअसल त्योहारी सीजन से ठीक पहले गेहूं और खाने के तेल की कीमतों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक बाजार से लेकर देश की मंडियों तक इसके असर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते एक महीने में घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें 8% से ज्यादा बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर गेहूं उत्पादन वाले कुछ इलाकों में सप्लाई को लेकर चिंता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में गेहूं वायदा करीब 5% तक उछलकर 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इन बदलावों का असर देश की मंडियों में भी दिखाई दे रहा है और इंदौर मंडी में पिछले एक महीने में गेहूं के दाम करीब 8.44% तक बढ़े हैं। वहीं दिल्ली, कानपुर और कोटा जैसी प्रमुख मंडियों में गेहूं की कीमतें औसतन 3.5% से 4% तक बढ़ी हैं। गेहूं की कीमतों में आई इस तेजी की वजह से केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल नहीं है, मौसम का बदलता मिजाज भी देश में गेहूं उत्पादन के लिए चुनौती बन रहा है। बढ़ते तापमान और बेमौसम बारिश को लेकर चिंताओं के बीच बाजार की नज़र आने वाले रबी सीजन के उत्पादन अनुमान पर टिकी हुई है। महंगाई का असर केवल रोटी तक सीमित नहीं है, पूरी रसोई का स्वाद तय करने वाला खाने का तेल भी दबाव में नजर आ रहा है। कंपनियों और कारोबारियों को आने वाले महीनों में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक इस साल सोयाबीन की बुआई का रकबा घटने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक बाजार में पाम ऑयल की सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई है और बायोफ्यूल की मांग बढ़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति तेल बाजार पर दबाव देखा जा रहा है। रुपये में कमजोरी की वजह से खाद्य तेल आयात करने वाली कंपनियों की लागत भी बढ़ी है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फिलहाल सूरजमुखी तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। सोयाबीन तेल में भी मजबूती का रुख देखा जा रहा है, जबकि पाम ऑयल में हाल के दिनों में खरीदारी बढ़ने के संकेत मिले हैं। यानी रसोई का बजट आने वाले दिनों में और दबाव में आ सकता है। साफ है कि वैश्विक बाजार की हलचल और मौसम से जुड़ी चिंताओं ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले आम ग्राहकों की नज़र गेहूं और खाने के तेल के भाव पर टिकी रहेगी। आज तक ब्यूरो।

0: पाकिस्तान के तक वॉकआउट, कांग्रेस पर परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। मानसून सत्र में गूंजेगा अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का शोर। नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। जांच रिपोर्ट और मंदिर ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक करने की मांग। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में आ रहा है यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी। कल विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन में होगा पेश बिल। जम्मू कश्मीर के आसमान से आई तबाही। पुंछ में फ्लैश फ्लड से कई घर बहे, 10 लोगों की मौत। राजौरी में बही गाड़ियां, नदी नाले उफान पर। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रुकी। और आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से है भिड़ंत। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। भारत का लोकतंत्र केवल संविधान के पन्नों पर नहीं लिखा गया, इसकी आत्मा सदियों पहले बिहार के वैशाली की धरती पर बोई गई थी। वहीं जहां संवाद को शक्ति माना गया, जहां मतभेद को व्यवस्था का हिस्सा समझा गया, जहां पर निर्णय तलवार से नहीं विचार से होते थे, आज भी संसद उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़े संवैधानिक अभिव्यक्ति भी संसद है, और इसी अभिव्यक्ति के लिए कल से संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन आज की सर्वदलीय बैठक ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच में बहस तीखी रहने वाली है, या यूं कहें कि संसद के मानसून सत्र का ट्रेलर आज ही दिख गया है। आज विपक्ष ने बागी सांसदों को बुलाए जाने पर विरोध दर्ज कराया, नाराजगी जाहिर की, सरकार ने सहयोग की अपील की, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। अब असली परीक्षा सदन के भीतर होने वाली है। कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर 140 करोड़ भारतीय इसी उम्मीद के साथ इंतजार में हैं कि जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहस शुरू होगी तो क्या उनके मुद्दे उठेंगे, क्या उनके सरोकार पर चर्चा होगी, भविष्य और विकास को क्या केंद्र में रखा जाएगा। सरकार अपने विधायी एजेंडे के साथ तैयार है, विपक्ष अपने राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों के साथ ताल ठोक रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सदन में बहस होगी, या फिर मुद्दों पर बहस से ज्यादा यहां टकराव हावी रहेगा। क्या सरकार विपक्ष के उन आशंकाओं को जवाब देगी जो लगातार उठ रहे हैं? क्या विपक्ष विरोध और रुकावट के बीच में संतुलन बनाए रखेगा? क्या संसद में बहस तथ्यों पर होगी या राजनीतिक आरोपों पर? आज इन्हीं सवालों के बीच में होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।
1: कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही आज साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सदन का मिजाज कैसा रहने वाला है। जिस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य संवाद का रास्ता तैयार करना था, वहीं से टकराव की पहली रेखा भी खींच गई। टीएमसी ने बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने पर सवाल उठाए।
2: Have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the parliamentary affairs minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest.
1: विपक्ष ने 15 मिनट का सांकेतिक वॉकआउट किया, फिर बैठक में लौट आया, यानी विरोध भी दर्ज हुआ और संवाद का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ। शायद यही संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है, जहां मतभेद हो सकते हैं लेकिन संवाद खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार तो यही चाहती है।
3: पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वह अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है, और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले मैं भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं।
1: दरअसल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र से पहले मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन विवाद की नींव इसी के साथ पड़ गई। काकोली घोष दस्तिकार उन 20 टीएमसी सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने का फैसला किया था। आज जब एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया तो वो गदगद नजर आए।
4: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: करीब 3 घंटे चली इस बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे की जानकारी दी। विपक्ष ने अपने मुद्दे सामने रखे। विपक्ष के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद किसी एक दल की नहीं पूरे देश की संस्था है।
3: 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है।
1: मोदी सरकार का एजेंडा साफ है। सरकार मानसून सत्र में 7 बिल लेकर आएगी जिनमें 2 पेंडिंग बिल हैं। FCRA विधेयक 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 और 5 नए बिल हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव, आयकर कानून में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव, MSME सेक्टर से जुड़े कानून में बदलाव और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन वाला बिल शामिल है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे।
3: 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरियट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है बिल्स है इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर BSE में इसका चर्चा करेंगे। हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे।
1: हालांकि विपक्ष ने भी कमर कस ली है। विपक्ष ने भी अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक मामला, महंगाई, विदेश नीति, E20 विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है।
5: जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। और वहीं हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, सरकार के तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए।
1: विपक्ष के तेवर सख्त हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे को देख रही है और सदन में BJP सरकार को घेरने का प्लान बना रही है।
6: हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि चाहे डिलिमिटेशन बिल हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, चाहे देश के अंदर 130वां जो संविधान संशोधन प्रस्तावित है, ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं जिसका हम लोग लगातार विरोध क्यों करेंगे।
1: आज की सर्वदलीय बैठक ने कल के मानसून सत्र की एक झलक जरूर दिखा दी है। सरकार संकेत दे चुकी है कि एजेंडा विकास और विधेयकों का होगा। विपक्ष साफ कर चुका है कि मुद्दा जवाबदेही और जवाब मांगने का होगा। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक संसद में सिर्फ कानूनों पर बहस नहीं होगी बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी लड़ाई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में संसद सिर्फ बहुमत की आवाज नहीं होती, वह असहमति को भी सम्मान देने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और यही कसौटी तय करेगी कि ये मानसून सत्र की याद कामकाज के लिए रहेगा या टकराव के लिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस रहेगी केंद्रित। सवाल नंबर 1, क्या मानसून सत्र में सरकार विपक्ष की मांग पर चर्चा को तैयार है? सवाल नंबर 2, क्या बागी सांसदों का मानसून में ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो पूरे के पूरे सेशन पर इंपैक्ट डालेगा, सत्र पर असर डालेगा? और सवाल नंबर 3, क्या इसी सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अब चर्चा की करते हैं शुरुआत। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हैं, हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी RLD मलुकनागर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना UPT के प्रवक्ता हैं और धीरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि LJPR के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी, सर्वदलीय बैठक हुई है, सरकार का मकसद यह था कि भाई विश्वास बनाया जाए, एक सहमति बनाया जाए, लेकिन आरोप आप पर सीधा यह लग रहा है कि आपका मकसद भी नहीं था उनको विश्वास में लेना। आपका मकसद यह था कि आप ऑपोजिशन को चिढ़ाए रखें और आपने इसी मकसद से उन बागी सांसदों को बुलाया जो कि मामला पेंडिंग अभी स्पीकर के पास है, उनको बुलाकर आपने ऑपोजिशन को एक्चुअली चिढ़ाने का काम किया आज।
7: देखिए, ये अपनी अपनी सोच है राजीव जी। अगर हमें चिढ़ाने का ही मन होता तो ये लोग जब पहले वॉकआउट करके आज चले गए थे 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने कैसे बुला लिया? संवाद अगर हम स्थापित नहीं करते तो क्या ये वापस आते? सवाल यहां पे ये है कि संसद सत्र के पहले एक स्वस्थ चर्चा हो, नियमों के तहत चर्चा हो, संसद के नियमावली के तहत चर्चा हो या 10 जनपद के हिसाब से चर्चा हो और उनके पीछे पीछे बाकी लोग लाइन लगा लें कि जैसे 10 जनपद चाहेगा वैसे चर्चा हो, वैसे चर्चा नहीं हो सकती है। पिछले मॉनसून सत्र की मैं याद दिला देता हूं, 2025 की, एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया है लोगों ने। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या आप जनता से न्याय कर रहे हैं? संसद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का। संसद की कही हुई हर बात रिकॉर्ड में रहती है जो आज से 20 साल बाद 50 साल बाद कभी भी निकाली जा सकती है। आपको जो जो मुद्दे हैं आप प्रश्नकाल में आइए, बिल्कुल नियमों के तहत आइए, चर्चा कीजिए। सरकार हर चर्चा का जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले ही से अगर आप नकारात्मक बन के जाइएगा कि सरकार को हमको घेरना आ रहा है, आप घेरिए ना। सरकार तो है ही जवाब देने के लिए, सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल मीडिया में नहीं पूछना चाहिए ना। सवाल जंतर मंतर पे अपने सूझ को खड़ा करके नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछिए संसद में, आंखों में आंख डाल के, बिल्कुल सीधे सीधी, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हम जवाब देंगे। अगर हम जवाब देके हम अपनी जिम्मेदारी से हटे, पूरे देश की जनता हमें देखेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको जवाब देंगे। लेकिन आप भागिए मत, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, अगर इस लहजे में चला तो चल रही संसद फिर से।
0: ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपके सवाल कितने तैयार है? सरकार तो कह रही है कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आज आपने वॉकआउट कर दिया। अब ये सांकेतिक वॉकआउट क्या होता है? या तो वॉकआउट करिए पूरा, या तो फिर आप बैठक में रहिए, सांकेतिक क्या होता है?
8: गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया उससे अब पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं। ये तो हम थे 15 मिनट में वापस, क्योंकि हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है, और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत, 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके चढ़करप ट्रस्ट बनाया था, और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की, और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की इन्होंने, जमीनों की भी चोरी की इन्होंने, चारे की भी चोरी की, 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया चरी, और जिसमें क्या नाम मंदिर में गौशाला तक नहीं है, वो चारा किसने चोरी कर लिया, इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। हम ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या नाम आपको विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है, क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं, क्यों आप आजम खान से अगर आपको चिढ़ है तो वो 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको, 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं, आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे। हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की, क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रहे हैं, क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने, मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं जिससे लोगों की गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही है, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है, क्यों आप जो है ये जो आप जौहर यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाए सीबीएसए के बच्चों का क्यों आप उस पर लगे हुए हैं और क्यों आप जो है वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं, क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं
9: हुआ? सुरेंद्र जी काफी लंबी सूची हो गई आपकी, मैं जल्दी से जिम्मेवारी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप इस बार संसद चले, आप विपक्ष के ही सहारे हैं कि इस बार हंगामा कर दें ताकि सोनम वांगचुक, नीट, राम मंदिर, चंदा चोरी, E20, रुपए की गिरती वैल्यू, मतलब एक लंबी सूची है इस बार आपके सामने जिन पर आपको जवाब देने पड़ेंगे नहीं तो?
10: बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न पहले से स्पीकर महोदय के सामने डाल दीजिए, नियमावली के तरह आइए, एक एक चीज लेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुरेंद्र भाई, चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया, रजिस्टर्ड सजायाफ्ता चारा चोर के साथ घूमते हैं आप, जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी, सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं, 10 जनपद कब से लोकतंत्र का जननी हो गया भाई, हाई कमांड लोकतंत्र की जननी हो गया, सोनम वांगचुक से अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारे कोई संबंध नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी जी कभी मिलने नहीं गए वहां पे जंतर मंतर में, बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया है, हमने नहीं उठाया, अब बोलिए कि हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन, ऐसे ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना है बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा, संसद में उसका भी जवाब मिलेगा, टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत, ये माई वे और हाईवे नहीं, इसलिए
9: ठीक है आप कह रहे हैं नियमों के तहत जवाब दिया जाए, ठीक है मैं लौटता हूं, एक एक गलती होगी, कई सारे मेहमान सबके पास एक करके चलते हैं, पांच सेकंड में ही, लेकिन सुरेंद्र जी पांच सेकंड
8: दे दीजिए मुझे सर,
9: दे दिए 5 सेकंड,
8: बिल्कुल जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं, और चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं, चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया और मंदिर में गौशाला नहीं है, तो चारा चोर तो भाजपा वाले हैं, चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, ये थेथरा करने से काम नहीं चलेगा, अपने चारा चोरों को बचाओ मत, इन लोगों ने जो पाप किया है, इन लोगों ने जो पाप किया है 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे, 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे,
9: 5 सेकंड लिया था आपने, 5 सेकंड से ज्यादा हो गया, ठीक है दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं, आशुतोष वर्मा, मतलब अभी एक लंबी सूची विपक्ष की है लेकिन आपकी मैं तैयारियों की बात करूं तो आपकी क्या तैयारियां हैं, आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को और ज्यादा चिढ़ाने के मकसद से ही यह सर्वदलीय बैठक में बागियों को बुलाया गया?
11: धन्यवाद राजीव जी आपने अपने वक्तव्य में बात बहुत साफ कर दी कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और पहली बार नहीं हम लोग देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चौतरफा घिरी हुई है और वो खुद चाहती है कि किसी प्रकार से संसद का मानसून सत्र ऐसे वैसे टाल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी मजबूत है और हम सरकार के एजेंडे से ज्यादा जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने की तैयारी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राम मंदिर चोरी पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह सिए हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस देश के 140 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की चोरी पे चू भी नहीं बोल पाए, उनको पता है कि एसआईटी के नाम पे एक चोर पुलिस का आपस में गेम खेल रहे हैं, खुद ही चोर बन के खुद ही पुलिस बन रहे हैं, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के नाम लिखे हुए पत्र के पीछे मजबूती से खड़ी हुई है, तो हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भागना चाहती है और उसी की वजह से इन्होंने ये काम किया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि डीमिलिटेशन की बात करें, और हम डिमिलिटेशन को डेमोक्रेसी का बुलडोजर हम तैयार कर देंगे, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होती ये डिलिमिटेशन का बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है।
9: ठीक है,
11: जहां तक बाकी चीजों की बात है, सोनम वांगचू की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में पीछे खड़े होके यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर तीर चला रहे थे। खुद दिवंगत नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने सदन में खड़े होके बोला कि हम उनके साथ में खड़े हैं, और उस समय प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, खुद अन्ना हजारे के समर्थन में पत्र लिख चुके थे। तो आज सोनम वांगचुक कैसे दुश्मन बन गए? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन सब सवालों से भागना चाहती है और खुद सदन नहीं चलने देना चाहती है। इसके लिए इधर उधर के बागी सांसदों को करके बुला के एक अलग तरीके बना रही है और हम उसका विरोध करेंगे।
9: ठीक है आशुतोष। मलुक नागर साहब की इस बार विपक्ष इतने सारे हैं ऑपोजिशन के कि वो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हंगामा ही हो, और हंगामा हो तो सारे के सारे विषय एक तरफ रह जाएंगे।
12: राजीव जी, संसदीय परंपरा और संसद में प्रश्नों के पूछने का और फीड करने का तरीका 14 दिन पहले, क्योंकि मैं सांसद रहा हूं, ऑनलाइन फीड किए जाते हैं, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां क्या बताएंगी कि क्या इनके कितने एमपीओ ने ऑनलाइन प्रश्न फीड करे हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि ये संसद चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरा, अभी हमारे साथी आशुतोष जी ने कहा, वर्मा जी ने, कि ये किसी भी तरह चाहते हैं कि संसद चले। अगर ये संसद चलाना चाहते हैं तो कल सुबह 11:02 पे पता लग जाएगा, क्योंकि जब प्रश्नकाल शुरू होता है 11 से 12 तक, तो देश के किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो 14 दिन पहले प्रश्न आए होते हैं उन पर चर्चा होती है। अगर ये खड़ा होकर हंगामा करेंगे तो इसका मतलब
9: मलुक नागर जी, ये मुझे ये चीज समझ

0: हमारी भी बात सुनना, लेकिन एक नया दल इस देश को मिल गया, एनसीपीआई, जिसका नाम तक इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को नहीं पता। खैर, हमें तो सबने मारा है, किस किस का नाम लूं हम, हमें सब किसी ने मारा। हमें चुनाव आयोग ने मारा, हमें गवर्नर साहब ने मारा, हमें सुप्रीम कोर्ट मार रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। 2022 का मामला था, 2026 आ गया। हो सकता है 100-200 साल बाद जरूर निर्णय आएगा, तब का तब देखेंगे। एक बात बताइए, मानसून सत्र हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है इस सत्र में, क्या विपक्ष को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? क्या सदन में विपक्ष को अपनी जगह बैठकर बात करने का अधिकार नहीं है? अरे अब विपक्ष बचा ही कितना है, नाम मात्र के लिए तो आपने विपक्ष छोड़ा है, कागज पर हम लोग हैं। अब हमारी सांसें तो आपके पास गिरवी हैं, हमारे आधे से ज्यादा नेता तो आपके दलों में हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो दूसरे दलों के लोग हो गए हैं, और बाकी संसद में भी जो बैठने वाले लोग हैं, टीएमसी टूट ही गई, हमारी पार्टी को तोड़ ही डाला, टीएमके को अपने बगल में बिठाई लिया है, और भी 3-5 करके सब कर ही लोगे। जो करना है करो, कोई बात नहीं, आज ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है, बल आपका है, लेकिन कम से कम अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चलिए महंगाई पे चर्चा हो जाए, चलिए राम भगवान के मंदिर के दान पात्र के चोरी वाले विषय पे चर्चा हो जाए, चलिए नीत का पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए, और भी बाकी विषयों पे चर्चा हो जाए, ये इथेनॉल वाला पता नहीं कौन सा नया विवाद आ गया, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन चलो चर्चा हो जाए, तो चर्चा की बात करने में हम दोषी हो गए। फिर मुलुक नागर जी, अजय आलोक जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहेंगे, देखो भैया देखो, विपक्ष वाले तो बड़े बेकार हैं, इनकी तो इच्छा ही नहीं है, इनको तो फायदा होता है सदन, बताइए विपक्ष मर रहा है, घुट रहा है, और विपक्ष कोई फायदा होगा हंगामा करने से?
1: ठीक, मैं अजय आलोक आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन धीरेन्द्र जी से, क्या आपने विपक्ष का क्या हल कर दिया? आनंद दुबे जी की आप सुनिए ना, वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या हल कर दिया आप लोगों ने ऑपोजिशन का, किसी पेपर में रह गए कह रहे हैं।
2: विपक्ष की कितनी इज्जत हम लोग करते हैं इसका मैं उदाहरण देता हूँ, कितनी संवेदनशील सरकार है कि इन चिंताओं से, जिस चिंताओं से ये अपने आप को परेशान दिखला रहे हैं, उन चिंताओं से हमारी सरकार ने तुरंत 9 दिन के अंदर में एग्जाम को रद्द किया, सीबीआई की जांच दी, दोषी जेल में। अब उन मुद्दों की सारा, उस मुद्दों का सारा समाधान मेरी सरकार ने कर दिया, अब इनके पास बचा कुछ नहीं तो बाहर में उछल कूद मचाना चाहते हैं। सब समय री एग्जाम करवाया, यहां सब समय आया, 2 लाख करीब एससी बच्चे के घरों में आज खुशियां और मिठाइयां बट रही है उत्तीर्ण होने के बाद में, 5 लाख से ज्यादा ओबीसी बच्चों के घरों में खुशियां बट रही है, और 58% से ज्यादा बेटियां आज उस नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके घरों में खुशियां दे रही हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अब मैं कांग्रेस पार्टी के संकेत वाले वॉकआउट पर आना चाहता हूं कि आपके संकेत के संकेत को देश ने समझा, तो क्या जंतर मंतर से उसी तरह के संकेत नहीं आने चाहिए थे? दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? लोकतंत्र में सांकेतिक रूप से तो गांधी जी ने भी कहा था कि संकेत के लिए धरने दीजिए, पर जान देने के लिए कहां किसी संविधान ने इजाजत दिया है? आप चंदा चोरी पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले संवेदनशील सरकार ने चंदा चोरों को जेल में डाल दिया, आप उस पर सवाल करने से पहले सरकार लोगों की भावनाओं की कदर करती है, और जितने आस्था आप दिखला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आस्थावानों का कदर इस सरकार ने किया, आप उसको भी सदन के अंदर में चूंकि कार्रवाई हो चुकी है उस पर नियम संगत आप चर्चा न करके सड़क पे आप आंदोलन करके और नैरेटिव चलाना चाहते हैं। भैया जनता के मुद्दों पर चर्चा करिए, फर्स्ट टाइमर सांसद जीत करके सभी दलों के आए हैं, हर कोई जाके वायनाड से लड़ लेगा, इतनी बड़ी नाम वाले नेता नहीं है, पहली बार जो संसद में जीत करके आए उन्हें बोलने का मौका नहीं देना, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करना है? और 10 जनपद की चर्चा हुई कि लोकतंत्र वहां से मजबूत होता है, अरे लोकतंत्र को सबसे कमजोर करने का कोई अगर केंद्र इस देश में रहा है तो कांग्रेस रहा है, 90 से 91 चुनी हुई सरकारें को गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है, आज वो लोकतंत्र कैसे मजबूत कर रहा है मुझे पता नहीं।
1: आनंद दुबे जी 20 सेकंड में अपनी बात रखी, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा।
0: राजू जी, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं, आप एक बात बताइए कि जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पर हम लोग चर्चा करें? आप एक ड्राफ्ट बनाकर हमें दीजिए कि भाई ये जनता के मुद्दे हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग भी तो आश्चर्यचकित हैं।

0: कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या सचमुच जनता के ही मुद्दे हैं या किसी और ग्रह के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। आप
1: ठीक
0: हमें
1: है,
0: एक ड्राफ्ट दीजिए, हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे।
1: ठीक।
0: आप कहेंगे महंगाई नहीं, हम लोग नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे भैया अच्छे
1: दिन
0: नहीं आ गए, हम लोग कहेंगे आ गए। आप कहेंगे भैया डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, हम कहेंगे नहीं आए हैं। जो आप कहेंगे हम वही मुद्दे उठाएंगे भाई, लेकिन आपके साथ रहेंगे, इस देश को मजबूती बनाने में आपका साथ देंगे।
1: सिर्फ 10 सेकंड बोले, फिर दूसरे
2: मंत्री आनंद जी, आपके मुद्दे कोई दूसरे
0: मत करिए
2: नहीं है, के मुद्दे पूर्वाग्रह के हैं। इस सरकार को आप बिल्कुल नहीं इस तरह से देखना चाहते हैं कि जनता के भले की बात सोचे, डिलिमिटेशन हो, सांसदों की संख्या बढ़े, महिलाओं को अधिकार मिले। क्यों आप इन सब चीजों को से दूर रखना चाहते हैं? क्यों
1: है?
2: नहीं आप नारी बंधन नियम अधिनियम को चाहते हैं कि वो लागू हो? क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? क्यों नहीं समाज की बात संसद में उठनी चाहिए? क्यों नारियों का अवसर को आप रोकना चाहते हैं? इन मुद्दों पर आइए बहस करिए।
1: ये इस पर सुरेंद्र जी, मैं आप चाहता हूं कि इस पर आप भी जवाब दें कि वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो? परिस्थितियां समय समय पर बदलती हैं, तो उसके हिसाब से चीजें बदलनी भी तो चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कि नारी वंदन अधिनियम तो 2023 में पास हो चुका है। नारी वंदन अधिनियम के तो विरोधी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। हमने तो 2023 में ही कहा था कि 2024 में लागू कर दो। आज की डेट में अगर 545 की संसद में एक तिहाई महिला सांसद नहीं है तो इसका पाप भारतीय जनता पार्टी के सर पर है और उनके सहयोगियों के सर पर है। हमने तो उसी समय कहा था, नारी बंधन अधिनियम के नाम पर जो आप परिसीमन का खेला करना चाहते हैं बिना जाति जनगणना के, वो हम नहीं होने देंगे। ये हमारा मानना है। नारी बंधन तो पहले से ही सर्वदलीय पास हो चुका था।
1: मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि नंबर कैसे रोकेंगे अगर सरकार ले आती है? मतलब क्या आप इतने मजबूत हैं, क्या वो नंबर आपके साथ हैं? क्योंकि डीएम के भी आपसे नाराज हैं, तो क्या आप हैं, आपके पास उतने नंबर हैं कि आप रोक सकें सरकार को?
3: शत प्रतिशत हमारे पास नंबर हैं। सब लोग इस चीज को जानते हैं। हमारे यूपी क्या नाम, हमारे इंडिया गठबंधन में अगर डीएमके है या नहीं है, लेकिन ये हमसे बड़ा सवाल डीएमके का है। और डीएमके इस चीज को कह चुका है। जब 23 दलों ने चिट्ठियां लिखी थी क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को, तो डीएमके ने भी वो चिट्ठी लिखी थी। डीएमके लोकतंत्र के साथ है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन में नहीं है, कुछ नाराजगी है, कल की डेट में आ जाएंगे। नंबर एक हमारे पास पूरा बहुमत। अब आप आ जाइए, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। दो तीन चीजें इन्होंने कही। मलूक भाई बहुत बढ़िया सांसद रहे, हम लोगों के साथी भी हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं है हमको जानने वाला कहते हो या दोस्त कहते हो, ये जाने। लेकिन मलूक भाई ये जरा पूछ के बताना भाजपा से कि भाजपा के कितने सांसदों ने ईमेल किया है। हमने तो 90 लोगों ने किया है हमारे, सुन लीजिए, 90 ने। और अगर आप 200 की आप ला करके देते, मैं 90 की दे देता हूं। आप बता दो कितने कितने भाजपा के, क्योंकि भाजपा के सांसदों को तो प्रश्न पूछने की इजाजत ही नहीं है वहां पर, तो खाता ना भाई जो मोदी चाचा कहें वो सही। एक नहीं किया है भाजपा के आदमी ने, क्या नाम प्रश्न बात करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए धीरेन्द्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र को कांग्रेस ने खराब किया, सोनिया जी ने खराब किया। जब रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे धीरेन्द्र भाई, तब क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही थी? आप चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपका नेता गद्दार था लोकतंत्र का? स्वर्गीय रामविलास पासवान को गाली देना चाहते हैं आप? स्वर्गीय रामविलास पासवान कितने समय तक हमारे साथ थे केंद्र में मंत्री, जरा बताइए। आज की डेट में जो आदमी इस तरीके की बात करे, उसे उसे उसे कम से कम अपने स्वर्गीय नेता को तो ध्यान में रख ही लेना चाहिए। तो हम ये राहत देने वाली जो बातें आप कर रहे हैं ना राजीव, ठीक है ना?
1: मैं जवाब दूंगा धीरेन्द्र जी और मलू जी, मैं देख लिया, मैं आऊंगा दोनों के पास भी आ रहा हूं, मैं अजय जी आपके पास,
3: क्योंकि आपको आपको क्षमा मांगनी होगी स्वर्गीय रामविलास पासवान से, क्योंकि आपने रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक उसको गाली दिया। आज की डेट में आप मूल रूप से चिराग पासवान के पिताजी को ही नहीं, अपने नेता को गाली दी है।
1: ठीक है धीरेन्द्र जी, जब आपसे 20 सेकंड में खत्म करेंगे।
2: उसी छात्र आंदोलन के आज जितने भी पार्टियों के नेता उसी से उपजे हुए लोग हैं। कांग्रेस का जिस तरह से काला अध्याय लिखा है लोकतंत्र के इतिहास में,
3: उसके लोकतंत्र कांग्रेस के साथ में आप कहते हो, बात कर रहे हो, हमारे साथ मंत्री रहे, हमारे साथ मलाई चाटी, और उसके बाद उसी रामविलास पासवान को गाली दे रहे हो।
1: टेक्निकल इशू भी ठीक है सुरेंद्र जी ठीक है, फिर व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। धीरेन्द्र जी कुछ टेक्निकल इशू भी है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक मतलब ऑपोजिशन कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमारे सवाल भी तैयार हैं। नब्बे चलिए अमलुक नगर जी, हाँ बोलिए
4: काउंटर जी। एक तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100% एनडीए का एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने क्वेश्चन ना डाले हो, और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के दिखा दें अगर आधे भी हो तो हम मान जाएं कि वाकई ये विपक्ष।
1: वो तो कह रहे हैं कि 90 तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है।
4: दोस्त मानते हैं, सुनो ये कह रहे हैं कि दोस्त मानते हैं या जानने वाले मानते हैं।
0: समय तारीख
4: जवाब जवाब जवाब जवाब जवाब ले जवाब ले
0: जवाब जवाब लेके आता हूँ
4: जवाब जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले जवाब ले। व्यक्तिगत स्तर पे आप हमारे दोस्त हैं, पर पार्टी स्तर पे विचारधारा आपकी कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है, इसीलिए सहारनपुर का सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी में कौन बढ़िया कैंडिडेट है आने वाले समय के लिए इनकी बात करते हैं। और जहां तक राजकुमार सुरेंद्र भाई आप बात कर रहे हैं,
0: है ना मलुक भाई,
4: संसद में
0: आखिर तो
4: सुनो सुनो भाई, राजीव राजीव राजीव राजीव राजीव राजीव राजीव
1: राजीव 10 सेकंड में कंप्लीट करें, बहुत देर से नहीं गया मैं।
4: हाँ देखिए, जहां तक बात है इनका परिसीमन पे विरोध करने का, 147 करोड़ लोगों में से 73.5 करोड़ में से 283 लेडीज को अगर हम लोग देश की संसद या विधानसभाओं में उसी अनुपातित तौर में लाना चाहते हैं तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका सबसे बड़ी परिवार गांधी परिवार, दो लेडीज और दोनों की दोनों एमपी, और 173 करोड़ में से 283 आ जाए, ये नहीं चाहते है? क्यों नहीं चाहते? देश की सारी लेडीज देख रही हैं, समझ रही हैं,
1: चाहत से पहले ठीक है
4: तो तुम्हें
1: ऑपोजिशन की चाहत एक तरफ, लेकिन क्या आप लाना चाह रहे हैं इस बार परिसीमन? क्या महिला बिल इस बार भी आएगा?
5: देखिए ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं ना कि विपक्ष ने पिछली बार गलत नियत गलत मंशा से यह बिल गिरा दिया, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम इस बिल को लाएंगे। अब ये अभी आता है, कभी आता है, जब पार्लियामेंट चलने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा और इनकी प्रतिबद्धता भी आ जाएगी कि महिलाओं के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और बाय द वे आनंद जी, आपको एक बार बता दूं, बाला साहेब ठाकरे उन्होंने जब शिवसेना बनाई 20 साल तक कभी सत्ता में नहीं थे, कभी ये नहीं कहा कि हम मरे हुए हैं, लगातार कांग्रेस से संघर्ष करते रहे, कहा कि कांग्रेस के साथ मिलना हुआ तो दुकान बंद कर दूंगा। अबाला साहब के सब आदर्शों को भूल के हम मरे हुए हैं, कागजों पे सिमट गए, हमें छोड़ दो, असहाय और निरीह प्राणियों की राजनीति में जगह नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सोनम वांगचुक पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, दोनों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ले, डेटेड 28/2/2007, हमारी सरकार नहीं थी ना केंद्र में ना ले में, सुनिएगा सुरेंद्र भाई, हमारी सरकार नहीं थी, आप ही की थी, नोटिस आपने भेजा था सोनम वांगचुक को कि आपने 200 से ज्यादा करनाल जमीन आपने सरकार की मार रखी है। दूसरा नोटिस था, यू हैव बीन अक्यूज ऑफ मिसयूजिंग प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट बाय मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसका बिल आने वाला है, अब देखिए कितना छटपटा रहे हैं ये लोग इस बिल पे। तीसरा उन्होंने साफ लिखा, यू हैव बीन कनाइविंग इन एंटी नेशनल कनेक्शन इन चाइना एंड अदर प्लेसेस विच हैव बीन और मे बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए, दोगले इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से, 2007 का देशद्रोही आज का देशभक्त नहीं हो जाता है जो सबको उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने पहुंच गए जंतर मंतर। अरे एजेंडा पे आप लोग चल रहे हैं, मुद्दा आपके पास खत्म हो चुका है, कोई बात करने को नहीं है,
1: गोलपोस्ट
5: शिफ्ट कर रहे हैं, जाती है जनगणना का, एक मिनट जरूरी है, ये मुझे ये बताइए परिसीमन और जातीय जनगणना का क्या संबंध है भाई साहब? परिसीमन तो चल ही रहा है, अब पूरा होगा, जातीय जनगणना का, इकोनॉमिक जनगणना सब कुछ होगा, परिसीमन और जातीय जनगणना को जोड़ने का क्या मतलब है?
1: ठीक है,
5: गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं, गोलपोस्ट ये कहिए ना,
1: ठीक है समय क्या बने, आपने सबकी तरफ इशारा कर दिया, देखिए सबकी उंगलियां उठी हुई है, मैं करके सबसे रिएक्शन
0: लेता
1: हूं। आनंद दुबे जी आप
0: राजू जी अजय आलोक ने सीधा प्रहार किया कि अरे बाला साहब जी की पार्टी में तो सब शेर थे, ये मरे मरे की बात करते हैं। दो प्रकार का मारना होता है राजीव जी, एक तोप में बांध के हमें उड़ा दीजिए, हमें दिखता है कि हमें कोई मार रहा है, और एक हमें चोरी से जहर पिला के मार दीजिए। तो ये जो जहर पिला के
6: विचारधारा को छोड़ने का नतीजा ये होता है, सत्ता की लालच।
0: हालत तो ये है,
6: सत्ता की लालच में कांग्रेस की गोद में बैठ गए,
0: हमारे कत्ल की तैयारी।
6: बाबर औरंगजेब का नाम जपने लगे।
0: राजू जी इनको शांत कराइए यार,
6: यही हाल होता है।
0: अरे बाप रे, ये तो टेप रिकॉर्डर रुकता ही नहीं है, ये टेप रिकॉर्डर को
6: नहीं, जब आदमी अपने विचारधारा से भटक कर रहा है।
1: अजय जी प्लीज, समय का है ना, सबको सबको
0: जब हम इनके पास पहुंचे,
1: राजू
0: जी जो कर रहे थे, जो कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम इनके पास पहुंचे तो ये कह रहे हैं बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। धन्य हो यार, तुम लोगों के ऐसी शुभकामनाओं से तो हम लोगों की तबीयत खराब हो गई है। मत करो, मत दो ऐसी कड़वी दवाई और मत करो हमारी भलाई।
1: ठीक है,
0: खुश रहो, आबाद रहो, 29 के बाद हो जाएगी आपकी सफाई।
1: ठीक है, आशुतोष जी। आशुतोष
7: राजीव जी, देखिए मैं समय की बात कर रहे थे और कौन कौन संसद नहीं चलने जा रहा, मैं अभी एक रिकॉर्ड देख रहा था। जब 14वीं और 15वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो जो सांकेतिक या वॉकआउट के काम थे, 2005 में कैश फॉर क्वेरी पे वॉकआउट कर गई, 2006 में राजनाथ सिंह की गिरफ्तारी पे वॉकआउट कर गई, 2012 में कोयला घोटाले मसले पे वॉकआउट कर गई, 2013 में सांसदों के नामांकन पे वॉकआउट कर गई, और कुल टोटल टाइम का 40% बर्बाद कर दिया विपक्ष में। अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो विपक्ष में 16वीं लोकसभा में 21% बर्बाद किया था, 17वीं में 23%, और अभी जो 18वीं लोकसभा उसे मात्र 28% हुआ है। तो कौन संसद नहीं चलने दे रहा है, वो उसकी बात अभी क्लियर हो गई है। अभी मेरे दोस्त अजय आलोक कह रहे थे कि डीलिमिटेशन और जाति जनगणना का क्या अंतर है। हाँ। अरे भाई, पहले आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट पढ़िए 2024 में, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ये अधिनियम तभी लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी, और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन हो जाएगा। अब आप संशोधन लाने जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना
6: कब तक,
7: पहले पढ़िए, पढ़ के आइए,
6: निर्धारित है, पूरा पूरा पढ़ के आया कीजिए। आशुतोष जी
1: मैं ठीक है, चलो उनको कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट
6: सीमा में हो जाएगा।
7: सरकार का मजाक उड़ रहा है, जाति जनगणना से भागिए नहीं, पूरा पढ़ के आया कीजिए। आप सरकार है समय, ऐसे मजाक करने बैठिए मत, यहाँ पर पूरा एक्ट पढ़िए क्या है।
6: अरे मेरे सनातनी समाजवादी, मेरी बात सुनिए,
7: करने क्या जा रहे हैं
6: मेरे सनातनी समाजवादी, बात सुनिए पहले, पूरा पढ़ के आप लोग आया कीजिए,
7: के बारे में समझिए, वो ठीक है,
6: पढ़ के आप लोग आया कीजिए, समझे ना,
7: तो पढ़ाती है जनगणना
6: हो रही है, हो रही है तो भाग चले, पता चल जाएगा कितने जाती
7: जनगणना से
6: लाभ मिला ही नहीं।
7: ये पिछड़े
6: अकाली यादव समाज के नाम पे एक परिवार लाभ लेके बैठा हुआ है,
7: ये पीडीए खत्म कर देगा, इतना मत घबराइए पीडीए से, ये पीडीए ही आपकी सरकार की
6: नहीं, नहीं आप है पक्का धूर्त आदमी,
7: मनुवादी सोच कब तक चलेगी,
6: पक्का धूर्त आदमी जो आप लोग हैं,
7: मनुवादी धूर्त आदमी सरकार
1: चलाएगी। 20 सेकंड में कंप्लीट करेगा आशुतोष जी, फिर मैं सुरेंद्र जी आपके मुंह में देख रहा हूं, मालूम जी आऊंगा आपके पास भी,
7: आपकी सरकार गिराएंगे, दलित आपकी सरकार गिराएंगे, अल्पसंख्यक आपकी सरकार गिराएंगे, आप तैयार नहीं करिए और पढ़ के आया कीजिए, तब बैठा कीजिए,
6: सपना देखने में, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं।
1: सुरेंद्र जी आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आज एक साथ ही ले लूंगा जवाब, एक साथ आपसे जवाब लूंगा। सुरेंद्र जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
8: दो तीन चीजें अभी तो धीरेन्द्र भाई को अगर ये सांसद बना देते रामविलास पासवान की पार्टी से तो हम कहते परिवारवादी नहीं है। अरे खुद चाचा ताऊ जीजा साला सबको तो आप सांसद बनाए हो और एमएलए बनाए हो, और रामविलास पासवान की पार्टी और कह रहे हो परिवारवाद पे आप समाजवादी पार्टी को आरोप लगा रहे, शर्म की बात है धीरेन्द्र भाई, आपको अगर सांसद बना देते तो हमें दिक्कत नहीं थी, हम अच्छा लगता। दूसरी बात आप अजय आलोक जी 2007 डिप्टी, अरे कितने दोगले लोग हैं भाई ये लोग, एक डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि ये सरकार है, आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर को तो छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चाइना का एजेंट है पाकिस्तान, शर्म नहीं आती इन लोगों को, उसी चाइना के एजेंट और उसी पाकिस्तान,
1: वो तो आपसे सपोर्ट मांग रहे थे ना, आप तो नहीं गए, आप जंतर मंतर तो नहीं गए।
8: अरे सुनो यार, आप सुनिए ना,
1: आप जंतर मंतर जाकर सपोर्ट तो नहीं दे रहे,
8: विषय है, इस पर आइए ना, काहे को दाएं बाएं काहे दाएं बाएं जा रहे हैं। अब परेशानी क्यों हो रही है कि जब आप जिस आदमी को कहते हो और उसी आदमी का साथ लेते हो, उसी आदमी को नरेंद्र मोदी गलबहिया करते हैं, उसी आदमी को अमित शाह गलबहिया करते हैं, वही आदमी आपके साथ खड़ा होता है, तब तो वो विदेशी एजेंट नहीं होता। आज की डेट में जिस तरीके की आप अमानवीय हरकत कर रहे हो, ये अमानवीय हरकत किसी के भी साथ होगी, भले ही हमारा दुश्मन है, कल की डेट में अमानवीय हरकत अगर नरेंद्र मोदी के साथ होगी तो हम उसके साथ भी खड़े मिलेंगे। इस चीज को जान लीजिए।
1: अब ये चुप्पी वो अलग विषय है, फिर आप पर भी आरोप लगता है ना कि बाबा रामदेव के साथ क्या, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, मल्लूक नागर जी जल्दी से आप
8: सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हो जाओ,
4: इनको रोको ना, पहले इनको तो रोको। देखिए अभी आशुतोष जी ने कहा कि वॉकआउट कर देते थे, वॉकआउट सुनो, वॉकआउट करना अलग बात है और संसद ना चलने देना अलग बात है। हंगामा करके गैर मर्यादित भाषा, गैर मर्यादित एक्शन और जो अध्यक्ष जी के आसन पे जाके बिल्कुल संसद की परंपराओं को तोड़ के संसद ना चलने देना, किसानों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे, अकलियतों के मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे, साफ कह रहा हूं, उनको आप चाहते ही नहीं हो उनका भला हो, ताकि सरकार कुछ उनके लिए काम कर सके या देश की संसद के आदेश पारित होके सरकार उसे एक्शन में ला चुके। असलियत में पिछड़े, दलित, किसान, अकलियत सबके खिलाफ काम करोगे आप अगर संसद नहीं चलने दे रहे। कल 11:02
1: मल्लूक जी, चूंकि आप तो गठबंधन में, मैं आपको एक बार टीएमसी में रखता हूँ कि मान लीजिए कि अगर यही चीज आपके सांसदों के साथ होती, वो बागी होते, एक दूसरे गुट में जुड़ जाते और उनको इस तरह से बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता जबकि मामला पेंडिंग है, आपको कैसा लगता है? क्या ये चिढ़ाने वाला कदम है या नहीं? आप चिढ़ते कि नहीं?
4: व्यवहार में
0: खुशियां मनाते हैं, तब मल्लूक जी होली दिवाली मनाते हैं।
1: उनको जवाब दे, मल्लूक जी बिल्कुल सीधा सवाल है,
4: रोको।
7: एक उधार की राज्यसभा में बागी कौन होता है?
0: एक संवैधानिक, रोको नहीं टोको,
4: व्यवहारिक और संवैधानिक। देखो इन्हें पता है कि मैं इनको इनके इनके इन्हें पता है मैं बजाऊंगा इनको, इसलिए कूद रहे बीच में। व्यवहारिक और संवैधानिक, व्यवहार में जब देश की जनता को लगता है हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, देश की जनता ने जो बदलाव जो पश्चिम बंगाल में करा तो सांसदों ने भी करा, व्यवहारिक में साफ। और संवैधानिक, जो संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार 2/3 अगर आ रहे हैं तो संवैधानिक है। चिढ़ते क्यों है, लड़ते क्यों है, रोते क्यों है? ये देश के संविधान से चलो,
1: लेकिन अभी फैसला नहीं आया ना। अगर संवैधानिक है, फैसला तो आया नहीं,
4: दलितों के लिए काम करो।
0: ये बलजबरी कहते हैं इसको, अतिक्रमण कहते हैं इसको, अपहरण कहते हैं इसको, तानाशाही कहते हैं इसको, अहंकार कहते हैं इसको।
1: ठीक है,
0: किसी के घर में जाके ताका झाकी मत किया करो
1: धीरेन्द्र जी। ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास लौटूंगा। धीरेन्द्र जी बहुत देर के बाद जुड़े हैं फिर से हमारे साथ। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत सवाल थे आपके तरफ,
4: अपनी अपनी मुझे नाकाबिलियत को ये स्वीकार कैसे करें कि इनकी पार्टी बेकार हो चुकी है।
1: ठीक है, धीरेन्द्र जी को सुन लेते हैं। धीरेन्द्र जी, जो सवाल मैंने मल्लूक जी से पूछा था, यही सवाल आपसे भी कि मतलब आपकी पार्टी में भी हमने एक बार टूट देखी है, मतलब आप अपने आप को रखिए ना वहां पर कि आपको छोड़कर, आपको चिढ़ा कर गए हैं और उसके बाद सामने वाला आपको इस तरह से चिढ़ाए, तो क्या मतलब ये कष्ट देने वाला नहीं है? और क्या मंशा पर सवाल नहीं खड़े करता कि आप नहीं चाहते हैं कि चीजें स्मूथली चले मानसून?
9: राजीव जी मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन सुरेंद्र भाई बड़े विद्वान है, पहले तो मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं, चूंकि नहीं दूंगा तो ये बेताल की तरह चढ़े रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपने रामविलास पासवान जी की चर्चा करी, आपने जब काले ये किए थे लोकतंत्र के हत्या, वो काला दिन रामविलास पासवान जी स्वर्गीय मेरे नेता संस्थापक और तमाम आज के नेता सभी लोग आपके खिलाफ में सड़कों पर थे और व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई थी, और आप लोगों ने ना सिर्फ रामविलास पासवान जी का विरोध किया बल्कि बाबा साहब का भी विरोध किया। संविधान आज हाथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने तक का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार,
0: सरकार में हमारे साथ थे वो रामविलास पासवान,
9: आप वहां पर नहीं जाते, उनका वासुक पोचने पासी पासवानों के साथ जुर्म कर रहे हैं सपा के गुंडे, आप उनके साथ वहां पर बैठ के कौन सा सामाजिक न्याय की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं मेरे भाई? आप देखिए जिस तरह से कब कब लोकतंत्र को, देखिए मुझे बोलने दे सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई मुझे बोलने दे, सुरेंद्र भाई मुझे बोलने दे, सुरेंद्र भाई आपकी मैं इज्जत करता हूँ, मुझे बोलने दे। आप जिस तरह से लोकतंत्र बचाने की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कांग्रेस ने 90-91 बार चुनी हुई सरकारों को गिराई और 91 बार से देखिए प्रकृति की विडंबना, 100 बार से ज्यादा चुनाव आप लोग हार चुके हैं, लोकतंत्र की इज्जत करिए।
1: ठीक है सर, धीरेन्द्र जी चुकी समय कम है, अजय आलोक मैं अंतिम सवाल आपसे ये कि भाई क्या आप ऑपोजिशन के सवालों को सुनने के लिए तैयार हैं?
6: मैं बिल्कुल तैयार हैं विपक्ष के सवालों का, और सवालों का जवाब भी देंगे, बस सवालों का जवाब सुनने के लिए ये रहे, भाग नहीं जाए, जैसे हमेशा भाग जाते हैं हर मुद्दे पे, जब जवाब देने की बारी आती है तो भाग जाते हैं सदन छोड़ के। मैं दो तीन बात बताता हूं, सुरेंद्र भाई आपकी मेमोरी लगता है थोड़ी कमजोर हो रही है। रामविलास पासवान जी को आपने मंत्री बनाया 2004 से लेकर 9 तक, 9 का वो चुनाव हार गए, आपने मंत्री नहीं बनाया, उनका बेइज्जती किया। लालू जी ने राज्यसभा भेजा तब भी आपने मंत्री नहीं बनाया, लगातार तिरस्कृत होने के बाद सोनिया गांधी से समय नहीं मिलने के बाद तब उन्होंने यूपीए छोड़ा और एनडीए ज्वाइन किया, ये रिफ्रेश करवा रहा हूं 12-13-14 को, इसलिए रामविलास पासवान की तो कीजिए मत कि आपने 10 साल मंत्री बनाया,
1: परेशान
6: नहीं किया,
1: पूर्ण बहुमत की सरकार, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है अब इतनी ही देर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। बहरहाल विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठक तो बुला ली गई है, लेकिन क्या वो विश्वास कल दिखाई देगा, सबकी निगाहें रहेंगे कल जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Thumbtack presents Uncertainty Strikes. I was surrounded. The aisle and the options were closing in. There were paint rollers, satin and matte finish, angle brushes and natural bristles. There were too many choices. What if I never got my living room painted? What if I couldn't figure out what type of paint to use? What if I just used Thumbtack? I can hire a top-rated pro that knows everything about interior paint, easily compare prices and read reviews. Thumbtack knows homes. Download the app today.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
15: आगे आगे
16: अरे उधर
15: करेक्ट करेक्ट
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: वी आर ओवर जिमी।
19: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
9: We are over, Jimmy.
10: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
12: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
11: हैट्रिक का दावा।
12: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
11: विश्वास पूरा।
12: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
11: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
13: देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन NCPI 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है, लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना, वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा।

0: दंगल के बाद अब आगे देखिए बहस बाजीगर अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय 13 अगस्त तक सेशन चलेगा। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष सांकेतिक वॉकआउट कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। उत्तराखंड और असम के बाद मध्य प्रदेश में आ रहा है यूसीसी कानून ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी कल विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में पेश होगा बिल। बंगाल दौरे पर अमित शाह का तीसरा दिन कोलकाता के संबोधन में कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाएंगे दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन। आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से भिड़ंत इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

0: बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता का बहुत अभिनंदन आज हमारे साथ बहस बाजीगर के शो में शामिल होने के लिए। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर तक टूटा। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े, कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइंस लगी, खुदरा थोक महंगाई पहले के मुकाबले बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों को एक साल तक सोना न खरीदने जैसे बचत का सात मंत्र भी देना पड़ा। लेकिन अब जबकि युद्ध में एक युद्ध विराम की स्थिति आई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता, वो फिर से अब हमले के दम भर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो भी हो स्थिति कम से कम ऐसी सुधरी कि लगातार जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम आया। और बीजेपी का ये कहना है कि भारत 2 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमलों से बनी परिस्थितियों में खुद को संभालने में कामयाब रहा। और ये बात सच है कि भारत सबसे तेज बढ़ती जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें अभी भी बना हुआ है। भारत ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अपने आयातक देश जो है जिनसे वो इंपोर्ट करता था वो देश हमने बढ़ाए, यानी कच्चे तेल और गैस का जो सोर्स है जो हम अलग अलग देशों से ले रहे थे, युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहा था, तो हमने अपना बेस बढ़ाया। कच्चे तेल में हम जिन जिन देशों से ले रहे थे उसमें हमने फेरबदल की, कुछ और नए देशों से लिया, ऐसा ही हमने गैस के साथ किया। और ईरान से लेकर इसराइल और अमेरिका तक और अन्य खाड़ी देशों के साथ साथ रशिया के साथ भी जो हमारी कूटनीतिक संतुलन है उसको हम बनाने में कामयाब रहे। पश्चिम एशिया में शांति पूरी तरह नहीं लौटी है जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन भारत के लिए आगे भी चुनौतियां हो सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध के असर से खुद को बचाने में कामयाब है। इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, क्योंकि हमने सोचा ऐसा विषय उठाया जाए जो सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी कमाई, आपकी जो रोजमर्रा की चीजें उससे जुड़ी हुई है। इसीलिए बहस बाजीगर में इस बार का मुद्दा है ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, और ये नीले गमछे वाला हिस्सा मानता है कि नहीं बचा पाया, यही मानते हैं आप लोग, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए क्योंकि आपको डिफेंड करना है अपनी टीम को। सफेद गमछे वाले हैं जो ये मानते हैं कि क्या मानते हैं क्या मानते हैं कि विश्व में शांति है, न्यूट्रल है, मतलब बचा भी पाया नहीं भी बचा पाया, दोनों ये मानकर चलते हैं। आपके पास मौका रहेगा आगे गमछा बदलने का। और ये वो लाल गमछे वाला हिस्सा है जो मानता है कि हम बचाने में कामयाब रहे। ताली अपने लिए बजा लीजिए। आप सभी को बता दें कि आपके पास ये मौका रहेगा जैसे जैसे यहाँ के 6 बहस बाजीगर आकर बैठेंगे, अगर आपको लगता है कि भाई आप कन्विंस हो रहे हैं उनकी बातों से तो आप अपने गमछे का रंग बदल भी सकते हैं, नीले गमछे वाले सफेद या लाल ले सकते हैं। सफेद वालों के लिए दोनों तरफ का रास्ता खुला है, लाल और नीले का, और लाल गमछे वाले सफेद या नीला लेकर अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। और लास्ट में हम वोटिंग कराएंगे इस मोशन पर, लेकिन अब सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
1: आज की इस बहस का आधार बना है ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में बिगड़ते हालात, और ऐसे हालात में भी सफलता भारत। वैश्विक महायुद्ध की आग जब पश्चिम एशिया में भड़की तो उसकी तपिश भारत के आम आदमी की रसोई तक आ पहुंची। डॉलर के सामने देश की करेंसी औंधे मुंह गिरी तो पेट्रोल डीजल के मीटर ने आम आदमी की जेब खाली कर दी। हालात ये हो गए कि कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया। संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने जैसी बड़ी अपील की। सत्ता पक्ष का दावा है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो जो तबाही बची उसमें भी भारत खुद को संभालने में कामयाब रहा।
2: के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता।
1: अभी पूरी तरह शांति नहीं हुई है, खतरा टला नहीं है, इसीलिए आज बहसबाजीगर में सीधा सवाल, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया?
0: आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। अशोक सज्जन हार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं और कूटनीति में सबसे बड़े नाम के तौर पर आज चर्चा में देश में शामिल होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिस्ट हैं और तीन ताल के ताव तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ताव का तड़का जब शो में लगता है तो गंभीर से गंभीर विषय पर ऐसी चोटीली बात वो कह देते हैं अपने सरकाज्म के जरिए जिसकी खूब चर्चा होती है। तो अब तीनों जजेस अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं, ईरान युद्ध में क्या भारत घर रसोई बचा पाया इस विषय पर बहस करने के लिए आइए बुलाते हैं अपने पहले दो वक्ता। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी टीम को लीड करने के लिए आप अपनी जगह ले लीजिए। सर अभी तो पहले स्वागत होगा, बाकी चार कहेंगे कि स्वागत नहीं करोगे मैं हमारा। यह देखिए अपने अपने दो जगह लेके टीम के लिए वो बैठ गए हैं। अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सत्य प्रकाश मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और जेडीयू के समर्थक हैं। तालियों के साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और अगले आखिरी दो वक्ताओं को आप बुलाते हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ जुड़ रही है प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इकोनॉमिस्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती हैं। और इसी के साथ साथ आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो छह आज के जो बहसबाजीगर हैं वो बैठ गए, इनमें से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हम अभी से इनको बहसबाजीगर कह रहे हैं क्योंकि विषय बड़ा दिलचस्प है। सीधा आपसे हमसे हमारी जेब से सरोकार रखता है, देश की अर्थव्यवस्था से सरोकार रखता है। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया इस विषय पर क्या इस डिबेट के शुरू होने के पहले अशोक सज्जन हार जी कुछ ऐसा संदेश और संकेत है जो आप इन लोगों को देना चाहते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस विषय पर चाहते हैं वो फोकस करें?
3: बहुत धन्यवाद। देखिए युद्ध तो शुरुआत हुई 28 फरवरी को और कहा गया 8 अप्रैल को सीज फायर हो गया, 17 जून को दस्तखत हो गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आज फिर से लड़ाई शुरू हो गई है।
0: इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रम्प की गारंटी नहीं है वो कब पलटेंगे कब बदलेंगे
3: जी, तो इसको भी मेरे ख्याल से फैक्टर इन किया जाना होगा जो आगे चलते हुए भी क्या वही से फिर से दोहराया जाएगा, और अगर दोहराया जाता है तो उसमें हमारा तैयारी क्या है वो हमें देखना होगा।
4: ट्रंप जब साइन करते हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होती
0: है। अश्विनी जी
5: देखिए हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर एनालिस्ट बैठे हैं वैसे बड़ा मुश्किल हमारा
0: टॉपिक है
5: ये विषय है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ करके
0: यदि
5: हम राष्ट्रीयता के आधार पर फैक्ट्स पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा।
0: चलिए ठीक है, इसी के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया और अजय उपाध्याय का, क्योंकि दोनों को ही शुरुआती डेढ़ डेढ़ मिनट का समय मिलेगा। विषय पर रहिएगा, हर बार की तरह शाम की तरह शाम की डिबेट की तरह उलझने की जरूरत नहीं है, दलीलों में दम होगा तो आपको जनता और जजेस का भी समर्थन मिलेगा। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया इस विषय पर बोलने के लिए गौरव भाटिया जी आपको मिल रहे हैं डेढ़ मिनट का ये समय और आपका समय शुरू होता है अब।
6: सभी को नमस्कार, और मैं जजेस की टिप्पणी भी सुन रहा था, यहाँ दर्शक भी हैं, और बड़ी गंभीरता से सबसे पहले ये कहूंगा एक संकट और चुनौती की स्थिति थी, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि भारत ने मजबूती से डटकर उस चुनौती का सामना किया है। मैं कहता हूं इसमें तीन बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले सरकार, तो सरकार पे जब आती है तो ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि 130 दिन हो गए इस संकट के, लेकिन चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी कमी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि अगर संकट भी आएगा तो भारत का जो रूप है वो इतना विशाल है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, नागरिक। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी आए और जब एक संकट है तो परिवार का जो पिता तुल्य सदस्य होता है वो अपने परिवार की तरफ देखता है। उन्होंने एक अपील करी, उन्होंने कहा हमें ये कदम उठाने होंगे जिसमें फॉरेन ट्रैवलिंग पे कमी हो, जिसमें सोना ना खरीदा जाए। और यहां की जनता को और भारत की जनता को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का आह्वान स्वीकार किया और भारत को विजयी बनाया। तो आपको 10/10 मिलता है बहस के बाजीगर में। और तीसरा,
0: समय समाप्त हुआ,
6: मैं एक तीसरी बस
0: जल्दी से आपको भी दे दूंगी 10 सेकंड, जल्दी।
6: तीसरा, कभी नहीं भूलना चाहिए विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता रहा, और 10 सेकंड में कहता हूं झूठ बोलता रहा। जो दो जहाज भारत की तरफ चले थे कांग्रेस ने कहा वो कहीं और जा रहे हैं, बाद में झूठ पकड़ा गया, ट्वीट डिलीट हुआ। और दूसरा, कतारें लगी हुई है एलपीजी के सिलेंडर के लिए, कहते थे वो 2013 की तस्वीर निकली जब कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ट्वीट डिलीट हुआ।
0: अजय उपाध्याय जी, इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है।
7: नमस्कार साथियों, हमारे घर पे प्रभु राम की बड़ी असीम कृपा है, और सही पूछिए तो पूरा जो रसोई घर है वो राम भरोसे ही चल रहा है। खुद राम, प्रभु राम का घर भी उसी स्थिति में है। जहां तक बात हमारे महामानव की है तो महामानव बेचारे बहुत व्यस्त हैं आजकल। आप लोगों को कहा था ना विदेश नहीं जाना है, त्याग करना है, वो भी कभी कभी घर वापसी उनकी होती है, कभी कभी घर आते हैं बाहर। वैसे आए दिन आजकल वो मेडल बटोरने में और खरीदने में वो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब बात आती है टॉपिक पर, जो टॉपिक पर हमारे आपने आज रखा है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। अरे भाई, मैं सभी जज सम्मानित महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि आज कोई जरूरत नहीं है बहस बाजीगर में मुझे कोई नंबर देने की, प्लीज नहीं दीजिएगा। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक पर क्या बहस करना और बाजीगर बनना। सच पूछिए तो किसी के घर में कोई गोला बारूद नहीं गिरा जी। सही पूछिए तो इस पूरे देश में जो है सब चीज सुरक्षित था जी। ईरान का एक फुसफुसिया ड्रोन भी नहीं आया जी यहां, अमेरिका का आया था एक वो पनडुब्बी हमारे जल क्षेत्र में, लेकिन भारत का एक आदमी भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, ईरान वाले मारे गए जी। ये भी सच है जैसा कि अभी साथी प्रवक्ता ने कहा, पूरे देश में विश्व के स्तर की बात कर ले, 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिएगा, तो पूरे विश्व में आस पास पड़ोस का देश का हालत देखिए जी। पाकिस्तान से लेकर के वो तो पाषाण युग में चला गया जी, नेपाल भूटान बांग्लादेश का तो बर्बाद हो चुका जी, और चीन जैसा देश तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, घुटने टेक दिया जी। हम सुरक्षित हैं, 8% मात्र हमारा रुपया गिरा है, 10% शेयर मार्केट गिरा है। हवाई चप्पल वाले वैसे भी कभी नहीं हवाई जहाज में यात्रा करते थे, थोड़ी यात्रा का बढ़ गया। रसोई वाले लाइन में लगे हुए थे रसोई गैस लेकर के और डीजल पेट्रोल लेने के लिए, और वहां डीजे भी सुन रहे थे मुफ्त में। तो ये देश के सरकार की बड़ी मेहरबानी थी जी, इसलिए अब देश सुरक्षित है। महामानव जी फिर आएंगे, आप लोगों को बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, फिर विदेश चले जाएंगे।
0: धन्यवाद है जी आप दोनों का। उससे पहले कोई सवाल अगर सब प्रश्न पूछना चाहे।
4: नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है कि विशुद्ध राजनीति पे बात चली गई है अर्थव्यवस्था से, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है।
6: हमारा तो प्रयास था कि केवल आज के विषय पे रहे, जैसे एक आपने कहा था तो हमने उसका पालन किया।
0: कुछ जो आप पूछना चाहें सर?
8: नहीं, मैं केवल अपने जो वक्ता है उनसे यही पूछूंगा, रसोई का ज्यादा इतना आपने जिक्र नहीं किया, टॉपिक तो रसोई का था, परंतु रसोई में क्या हालचाल रहे आपने उसको बहुत ही टेंजेंशियली उसको ट्रीट किया।
7: नहीं सर,
8: उसके ऊपर
7: मैं तो कह रहा हूँ कि कोई महंगाई है ही नहीं।
8: हाँ, नहीं
7: कोई तो... कोई महंगाई न बढ़ी है, न दवाई का 900 दवाइयों का दाम नहीं बढ़ा है, हवाई यात्राएं नहीं बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम तो देखिए ना जी कितना कम है।
8: तो
7: आप भी आए होंगे तो आपको आपको कुछ नहीं खर्च हुआ होगा, देश बड़े सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो फिर बात किस बात की जाए।
8: बिल्कुल अग्री कर रहे हैं गौरव जी, तो फिर तो
6: विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जो ओपनिंग कमेंट होता है हम लोग का भी प्रयास रहता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव आना चाहिए। मेरी तैयारी पूरी है, मैं निराश करके आपको नहीं जाऊंगा। और गैस की रसोई पे भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ जो ठोस कदम उठाए हैं वो आपके समक्ष जरूर रखूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक मौका मुझे अंजना जी जरूर और देंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद।
0: ठीक है, एक मिनट का
7: आज के अखबार का एक रिपोर्ट है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। तेल कंपनियां अब 11 रुपए प्रति लीटर कमा रही है, पर आम लोगों को कोई राहत नहीं है, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई है ही नहीं जी, कोई महंगाई नहीं है, बेकार में यहाँ बहुत हम लोग करते हैं जी रोज दिन।
0: चलिए ये मान्यतों की बहस करते हैं रोज दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में एक एक मिनट का रिबटल टाइम आपको मिलेगा, तब आप फिर इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। अब अगले दो जो वक्ता हैं उनको बुलाते हैं, प्रोफेसर सुबोध मेहता जो कि आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी, 90 सेकंड का ईरान युद्ध में भारत घर रसोई,
9: अच्छा,
0: आप शुरू करेंगे?
9: नहीं, मैं कर रहा हूँ।
0: ठीक है, चलिए सत्य प्रकाश जी, टॉपिक फिर से बता रहे हैं, टॉपिक से मत भटकिए। ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
10: देखिए, ईरान जब युद्ध शुरू हुआ चुनौती बड़ी थी, 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ प्रधानमंत्री और देश की अन्य सरकारों को न्याय करना था, उनको समुचित सुविधा देनी थी और महंगाई को नियंत्रण में रखना था। कैसे समझेंगे इसको? आपकी फरवरी में जो महंगाई दर थी खुदरा विक्रेता पर, उस पर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी अमेरिका में बढ़ी और यूरोपीय यूनियन के 21 देशों में बढ़ी। अमेरिका में 50% पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया। 21 देशों में जो यूरोपियन जो अपने करेंसी को शेयर करते हैं उनमें 40% की महंगाई बढ़ गई। हमने क्या किया कि अन्य देशों से एलपीजी आयात किया, पीएनजी को बढ़ाया। एक छोटा उदाहरण दूं तो बिहार जैसे, जिसको आप पिछड़ा समझते हैं, वहां 17 जिलों में नए पीएनजी कनेक्शन की योजना शुरू हुई। देश ने चुनौती का सामना किया, पूरी दुनिया उस पर विवश थी कि कैसे कैसे भारत जैसे एक बहुत विकासशील देश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और वो कह गए महामानव वाला देश। मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी जी का एक टाइम का कोई उपवास शुरू हो गया हो कि महंगाई बढ़ गई है, मुझे उपवास रखना है, मेरे घर में गैस नहीं है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई कांग्रेसी सड़क पर थाली बजा रहा हो, कह रहे कुछ खाने को नहीं है। मैंने नहीं देखा कि 140 करोड़ की जनता कहीं सड़कों पर आ गई है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पूरी मुस्तैदी थे, सरकार ने एलपीजी का आयात किया, पीएनजी का उत्पादन बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल को नियंत्रित रखा, थोड़ा
0: समय समाप्त हुआ, समय समाप्त। अब इस विषय पर बोलने का आपका, प्रोफेसर साहब, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, 90 सेकंड का समय शुरू होता है। अब
11: देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने बाद जाकर कुछ अपना उसमें सुधार करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सप्लाई शॉक हुआ, लेकिन सप्लाई शॉक भी हुआ, और जो हमारा रिलेशन है ईरान के साथ, ये आइसोलेशन में कोई भी इकोनॉमी चलती नहीं है। हमारा रिलेशन सिविलाइजेशनल बॉन्ड है उनके साथ, और जो पर्शिया था, हम जो है इंडो पर्शियन कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हम जो हैं सम्राट अशोक के जो अशोका पिलर है वहाँ से भी डिपिक्ट, अब देखिए तो सिंगल स्टोन सिस्टम वहीं से आया है। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो साहब भी अपनी पूरी जो लिखते थे वो पर्शियन में लिखते थे, उर्दू भी देखिए हम वहीं से लेकर आए, और जाकर जिस तरीके से जो पारसी लोग हैं उसमें भारत के डेवलपमेंट में अलग कंट्रीब्यूशन है उनका, चाहे टाटा हो गए, मानिक शॉ हो गए, होमी बाबा साहब हो गए। लेकिन जो इकोनॉमी की बात हम आज कर रहे हैं, ये इकोनॉमी जो है एलपीजी, जब से ये हॉर्मोन्स बंद हुआ तो हम तैयार नहीं थे उसके लिए, और भारी जो है किल्लतें उठानी पड़ी, और कम से कम जो 100 रुपए का सिलेंडर गरीबों को मिलता था वो 500 रुपए में हो गया, जिसको लेकर माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, लोग अपने घरों में चले गए और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई और ब्लैक मेलिंग होने लगी ये एलपीजी की, तो पूरा त्रहिमाम हो गया हमारा सिस्टम और जो हमारा सिविलाइजेशनल जो बॉन्ड था वो भी धराशायी हो गया ईरान के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टेप लिया, लेकिन ठीक इससे उल्टा अंबानी और न्यारा ने जिस तरीके से अटलांटिक की तरफ देखा, बेल्टिक रूट की तरफ देखा और जो है अल्जीरिया और नाइजीरिया और रशिया के साथ तेल लेकर आया, इन्होंने एक्सपोर्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री को इस पे अंकुश लगाना चाहिए।
0: समय समाप्त हो गया। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, कुछ प्रश्न इन दोनों से अगर आप लोगों का हो, और एक एक सवाल इधर ऑडियंस से भी लेंगे। पूछे था
4: मेरा सवाल उतना नहीं है जितना कि ये है कि जिस ईरान से हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशन थे वो ईरान ये ईरान नहीं है, और हमारे रिश्ते ईरान के लोगों के साथ हैं थे, जिसके खिलाफ ये रिजीम अभी भी है। हम उसको इतना डेफाई करके नहीं देखें, वो जैसे वो अमेरिका से ज्यादा साफ देश नहीं है। दो लोगों की लड़ाई में अपने को दोस्त ऐसे नहीं चुनने चाहिए। हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशन है वो हमारा आयतुल्ला खमेनी और उनके IRGC से नहीं है, वहां के लोगों से है। जो पारसी आपने उदाहरण दिया ना, वो वहां से भाग के आए हैं,
11: भाग कर आए हैं, इस्लामिक वहां पे चल रहा था उससे भाग कर आए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसमें हमें सस्ता तेल ईरान ने ही दिया। हम मानते हैं कि 1935 में जो है पर्शिया जो है ईरान की तरफ शिफ्ट किया, और वर्ल्ड वार सेकंड में देखिए अमेरिका के साथ चला गया, और हम लोग जो है कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन के साथ थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान जो है इनकंटिन्यूटी है। इनकंटिन्यूटी इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस 91 में हमें बहुत मदद किया ईरान ने, और अभी भी जो हॉर्मुज बंद हुआ तो जो हमारा तेल आना यहां चाहिए था डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत, 70 दिनों के बाद ये जो है हमारा तेल ईरान से कम उनका परमिशन दिया, तो ये जो बॉन्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो बॉन्डिंग कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है। और जिस तरीके से
0: किधर से कर रहे हैं, अब लग रहा है कि आप इनकी टीम की तरफ बोलने लगे।
11: नहीं, जो तथ्य है, तथ्यों के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, और तथ्यों के आधार पे है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप लिया वो स्टेप पहले लेना चाहिए था। जो हमारा पूल होता है क्रूड ऑयल का, उसको जो है एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, और अंबानी और नयारा की जो कंपनी है जामनगर में उसको कंट्रोल करना चाहिए था। उसने जो है एक्सपोर्ट किया और हमारे अपने घर में जो किल्लत हो गई, और हमारे गरीबों के, खासकर गरीबों जो लोग माइग्रेट किए, 100 रुपया का 500 रुपया में जो है एलपीजी भराया गया, ये रेमिटेंस आना वहां से बंद हो गया। बहुत सारी बातें ऐसी है।
0: सारे
12: तथ्यों पर मेरे पास सिर्फ एक तथ्य है, ये वो व्यक्ति है उस पार्टी से है राष्ट्रीय जनता दल से जो उस सरकार में शामिल थे जब ईरान से गैस पाइपलाइन 2700 किलोमीटर आना था। लालू जी मंत्री थे, मणिशंकर अय्यर पेट्रोल मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ड्रीम प्रोजेक्ट था। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के दबाव में वो गैस पाइपलाइन नहीं लाया। आज वकालत कर रहे कि क्या संबंध अच्छे होने चाहिए थे। ये तथ्य हैं आपके खिलाफ महोदय, क्या बोलेंगे आप?
11: देखिए,
12: भारत ने कभी भी किसी भी देश के आंतरिक मसलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, सबसे अपने अच्छे संबंध रखे। उन देशों की अपनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने भारत के साथ संबंधों में थोड़ी दाएं बाएं आगे पीछे किया। हॉर्मुज स्ट्रेट से प्रधानमंत्री मोदी 1,45,000 टन गैस डीजल सब लाने में सफल रहे, आप उसके लिए तो ताली बजा दीजिए।
11: देखिए, 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ, न्यूक्लियर डील हुआ।

0: वेस्ट था।
1: ठीक है,
2: जवाब दूं मैम?
1: रुक जाइए, आए आए कम।
3: सर मेरा ये क्वेश्चन है कि भले ही इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया हो और कंट्रीज से ऑयल और गैस इंपोर्ट कराकर, पर महंगाई तो बढ़ गई। आगे अब अगर आगे ये वॉर कंटिन्यू होता है या फिर ऐसा कोई भी वॉर आता है तो ये महंगाई को फेस करने के लिए कोई प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की?
1: सफेद गमछे में से कोई आपको पकड़ा
4: हुआ? ठीक है, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा अभी कि कोई भी मतलब कोई भी कमी नहीं पड़ी रिसोर्सेज की पहले, तो मतलब कमी तो तभी पड़ेगी ना जब उसे खरीदा जाएगा। अभी भी ग्रोसरीज के हाई प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो गैस के प्राइसेस वो भी बहुत ज़्यादा है, और हर घर में चूल्हे ही चल रहे हैं तो वो तो खरीदे ही नहीं गए, तो कमी कैसे नहीं हुई?
1: ठीक है, तो आप लोगों को दोनों को 30-30 सेकंड का समय मिलेगा। आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है, और जो एम्बेसडर साहब ने कहा अगर उस पर बोलना है जल्दी।
2: देखिए, ये बच्ची ने एकदम सही कहा कि हमारे पास जो है क्रूड ऑयल का जो रिजर्वायर है वो कम था, 25 दिन का था, जैसे जापान में ज्यादा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाए और जो इन्होंने जो आग्रह किया आम जनमानस से कि भाई आप जो है इसको ठीक से यूटिलाइज कीजिए या फिर गोल्ड का इंपोर्ट कम कीजिए, ये लगभग 70 दिनों के बाद इन्होंने किया। इस पर भी नेशनल कंसेंसस इन्होंने नहीं बनाया, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के साथ इन्होंने कोई वार्ता इस संदर्भ में लेकर नहीं किया। साथ में अगर ये चाहते तो जो रिजर्वायर और जो रूट जो है अंबानी जी ने उठाया था, जो मैंने कह रहा हूँ कि बाल्टिक रूट लिया और अटलांटिक रूट लिया, नाइजीरिया अल्जीरिया से लाया, ये हम भी कर सकते थे हमारे अपने नयारा में जो है, और अंबानी जी को क्यों नहीं?
1: एक ही पॉइंट आप बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं।
5: दोनों ने एक सवाल पूछा है, उसका एक उत्तर
1: महंगाई पर उस बच्ची ने।
5: एक प्रश्न समझिए, जब दुनिया में इस कदर का युद्ध हो जहां कई महाशक्तियां टकराहट में खड़ी हो गई हो और लंबा युद्ध चल रहा हो और 20% दुनिया का कच्चा तेल गैस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उधर से आता है वो हमारे लिए चुनौती का विषय था। दुनिया की महंगाई को अगर आप देखेंगे कि उससे दुनिया में कितनी महंगाई बढ़ी, और भारत को देखेंगे तो अगर दुनिया में 10 महंगाई बढ़ी तो भारत 1 पे खड़ा था। आज भी आज के डेट में 3.93% खुदरा महंगाई दर है जो 1% ऊपर उठा है, 1 से 1.5% फरवरी से लेके अभी तक। तो हम इस देश को महंगाई से निकाल ले जाएंगे।
1: चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हुआ, नेक्स्ट राउंड में एक एक मिनट कर बैठे, ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। सब अपनी अपनी पक्ष के लिए खुलकर बैटिंग करें। आइए आइए प्रोफेसर साहब, आप आइए, और आशुतोष जी आ गए हैं। आशुतोष जी पर बहुत सारे बातें कही गई हैं तो उनको भी मौका मिलेगा जवाब देने का, और आप बच्चों के भी प्रश्न देख ही रहे हैं और जो जजेस की अभी तक की रिस्पांस है। चलिए शुरू करते हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, इस पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
6: नमस्कार आप सभी को। देखिए, जब भारत जिसमें 90% के करीब तेल आयात होता है और वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा हो, तो उस समय क्वेश्चंस ये होते हैं कि क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप बंद हुआ, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल के लिए लाइनें लगी, क्या मेरे यहाँ पेट्रोल का राशन हुआ, क्या मेरे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसको ठप किया गया, क्या हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम किया गया। अगर इन सब प्रश्नों के जवाब ना है तो ये अपने आप में एक जवाब है कि नहीं, मेरे यहाँ भारत में जो रसोई घर था वो चलता रहा। हाँ अगर बंद हुआ तो बंद हुआ। ये जो अफवाह थी विपक्ष की कि क्या यहाँ पे आर्थिक सुनामी आएगी, क्या यहाँ पे डेड इकोनॉमी है, बिल्कुल वो जरूर बंद हुआ, वो नहीं चल पाया। अब बात विशुद्ध आंकड़ों पे करते हैं। आंकड़ों का ये है कि जी पेट्रोल पंप यहाँ पे जो पेट्रोल के दाम थे वो केवल 5.90 रुपए बढ़े उस दौरान जब मैंने कहा कि 90% हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, और जो क्रूड ऑयल के दाम थे तकरीबन 100% राइज हुआ, $60 पर बैरल से वो तकरीबन $120 पर बैरल पे गया। अब आते हैं रसोई घर के चूल्हे पे। जो आपका चूल्हा था वो 853 रुपीस पर यूनिट से जो डोमेस्टिक था वो आपका पहुंचा 942 रुपीस पर यूनिट, जो तकरीबन 11% का राइज हुआ। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 2014 से तो तब वो ऑलरेडी 1241 था। तो इस दौरान अगर आप देखो कि 1241 पे जो नॉर्मल सामान्य आपको सिचुएशन में मिल रहा था, आज भी उससे वो 24% कम है। तो ये आपका जवाब है कि हमारे रसोई घर बंद नहीं हुए। अगर हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट है 3.93%।
1: समय समाप्त हो गया, समय समाप्त। नेक्स्ट राउंड। चलिए अब आपका आशुतोष जी, तो प्रोफेसर जी के लिए अलग से तालियां बज रहे हैं। आशुतोष जी आपके लिए भी बजेंगे, आप भी शुरू कीजिए 90 सेकंड का इस विषय पर बोलने का कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। आपका समय शुरू होता है अब।
7: इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सरकार मानती नहीं कहीं कोई संकट होता है, तो इसलिए हमारे एलपीजी का कोई संकट नहीं था, क्योंकि जो इतने बड़े पैमाने पर लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए लाखों के

0: संख्या में गए, वो एक रिकॉर्ड है। अगर उस वक्त अगर आप अखबार खाली निकाल के देख लेंगे तो रोज आपको पता चलेगा किस तरीके से पैनिक बाइंग हो रही थी, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किस तरीके से 4,000-5,000 में सिलेंडर्स मिल रहे थे। लेकिन कोई संकट नहीं था। हकीकत ये थी कि 4 लाख बैरल पर डे एलपीजी की सप्लाई की क्राइसिस थी उस वक्त। 4 लाख हो भी सकती है, 60% हम चूंकि इंपोर्ट करते हैं और 90% उस इलाके से आता है, तो जाहिर सी बात ये तो संभव है। लेकिन ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही थी? दिक्कत इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि हमने जिस तरीके से अपना प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहिए था, हमने प्रोडक्शन बूस्ट नहीं किया। खुद आईएनबी, खुद मिनिस्ट्री के अपने रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लगातार एलपीजी का गिरा है। हमें जिस तरीके से अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए था, हमने उस तरीके से स्टोरेज को नहीं बढ़ाया है। ये संकट था, लेकिन सरकार नहीं मानती इस बारे में। सरकार कहती है सब कुछ चंगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान का आदमी 105, 106, 110 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? जब $115 था तब आपसे कहा गया कि आप एक्स्ट्रा दीजिए। आज लगभग 50% कम हो गया है, फिर भी आप उसी दाम पे दे रहे हैं। सब चंगा।
1: समय समाप्त हुआ भाई, दोनों ने अच्छा किया। कोई प्रश्न आपका हो उसके बाद रिबटल राउंड शुरू करेंगे।
2: नहीं, एक प्रश्न है आशुतोष जी से। इंडिया का जो अपना बास्केट प्राइस है $156 हो गया था, आपको याद होगा 23 मार्च को $156 हो गया, तो तब उस समय तो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक नहीं इंक्रीज हुआ। तो अब आप कहते हैं और 200 रुपए नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे। परंतु अब तो आप कह रहे हैं जो उसमें कब देखिए, जब वो लॉस, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है, लॉस जो मार्केटिंग कंपनीज ने उस टाइम फेस किया उसमें थोड़ा सा लॉस की कमी हो गई है। दूसरी बात, आपने जो कहा, देखिए मुझे याद है जहां तक आंकड़े, तो ये कहा गया है जो एलपीजी का प्रोडक्शन है इंडिया में वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसमें करीब 40-45% की बढ़ोतरी हुई थी इस पीरियड में। तो परंतु आप पता नहीं कहां से स्टैटिस्टिक्स, मुझे तो ये बड़ी अच्छी तरह याद है, हम फॉलो कर रहे हैं।
1: छोटा सा
0: वरिष्ठ है, जवाब देना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो यह है कि ये आपके पास डेटा कहाँ से, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो घाटे में थी। 2023-24 ऑयल कंपनीज 130,000 करोड़ के फायदे में थी। 2024-25 ऑयल कंपनीज, सारी ऑयल कंपनीज ये 80,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और 2025-26 जिसमें आपका मार्च 26 भी आता है, उसमें 117,000 करोड़ के प्रॉफिट ऑयल कंपनीज थी। और अप्रैल से लेकर जून तक का जो वक्त है, मैं सिर्फ आपको इंडियन ऑयल का डेटा दे रहा हूं, 5,633 करोड़ के प्रॉफिट में थी जब संकट था। जून अप्रैल से जून तीन क्वार्टर में 5,663 करोड़ का प्रॉफिट इंडियन ऑयल का अकेले था सिर्फ। तो यह कहना कि हमारी ऑयल कंपनीज घाटे में चल रही थी, ये तथ्यों से परे है। और मैं नहीं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस बारे में झूठ बोला है।
1: चलिए ठीक।
0: और ये फैक्ट,
1: एक काउंटर आर्गुमेंट चुके आपने, जल्दी जल्दी
0: मैं, मेरे कम से कम ये बात मेरे गले नहीं उतरती है कि हम एक जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करें और उस नेता को सपोर्ट करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा और जिसके खिलाफ वारंट है और वो वॉर क्रिमिनल है, और हम इस बात को जस्टिफाई करें कि अगर कोई अमेरिका या कोई देश किसी दूसरे देश पर अगर हमला करता है, हम उसको सही ठहराने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है ये भारत की जो विदेश नीति है उसकी नैतिकता के खिलाफ।
1: ठीक है जी, आशुतोष जी मैं आपके इस लास्ट पॉइंट से शुरू करूंगी, हालांकि मेरे को आपके डेटा पे भी करना है। मतलब इंटरनेशनल क्राइम बॉर्ड जस्टिस की आप बात कर रहे हो, सर ने बड़ा बखूबी समझा दिया है ये कैसे होते हैं। सर ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कैसे वो इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस में होता है। इसके ऊपर कम से कम आप अमेरिका का तो साथ ना दे सर, ये बहुत एक विडंबना भरा आपका सवाल है। बाकी जो बात सर ने करी, आपने ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल कंपनीज की बात करी, आपने डेटा के ऊपर सवाल उठाया। सर ये डेटा कल का है कि 47,781 करोड़ का ऑलमोस्ट नुकसान झेल रही हैं ऑयल की कंपनीज। और जो आप बात कर रही हो कि अगर उनको फायदा हुआ जब भी हमने तेल के दाम कम थे, ऑयल बॉन्ड्स का आप भूल गए। ऑयल बॉन्ड्स बच्चों इतना ज्यादा हमने उसका इंटरेस्ट रेट दिया जितना हमारे पास उसका प्रिंसिपल नहीं था। और मैं आपको उसमें भी बता दूं, उसमें भी गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स के तहत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपीज लिया, और जो फॉरेक्स आई उससे वो हमारी $44 बिलियन से $97 बिलियन हुई 2020 से 2025 में। तो ये आप उसके अपसाइड नहीं देखते।
3: लास्ट
1: पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो आपने बात करी गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर के मैं एक चाणक्य नीति के एक शब्द से खत्म करूंगी अंजना जी, कि अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार
3: नेक्स्ट राउंड में,
1: अफवाहों का सबसे बड़ा अजय जी, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार असत्य का सत्य की अनुपस्थिति, अफवाहों का सबसे बड़ा हथियार सत्य की अनुपस्थिति नहीं होता है बल्कि लोगों का अधूरा ज्ञान होता है, जो ये अधूरा ज्ञान अजय जी जैसे और आशुतोष जी जैसे,
3: समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए, नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड, प्रॉमिस, नेक्स्ट राउंड, प्रॉमिस, आइए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आइए गौरव जी, अजय उपाध्याय जी, रिबटल राउंड में एक एक मिनट का समय आपका शुरू होता है, उसके बाद कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो महाजन जी पूछ लीजिएगा, चलिए गौरव भाटिया जी, रिबटल राउंड 60 सेकंड्स, आपका समय शुरू होता है अब।
4: देखिए सबसे पहले तो जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, और मैं बिल्कुल टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि अब घर आ जाएंगे और मेडल्स खरीद लिए, तो मैं ये कहता हूं ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 28 देशों ने, जिसमें इस्लामिक मुल्क भी है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, ये बात इनसे पचती नहीं है, हाजमोला लीजिए आप। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता, अभी बात आ गई किसको सपोर्ट करना है क्या, मैं आज विषय पे रह के ही अपनी बात रखूंगा। हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भारतीय भूखा नहीं सोया है, सप्लाई में कोई कमी नहीं, पेट्रोल पंप खुले रहे, गैस के सिलेंडर आते रहे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है आशुतोष जी मेरे मित्र हैं, उनका वजन भी बढ़ गया क्योंकि माँ ने रोटियां बहुत खिलाई है, गैस का सिलेंडर घर पे था। दूसरी बात ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व,
3: समय समाप्त, टाइमिंग अब रखना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है 10 सेकंड, ये दादागिरी नहीं चलेगी आप।
4: तीसरा पाइप गैस लाइन कनेक्शन बढ़ाना, ये मोदी जी ने कहा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, और गैस का सिलेंडर बिल्कुल सही कहा, 1241 रुपए का जनवरी 2014 में मिलता था और आज उसका रेट 950 के आसपास है, आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन के विपरीत जाके सस्ता हुआ। और इतना कहता हूँ, रेणुका चौधरी का बयान निकालिएगा, 1241 रुपए पे कहती थी गरीब 1241 का सिलेंडर नहीं ले सकते, आज मोदी जी 950 में
3: दे।
5: देखिए गौरव भाई ने बड़ी बड़ी बात की कि भाई प्रधानमंत्री जी तो लगातार एक से एक बातें कर रहे हैं और विदेश में घूम रहे हैं, वाकई ये कहावत है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, देश चाहे जितना बर्बाद हो जाए मोदी जी को अपने मेडल से ही चिंता है और मेडल के अलावा उनको कुछ नहीं लेना देना है, ये सच्चाई आप स्वीकारिए। जब देखिए 3 हमारे नाविक इसी ईरान युद्ध के दौरान शहीद हुए, उनको अमेरिकन सैनिकों ने मारा, प्रधानमंत्री जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि ट्रंप के साथ कुछ बात करेंगे, कहेंगे, चुप्पी, मौन व्रत का तो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, हर मुद्दे पर मौन व्रत लगाया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान की बात है वहां भी वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये मौन धारण करने का जो महारथी है उनसे सिर्फ हम इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई कभी कभी इस देश में आइए और जो मन की बात करते हैं जरा आम जन की भी बात कर ले, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से लोग परेशान है, देश में ईरान युद्ध के जो परिस्थितियां थी तो थी, अब पेट्रोल डीजल जब इतना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कम हुआ है फिर भी हम और आप क्यों अपना हमारा जेब आप लूट रहे हैं,
3: 43 लाख करोड़ का लूट किया
5: इन्होंने पिछले 12 साल में, जब 40 रुपए डॉलर आज क्या हाल है, आज फिर वही रुपया।
4: देखिए विषय से भटकते हुए केवल नकारात्मक राजनीति करना इनका काम है, मोदी जी को गाली देते हैं और अर्ज किया है राहुल गांधी के लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से, इसलिए देश के लिए सर झुकाओ, मोदी जी का सम्मान करो। दूसरी बात, एक बात और कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने कहा तुरंत कि ईरान की तरफ आ जाओ, लेकिन मोदी जी ने कहा हम अमेरिका से अपाचे लेते हैं, चिनूक लेते हैं, इजराइल हमें ड्रोन देता है और ईरान भी हमें कहता है कि हम मित्र देश हैं, ये होती है बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, इसे सज्जन हार जी जानते हैं जो मोदी जी ने
5: उठाया। वाकई सर झुकाना चाहिए यदि देश की बात आए, लेकिन देश का सर नहीं झुकना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार अमेरिका के यहां जाकर के बिछने का काम किया, इजराइल में जाकर बिछने का काम किया, ईरान के साथ जिस तरह दूरियां बढ़ाने का काम किया, यह स्पष्ट पूरा देश और पूरा विश्व जो है हम पर धिक्कारता रहा कि कैसे प्रधानमंत्री जो भारत इतना पुराना
4: राहुल गांधी पे धिक्कार रहा है,
5: लेकिन उसके साथ ये ऐसा प्रधानमंत्री जो एक वैसे देश के साथ इजराइल के साथ जो बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, सरेआम विश्व में अशांति फैलाया है, उसके साथ आप खड़े हैं और भारत के लोगों को
3: धन्यवाद आप दोनों का, बहुत अच्छा
5: उठाना पड़ रहा
3: है, बहुत अच्छा आप दोनों का। ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी,
6: एक मिनट जरा,
3: अच्छा एक जल्दी,
6: मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स पर इस दौरान 3.5 महीने जब तक युद्ध चला मैं गया, रोज रुपया 100 हो जाएगा 150 हो जाएगा, ऑयल रशिया से ऑयल खरीद बंद कर दी है, ये सर देश झुक गया है, आर्थिक सुनामी आने वाली है, रसोई घर की गैस जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं जा रहे हैं, टैक्स कम हुआ तो क्या हुआ, सरकार ने क्या ऐसी बड़ी बात कर दी, यानी कुल मिलाकर के ये जो ये मतलब मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कम से कम मैंने पहले भी कहा कि देश की बात करें, देश कहां झुका है, आज हमने 6 महीने जो इस 6 महीने में हमने तेल खरीदा है, अजय उपाध्याय जी, रूस से जितना तेल खरीदा है उससे कहीं कम हमने पहले 2025 के पहले 6 महीने में खरीदा था, आप हाथ मत
5: हिलाइए, सुनिए ना, मैं अब आपका उत्तर दे दूं, आपको बता रहा हूं, जज के कुर्सी पर हैं, आरएसएस के कार्यालय में नहीं है, आप इतना तो देखिए
6: मेरी बात
5: से, बड़ी शोभा नहीं देती, मुझे उत्तर देने दीजिए, आपने कहा देश में कोई समस्या, अरे भाई
4: नहीं, आरएसएस के कार्यालय में नहीं, आपकी बात हो रही है, आप जज की इज्जत करते हैं,
5: वो जिस तरह से प्रश्न कर
4: रहा है, क्या गलत किया, अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो आप ये सब कहने लगे
5: क्या,
4: हम भी कहे, हम भी आपसे कहे राहुल गांधी का हेडक्वार्टर नहीं है, गलत बात है, आप बताइए क्या ठीक है, छत पे उंगली उठाने क्या ठीक है, आप बताइए,
5: विदेश मंत्री झूठा है क्या, विदेश मंत्री कहता है कि अमेरिका ने जैसे जैसे कहा,
4: आपके पास मुश्किल प्रश्नों के उत्तर नहीं है,
5: अरे सुनिए ना, आप चिल्लाइए नहीं, अमेरिका क्या जयशंकर जी ने नहीं कहा कि रसा से जैसे जैसे कहा अमेरिका ने तेल खरीदो तो मैंने खरीदा,
4: रशिया से तेल क्या आपने चाहिए आपको,
5: जयशंकर जी से बड़े हो गए क्या आप,
4: रुपये की सरकार में 1% तेल आता था,
5: विदेश मंत्री
4: हमारी सरकार में 35-40% आया और 20 बिलियन डॉलर,
5: जयशंकर जी पर आके विदेश मंत्री झूठा है या झूठे,
3: चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर बोलने का, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है अब।
1: शुरुआत करूंगी सुबोध जी की बात से, प्रोफेसर सुबोध आपने कहा कि हमारे यहाँ पे जो तरीका है अभी फर्टिलाइजर खत्म होने वाला है खरीफ क्रॉप के लिए, आप शायद राहुल गांधी के बूट्स में स्टेप इन कर गए हो, आर्थिक सुनामी आने वाली है जो कभी आई नहीं, यहाँ पे डेड इकोनॉमी है जो कभी हुई नहीं, तो आपका भी ये भविष्यवाणी बिल्कुल असत्य होगी ये मैं कह सकती हूँ। बाकी जो बात आशुतोष जी आपने कही थी कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसके बावजूद भी हमारा ऑयल इम्पोर्ट क्यों बढ़ा है, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो 37 मिलियन मेट्रिक टन था जो गिर के 26.5 मिलियन मेट्रिक टन हुआ है, क्योंकि हमारे बॉम्बे हाई जो है उसमें जो हमारे तेल के जो हमारे रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें आपको तकलीफ होती है, और इसमें हमारा क्रूड का जो डिमांड था वो 3.8 मिलियन बैरल्स पर डे से 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक जीडीपी है वो तकरीबन डबल हुआ है इस पीरियड में। और जहां तक बात आती है मैम की, बात हो रही थी कि इसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेटोस, पीस, जीरा, मोटर गैस, जीप्स, टू व्हीलर्स, इन सबके जो रेट है वो कम हुए हैं।
3: समय समाप्त हुआ,
1: मैं खत्म करूंगी राहत इंदौरी जी की बात से, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
3: चलिए आशुतोष जी, आसमान है या धुआं आप बताइए, शुरू कीजिए आपका रिबटल राउंड का 60 सेकंड शुरू होता है अब।
0: नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं फिर अपनी इस बात को दोहराऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे डेटा पे शक किया है, मैंने अभी गूगल किया है, और मैं बता दूं कि इंडियन ऑयल का अप्रैल से जून के बीच में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 5,688 करोड़, ये इंडियन ऑयल का है, ये अप्रैल से जून के बीच में है जब हमारी क्राइसिस जबरदस्त तरीके से थी। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर कहा। जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई नहीं थी कि उस दौरान जबरदस्त तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी? अगर आप में से किसी को शक हो, सिर्फ अभी मार्च के महीने में, 6 तारीख मार्च के महीने को आप टाइम्स ऑफ इंडिया गूगल करिए, आपको सारा अंदाजा लग जाएगा कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां से गांव से छोड़कर, शहर छोड़कर गांव गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑटो वाले सब जो बेचारे थे वो गए छोड़ के। आप उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप आंख बंद कर बंद करना चाहते, कुछ भी कहना चाहते तो सही है, मुझे कुछ नहीं कहना उसमें।
3: समय समाप्त हुआ और समय का एकदम गजब ख्याल रखा है ताऊ, कुछ बोलना है?
7: मुझे बोलना बस पिछली,
0: आपने हंस दिया, पिछली बात नाजा नहीं होगा,
7: पिछली जो बात थी उसको आशुतोष जी आगे भी बढ़ाए कि हमको बहुत ज्यादा लगता है कि ईरान हमारा मित्र है और इन्होंने उसमें जोड़ दिया कि इसराइल से संबंध रखना भी अनैतिक है अंतर्राष्ट्रीय, और ये कि हमारी बॉन्डिंग रही है बहुत सिविलाइजेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो बॉन्डिंग पे चलते नहीं। मोदी जी की ट्रंप से बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग थी, हमने नतीजा देख लिया है, कुछ नहीं होता बॉन्डिंग से। कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब भी लोग किसी से मित्रता करते हैं फायदे
3: दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी है जब हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं, और जो ऑडियंस यहां पर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, अगर आप टीम गौरव भाटिया के लिए वोट करना चाहते हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी उनके साथ हैं और इसी के साथ साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, तो आप हां पर वोट करेंगे, नहीं वाले नहीं पर कर सकते, और कह नहीं सकते वालों के पास तो ऑप्शन है ही। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर हैं आप भी QR कोड स्कैन करके जरूर वोट डालिए। और अब जजेस हमें बताएंगे कि आज का बहसबाजी कर कौन है, लेकिन उससे पहले वोटिंग शुरू करते हैं। चलिए वोटिंग शुरू करते हैं, और वोटिंग शुरू हो चुकी है, देखिए 53:50 सेकंड बच रहे हैं, और फिलहाल नहीं कहने वाले 28% हैं, 60% हाँ कहने वाले, 13% कह नहीं सकते वाले भी हैं। तो ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया 54-34 का मामला हो रहा है, 58-30 का मामला 60-30 हो गया है। तो अभी थोड़ा सा समय और है, लगभग 30 सेकंड अभी और है जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 57, 31 और 12% कह नहीं सकते वाले हैं। आखिरी के 25 सेकंड, मुझे लगता है इतनी देर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है, डाल दिया है सबने, एकदम सब ऐसे उचक के देख रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट, हमने अपना वोट वेस्ट तो नहीं किया है, कौन जीत रहा है आज। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष या विपक्ष दोनों उतना ही जरूरी होता है, तो हाँ जितना जरूरी है, नहीं भी उतना ही जरूरी है। 58% 4-3-2-1, और इसी के साथ टीम गौरव भाटिया ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया में जीत गई है, सत्य प्रकाश मिश्रा जी और प्रोफेसर तनेजा इनकी टीम जीत गई है। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में नीले गमछे वाले भी कुछ बच्चे ताली बजा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप, उनको भी आप धन्यवाद करिए। अब वो घड़ी है जब आप लोग बताएंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन है भाई, 6 वक्ताओं में से।
2: सभी को सुनने के बाद जो हमारा यूनानिमस कंसेंसस डिसीजन है जजेस का, वो है जो श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट
3: सत्य प्रकाश मिश्रा जी,
2: उनको करार दिया जाता है जो वो विजयी रहे हैं अपने तर्क रखने में, जितना उन्होंने एनर्जी एंथुजियाज्म जितनी वो दिखाया बहुत ही अच्छी तरीके से,
3: काफी ऊर्जावान होकर बोलते हैं सर, काफी ऊर्जा, तालियां जबरदस्त। तो आज के बहसबाजीगर के विजेता हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, और कई बार तो मुझे लगता भी है कि मतलब मैं पानी वानी दे दूं वो गुस्से में दिखने लगते हैं, हिलने लगते हैं, लेकिन बहुत पैशनेटली हर विषय पर बोलते हैं। इसी के साथ बहसबाजीगर में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद जनता का। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Sokudo.
10: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
11: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
15: Beautiful. हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
10: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
11: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
13: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
14: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: सर्वदलीय बैठक की एक तस्वीर ये है। रिजिजू, राजनाथ, नड्डा और अन्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। तभी एक और तस्वीर आई। मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले ही सुदीप बंदोपाध्याय को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर एनसीपीआई नेता पहुंच भी गए। इसी बात पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
5: जिस तरह संविधान को अवहेला करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
4: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक टीएमसी के बाकी सांसदों की एनसीपीआई को मान्यता नहीं दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के सांसदों के साथ न बैठने की मांग को मानकर उन्हें अलग जगह बैठने की मंजूरी दी है। रिजिजू का यही न्योता अब विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बाकी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा। वैसे विपक्ष की नाराजगी सिर्फ बाकी सांसदों को लेकर ही नहीं, कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सदन में शोर शराबा तय है। उनमें सबसे अहम मुद्दा है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ। साथ ही नीट पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पेट्रोल विवाद, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर सरकार भी अपने तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फार्मूला और वो विवादित संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद। सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर के सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय। 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष। सांकेतिक वॉकआउट। कांग्रेस पर सीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। बंगाल दौरे पर अमित शाह का तीसरा दिन। कोलकाता में कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। बुलडोजर एक्शन से पहले जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अखिलेश यादव की अपील। कहा बदले की भावना छोड़े सरकार, एक दिन में पास करवा सकती है नक्शा। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। मलबे में दबे कई लोग। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक आज दिख गई है। सर्वदलीय बैठक आज हुई। सर्वदलीय बैठक में कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से इसका बॉयकॉट किया और सरकार को यह बता दिया कि लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। वहीं 20 बागी टीएमसी सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर यह हंगामा विपक्ष की तरफ से मचाया गया।
1: संसद का मॉनसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गए हैं, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी भी हुई है, जबकि गठबंधन इंडिया को भारी नुकसान हुआ है।
6: ये देखिए अभी टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है। ये 6 एमपीस यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है, और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, एनडीए की ताकत बड़ी है, और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो। अब ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने ही की थी। ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा है कि इस मसले पर चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने ही मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
8: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया है कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी तीनों यादव को थी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
1: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया, कहा कि आज मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को मंजूरी दे दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: तो सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्त सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
1: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
11: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
12: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
1: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से अनिशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको देते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म करवा दिया गया है और आज तड़के पुलिस फोर्स धरनास्थल पर पहुंची। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेज दिया गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं। छतरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने इस गिरफ्तारी से इसे इनकार किया कि गिरफ्तारी नहीं है। उनका कहना है कि किसी को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही हिरासत में लिया गया। पन्ना जिले से आए लोगों को बसों से वापस भेजा गया जबकि 14 दिनों से अनशन पर बैठे अमित भटनागर की तबियत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि जिस अंडरब्रिज के नीचे यह आंदोलन चल रहा था वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। सुरक्षा कारणों से प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की इस योजना से बुंदेलखंड के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित होगी, लाखों लोगों को पेयजल मिलेगा। लेकिन परियोजना के लिए छतरपुर और पन्ना के कई गांवों का विस्थापन भी तय है।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपए के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। यह खबर रायपुर से है, जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
1: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है। ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है। जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है, ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया। लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि रंगदारी न देने के चलते ये पिटाई की गई।
1: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं। ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
14: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
1: मगर सवाल है क्यों? आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी नहीं दी, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
14: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे। चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
1: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: आगे बढ़ते हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखा था, जहां पर देर रात बादल फटा और उसके बाद तबाही मची। राजौरी में नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश के बीच में संकट बढ़ता जा रहा है।
15: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
16: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहां पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
15: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
17: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पता नहीं कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घूमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
15: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं, भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
16: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को, इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
15: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है, पुंछ में ही 10 लोगों की जान गए हैं और एक मौत राजौरी में हुई है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीर सामने आई है।
18: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है, कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं
19: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
18: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है, रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया।
1: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार आठवीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है और ये टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
20: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
1: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
1: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
1: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
3: इसीलिए फेना ही लेना।
4: आगे आगे।
5: अरे उधर उधर।
4: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
9: वी आर ओवर जिमी।
10: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: जैसे आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया है। इस आग पर काबू के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर को लगाया गया है, जो लगातार आग पर पानी डाल रहे हैं। बचाव कर्मियों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती ही जा रही है। घटना के इंचार्ज फ्रोड प्रेस्टस ने बताया कि आग पहले घरों में लगी और देखते ही देखते पास के जंगल में फैल गई। वहीं शहर के मेयर ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है और कहा कि पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है।
1: flytte, så måtte jeg hente litt, eller evakuere, så måtte jeg hente litt ting. Og da så jeg det brant bak huset, og var der med vannflaska mi som jeg hadde, og da kom det et helikopter og slapp vann som jeg fikk i nakken. Så det var litt skremmende, men bra.
0: नॉर्वे की राजधानी ओस्ले से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद इस इलाके में आग लगने की वजह से घना काला धुआं छाया हुआ है, जिससे कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने या लापता होने की कोई खबर नहीं है। ये आग टेरेस हाउसिंग वाले इलाके में लगी है। बता दें कि यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से हाल के दिनों में फ्रांस, इटली और स्पेन सहित कई देशों के जंगलों में आग लगने की घटना हुई है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो।

नॉर्वे के डॉर्मिल शहर के पास लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। पहाड़ी के ऊपर बने घरों में लगी ये आग पास के जंगलों तक फैल गई है, जिसकी

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बेल चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय। 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। बंगाल दौरे पर अमित शाह का तीसरा दिन, कोलकाता में कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सुनार बांग्ला बनाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

आज है कयामत की रात। दिल की धड़कनों को काबू करने की रात। वर्ल्ड चैंपियन की ताजपोशी की रात। न्यू जर्सी में आज किसकी जमेगी थार। फिर चलेगा मेसी का मैजिक या यमाल की टीम करेगी धमाल। किसी का टूटेगा रिकॉर्ड तो किसी का टूटेगा दिल। अर्जेंटीना का अटैक जीतेगा या स्पेन का डिफेंस। फाइनल फाइट में दिखेगा किसका दम। कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ निखिलनाज है। 38 दिन, 103 मैच और दो ऐसी टीमें जिनमें से आज एक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, उस खेल का जिसे कहते हैं द ब्यूटीफुल गेम, फीफा वर्ल्ड कप। कयामत की रात है निखिल जी आज तो।
1: बिल्कुल, और आपने बताया कि 38 दिन और 48 टीमें थी, अब कितनी रह गई है? सिर्फ दो टीमें रह गई हैं। और दिलचस्प बात यह है विक्रांत की, एक तरफ है साउथ अमेरिका की चैंपियन, दूसरी तरफ है यूरोप की चैंपियन। एक है वर्ल्ड नंबर वन, दूसरी है वर्ल्ड नंबर टू। इससे बेहतर फाइनल की तो कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। दोनों टीमों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जैसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुन लेते हैं दोनों जो खेमे हैं इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में।

0: आज है सबसे बड़े खेल महाकुंभ का सबसे बड़ा मुकाबला, अर्जेंटीना बनाम स्पेन। 39 साल के मेसी बनाम 19 साल के यमान, लैटिन अमेरिकन बनाम यूरोप की टक्कर, फुटबॉल खेलने के दो अलग अंदाज की टक्कर। 39 दिन और 103 मैचों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तय होगा कि नया वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। क्या लगातार दूसरी बार मेसी की टीम ही बादशाहत बरकरार रखेगी या फिर 16 साल बाद स्पेन के सिर सजेगा ताज। स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरेगा। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के पास चौथी बार ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटीना की टीम इटली और ब्राजील के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। अर्जेंटीना की उम्मीदें इस बार भी मेसी पर ही टिकी रहेगी। न जाने कितनी ही बार उन्होंने चमत्कार करके टीम की वापसी कराई और विरोधी टीम को मायूस कराया। अब अर्जेंटीना के सामने है स्पेन और उसके स्टार खिलाड़ी यमाल। मेसी और यमाल की कहानी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। ये तस्वीर तब की है जब मेसी स्पेन के ही क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते थे। करीब 19 साल पहले बार्सिलोना के एक चैरिटी फोटोशूट में मेसी ने 3 महीने के यमाल को गोद में उठाकर नहलाया था। तब मेसी खुद 20 साल के थे। आज वही यमाल पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसी के सामने उतरेंगे और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। वैसे दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वर्ल्ड कप में दोनों का आमना सामना अब तक सिर्फ एक बार हुआ है। 1966 में हुए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था। इस बार की फाइनल फाइट अर्जेंटीना के लिए आसान नहीं होगी क्योंकि उसके सामने है स्पेन की वो टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है, यानी उसके डिफेंस को भेदना मेसी के लिए आसान नहीं होगा। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। उसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया। गोलकीपर उनई सिमोन ने वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा 6 क्लीन शीट का रिकॉर्ड बनाया। वही कप्तान रोड्री ने रिकॉर्ड 648 सफल पास पूरे किए। इधर अर्जेंटीना की टीम लगातार 7 जीत के साथ फाइनल में पहुंची है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन को हराया। इसके बाद केप वर्डे, मेस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जिसका हर एक पल रोमांच की गारंटी लेकर आ रहा है और मेसी के फैंस के लिए तो यादों का खजाना ही खुल सकता है जो टीम को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने के साथ साथ गोल्डन बूट जीतने की जद्दोजहद भी करेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: भाई दुनिया ने पेले को देखा था, दुनिया ने मैराडोना को देखा, दुनिया आज मेसी की बात करती है। मैं जानता हूं कि आमतौर पर गोट आप गोल के हिसाब से करते हैं लेकिन फिर यह भी देखते हैं कि आपने अपने मुल्क को टाइटल्स कितनी दिलाई। मेसी 2016 में रिटायर हो गए थे, 26 आ गए, एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। क्या आज रात ये मेसी की रात है?
2: वैसे बड़ी एक दिलचस्प चीज ये भी है विक्रांत, जो मुकाबला हो रहा है मेटलाइफ स्टेडियम में, ये वही स्टेडियम है 2018 में लियोनेल मेसी रोते रोते उन्होंने कोपा अमेरिका का फाइनल खेला था इस स्टेडियम में, और रोते रोते उन्होंने कहा था बस अब मैं अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलूंगा, मैं जितना दे सकता था दे चुका हूं, एक भी ट्रॉफी नहीं थी। उसके बाद वो 3 खिताब जीत चुके हैं, 2 कोपा अमेरिका, 1 फीफा वर्ल्ड कप। उस दिन कहानी खत्म होने वाली थी, क्या पता आज कहानी कुछ इस तरह से हो कि 2 टाइटल उनके नाम हो। देखिए अगर आप मेरे से पूछेंगे मुकाबले के बारे में, ऑन पेपर मैन टू मैन आप तुलना करेंगे तो स्पेन की टीम बेहतर नजर आती है, ज्यादा युवा टीम है।
1: क्या बात कर रहे हो?
2: 2 सालों से आप मानेंगे 2 सालों से स्पेन की टीम एक मैच नहीं हारी है किसी भी लेवल पे।
1: आज रात
2: 27 मैचेस वो खेल चुके, नहीं 37 मैचेस खेल चुके और एक भी मैच वो नहीं हारे हैं। सबसे बेहतरीन जो रन है अनबीटन रन उन्होंने टाई कर लिया इटली के साथ, तो इतना उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा। लेकिन
1: प्लस उनका डिफेंस, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक ही गोल कंसीड किया है,
2: वो भी एक चीज है।
1: आपकी आज गोल लाइन क्या है, स्कोर लाइन क्या है?
2: देखिए उनका बेस्ट डिफेंस है, अर्जेंटीना का बेस्ट अटैक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने किए 19, तो मुकाबला बेस्ट डिफेंस बेस्ट ऑफेंस का है। देखिए मैं जर्सी तो नहीं पहन के आया हूं लेकिन न्यू जर्सी में मुकाबला है तो मैंने पहना है नीला और सफेद। नीला और सफेद आपको पता है किस देश का रंग है, स्पेन खेलेगी लाल, में नीले और सफेद पहना होगा अर्जेंटीना की टीम ने, तो इसलिए मैंने जर्सी तो नहीं पहनी, लेकिन आपको ये बता दिया है कि अर्जेंटीना की टीम क्यों, क्योंकि लियोनेल मेसी अगर आपको याद हो आए थे भारत, है ना, आपने देखा भी था उनको, आप ये दिल्ली के स्टेडियम
1: पे देखा,
2: नहीं आप दिल्ली के स्टेडियम नहीं गए,
1: तो टीवी पे था ना,
2: लेकिन उन्होंने उसके बाद जाने से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था जय माता दी। अच्छा। अगर आपको याद हो उन्होंने दर्शन किए थे, कहा था जय माता दी, वो गुजरात गए थे जाने से पहले, और जब उन्होंने जय माता दी कह ही दिया है तो फिर उनको कप रोकने कोई नहीं रोक सकता इस वक्त, कि कप उनके हाथ में आना ही पड़ेगा।
1: रात को मुकाबला है और एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया खेलती है, एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया देखती है, और वहां पर जाकर जब दो ही टीमें रह जाती हैं तो फिर आप जानते हैं कि एक एक मिनट एक एक सेकंड सांसें ऊपर नीचे होती है। लेकिन अर्जेंटीना की एक बात यह भी रही है कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कई मुकाबलों में, खासतौर से जो नॉकआउट के मुकाबले हैं, उसमें कमबैक किया है। वो इजिप्ट का मैच उठाएं या फिर आप इंग्लैंड का मैच उठाएं, कि नीचे से ऊपर आए हैं, हारते हारते ये टीम जीती है। और कभी कभी ना ये जो करिश्माई जीते होती हैं वो आपको विश्वास ज्यादा देती हैं। अब बड़ा सवाल, वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा, और एक वर्ल्ड कप में सवाल जो बड़ा बन जाता है कि गोल्डन बूट किसे मिलेगा। अब गोल्डन बूट के लिए क्या होता है कि आपने कितने गोल किए हैं और आपने कितने असिस्ट किए हैं। लेकिन कल रात जो थर्ड पोजीशन मैच हुआ, हालांकि फ्रांस हार गया, इंग्लैंड जीत गया, लेकिन एम्बापे ने जो गोल किए और असिस्ट किया, अब अचानक से ये समीकरण बदल गया है। क्या मेसी को गोल्डन बूट मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है?
2: तो देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहली बात तो मेसी को दो गोल करने होंगे, बराबरी पे जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है, मेसी तो हर मिनट खेलते ही हैं, वो 90 मिनट अगर खेल गए तो उनका प्लेइंग टाइम एम्बापे से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दो गोल मेसी करते भी हैं तो एम्बापे को मिलेगा गोल्डन बूट। मेसी को अब गोल्डन बूट अगर चाहिए तो दो गोल से काम नहीं चलेगा,
1: असिस्ट भी करना पड़ेगा
2: आपको, या तो एक असिस्ट करना पड़ेगा
1: या
2: तीन गोल करने पड़ेंगे, ये दो चीजें हैं तभी उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप लियोनेल मेसी हो गए ना, वो कहेंगे गोल्डन बूट जाए भाड़ में, मुझे चाहिए ट्रॉफी, क्योंकि 2014 की बात है, फाइनल में खेलते हैं, जर्मनी से हार जाते हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला था उस टूर्नामेंट में, लेकिन ट्रॉफी तो नहीं मिली थी ना, तो उनकी दिल की चाह है कि वो ट्रॉफी को जीते और उस पर उनकी आज नजरें होंगी। फर्क बस इतना है कि अर्जेंटीना को अगर जीतना है तो मेसी को फॉर्म में होना पड़ेगा। स्पेन के लिए लामिन यमाल की बात हो रही है, अगर वो फॉर्म में नहीं भी होते तो स्पेन जीत सकती है। स्पेन सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है, अर्जेंटीना एक खिलाड़ी पर निर्भर है जिनका नाम है
1: अर्जेंटीना की। आपने एक खिलाड़ी की बात की और आप जानते हैं कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में, अब दुनिया में ब्राजील और अर्जेंटीना फुटबॉल की बात आती है तो उनकी फैन फॉलोइंग तो बनी जाती है। इंडिया में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अर्जेंटीना और मेसी, ये घर घर में पोस्टर लगे हैं, तो हिंदुस्तान तो शायद मेसी को, अर्जेंटीना को चीयर करेगा। और निखिल ने तो एक बता ही दिया कि वो जाते जाते इंडिया से कह के गए थे जय माता दी, अगर वर्ल्ड चैंपियन बने तो दोबारा आऊंगा। एक और चीज जो बन जाती है दिलचस्प वो ये है कि मैच है स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान, लेकिन मेसी ने ना सिर्फ अर्जेंटीना से अपना नाम कमाया है, उन्होंने स्पेन में भी अपना बड़ा नाम कमाया जब वो एफसी बार्सिलोना के लिए खेले। इनफैक्ट आज अगर वो हर बच्चे के हिंदुस्तान में फेवरेट है, बारसा की वो टी शर्ट है, तो वो स्पेनिश वो जो लीग है ला लीगा, उसके कारण है। अब सवाल ये आ जाता है कि मुल्क तो स्पेन को हर स्पेनिश करेगा, लेकिन क्या वहां पर भी ऐसा होता है जो सचिन के लिए होता था कि सचिन 100 बना लें और फला फला कंट्री जीत जाए? क्या लोग ये कह रहे होंगे कि यार भले ही मेसी दो गोल कर दे पर जीत स्पेन जाए? मैं स्पेनिश लोगों की बात कर रहा हूँ।
2: स्पेनिश लोग में भी सिर्फ जो कैटलूनिया है वहां ये शायद ऐसी हो सकती है कि हाँ मेसी के दो गोल हो जाए लेकिन जीत तो स्पेन को ही मिले, लेकिन जो बाकी स्पेन है, जो लार्जर स्पेन है, वो तो वैसे भी बार्सिलोना से नफरत करता है, तो मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं तो कोई चांस ही नहीं है। ये कांटे की टक्कर होने वाली है, ये वो टक्कर होगी जहां पर आप देखेंगे थोड़ी लड़ाइयां भी होंगी, थोड़े फाउल्स भी होंगे, गोल तो हम देखेंगे लेकिन वो जो थोड़ी सी एज होती है ना वो भी आपको देखना,
1: नीडलिंग
2: थोड़ी सी
1: नीडलिंग। कल रात तीसरे जगह के लिए मुकाबला हुआ। अब उस वक्त क्या होता है ना, दोनों टीमें सेमीफाइनल हारी होती हैं, फाइनल में नहीं जाती हैं, डिजेक्टेड होती हैं, और लोग कहते हैं यार इस मैच का क्या फायदा, दोनों तो हम फाइनल में जा नहीं रहे। लेकिन इंग्लैंड ने कल रात को जिस तरह से फ्रांस को हराया, कम से कम घर पे वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि तीसरी जगह तो लेकर जा रहे हैं।

0: रोमांच की हदें पार कर गया ये मुकाबला। फ्रांस को 6-4 से बीट कर इंग्लैंड जीत गया ब्रॉन्ज मेडल। क्या नहीं था इस मैच, एक के बाद एक होते दम दना दम गोल। फ्रांस को मायूस करने वाली हैट्रिक और मेसी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाने वाले एम्बापे। आमतौर पर तीसरे पायदान के लिए होने वाले मैचों में रोमांच नदारद रहता है, लेकिन मियामी में खेला गया ये मुकाबला अलग ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। सेमीफाइनल में स्पेन से हारने के बाद उतरी फ्रांस की टीम शुरुआती हाफ में पूरी तरह बिखरी नजर आई, जिसका फायदा उठाकर इंग्लैंड ने 4-0 के तरफा और मजबूत बढ़त बना ली थी। फिर एम्बापे ने पासा पलटना शुरू किया। एम्बापे के इस दूसरे गोल की बदौलत फ्रांस ने स्कोर लाइन को 4-3 कर दिया था और वो मुकाबले में वापस आ चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कहां हार मानने वाली थी। तेज तर्रार फॉरवर्ड बुकायो साका एक के बाद एक गोल दागते चले गए और हैट्रिक जमाकर ही दम लिया। मैच के आखिरी पलों में डेम्बेल के गोल की मदद से फ्रांस ने स्कोर 5-4 कर दिया था और वो बराबरी के बेहद करीब थे, लेकिन इंजरी टाइम में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए बेलिंगहम ने कई डिफेंडर्स को छकाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और इंग्लैंड की 6-4 की जीत पर मुहर लगा दी। आज तक ब्यूरो।
1: लो जी, वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया। अब 12:30 रात को वर्ल्ड कप फाइनल। स्पोर्ट्स तक हमारे YouTube चैनल और स्पोर्ट्स टुडे हमारे YouTube चैनल पर हम लाइव रहेंगे मैच के दौरान वॉच अलोंग। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को और अंग्रेजी के लिए स्पोर्ट्स टुडे को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
4: देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था. मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है. लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है. और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है. जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है. लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरियट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ. सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा. मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना. वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा.
5: अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था. लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया. ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है.
6: जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम बागची जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है. ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है. छात्र शांतकुन तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे. लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है. सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है. ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
7: मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार कितनी निर्दयी है. इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है. बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे. 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा. और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे. एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है.
8: सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है.
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
9: Shogun Perfumes, the French edition for him and her.

संसद शुरू, राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट। कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ, डीएमके की भी सवाल। बंगाल दौरे पर अमित शाह का तीसरा दिन, कोलकाता में कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत, नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 ने गंवाई जान, मलबे में दबे कई लोग। आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से भिड़ंत। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर सेट होती दिख रही है। जिन अखिलेश यादव पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का बीजेपी हर चुनाव में आरोप लगाती रही, वही अखिलेश यादव बिना लाग लपेट चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाकर बीजेपी को असहज करने में लगे हैं। इसके जवाब में योगी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अखिलेश को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यानी अखिलेश यादव राम के सहारे हैं, बीजेपी कृष्ण पर उनका एजेंडा पूछ रही है। यूपी का चुनाव सियासी युद्ध न होकर मानो धर्म युद्ध में बदल गया है।
1: अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे कुछ ही मिनटों में। दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर उनकी राजनीति की पहचान है।
1: हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से।
2: योगी की तरफ से गुंडे माफिया और दंगाइयों को मिटाने और सबक सिखाने की बात नई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कुछ नया है तो वो है 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीति। योगी हो या फिर अखिलेश यादव, पहली बार दोनों धर्म के भरोसे वाली राजनीति के सहारे हैं। अखिलेश यादव अगर भगवान राम के भरोसे हैं तो बीजेपी को भगवान कृष्ण की आस है। 2027 की सियासी बिसात में हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही दोनों दल अपनी राजनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी हिंदुत्व पर बीजेपी से सियासी प्रतियोगिता दिखाई देती है। जानकार इसकी सबसे बड़ी वजह अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मानते हैं।
3: साचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना
4: चाहिए। आज शंकराचार्य से इस मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, शंकराचार्य
3: सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी है और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी। अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहाँ पर।
2: अखिलेश महंगाई के साथ साथ चढ़ावा चोरी से सनातनियों के दुखी होने की बात कहते हुए सुनाई देते हैं, जिसकी काट के लिए योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में हिंदुत्व और राम मंदिर पर समाजवादी पार्टियों का इतिहास याद दिलाना नहीं भूलते।
1: इनको इस केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी। मैं 17 में आकर के बहुत चकता, जब कावड़ यात्रा का समय आया, बैठक हो रही थी, पुराना शासनादेश निकाला गया तो शासनादेश में था कि कावड़ यात्रा से दंगे हो सकते हैं, इसलिए उसको रोका जाना चाहिए और कोई निकलता है तो घंट घड़ियाल शंख इन सब को रोका जाना चाहिए। लोगों ने कहा साहब दंगे होंगे, मैंने कहा उसके लिए मैं हूं, चिंता मत करो, कोई दंगा नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लूंगा।
2: अब सवाल यह है कि क्या 2027 की लड़ाई हिंदुत्व के सहारे जीती जाएगी, क्या इसके योगी और अखिलेश में कौन सबसे बड़ा राम भक्त और सनातनी होगा, इसकी होड़ मची है। 2027 के लिए अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को काउंटर करने में जुटे हुए हैं, जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ अखिलेश और राहुल गांधी पर जोरदार हमले बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये सारी कोशिशें बीजेपी के वोट बैंक को सेध लगाने की है।
1: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है, आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। ये कौन लोग हैं जो आज आस्था की चर्चा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। इनको हर हर बम बम पर इनको आपत्ति थी, किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी, कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी।
2: अखिलेश पर योगी के हमलों का निचोड़ जनता को याद दिलाने के लिए है कि कौन हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी सियासत करता रहा है और कौन चुनावों की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ है।
1: जो भारत का है उसको जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है।
2: योगी जनता को याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदू और हिंदू दोनों ही अनदेखी होती रही है। अगर किसी को बोलबाला होता है तो वह है मुसलमानों का, जिसके वोट को पाने के लिए हिंदुओं का खुलेआम अपमान भी होता है।
1: क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था, अपने को बाबर का वंशज कहकर के लगातार यहां के लोगों को भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्काई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा।
2: उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी लंबे समय से समाजवादी पार्टी को राम विरोधी और कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी के रूप में पेश करती रही है, लेकिन इस बार मामला अलग है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव आक्रामक है और बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सहारे बीजेपी दशकों से चुनावी लाभ हासिल करती रही है।
1: सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है।
2: योगी अगर रैलियों में समाजवादी पार्टी पर उनके इतिहास के सहारे पलटवार कर रहे हैं तो पार्टी सोशल मीडिया पर कार सेवकों पर गोली चलवाने जैसे मामलों पर याद दिला रही है ताकि अखिलेश को चुनावी हिंदुत्व साबित किया जा सके। बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के पुराने वीडियो क्लिप भी दिखाए गए हैं, जिसमें राम मंदिर आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी के शासनकाल में की गई कार्रवाई का जिक्र है।
5: और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्ते नहीं गिराई जाएगी और नहीं गिराएंगे।
2: मुलायम सिंह यादव की तरफ से उनके भाई रामगोपाल यादव का पुराना बयान भी बीजेपी और उसके प्रवक्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें रामगोपाल यादव कार सेवकों पर गोली चलवाने को सही ठहराते हैं।
6: मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को देव को चाहे न दे।
2: कई दशकों पहले की गई बातें पेश करके बीजेपी अखिलेश के राम प्रेम को दिखावा और झूठा साबित करने में लगी हुई है। वहीं अखिलेश यादव खुलकर बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उन्हें घेर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर उनका निशाना बिल्कुल निशाने पर लगेगा। इसलिए बीजेपी झल्लाकर उन पर और तीखे और पारिवारिक हमले भी कर रही है।
7: सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का ग्रोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा।
2: अखिलेश की राम भक्ति और हमलों के बावजूद बीजेपी रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक मोड में आकर अखिलेश को घेरने के लिए भगवान कृष्ण और मथुरा पर अखिलेश से साथ मांगकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को आगे ले जाने की बात कह रही है। कुल मिलाकर 2027 की लड़ाई हिंदुत्व के पिच पर होने शुरू हो गई है, जो यूपी की सियासत के लिए सबसे अनोखी बात है।
0: बीजेपी की कोशिश अगले साल का चुनाव जीतकर बंगाल में जीत की गति को बरकरार रखने की है। वहीं अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए अपना ताना बाना धर्म के आसपास ही बुनते दिख रहे हैं, जबकि दो साल पहले अखिलेश पीडीए के सहारे बीजेपी को पीछे धकेल पाए थे, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस बार सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। मतलब यूपी के दो सबसे बड़े दल एक दूसरे के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए धर्म का ही सहारा ले रहे हैं।

0: पिछले एक महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी।
1: हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है।
2: राम मंदिर पर योगी इस वक्त सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। चढ़ावा चोरी के बाद आस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए योगी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की गारंटी दे रहे हैं, ताकि बीजेपी का हिंदू वोट बैंक एकमुश्त रहे।
0: सियावर रामचंद्र भगवान की। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सबकी आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है, और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उसकी एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई।
2: 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मामले को कमजोर नहीं पड़ने दे रही और अखिलेश लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से दुनिया के हर सनातनी के आहत होने का दावा करते हुए सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से धर्म को अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ बीजेपी पर सनातन आस्था से विश्वासघात का आरोप लगा रही है, तो वहीं सनातन और श्री राम में अपनी आस्था दर्शाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने क्या फिर से चले गए वनवास वीडियो गीत अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे के दौरान उनके स्वागत में हनुमान बनकर नाचने के मीम और AI वीडियो जारी कर रही है।
3: इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
2: समाजवादी पार्टी से आता संकेत यही है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तक इस मुद्दे को हल्का नहीं पड़ने देगी। इसके लिए अखिलेश रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, जिसमें वो PDA के अलावा राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाते दिखेंगे। समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 10 साल बनाम समाजवादी पार्टी के 5 साल को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसमें टॉप का मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रहने वाला है। इसके अलावा एनकाउंटर के नाम पर होने वाली हत्याओं और बेगुनाहों का घर गिराए जाने के आरोप लेकर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 10 साल में PDA वर्ग पर अत्याचार नाम की जारी किताब भी समाजवादी पार्टी घर घर तक पहुंचाने का प्लान बना रही है।
4: यूपी चुनाव की जंग अब मुद्दों की गलियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 5 बनाम 10 की रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, यानी कि अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल बनाम योगी आदित्यनाथ के 10 साल का कार्यकाल। PDA पर अत्याचार बुकलेट के जरिए घर घर दखल देने की कवायद और आम लोगों तक बीजेपी के शासनकाल में हुए पेपर लीक, अयोध्या चंदा चोरी, इनकाउंटर्स, तमाम ऐसे मामलों तक पहुंचाने की कोशिश इस किताब के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे डेटा के साथ करने वाली है।
2: PDA के दम पर ही अखिलेश ने 2024 में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी 64 से घटकर 33 सीट पर आ गई। इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अखिलेश जनता को अपनी सरकार में हुए कामकाज की याद दिलाकर भी वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे CM योगी गाहे बगाहे खारिज करते रहते हैं।
5: 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, दो बजे तक तैयार होते थे, पांच बजे जिम जाने का समय हो जाता था, सात बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी।
2: अखिलेश की पदयात्रा को बीजेपी ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है और वो कह रही है कि जनता अब काम पर वोट देती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अखिलेश यादव आप चाहे रथ यात्रा निकालिए, पदयात्रा निकालिए या साइकिल यात्रा निकालिए, जनता प्रतीकों से नहीं काम और नेतृत्व से फैसला करती है।
6: जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती।
2: तो चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए ही इस बार मुख्य मुद्दा राम मंदिर ही रहने वाला है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जाने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर सबकी नजरें होंगी। उम्मीद है कि एसआईटी की रिपोर्ट से मंदिर के मैनेजमेंट और दान की गिनती के सिस्टम में बड़े बदलावों का रास्ता साफ होगा। इस मामले में आरोपी मनीष यादव ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में चोरी करने की बात कबूल कर ली है। मनीष ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चोरी शुरू कर दी थी। पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा हुआ और बताया कि चोरी की जानकारी उसे दी जाती थी। चोरी के पैसों का इस्तेमाल भंडारा कराने, महंगे उपहार खरीदने और जमीनों में निवेश करने की बात भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव ने भी कबूल किया है कि उसी ने मनीष की नौकरी लगवाई थी और चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। पूछताछ में दो तीन अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जाँच की जा रही है।
7: टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी से वीआईपी पास ही नहीं बनवाए, जबकि दर्शन भी वीआईपी करवाए गए। अब पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो चढ़ावा चोरी के पैसे हैं वो जीएसटी की फर्म यानी कि जो फर्म है उसके जरिए वैध करने की कोशिश की गई। पुलिस अब इसके लिए जीएसटी के अधिकारियों से भी संपर्क कर रही है जिससे कि पूरी मनी ट्रेल का पता किया जा सके। इस पूरे मामले पर चंपत राय की द्वारा जो वीआईपी पासेस थे उसको भी टिन्नू ने पूरी तरीके से अपने फायदे के लिए प्रयोग किया।
2: माना जा रहा है कि एसआईटी की सिफारिशें राम मंदिर के मैनेजमेंट और दान की गिनती और रखरखाव के सिस्टम में बड़े सुधारों का आधार बन सकती है। 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है, उससे पहले मंदिर की पवित्रता और गरिमा को बहाल करने के लिए शुद्धि अनुष्ठान करवाया जा रहा है। रामलला मंदिर में 18 पुजारी और 5 आचार्य दिन में 2 बार विष्णु सहस्त्र नाम के सामूहिक पाठ से भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं।
8: रामलला के यहां से आशीर्वाद मिला है कि यज्ञशाला में जो रामलला के यहाँ चोरी डकैती हुआ है उसको पाप का विनाश करने के लिए परंपरा चल रही है। बाद में हमारे यहाँ सुंदरकांड चल रहा है, 15 पंडित जी लोग हैं वो पाठ कर रहे हैं और उसके बाद में हॉर्न भी काम शुरू है।
2: बीजेपी की कोशिश है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई करके ये दिखाने की कि उसने दोषियों को नहीं बख्शा। वहीं समाजवादी पार्टी के हिंदुत्व प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वो कृष्ण पर समर्थन मांग रही है। उसे लगता है कि जो यादव खुद को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं वो अखिलेश के मथुरा पर खामोश रहने से परेशान हो सकते हैं। ऐसा करके बीजेपी की योजना अखिलेश को यदुवंशियों का भी हितैषी न होने का ठप्पा लगाना है। कुल मिलाकर इस बार यूपी के दोनों दलों की कोशिश एक दूसरे के कोर वोटर को अपने पाले में खींचने की है।
7: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी आरएसएस और योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीधा सवाल प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उठाया है। राहुल गांधी और खड़गे ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले पर बर्दाश्त योग्य नहीं है। इस पूरे मामले को कांग्रेस अब सीधा प्रधानमंत्री को घेरने की बात कह रही है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कि संघ बीजेपी और योगी सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब सीधा प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है।
2: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
9: अखिलेश यादव का हौसला 2024 के चुनाव नतीजों के बाद बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश को लेकर सवाल उठे कि क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अखिलेश चुपचाप रणनीति बनाने में जुटे रहे। अयोध्या में चढ़ावा मामले से उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिला और अब विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर समाजवादी पार्टी का प्लान सामने आया है, जिसमें अखिलेश बनाम योगी के कार्यकाल को समाजवादी पार्टी जनता के सामने रख रही है।

0: गाजियाबाद में दुधेश्वर धाम पहुंचकर रुद्राभिषेक करना हो,
1: गांधी जी का जय श्री राम, गांधी जी का जय श्री राम, गांधी जी का जय श्री राम।
0: संभल के धार्मिक महत्व पर योगी की तरफ से फोकस करना हो,
2: सियावर रामचंद्र भगवान की।
0: पश्चिमी यूपी के अपने ताबड़तोड़ दौरे में योगी की कोशिश विकास से ज्यादा आस्था के नाम पर वोट मांगने की लगती है।
3: श्री हरि कृष्ण की यह पावन भरा है,
0: इसलिए वो अमरोहा को वासुदेव तीर्थ के नाम से बुलाते हैं, संभल को भगवान कल्कि अवतार की पावन भूमि बताते हैं।
3: ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ।
0: बुलंदशहर का रिश्ता महाभारत से जोड़कर बताते हैं।
2: महाभारत कालीन इस पावन धरा को
0: इस तरह विकास और आस्था के दोहरे और आजमाए दाव को योगी एक बार फिर 2027 में अपनाते दिख रहे हैं। अपने इस प्लान में पश्चिमी यूपी का विशेष महत्व है, जहां एक बार फिर लड़ाई जिन्ना पर आ गई है।
2: ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे।
0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने वाली बढ़त पिछले दो बार से अखिलेश का काम खराब करती रही है। यही कारण है कि 2027 के महासमर की पहली और सबसे मजबूत लकीर योगी की तरफ से पश्चिमी यूपी की धरती पर ही खींची जा रही है।
2: क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा।
0: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। इसके पीछे यहाँ का विशाल सीटों का गणित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली से सटे NCR जिलों, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों के कुल 110 से अधिक सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में किसान आंदोलन ने समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम, जाट और यादव समीकरण के चलते बीजेपी को अपनी कई पारंपरिक सीट गंवानी पड़ी। इसके बावजूद बीजेपी ने आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरी और शहरीकृत इलाकों में एक तरफा जीत दर्ज कर अपनी सत्ता बचाई थी। इस बार इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ बार बार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं और अपनी हर रैली में सुरक्षा और औद्योगिक निवेश का हवाला देकर याद दिला रहे हैं कि कैसे 2017 से पहले कभी ये क्षेत्र अपनी खराब कानून व्यवस्था और रंगदारी के लिए मशहूर था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इसे माफिया मुक्त किया बल्कि दंगा मुक्त भी कर दिया।
2: उन्होंने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ, आज लगता है सार्थक हुआ है।
0: अखिलेश यादव के PDA पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत कार्ड का मुकाबला करने के लिए CM योगी आदित्यनाथ

0: कहेंगे। और बहन और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ।
1: अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीएफ फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता।
0: एक समय था, जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे।
1: शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे।
0: 2017 के पहले सोने वाले लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी, जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है।
1: चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अखिलेश यादव को बीजेपी अक्सर राम मंदिर को लेकर घेरती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो राम से दूरी बनाने के बजाय राम के नाम पर ही बीजेपी को घेर रहे हैं, जिसे देखते हुए योगी अपने वोटों के समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए हैं।

0: 2027 के चुनाव में छोटे दल भी काफी अहम है। यूपी की राजनीति में यही छोटे दल जीत और हार का अंतर तय कर सकते हैं। इसमें चिराग पासवान की भी एंट्री हो चुकी है।
1: जो प्रयास मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, बस सिर्फ इस सोच के साथ आया हूँ। मेरे पिता का यहाँ से चुनाव लड़ना अपने में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उनके दिल के कितने करीब था। ऐसे में जब आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी इस सोच को आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ।
2: चिराग पासवान के रूप में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए छोटे दल की एंट्री हो रही है, जिसका यूपी में कोई सियासी वजूद नहीं है। इसके बावजूद चिराग पासवान सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अपनी पार्टी का राजनीतिक विस्तार है, या फिर उनका मकसद समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी साबित कर अखिलेश का खेल खराब करना है।
1: झूठ बोलकर इन लोगों ने

0: वोट हासिल किया और आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज के उसी वर्ग को करने का काम करते हैं, इन्हीं के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोग जाना भी जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, तो यकीनन ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की आवाज मजबूती से बनना चाहता हूं जिस वर्ग से मैं खुद आता हूं।
1: अखिलेश के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक और छोटे दल के नेता चुनाव से पहले सक्रिय हैं। उनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, जो समाजवादी पार्टी के पीडीए पर हमला करने से लेकर अखिलेश के हिंदुत्व प्रेम को भी छलावा बताते हैं।
2: जो राम का दर्शन करने, भगवान राम का दर्शन करने नहीं गया, वो जिनकी आस्था है भगवान राम के प्रति, उनके प्रति कुठाराघात न कर रहे हैं ना, तो ये राम का दर्शन करने गए मंदिर अयोध्या भगवान राम का, अनाता कृष्ण का गए, ये दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, ना तो इनको राम जी मिल पा रहे हैं ना तो कृष्ण जी मिल पा रहे हैं, मौलाना जी मिल जा रहे हैं।
1: ओपी राजभर योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, जिनकी पार्टी पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन अब वो योगी सरकार की वापसी के दावे के साथ 2027 में अखिलेश की 27 सीट की भी नहीं आने के दावे करते फिर रहे हैं।
3: हम पांच लोग हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय समाज पार्टी, 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप घटनाएं उठा के देखो, जो घटनाएं घट रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बाजा तो अभी बजा रहे हैं सपाई कि आबादी भैया का सरकार कट्टा सट्टा के घरे से उठा ले रे बजत हो ना, अगर ये गाना है आपके घर का कोई बहन बेटी सुन ले, भाई नौजवान सुन ले तो क्या करेगा।
1: बीजेपी पिछड़ों की राजनीति करने वाले ज्यादातर छोटे दलों को साथ रखकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन से पहले ही जुबानी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस जहां सम्मानजनक 100 से ज्यादा सीट मांग रही है, तो वहीं अखिलेश जीत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
4: हमने 2024 में दिखा तो दिया आपको, 2024 में आपको 37 सीटें जितवाई, हमने जितवाए ना। आप ये जो बार बार बोलते हो, वरना 2022 में जीत लिए होते ना, आप सरकार बना ली होती इतनी सीट के ऊपर। तो
5: एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते, दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके, क्या है वो?
1: 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को पीछे ढकेल दिया, लेकिन 2027 में वो एक साथ आएंगे, इसे लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है।
6: तो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है, अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है।
7: सीटों के गठबंधन की बात कहां तक पहुंची है?
6: देखिए, ये सब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में बातचीत होते होगा और हो जाएगा।
1: 2024 में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो 6 पर जीत गई। ऐसे में कांग्रेस इन क्षेत्रों में आने वाली करीब 85 सीटों पर सीधे सीधे दावेदारी करती बताई जाती है। पार्टी को लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए पहले से अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जोर जिताऊ उम्मीदवारों के आधार पर सीटें बांटने की है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तक से कहा गया कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
8: हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि 2027 में गठबंधन हो, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, और ये गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता से तय होगा।
1: समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो का है। इससे पहले पार्टी 2 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस के अलग लड़ने पर वोटों के बंटवारे का जोखिम उठाने के लिए पार्टी कितनी तैयार है, इस पर सीटों के बंटवारे का भविष्य तय होगा। आज तक ब्यूरो।
9: चढ़ावा मामले को सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया, इसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और अखिलेश अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासी माहौल बनाए हुए हैं। राम मंदिर में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करके समाजवाद ही सनातन है की बात कह रहे हैं।
10: इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन।
11: इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो।
1: सनातन के लिए अखिलेश यादव का ये प्रेम बीजेपी के गले नहीं उतर रही, लेकिन जो बात साफ दिख रही है वो अखिलेश की रणनीति में आया बड़ा बदलाव है।
11: इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है।
1: अखिलेश अपने पारंपरिक जातीय समीकरण यादव मुस्लिम से हटकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपना रहे हैं, यानी वो अपने पीडीए के फॉर्मूले में सॉफ्ट हिंदुत्व का एक नया रंग घोलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी ये रणनीति कामयाब हो पाएगी।
11: चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई।
1: पीडीए फॉर्मूला वही रणनीति है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। लेकिन क्या अखिलेश मान चुके हैं कि पीडीए के दम पर सत्ता में वापसी मुश्किल है? क्या इसीलिए 20 बनाम 80 की राजनीति करने वाली बीजेपी की तरह अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं? क्या इसीलिए उनकी तरफ से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है ताकि खुद को चुनाव से पहले सच्चा हिंदू साबित किया जा सके?
10: अयोध्या एक आस्था का स्थान है
11: जी।
10: और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है।
1: कई जानकारों को लगता है कि देश की तरह उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 80% हिंदू है और सिर्फ अल्पसंख्यक या खास जातियों के भरोसे अब बहुमत हासिल नहीं किया जा सकता। 2027 और 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश की हार का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता रहा कि पार्टी को मुस्लिम तुष्टिकरण वाली छवि से नुकसान हुआ। तो क्या इसीलिए अखिलेश राम की शरण में आ गए हैं?
11: प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, CCTV के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है।
1: अपनी हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने के लिए अखिलेश ने एक सदी वी रणनीति बनाई है जिसमें आक्रामक हिंदुत्व की जगह हिंदू प्रतीकों, परंपराओं और आस्था के लिए सम्मान दिखाकर अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। ये बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले एक वैकल्पिक समावेशी हिंदू राजनीति पेश करने की कोशिश है जिस पर दाव लगाकर अखिलेश यादव वापसी करना चाहते हैं।
10: उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है
11: जी।
10: भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा।
1: अखिलेश यादव की बातों से साफ है कि वो अब सिर्फ मुसलमानों और यादवों के नेता के रूप में दिखना नहीं चाहते, वो खुद को सनातन धर्म और उसकी परंपराओं से जुड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू विरोधी छवि से बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर ले जाएगी। इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की शरण में अखिलेश दिखते हैं। योगी ये बात समझ गए हैं, इसलिए बार बार वो जनता को याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में हिंदुओं के साथ क्या होता था।
12: ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को रोका था, जिन्होंने राम नवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक लगाने का काम किया था, ये वही सपा है, ये वही कांग्रेस है।
1: लेकिन अखिलेश अपनी रणनीति पर चुपचाप लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने बड़े मंगल के दौरान हनुमान चालीसा के दोहे पढ़े।
13: हनुमान जयंती, हनुमान जी को याद करते हैं मंगल के दिन, शनिवार को भी कई लोग कर रहे हैं।
1: अखिलेश सार्वजनिक रूप से यहां तक कह गए कि वो ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं और पंडित कहे तभी आगे बढ़ते हैं।
13: यही गंगा जमुनी संस्कृति, यही भाईचारा, यही पहचान और अनेकता में एकता, यही हमारा लोकतंत्र और यही हमें संविधान बताता है।
1: इसके अलावा अखिलेश इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। ये चार महीने में उनकी दूसरी मुलाकात है। इसके बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन और आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात थी। सनातन धर्म पर आ रहे संकट को दूर करने और धर्म को अधर्मियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सार्थक चर्चा हुई। अखिलेश की इस कोशिश पर बीजेपी उन्हें पुरानी बात याद दिलाती है, बताती है कि साल 2015 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने इन्हीं शंकराचार्य समेत कई संतों पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन अब वही शंकराचार्य से मिलकर अखिलेश अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुख्यालय के बाहर सनातन ही समाजवादी है का होर्डिंग लगवा रहे हैं।
12: जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था।
1: अखिलेश का सनातनी रूप 2027 में उनके कितने काम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने ये बात तय कर दी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बहुसंख्यक हिंदू वोट के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। आज तक ब्यूरो।
9: अखिलेश यादव को बीजेपी अक्सर राम मंदिर को लेकर घेरती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब वो राम से दूरी बनाने के बजाय राम के नाम पर ही बीजेपी को घेर रहे हैं, जिसे देखते हुए योगी अपने वोटों के समीकरण दुरुस्त करने में जुट गए।
14: इस 9 साल में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का काम योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, गुंडा माफियों का प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, और कह लीजिए कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। व्यापारी हमारा कोई भी दिन भर वो दुकान पर चैन से तो बैठता था, लेकिन डर लगा रहता था कब हमारे पास फिर मांग डिमांड कुछ हमारे पास ना आ जाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर आज पूरे देश के सभी प्रदेश में चर्चा होती है, और साथ ही साथ जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आज धरातल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुंचने का काम किया है।
1: आज तक के मंच से बीजेपी की तरफ से एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की गई ताकि चुनाव में कोई गलत संदेश ना जाए। ऐसी ही और कोशिश पिछड़े वोट को लेकर हुई, जिसके तहत बीजेपी को पिछड़ों की पार्टी बताने का दावा डिप्टी सीएम की तरफ से हुआ।
15: सर जी, पहले कहा जाता था कि भाजपा कुछ जातियों की पार्टी है, और कहा रहता ऐसा नहीं था। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता था तो वो ऐसा कहते थे, भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, बैनियों की पार्टी है, ठाकुरों की पार्टी है। लेकिन आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो कार्य है उसको जमीन पर उतारा है। यह सच है कि पिछड़ा वर्ग जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसे सरकार हमारी है।
1: 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर जीत हासिल करने वाले अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनावों में भी पीडीए को ही हथियार बनाकर बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। लखनऊ में पंचायत आज तक के मंच से समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि 2024 की तरह 2027 में भी पीडीए फॉर्मूला चलेगा और उनका गठबंधन 300 सीट जीतेगा।
16: आज उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया इन्होंने, और इस बर्बादी से कोई उत्तर प्रदेश को निकालेगा तो उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है, इसलिए वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की पीढ़ी की जनता सबका समर्थन और आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने का काम करेंगे, ये मैं आज इस मौके पर कहना चाहूंगा।
1: अखिलेश के पीडीए का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी पिछड़ों पर नए सिरे से दाव लगाया गया है। यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी की बनाई नई टीम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ाई गई है। यूपी बीजेपी की नई टीम में सबसे ज्यादा 20 पिछड़ों को जगह दी गई है। संदेश यही कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा पिछड़ों की हितैषी है।
15: श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत पीडीए की बात करते हैं और मैं कहता हूं उनका पीडीए फर्जी है। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि श्री अखिलेश जी आप ये बताइए, 2012 से 2017 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए? जब आप सत्ता से बेदखल हो गए तब पिछड़ों की याद आई। अब पिछड़ा जाग चुका है, सपा को बहुत पीछे छोड़ चुका है, भाजपा के साथ बहुत आगे जा चुका है। अब पिछड़ा वर्ग भाजपा को छोड़ करके जाने वाला नहीं है और सपा को वो अपनाने वाला नहीं।
1: पिछड़ों के अलावा बीजेपी दलितों को भी नए सिरे से अपने साथ लाने के लिए कमर कस चुकी है, जिसकी अहमियत पूरे प्रदेश की तरह बीजेपी के लिए अहम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह महागठबंधन मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुआ, उसके बाद योगी दलितों को लेकर खास तौर से सक्रिय हो गए हैं।
13: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज को जगा करके जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, मानवर काशीराम जी ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा।
1: 2024 का चुनाव अखिलेश राहुल के जीत के फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा रोल यादव मुस्लिम के साथ बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ जाना रहा। 2027 में इसे दोबारा रोकने के लिए बीजेपी ने दलित वोट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त आगरा में वाल्मीकि समाज बीजेपी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तब प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित वोट बैंक पक्का करने के लिए पश्चिमी यूपी में गहन मंत्रणा में जुटे दिखे। बूथ बूथ तक एक एक वोट का हिसाब ठीक कर रही बीजेपी पिछले चुनाव में दलित वोट के हुए नुकसान की भरपाई के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए हर जिले में संगठन पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है। विशेष फोकस अनुसूचित जाति पर है। इलाकेवार सामाजिक समीकरण, स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर चुनावी रणनीति बन रही है।
17: अगर कंपैरिजन करें हमने क्या किया है तो हम गिना देंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो वाली चीजें गिनाए तो वो हम जितना हमने विकास के लिए किया पॉजिटिव किया उससे ज्यादा उन्होंने समाज के निगेटिव के लिए किया, निगेटिविटी के लिए। कितना किया है पिछली बैठक में भी हमने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए सब साथ थे, इनके नाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते समाज के लोग। जितने प्रकार की मैंने सूची बताई उतने प्रकार की सूची बनवाना, उनको बूथ की बैठकों में बुलाना।
1: दलित वोटों की इंजीनियरिंग में बीजेपी का ज्यादा जोर पश्चिमी यूपी के जिलों पर भी है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में पार्टी बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ता सक्रियता, मतदाता संपर्क, जनसंपर्क पर जोर दे रही है। अब तक धर्मपाल सिंह झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, बरेली और अमरोहा सहित कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध, पश्चिम और काशी सहित पूरे प्रदेश में उनका संगठनात्मक संवाद अभियान लगातार जारी है।
18: भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चुनावी अंबेडकरवादी हैं, चुनावी राम भक्त हैं, वरना ये लोग चंदा चोर हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, अंबेडकर जी के विरोधी हैं, तिरंगे के विरोधी हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये लोग अंबेडकरवादी हो जाते हैं, वरना मंदिर से चढ़ावा चुराते हैं और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था करते हैं, देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में जनता नहीं आने वाली।
19: देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संगठन की बैठकें कर ले, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दलित समाज या अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि इन्होंने दलित समाज के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चुनाव में कहा था कि हमको 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब के लिखे संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति और दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और इनके गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि बाबा साहब एक फैशन है, जबकि हकीकत तो यह है कि बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में अनुसूचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, कि जिसका नतीजा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा में पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर खिसकाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कितनी भी बैठकें कर लें, अब दलित समाज इनके बहकावे छलावे में आने वाला है।
1: पश्चिमी यूपी में बीजेपी की खास तवज्जो की वजह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में दलित वोट का बोलबाला है। बुलंदशहर में 21 से 22 फीसदी, सहारनपुर में 21 से 22 फीसदी, मेरठ में 18 से 19 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 17 से 18 प्रतिशत, अलीगढ़ में 20 से 21 प्रतिशत, आगरा में 22 से 23 फीसदी, बिजनौर में 21 से 22 फीसदी, गाजियाबाद और हापुड़ में लगभग 16 से 19 फीसदी दलित वोटर है। बीजेपी के इतर अखिलेश का सारा जोर इस बार भी पीडीए पर रहने जा रहा है, जिसे देखते हुए बीजेपी दलित और पिछड़े वोटरों को रिझाने के लिए कमर कस चुकी है। आगरा से रवि शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
9: हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
23: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
24: आगे आगे,
25: अरे उधर
24: उधर किधर,
25: करेक्ट करेक्ट,
26: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voices.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
9: गहरी सफाई।
8: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
9: गहरी खुशबू
8: और प्यार भरी भी।
9: कैसे?
8: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
10: इसीलिए फेना ही लेना।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आगे आगे
6: अरे उधर
5: उधर करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
15: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
16: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
14: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
17: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि धर्म के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान के लोग अब आजादी क्यों मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मांग करने वाले वहां के अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुसलमान हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या फिर POJK। एक तरफ पाकिस्तान जहां चार हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ईरान में पुल, पावर ग्रिड, रेल की पटरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचों पर रूसी हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया था। यहां तक कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, जो अमेरिका दूसरों को ज्ञान दे रहा था। अब वही पिछले 5 दिनों से ईरान के पावर ग्रिड, पुल और ऊर्जा ढांचों पर लगातार बम बरसा रहा है। जो नियम दुनिया के लिए है, क्या वो अमेरिका पर लागू नहीं होता। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। कार तक के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन खुद बना चुका है। जर्मनी की 742 करोड़ की ट्रेन के मुकाबले भारत ने केवल 112 करोड़ रुपए में ये स्वदेशी ट्रेन तैयार कर ली है और आज पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आखिर में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के बारे में बताएंगे, जिसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ज्यादा कमाई और भारत पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच कराने के लिए ICC ने वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं तारीखें देती। ये तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब ये कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगे उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले एक साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध का को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का ये प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको यह आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है। और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलूच नेता मीर यार बलूच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है। और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो डील की है, उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा। ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले, लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए बस। स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए। और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही है। और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उसे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था। और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं।
1: ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस है।
0: पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था। और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग 45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में ये परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है। इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल ना हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में वो मुनाफा कमा सकें। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्केसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहे। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। ये तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा।
2: आटा डीलर्स के मुताबिक होलसेल मार्केट में 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 3,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
3: इसमें पूरे मुल्क में जो रोटी 14 रुपए में मिलती थी वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है और जो नान थे वो 30 से 35 रुपए में लोगों को मिल रहे हैं।
4: अटक में मिलता है 1100-1200 रुपए और दूसरी तरफ क्यों दरिया सिंध क्रॉस करो 1500 हो जाता है।
5: कराची में 20 किलो आटा तकरीबन 1800 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो तकरीबन 2900 रुपए में मिल रहा है।
0: ने आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही हैं। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे। और ये पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी से बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे और ये उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे, सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। ये परिवार पहले बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में रहता था और ये वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मयमनसिंह जिले से थी और वो बताती हैं कि ये हिंदू परिवार बहुत पहले मयमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और इस घटना के बाद ये हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। ये सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने इन नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया। और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। ये वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूख नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हों, बेवजह चिल्ला रहे। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती है कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थीं, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुसाए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। कई बार लगता है कि धर्म की यह लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यह हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इसराइल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए। यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इसराइल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इसराइल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए, जबकि कई इजरायली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई हैं और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं, जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इसराइल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेसी ने इसराइल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी इसराइल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और ये दौरा इसराइली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इसराइली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इसराइल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेसी को कुछ लोग इसराइल का एजेंट बताने लगे। 2014 में पोप फ्रांसिस की पहल पर रोम में एक मैच फॉर पीस आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का संदेश देना। मेसी ने इस पहल का समर्थन किया था, हालांकि चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए, जिससे उनकी मंशा पर फिर सवाल उठाए गए। और सवाल उठाने का कारण यह था कि इस मुकाबले में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन मेसी इसमें नहीं आए थे। 2016 में भी मेसी एक विवाद में तब फंस गए जब उन्होंने अपने फुटबॉल जूते एक चैरिटी के लिए दान किए। मिस्र में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो इसराइल समर्थक हैं। मिस्र फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने भी मेसी की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद में एक गलत दावा भी सामने आया कि मेसी यहूदी है। सच्चाई यही है कि मेसी कैथोलिक ईसाई है, यहूदी नहीं है, और ये कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है, लेकिन फिर भी लियोनेल मेसी को इसराइल और यहूदी बताकर उनके खिलाफ दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश स्पेन का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमाल फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और मैच के दौरान पहले मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा चुके हैं। यानी कहानी अब यह हो गई है कि अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को इसराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है और इसमें भी लियोनेल मेसी को लेकर खूब झूठ फैलाए जा रहे हैं।

आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहन कर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कॉन्टेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कॉन्टेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस एसओपी के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस एसओपी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन एसओपीज का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश है। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। यह सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई एसओपी बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये एसओपी धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही होते हैं, उनके कट्टरपंथ का संकेत उनके व्यवहार से पता चलता है। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियां ऐसे संकेतों को अपने लिए मददगार मानती हैं और ये भी पूछती हैं कि अगर उन्हें धार्मिक कट्टरवाद रोकना है तो वो बिना ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग के कैसे काम करें। और ये चुनौती सिर्फ भारतीय एजेंसियों के सामने नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी एसओपी बनाई है जिसे किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रोफाइलिंग हो सकती है और वहां है इस पर विवाद हुआ है। लेकिन दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां यही सवाल पूछती हैं कि जब कट्टरवाद धर्म के आधार पर फैलता है तो वो इसकी एसओपी कैसे बनाएं।

0: देख सकते हैं इसी मदरसा से जो 5 आरोपी उसमें से कुछ आतंकी है जो इसी मदरसा से वो अभ्यास कर रहे थे। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी जुड़े थे। खुलासा ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे।
1: हाँ, वो कर रहा था, मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं है।
2: आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शन मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले।
3: पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब ये बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है।

अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अलकायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं, आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं, इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की GDP से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका ये कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच

अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से चार साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता। आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए, जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है।

तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मूज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा। और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है अभी। इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे। जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता? दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? यह सवाल पिछले साल इसराइल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इसराइल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए? हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच दो और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगे। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई। अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं, ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है।
अब ये तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला और इससे $1,00,000 से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और ये दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां यह भी सोचिए अमेरिका में यह हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इसे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों को का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है। 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए और न सिर्फ बचत की हमने बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया, और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच
89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे।

0: ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं, और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है, और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है, और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है।
1: अब यहाँ इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
3: Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions
2: Chogan Perfumes The French Edition for Him and Her

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
4: गहरी सफाई।
5: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
4: गहरी खुशबू
5: और प्यार भरी भी।
4: कैसे?
5: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति।
6: इसीलिए फेना ही लेना।
7: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

संसद का मॉनसून सत्र शुरू। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कल चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड में 11 लोगों की मौत, नागालैंड में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग। आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से भिड़ंत, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया 3रा स्थान।

लोग वर्षों की बात करते हुए जिस नगरी को देखते हैं, उस अयोध्या ने युगों की राह देखी। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में सम्मिलित होकर आध्यात्म का शीर्ष देखा है। साकेत नगरी बनकर बैकुंठ धाम होने का मान पाया है। श्री राम के अवतरण के साथ राम राज्य की मर्यादाओं की साक्षी बनी है वही अयोध्या। श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास के बीच आज फिर कुछ प्रश्नों का सामना कर रही है। अयोध्या फिर उत्तर दे रही है। एक और अध्याय अयोध्या में जुड़ रहा है।

0: राम भक्तों पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
1: श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ है, लोग भूख को भी देखते हुए सभी लोग आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
2: कोई फर्क नहीं, ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
3: दंड भी मिलना चाहिए, वो भी देंगे ऊपर वाले, दंड भी मिलेंगे उनको।
4: राम भक्तों में कोई कमी नहीं हुई है, न चढ़ावे में कोई कमी हुई है।

0: अयोध्या, जिसका चरित्र मर्यादा है। अयोध्या, जिसका आचरण त्याग है। अयोध्या, जिसकी आत्मा खुद श्री राम है।
1: आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां आप चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है।
0: अयोध्या, जहां राम राज्य की नींव ही न्याय पर आधारित थी, जहां दोष छुप नहीं सकते थे, जहां पापी को अभयदान नहीं मिल सकता था, जहां अन्याय शरण नहीं पा सकता था, उस अयोध्या ने हर दौर में आरोप सहे, हर कालखंड में संघर्ष किया, हर समय काल में परीक्षाएं दी, लेकिन जो शाश्वत सत्य की तरह नहीं बदला वो था विश्वास, वो थी इस नगर के प्रति आस्था, वो है राम नाम के प्रति अटूट श्रद्धा।
2: अयोध्या को छोड़ के 14 वर्ष जो जंगल को चले गया उस पर क्या फर्क पड़ेगा?
3: राम जी तो 1000 आंखें हैं, वो सब देखेंगे, जो कर रहा है वो सब देखेंगे, जो हम करेंगे वो देखेंगे।
4: यदि हम चंद्रमा या सूरज की तरफ कोई धूल उछालते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
0: श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का वैचारिक झंडा लेकर चलने वाला RSS सामने आया।
5: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: श्रद्धालुओं के मन में गहराए शंका के बादल छटे, ताकि कोई संदेह न रह जाए, इसकी कोशिशें भी शुरू हुई।
6: सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया, तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही SIT व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो।
0: अयोध्या का अर्थी है जिसे युद्ध न किया जा सके, लेकिन कुत्सित विचारों ने कब अयोध्या के सामने युद्ध की स्थितियां नहीं खड़ी की, कब अयोध्या को युद्ध में नहीं ललकारा, लेकिन अयोध्या कभी हारी नहीं, अयोध्या को कोई कुचेष्टाओं के साथ कभी जीत नहीं सका।
3: आशा राम में है, राम मंदिर में है, लोग उनके नाम से आएंगे, जिसने गलत काम किया उसको सजा मिल जाए, कोर्ट कचहरी किस लिए है।
0: अयोध्या की पवित्रता कुछ लोगों के अपराध से कम नहीं हो जाती।
7: जो जैसा करेगा उसको,
8: जो जैसा करेगा वो खुद मिलेगा। हम लोगों से क्या, हम लोग दान करना है दान करिए, जो जैसा करे उसको भगवान देख रहे हैं।
0: कुछ लोगों की बेईमानी अयोध्या के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा नहीं चुरा सकती।
9: नहीं देखो, श्रद्धालुओं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, वो तो श्रद्धालु तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस पे, परंतु ये है कि जो पकड़े गए उनके लिए दंड जरूर मिलना चाहिए।
0: भगवान के घर में चोरी करके कुछ लोग अयोध्या का चरित्र धूमिल नहीं कर सकते।
10: कोई कमी नहीं आस्था में और न चोरी हुआ है, लोगों के दिलों में चोरी घुसी हुई है तो उसका कोई जवाब नहीं है। राम जी का पैसा खाने वाला कौन है? कोई नहीं। राम जी थे, है और हमेशा सभी के दिलों में राज करते रहेंगे।
0: दोषी अपनी गत को जा रहे हैं, निश्चित ही जाएंगे, लेकिन इनसे कोई श्री राम लला के मंदिर में गूंजते जयकारों का नाद नहीं घटा सकता।

आस्था के नाम पर जिसने अयोध्या का विश्वास तोड़ा है तो उसका हिसाब विधि सम्मत हो रहा है, लेकिन करोड़ों लोगों की श्रद्धा का फैसला कोई आरोप नहीं कर सकता। अयोध्या इसलिए नहीं जीतती कि वहां कभी संकट नहीं आते, अयोध्या इसलिए जीतती है क्योंकि हर संकट के बाद उसके भक्त पहले से ज्यादा विश्वास के साथ रामलला के द्वार पर लौटते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी विजय है।

0: ये अयोध्या है। गलियों में राम, सड़कों पर राम, मन में राम, मुंह में राम, दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें, भगवान को देख लेने का श्रद्धालुओं के चेहरे पर असीम आनंद।
1: तो भगवान के घर में चोरी करेंगे वो तो पाप के भागीदार ही हैं, वो पाप नहीं महापाप किया है उनका, उनको हनुमान जी सजा देंगे बस।
2: बहुत ज्यादा और ज्यादा पड़ेंगे, कम क्यों आएंगे, और ज्यादा आएंगे, इससे उस बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
3: जिसने भी चोरी करी उसको सजा मिलनी चाहिए, देखो गलत तो गलत ही है।
4: अयोध्या बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा और देखिएगा कितना कैसा है इंसान, कैसा है इसका।
0: कुछ लालचियों ने पवित्र चढ़ावे के साथ जो चौर्य कर्म किया उसका रोष इन्हें भी है, उन्हें दंड के पक्षधर ये भी है, लेकिन मंदिर की गरिमा पर कोई सवाल नहीं क्योंकि आस्था तो राम में है।
5: कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, किसी की आस्था में बिल्कुल कमी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ आने के बाद जो हम भी गुजरात से हमने भी देखा नहीं है यहाँ क्या है, पर यहाँ पे ऐसी कोई फीलिंग नहीं लग रही, अंदर भगवान के दर्शन, अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं।
0: दूर दूर तक सुनाई देते श्री राम के जयकारे, दूर दूर तक दिखाई देती दर्शनों के लिए भक्तों की व्याकुलता बता रही है कि हार उनकी हुई है जिन्होंने अनुचित कृत्य किया। अयोध्या का मान रत्ती भर नहीं कम हुआ।
6: देखिए आस्था है ना ईश्वर पे, वो किसी भी स्थिति में अडिग रहता है, वो किसी भी स्थिति में इधर उधर नहीं होता है। और हमने अगर कोई दान दे दिया, समर्पित भाव से हमने दान दे दिया, तो हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम उस पे टीका टिप्पणी करें या हस्तक्षेप करें या पूछें। आपने जो दान दे दिया तो दे दिया, उसके बारे में अच्छा, अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है, चंदा चोरी हुई है, जो भी है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, सरकार है, सांसद है, ये लोग उनकी निगरानी करेंगे, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं।
0: चढ़ावे की चोरी का अध्याय इसी साल के जून महीने से खुलना शुरू हुआ। ये अयोध्या के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सदियों के संताप के बाद अभी तो फिर से वैभव लौटना शुरू हुआ था। दर्शनाभिलाषी आंखों को अभी तो प्रभु राम के नए नाभिराम दर्शन मिलने शुरू हुए थे। ऐसे में ऐसा कर्म हुआ तो शंकाएं गहराने लगी कि क्या फिर से अयोध्या के दिन कष्ट में बीतेंगे। तुरंत चिंतन मनन का दौर शुरू हुआ, अव्यवस्थाओं की जगह व्यवस्था स्थापित हो ये प्रयास शुरू हुए।
7: मुझे संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया और वह चोरी हिंदुओं को कष्ट दे रही है ये भी स्वीकार किया। मैं देख रहा हूं कि ट्रस्ट शुरू से ये प्रयत्न कर रहा है कि जल्दी चोर पकड़े जाए। ट्रस्ट ने यह भी स्वीकार किया कि भाई इतना बड़ा काम केवल विश्वास के सहारे अनौपचारिक रूप से नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई।
0: आरोपों के घेरे के बावजूद आस्था के मंदिर से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर भक्तों की श्रद्धा में मिल ही जाता है। 21 जून से 14 जुलाई के बीच महज 24 दिनों में 21 लाख से अधिक श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। केवल 3 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 70 से 80 हजार के बीच रही, जबकि बाकी अधिकांश दिनों में औसतन 80 हजार से अधिक भक्त मंदिर पहुंचे। कई अवसरों पर यह संख्या 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर गई। मंदिर प्रशासन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 20% अधिक रही है।
8: होटल में लाइक जैसा पहले अपना ये वाला सीजन वैसे भी ऑफ सीजन हुआ करता था, और इस टाइम पे अमूमन जो है भीड़ कम ही रहती है अयोध्या में। मौसम का आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये टाइम लोगों का हिल स्टेशन में जाने का होता है, तो ये वाला सीजन वैसे भी हम लोगों के लिए ऑफ सीजन का रहता है। तो बट हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से भीड़ में कुछ असर पड़ा होगा, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें ऑक्यूपेंसी हमारा 80% से ऊपर है। अक्टूबर के लिए हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं, जो हमारा सीजन स्टार्ट होने का टाइम है, तब हमारे साउथ के कई ट्रेवल पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से हमारे पास कई क्वेरीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा।
0: जो दोषी है वो दंड पाएंगे, भक्त भी ऐसा होते देखना चाहते हैं, लेकिन इससे श्री राम मंदिर की पवित्रता और धार्मिक महत्व पर कोई सवाल उठाए तो ये भी स्वीकार नहीं।
9: आदमी जो अपनी भावनाएं लेके आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, वो उसी मन से आ रहा है, ये सोच के नहीं आ रहा है कि चंदा चोरी है तो हम जाएं कि ना जाएं। हमने तो फिलहाल नहीं सोचा है, हम अपने जिस भावना से आए थे भावना जा रहे हैं।
10: और ये राम मंदिर 500 वर्षों के वनवास के बाद एक तरीके से कहा जाए तो बना है, और सरकार इसको ऐसे मतलब कुछ लोगों के जो लालच या कुछ लोगों की जो लिप्सा है, धन लोलुपता है, उसका शिकार नहीं होने देगी। सरकार निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेगी और आप देखिएगा बहुत तगड़ा एक्शन होगा।
11: जनता का भाव है तो आएगा ही, चंदा चोरी हो चाहे कुछ भी हो। जब कार सेवा पर इतना गोली चला तब नहीं श्रद्धा कम हुआ, तो सब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाकी सतर्कता बरतना चाहिए, श्रेष्ठ को भी अपना जो रूप रेखा है बदलना चाहिए।
0: व्यक्ति जनित विवाद अयोध्या से विश्वास डिगा नहीं पाए। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो बस एक कामना लिए कि बस दर्शन हो जाएं श्री रामलला। दान की शैली थोड़ी अवश्य परिवर्तित हुई है। सोने चांदी के आभूषण कम चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई चढ़ा रहा है तो उसका पूरा ब्यौरा उसी समय दर्ज किया जा रहा है। पारदर्शिता का सवाल है ताकि फिर कोई उंगली न उठ सके।
12: सीजन ऐसा है कि धान रोपाई और बच्चों के स्कूल के थोड़ा सा असर पड़ा है, उसकी वजह से चंदा चोरी का कोई असर नहीं है इस पे।
0: अयोध्या इस समय दो धाराओं में बह रही है। एक निश्चित तौर पर श्रीराम लला के लिए अर्पण किया, उन्हीं तक पूरी ईमानदारी से पहुंचे, और दूसरी श्रीराम के प्रति अटूट अविचल अडिग श्रद्धा जो निरंतर बढ़ रही है। अयोध्या, जहां रामलला का भव्य मंदिर आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का सफर सिर्फ पत्थरों और शिल्प का नहीं था। मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक कई सवाल उठे, कई आरोप लगे, कई विवाद हुए, हर मोड़ पर अयोध्या की परीक्षा हुई। लेकिन क्या इन सबके बीच राम भक्तों का विश्वास डिगा? क्या इन आरोपों के बीच अयोध्या हारी? भव्य मंदिर की अडिग विरासत इसका जवाब खुद दे रही है। पीढ़ियों की प्रतीक्षा का परिणाम अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर है। कितनी बाधाएं आई, कितनी शंकाएं घिरी, मंदिर बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देते रहे। लेकिन अयोध्या ने श्री राम की मर्यादा निभाई और विधि सम्मत मंदिर निर्माण का रास्ता बना। सदियों से संघर्ष करती अयोध्या जीती जब पहली बार मंदिर की नींव रखी गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस आस्था की कहानी है जिसने सदियों तक इंतजार किया। ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें तारीखें बदली, सरकारें बदली, अदालतें बदली, लेकिन राम लला के प्रति आस्था नहीं बदली। 5 अगस्त 2020,
13: राम त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे।
0: अयोध्या में नया इतिहास लिखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सदियों से जिस मंदिर की कल्पना करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में थी, उसकी नींव अब जमीन पर रखी जा रही थी। लेकिन नींव पड़ते ही सवाल भी उठे।
14: हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है, और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है?
0: कुछ विपक्षी दलों ने भूमि पूजन को धार्मिक आयोजन से ज्यादा राजनीतिक कार्यक्रम बताया। आरोप लगा कि मंदिर निर्माण का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। कोरोना के दौर में समय पर भी सवाल उठाया गया। लेकिन मंदिर निर्माण शुरू हो चुका था। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक निर्माण स्थल नहीं था, ये उस सपने का पहला पत्थर था जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। लेकिन मंदिर की नींव के साथ ही एक और विवाद सामने आया, जमीन की खरीद को लेकर।
15: गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है।
16: कोई घोटाला नहीं हुआ है, देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा।
0: सवाल उठते रहे, जवाब दिए जाते रहे, लेकिन मंदिर का निर्माण रुका नहीं था, पत्थर तराशे जा रहे थे, स्तंभ खड़े हो रहे थे, दीवारें उठ रही थी।
17: प्रारंभ में इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी बड़ी जमीन, इतना सब कुछ मिलेगा, तो ट्रस्ट का जो प्रारंभ का प्लान था वो बहुत छोटा मंदिर था। उसके बाद ट्रस्ट का प्लान हुआ कि एक किला का ग्राउंड फ्लोर और एक किला का मंदिर होगा। फिर ट्रस्ट ने ही निर्णय लिया कि एक ग्राउंड फ्लोर होगा और दो फ्लोर उसके अबव होंगे, और हर फ्लोर की धर्म से क्या व्यवस्था होगी वह भी उन्होंने सोचा। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इस निर्माण को तीन चरण में हम पूर्ण करेंगे।
0: हर गुजरते दिन के साथ राम मंदिर का आकार बड़ा होता जा रहा था, और फिर आया वो समय जो अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने वाला था। जनवरी 2024, मंदिर निर्माण अपने सबसे ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार सवाल जमीन को लेकर नहीं था, सवाल था क्या मंदिर पूरी तरह तैयार है।
18: आप ये बता दे, कोई भी विद्वान, रामानंद संप्रदाय का बता दे, चंपत राय बता दे, कोई विद्वान बता दे, जो पंडित वहां पर प्रतिष्ठा कराने के लिए आपके दबाव में जा रहा है, वो खड़ा होकर के बोल दे कि अधूरे मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होती है। अभी मंदिर पूरा बना नहीं, आप प्रतिष्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
0: विपक्ष ने भी सवाल उठाए, कहा गया कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है।
19: भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते।
0: हंगामे के बीच 22 जनवरी 2024 की तारीख आ गई, वो दिन जिसकी प्रतीक्षा देश दुनिया में करोड़ों लोगों ने की थी।
20: मंदिर बनवाया उसकी खुशी है हमको, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत दर्शन भाई है, बहुत
21: खुशी है कि हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गए, हम लोग के आज खुशी के लिए हमको आंसू आ रहे हैं। आज
22: क्या बड़ा मंदिर बन रहा है वो देख के बहुत दिल खुश हो गया कि इतना बड़ा मंदिर देख के, राम मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कराया है।
0: रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई। निर्माण कार्य पूरा होता गया, लेकिन सवालों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब निर्माण पूरा हो गया तो तारीख आई 14 अप्रैल 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंदिर के शीर्ष पर ध्वज और कलश स्थापित किए गए, लेकिन एक बार फिर इस महाआयोजन पर विवाद हो गया। अब ट्रस्ट के सदस्यों की नियत घेरे में है, सवाल फिर खड़े हैं, अयोध्या फिर संघर्ष में है।
23: जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है, और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने।
0: ये विवाद जो चढ़ावा का शुरू हुआ, उसका कितना आप प्रभाव इस समाज पर देख रहे हैं, और उसका कितना प्रभाव आप सोचते हैं कि दूर किया जा सकता है समाज से, लोगों के मन से वो आशंकाएं शंकाएं सारी निकाली जाती हैं, जा सकती हैं। मंजी, अगर मैं आपसे शुरू करूं,
1: भगवान रामलला और राम जन्मोत्सव, राम जन्मभूमि और ये मंदिर, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है और केवल किसी संस्था, किसी सामान्य व्यवस्था, किसी व्यक्ति के आधार पर ना तो श्रद्धा में कोई कमी हो सकती है और ना ही किसी भी स्थिति में राम भक्तों के हृदय में परमात्मा राघवेंद्र सरकार की भक्ति में कोई कमी आ सकती है।
0: इन तमाम विवादों के बीच दो चीजें लगातार चलती रही, मंदिर का निर्माण और श्रद्धालुओं की आस्था हमेशा सवाल होते रहे, लेकिन भक्तों के लिए सवालों के बीच भी रामलला वहीं थे, उसी अयोध्या में, उसी मंदिर में, उसी आस्था के केंद्र में। अयोध्या की कहानी सिर्फ विवादों की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो हर सवाल के बाद और मजबूत होता गया। भक्तों के लिए राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, ये सदियों की प्रतीक्षा का उत्तर है। होई है सोई, जो राम रची राखा, जो श्री राम ने रचा है वही होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अयोध्या के नए स्वरूप को, नए रूप को लेकर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
24: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
5: गहरी सफाई,
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
5: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
5: कैसे?
4: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए
7: सेना
6: ही
7: लेना। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: शक्तिशाली
2: कैरी सफाई
3: हाँ पावर वॉश का कमाल
2: कैरी खुशबू
3: और प्यार भरी भी
2: कैसे
3: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति
4: इसीलिए लेना ही लेना
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो
6: वी आर ओवर जिमी
7: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा आप अपना देख लो
8: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा जिवोरा सफलता का शंखनाद
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील TMT से बना
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड
12: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया
13: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं
12: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा
15: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल अरे भाई फिर घुमा रहे हैं छोड़ दीजिए घुमाने की आदत आज तक वर्टिकल

कनाडा से लेकर यूरोप के कई देश इन दिनों जंगल की भीषण आग का खामियाजा भुगत रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल स्पेन जर्मनी का है और कनाडा भी जंगल की आग में झुलस रहा है। कनाडा की जंगल की आग से निकल रहा धुआं अमेरिका को परेशान कर रहा है। स्पेन के उत्तरी पूर्वी इलाके के एरेगेन में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहां आग ने अब तक 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। यहां करीब 500 दमकल कर्मी और विमान आग बुझाने की कोशिशों में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी और सूखे मौसम की वजह से जंगल की आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। स्पेन की तरह जर्मनी भी जंगल की आग में जल रहा है। यहाँ के म्यूरिज नेशनल पार्क में जंगल की आग फैल चुकी है और यहाँ सेना को आग पर काबू पाने के लिए उतारा गया है। सबसे पहले सोमवार को उस इलाके में आग लगी थी जो कभी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र हुआ करता था। इस इलाके में अब भी बड़ी संख्या में पुराने बिना फटे गोला बारूद मौजूद हैं और आग की गर्मी की वजह से इनमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिससे दमकल कर्मियों के लिए कई हिस्सों में पहुँचना बेहद खतरनाक हो गया है। जबकि कनाडा के 6 राज्यों में करीब 800 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। अब तक करीब 24 लाख हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। हजारों लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। ओंटारियो, मैनिटोबा और सिस्केचुआन इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। कनाडा में जंगलों में लगी आग का खामियाजा पड़ोसी देश अमेरिका भी भुगत रहा है। धुएं की वजह से शुक्रवार को अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में वायु गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की गई। धुएं की मोटी परत ने व्हाइट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे बड़ी चिंता रविवार को न्यूजर्सी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर है, जहां अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले इस महामुकाबले को देखने के लिए 82,000 से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल देखने पहुंच सकते हैं। ऐसे में कनाडा

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

का मॉनसून सत्र शुरू। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट, कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कल चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड में 11 लोगों की मौत, नागालैंड में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोग। आज रात फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से भिड़ंत, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया 3रा स्थान।

0: अयोध्या का पौराणिक इतिहास रहा है कि अयोध्या को कोई कभी साध नहीं पाया। भगवान राम के पूर्वज राजा सगर ने अपने पुत्र को अयोध्या सौंपनी चाही तो विधि का विधान ऐसा बना कि उनके पुत्र को राज्य ही छोड़ना पड़ा। राजा सगर के पौत्र भगीरथ गंगा को धरती पर लाने में जुटे रहे और अयोध्या मंत्रियों ने संभाली। भगवान राम की जगह भरत राजा बने तो यही अयोध्या उठकर वनवासी राम के पीछे चल दी। और जब भगवान राम ने संसार छोड़ा तो उन्होंने अपने पुत्रों लव कुश और बाकी भाइयों के पुत्रों को अलग अलग राज्य दिए, लेकिन अयोध्या को वो अयोध्या वासियों के भरोसे छोड़ गए। अयोध्या आज भी उनकी है जो अयोध्या आते हैं। यहाँ का शासक कभी कोई नहीं बन पाता, जिसमें अहंकार आता है अयोध्या उसे नकार देती है, लेकिन जो श्रद्धा से आता है अयोध्या उसी की हो जाती है। विकास भले सरकार करे, निर्णयों में भागीदार भले ट्रस्ट या प्रबंध समितियां रहें, व्यवस्था भले अधिकारी देखें, लेकिन अयोध्या में सब सेवक हैं श्रीराम लल्ला के। यहां के स्वामी सिर्फ और सिर्फ श्रीराम लल्ला हैं।
1: अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सब की आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उसकी SIT गठित की। SIT की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए उनकी गिरफ्तारी हुई, जो उनमें सहयोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए।
0: चढ़ावे की राशि में अनियमितता के आरोप लगे तो समाधान के रास्ते भी तुरंत खोजे गए। भक्तों की आस्था अखंडित रहे इसके लिए अब नई व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। देश भर से लोगों ने आवेदन किए।
2: एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति का काम उसको सौंपा है तो प्रोफेशनली मैनेज होना, योग्य व्यक्ति ने CEO होना, प्रोसीजर्स तय होना, जो सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स और गैजेट्स हैं वो होना, इन सब कामों को वो आगे करेंगे।
0: जो करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे की वित्तीय देखरेख कर सके वो बनेगा नया CEO। जो मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेज सके वो बनेगा CEO। जो वर्तमान के विवाद की भविष्य में पुनरावृत्ति न होने दे वो बनेगा CEO।
3: क्योंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: भगवान राम निष्पक्षता, न्याय और कर्तव्य के प्रतीक हैं। वो धर्म, त्याग और समरसता के ध्वजवाहक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो असत्य पर सत्य की विजय के मानक हैं। अयोध्या उनकी है जो कभी हार नहीं सकती। अयोध्या ने कई राजनीतिक युग बनाए और अयोध्या ही राजनीतिक भ्रम भी तोड़ सकती है। अयोध्या के बारे में कभी प्रचलित था कि अयोध्या सत्ता छीन लेती है, दशकों तक ये धारणा बनी रही, लेकिन फिर मुद्दों के केंद्र में अयोध्या हमेशा रही।

0: अयोध्या धार्मिक नगरी है। श्री रामलला का जन्म स्थान है, लेकिन यही अयोध्या हर युग में नीति अनीति और राजनीति की दिशा भी तय करती आई है। दशकों शताब्दियों पहले भी अयोध्या देश की नीति निर्धारक थी, आज भी है। विशेष तौर पर 90 के दशक में प्रदेश हो या देश, राजनीति अयोध्या से ही शुरू होती थी। तब मंदिर के नाम पर सियासी तूफान उठते थे। अब जबकि श्री रामलला का मंदिर बन गया, तब भी प्रदेश और देश की राजनीति आज भी अयोध्या से ही शुरू होती है।
1: जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं।
0: अयोध्या ने जनमत के आदेश दिए, जनादेश की भूमिकाएं लिखी, विधानसभाओं से लेकर संसद तक अयोध्या का विमर्श गूंजा। लेकिन हर बार अयोध्या ने एक संदेश स्पष्ट दिया, उसके नाम पर राजनीति अस्थाई है, लेकिन श्रद्धा और श्री राम लल्ला में विश्वास स्थाई। अयोध्या से संबंधित फैजाबाद की एक सीट की हार जीत संसद का तापमान बढ़ा देती है। अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव राष्ट्रीय सुर्खियां पाता है। कारण सिर्फ ये है कि केंद्र में अयोध्या है और अयोध्या के केंद्र में देश की राजनीति।
2: ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
0: उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव हो या देश का 2029 का चुनाव, केंद्र में फिर से अयोध्या है। अयोध्या एक और राजनीतिक युद्ध की साक्षी बनने वाली है, लेकिन अयोध्या ने कब सियासी पैंतरों से हार मानी है, वो उभर कर आती है, निखर कर आती है। करोड़ों लोगों का विश्वास अयोध्या को हारने नहीं देता। अयोध्या पर करोड़ों लोगों का विश्वास किसी व्यक्ति, संस्था या पद के कारण नहीं है, बल्कि ये सीधे श्री राम लला पर विश्वास से जुड़ा है। श्रद्धालुओं का सवाल व्यवस्था पर है, व्यवस्थापकों से है, लेकिन श्री राम को लेकर कोई संदेह नहीं।

0: राम नाम का दीप जब जलता है तो केवल एक लौ नहीं जलती, करोड़ों लोगों की आस्था प्रकाशित हो उठती है। राम नाम का दीप जब जलता है तो मिट्टी का दीपक भी दिव्यता का प्रतीक बन जाता है और उसकी लौ में युगों की आस्था झिलमिलाने लगती है। यही है अयोध्या, यही उसका अध्यात्म और यही उसके दीपोत्सव का महत्व। एक समय था जब अयोध्या की पहचान सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में थी। श्रद्धालु यहां आते जरूर थे लेकिन सीमित सुविधाएं थीं, संकरी गलियां थीं, कम विकसित पर्यटन इसकी क्षमता के साथ न्याय नहीं करता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भव्य श्रीराम मंदिर, चौड़ी और आधुनिक सड़कें, नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, घाटों का सौंदर्यीकरण, बेहतर यातायात व्यवस्था और तीर्थयात्रियों के लिए विकसित सुविधाओं ने अयोध्या को विश्व स्तरीय बना दिया है। इस परिवर्तन को वैश्विक पहचान दिलाने में दीपोत्सव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहते हैं ना, एक दीप अंधकार को चुनौती देता है, लाखों दीप एक सभ्यता की चेतना बन जाते हैं। एक शहर इतिहास रच सकता है लेकिन अयोध्या इतिहास को हर वर्ष निरंतर जीती है।
1: अयोध्या का दीपोत्सव सिर्फ दीपों का उत्सव नहीं होता बल्कि प्रभु श्री राम के स्वागत की वो सनातन परंपरा है जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति की आत्मा बनी हुई है। अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व पर वो मुहर है जो हर हृदय को राम नाम के प्रकाश से भर देता है।
2: अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, ऐसा दीप उत्सव कहीं भी नहीं होगा। पूरे आपके विदेश में भी ऐसा दीप उत्सव नहीं होगा।
3: ज्यादा एक्साइटेड है कि हम लोग इस दीप उत्सव के प्रतिभागी हैं, हमारा सहयोग इसमें बहुत ज्यादा है।
0: जब जब दीपोत्सव की रात अयोध्या पर उतरी तब तब ये नगरी केवल रोशनी से नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अध्यात्म से चमकी है। सरयू के तट पर सजे लाखों दीप, राम की पैड़ी की सीढ़ियों पर झिलमिलाती लौ, मंदिरों से उठती घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसी तस्वीर पैदा करते हैं जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं।
4: ये द्वीप केवल द्वीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार में, अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं।
0: भारत में दीपावली हर घर में मनाई जाती है लेकिन दीपोत्सव केवल अयोध्या में अपने पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप में दिखाई देता है। श्री राम मर्यादा, सत्य, न्याय, करुणा और आदर्श शासन के प्रतीक हैं। इसीलिए अयोध्या में जलने वाला प्रत्येक दीप सिर्फ मिट्टी का दीपक नहीं होता बल्कि वो राम के आदर्शों का प्रतीक बन जाता है।
1: हर साल अयोध्या ने दीपोत्सव के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 2017 में दीपावली पर सरयू के तट पर लगभग 1,70,000 दीप जलाए गए थे। 2022 में लगभग 15,76,000 दीप जलाकर अयोध्या ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2023 में ये संख्या 22 लाख से अधिक हो गई। 24 का दीपोत्सव अपने आप में ऐतिहासिक था। राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर कुल 26,17,215 दीप प्रज्वलित किए गए। इसी अवसर पर 2,128 लोगों द्वारा एक साथ सरयू आरती का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।
0: दस हजार से अधिक छात्र छात्राएं, वॉलंटियर्स और कई विभागों के कर्मचारी कई दिनों तक लगातार मेहनत करके लाखों दीपों को सजाते हैं। हर दीप में तेल भरना, बाती लगाना, समय पर उसे प्रज्वलित करना और पूरी व्यवस्था को ठीक रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है। जब रात के समय सरयू के तट पर एक साथ लाखों दीप जल उठते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो अयोध्या ने तारों की चादर ओढ़ ली हो।
4: ये दीप हम सबके संकल्प का प्रतीक है, एक नव्य और दिव्य अयोध्या के का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा भी है और दीप की दया भी है।
5: उतरे है आज मेरे राम की सवारी।
1: 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव का महत्व और भी बढ़ गया है। अब यह आयोजन केवल राम जी के अयोध्या लौटने की स्मृति में नहीं रह गया, बल्कि राम लला के अपने दिव्य धाम में विराजमान होने के उत्सव का भी प्रतीक बन चुका है। मंदिर निर्माण का कार्य अब अपने अंतिम चरण के अंतिम सोपान पर है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद मंदिर की ध्वज पताका फहरा रही है। राजनीतिक तूफानों और विवादों की लंबी श्रृंखला का इतिहास अतीत होने को है। अयोध्या का गौरव अयोध्या हासिल कर चुकी है।

0: ये वही अयोध्या है जहां कभी राम लला के दर्शन के लिए लंबा इंतजार था। आज वही अयोध्या एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। राम मंदिर बना, राम लला विराजमान हुए और अब पूरी अयोध्या बदल रही है। अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं रही, ये आस्था का केंद्र है, ये विरासत की नगरी है और अब आधुनिक विकास का नया मॉडल भी बन रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। इसके बाद अयोध्या में विकास की रफ्तार और तेज हुई। सड़कों से लेकर घाटों तक, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, शहर की गलियों से लेकर नए टाउनशिप तक, अयोध्या का चेहरा लगातार बदल रहा है। आज अयोध्या नगरी एक बार फिर वैसा ही एक उदाहरण समूचे विश्व को देने के लिए तैयार है। ये नवीनतम सुविधाएं हैं, एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन का एक नवीनीकरण हो गया, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उस संस्कार के अनुसार एक विकास अगर नगरी का किया जा रहा है कि लोग संतुष्ट स्वयं को महसूस करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन अयोध्या नगरी आज अपने पुराने वैभव को, त्रेता युग की प्रतीक्षा की बात तो सब करते हैं, दीपावली का त्योहार उसी याद में, उसी सोच के साथ हर बार मना लिया जाता है, लेकिन अगर सचमुच में उस तरह की तस्वीर और त्रेता युग का वैसा रुतबा अगर इस नगरी को हासिल हो जाता है तो इससे बढ़कर अयोध्या वासियों के लिए क्या हो सकता है। अयोध्या के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए 2026 से 27 के बजट में पास किए गए हैं। 150 करोड़ रुपए श्री अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद को दिए गए हैं। 100 करोड़ सड़क और यातायात व्यवस्था पर खर्च करने की योजना है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ अयोध्या को अब सिर्फ मंदिर नहीं, एक पूरी आधुनिक तीर्थ नगरी के तौर पर तैयार किया जा रहा है।
1: अयोध्या बदल चुकी है, प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है, अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया की किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं।
0: लेकिन अयोध्या के विकास की सबसे बड़ी तस्वीर महायोजना 2031 में दिखाई देती है। 2031 तक 23,623.5 हेक्टेयर इलाके को विकसित करने की योजना है। करीब 45% जमीन पर आवासीय विकास होगा। अनुमान है कि 2031 तक अयोध्या की आबादी करीब 24 लाख तक पहुंच सकती है। सरकार का मकसद है बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से बसाना, नई अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और धार्मिक नगरी के साथ एक सुनियोजित शहर का विकास करना। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। 22 जनवरी 2024 के बाद से अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं।
2: आज हमारा जीवन धन्य हो गया है जो कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज उनके दर्शन करने आए। बोलो राम लला की जय।
3: पिछली बार आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे देख के रामलला को ऐसे, बट इस बार जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मंदिर देख के।
0: अब आए थे?
3: मैं 2-3 साल पहले आया था तो बहुत कष्ट हुआ था मुझे, बट अभी जब मैं आया हूँ तो
0: अच्छा लग रहा है,
4: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है रामलला अंदर। अभी हम दर्शन करके आए हैं।
0: एक तरफ राम मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ पूरी नगरी को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की तैयारी है। अयोध्या अब सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, ये एक ऐसा शहर बन रहा है जहां आस्था है, विरासत है, पर्यटन है, व्यापार है। जहां प्रकाश सबसे अधिक होता है वहीं अंधेरा भी उसे तेजी से घेरने की कोशिश करता है। इसीलिए जब चढ़ावे को लेकर अनियमितताओं की बातें सामने आईं तो सवाल उठे, लेकिन समय के साथ जवाब भी अयोध्या ही देगी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: 50.
1: Oh, hey, Watson.
0: Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
2: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
3: Learn more at APGE.com.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
8: आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है। तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस लाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और हमारी आटा चक्कीज है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकान है, सारी बह गई है, और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
7: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहां संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

का मॉनसून सत्र शुरू। राज्यसभा में अमित शाह सबसे पहले पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। चढ़ावा चोरी पर शोर होना तय, 13 अगस्त तक चलेगा सेशन। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से भड़का विपक्ष, सांकेतिक वॉकआउट। कांग्रेस परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके के भी सवाल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। का चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत। मलबे में दबे कई लोग। आज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की स्पेन से भिड़ंत। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर हासिल किया तीसरा स्थान।

0: तो अब तक कोर्ट में ये प्रहार किया करते थे, बड़े बड़े केस, 1993 ब्लास्ट, 2008 ब्लास्ट, आपके जो मुंबई में एक रेप केस बड़ा चर्चित था उस केस को, गुलशन कुमार मर्डर केस, ऐसे प्रमोद महाजन, उस केस को मैंने कवर भी किया था। तो न जाने ऐसे कितने केस जिनकी कोर्ट में इन्होंने धज्जियां उड़ाई और इनकी एक अलग पहचान बनी। सिर्फ इनके नाम पर एक रिकॉर्ड आपको बताता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 665 आइदर लाइफ इंप्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी, यानी उम्र कैद या सजाए मौत, और उनमें से शायद 37 डेथ पेनल्टी यानी फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले शख्स, मतलब मुजरिमों पर प्रहार करने वाले शख्स। उज्जवल निकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। और मैं ऑनर फील कर रहा हूँ आज आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि हर क्राइम जर्नलिस्ट का एक सपना होता है उन लोगों से मिलना या बात करना जो क्राइम की बारीकियों को समझते हैं और फिर कोर्ट में जिस तरीके से उस केस को प्रेजेंट करते हैं। और इस मामले में उज्जवल निकम साहब के बारे में आपको क्या ही कहूँ, ये अभी जो बताया। पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोर्ट में आप अब तक लड़ रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में गए, फिर राज्यसभा सांसद हो गए, तो अब क्या फिल्म स्टार को भी, मतलब उनको भी पीछे पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब आप पर्दे पे भी आपका एक नया रूप आ रहा है प्रहार फिल्म के जरिए, तो मतलब क्या कह के मानेंगे आप, कुछ छोड़ेंगे बाकी लोगों के लिए?
1: अरे भाई साहब, मैंने तो प्रहार में कुछ काम नहीं किया, लेकिन मेरे पर बायोपिक आ रही भाई साहब।
0: तो कमाल है ना, काम करना और जिसके ऊपर बायोपिक बनना, इन दोनों में समझ रहे हैं आप?
1: देखिए, आपने कहा मेरे इंट्रोडक्शन में, आपने ऐसे ऐसे के चले, और आपके जैसे दोस्त लोगों को मेरा ये सुन के ऐसा लगा कि हम पिक्चर करेंगे, तो इसमें मेरा दोष है?
0: नहीं, मतलब और भी कुछ बचा है?
1: नहीं बचा है ना, क्या छोड़ा ही नहीं तो क्या बचेगा।
0: आपके ऊपर बायोपिक बनना, मतलब एक क्रिमिनल लॉयर जो हमेशा इन सारी चीजों के बीच उलझा रहता है, आपने जो भी आइडिया लिखाया, आपको लगा कि यहाँ यार बननी चाहिए, या आपने पहले मना किया? क्योंकि ये भी जानता हूँ कि आप थोड़े से शाही शर्मीले इंसान भी हैं।
1: नहीं, कोर्ट रूम के बाहर, ये तो बात सच कहूंगा, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर है, सच जानते हैं, झूठ भी जानते हो, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बायोपिक बनने वाली है। 3 साल पहले मेरे पास मैडॉक फिल्म वाले आए, और जहाँ इसका डायरेक्टर है अविनाश, जो पाताल लोक बनाए जिसने, वो आए, उन्होंने मुझे पूछा कि निकम सर आपकी हमें बायोपिक बनाना। थोड़ा सा मैंने उनको डिस्करेज भी किया कि भाई मेरे इसमें क्या बायोपिक है, मेरे इसमें कोई ऐसा लव नहीं, स्टोरी नहीं, कोई ऐसी शादी हुआ ऐसा हुआ, कोई डांस नहीं, गाना नहीं, अब क्या बनाए, मेरा लाइफ तो क्या है अगेंस्ट क्रिमिनल। क्रिमिनल सामने देखा कि मैं कहता हूँ, तो बोला हाँ बना, हम सुनना चाहते सब केसेस। तो मैंने सुना है उनको केसेस, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मेरी तारीफ तो कर रहे हैं भाई, आप जैसे अपने तारीफ की तो सुनाया केस जो भी है वगैरह। अभी उन्होंने उसमें से कितना लिया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन 7 अगस्त को प्रहार आने वाला,
0: 7 अगस्त को प्रहार आने वाली, और ये आप लोग जरूर देखिएगा, इसलिए कि मैं सच कहूं मैं खुद भी देखना चाहूंगा, क्योंकि उज्जवल निकम साहब की जो कोर्ट के अंदर मौजूदगी अब तक देखी है, उसके बाहर पूरी इनकी जिंदगी, जितना मैं जानता हूं, इनके फादर शायद बैरिस्टर रहे थे और बाद में जज भी रहे थे, तो घर से ही वो कानून शुरू हो गया इनके, मतलब दलील भी यही लोग दे रहे हैं और फैसला
1: भी। मेरा लड़का भी लॉयर है।
0: हाँ, वो भी क्रिमिनल लॉयर है,
1: क्रिमिनल लॉयर, और वो प्राइवेट डिफेंस साइड है,
0: बॉम्बे हाईकोर्ट,
1: बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफेंस।
0: अच्छा, वो डिफेंस में।
1: हाँ,
0: कभी आप दोनों का आमना सामना होने की उम्मीद?
1: होते ही नहीं, देखिए मैं उनके ऑफिस में जाता नहीं कभी, उनका प्राइवेट ऑफिस है, मैं तो आई एम मूविंग थ्रू टू महाराष्ट्र।
0: तो जरा सोचिए निगम साहब की, एक ऐसा केस हो क्राइम का एकदम हॉट, और उसमें एक तरफ वो डिफेंस लायर, आप एक तरफ पब्लिक प्रोक्यूशन।
1: नहीं, हमने सोच लिया है कि एक में के खिलाफ कभी खड़ा नहीं रहना।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मॉरल टाइज रहती है कि भाई ही इज माय सन, देयर शुड नॉट बी एनी एलिगेशन। प्रभु रामचंद्र को छोड़ा नहीं किसी ने, तो हमें क्या है, वैसा उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है, वैसा कानून कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान के मन में आ गया कि उज्जवल निकम ने दलील ठीक नहीं पेश की, क्योंकि सामने वाला अनिकेत था, अगर मैं जीत गया तो अनिकेत का क्लाइंट कहेगा कि यार पिताजी के कारण इन्होंने,
0: मतलब जैसे डॉक्टर जो है अपने क्लोज रिलेटिव का ऑपरेशन करते हुए कहते हैं हाथ कांपता, फिल्म में देखा
1: नहीं, मेरा हाथ कांपने
0: का, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कानून में भी रिश्तों का पेच होता है कि नहीं यार, आमने सामने अगर एक दूसरे
1: लोगों की भावना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
0: आपका जो रोल प्ले किया है उज्जवल निगम का जो रोल पर्दे पर प्रहार में, राजकुमार राव बेहतरीन एक्टर, मैं जानता हूं उनको, तो जब उनको आपको पता चला कि ये रोल वो प्ले कर रहे हैं तो आप कितना सेटिस्फाइड थे?
1: सही बोलो, मुझे उम्मीद भी नहीं थी
0: क्योंकि वो एकदम यंग उनकी उम्र में आपने बड़ा
1: यंग फर्क भी है और ऐसा दिखने में ऐसा सादा सिंपल, पर जब मैंने इनका टीजर सुना, आवाज सुनी तो लगा, जो जो लोगों ने मेरा आर्गुमेंट दलील सुनी है, आपको मौका मिला कि नहीं मालूम नहीं,
0: मैंने टीजर देखा
1: पर नहीं नहीं टीजर नहीं मेरा लाइव आर्गुमेंट,
0: मैंने लाइव
1: आवाज में वो एड्रेस
0: दो बार सुनी मैंने बॉम्बे में
1: जी, कहा
0: बॉम्बे में जब आप कोर्ट में थे, एक जब ये चल रहा था संजय दत्त वाला केस
1: जी जी,
0: एक अबू सलेम वाला केस
1: जी,
0: तब मैं और साहिल जोशी एक मेरे तो हम गए,
1: तो मेरा वो फेक जो है आर्गुमेंट की स्टाइल बराबर पिकअप किया राजकुमार ने, मेनी ऑफ माय रिलेटिव फ्रेंड, अरे मिस्टर निगम वेदर यू वो आपके साथ चलता था क्या वो राजकुमार, बट ही हैड पिक्ड अप दैट स्टाइल ऑफ थ्रोइंग दी सेंटेंसेस एंड कहां जोर देना है कहां कम लेना है दबाना है।
0: जो मैंने टीजर देखा उसमें हाईलाइट कसाब को ही किया जा रहा था, ठीक है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो पब्लिक फिल्म देखेगी पूरा पता चल जाएगा। एक जो 93 ब्लास्ट के मामले में नहीं 2008 जो था हेडली
1: डेविड हेडली
0: इसको सवाल जवाब इंट्रोगेट करने के लिए एक टीम इंडिया से पाकिस्तान गई थी, उसमें आप थे मेन।
1: बिल्कुल मैं और ये गया था, डेविड हेडली को नहीं हमने इंट्रोगेट किया,
0: तो किसको किया था?
1: डेविड हेडली की गवाही मैंने ली थी, मैं गया था यूएस में शिकागो, मैं और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अतुल चंद्र कुलकर्णी, हम दोनों गए थे, वी डिस्कस विद देयर लॉयर्स, हमने कहा कि डेविड हेडली की गवाही लेनी है। पहले तो हमें यूएस के, देखो डेविड हेडली डबल एजेंट काम करता था, यूएस के भी लिए काम करता था, लश्कर तोयबा के लिए काम करता था, और 26/11 के पहले यहाँ के गया था, फोटोग्राफ लिए थे, लश्कर तोयबा को भेज दिए थे,
0: डबल एजेंट था।
1: तो मैंने सोचा इसकी गवाही ले जा, तो पुलिस कमिश्नर को बताया हमने, क्योंकि पाकिस्तान में मैं गया था, तो पाकिस्तान ने कहा कि सबूत दो हाफिज सईद जकीर रहमान लखवी के खिलाफ, हमने कहा यार तुमने सबूत ढूंढने चाहिए, तुम्हारे यहाँ साजिश हुई है, तो कहते नहीं नहीं मिस्टर निकम इंडिया डिड नॉट अलाउ अस टू पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन, मतलब तुम क्या करने वाले थे? बम्बे में जो हमला हुआ वो ओवरटैक था, कॉन्स्पिरेसी तुम्हारे, तो हम 7 दिन रहे वहां और वापस आ गए। फिर डेविड हेडली का प्ली बार्गेन एग्रीमेंट मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि डेविड हेडली की गवाही लेना जरूरी, मैंने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को कहा ये बात, मुंबई पुलिस कमिश्नर कहा नहीं नहीं निकम वो तो आरोपी है, डेविड हेडली की कैसे गवाही लेंगे आप? पर भाई मैं गांव वाला आदमी हूं, मुझे मालूम था कि काटा नहीं कांटे से निकलना चाहिए, अंग्रेजी में कहावत है सेट थीफ टू कैच ए थीफ, पर हमारी गांव वाले की भाषा काटा से काटा, मैं तो छोटे विलेज का गांव में रहने वाला हूं, ऐसा तो
0: जलगांव
1: मेरा गांव है, वहां बर्थ हुआ, वहां एजुकेशन हुआ, लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो छोटा सा विलेज है, तो हम तो बचपन से काटा लगता तो काटा निकाल देते थे, तो मतलब डेविड हेडली की गवाही लेनी चाहिए। तो हमें अमेरिकन डिप्टी अटॉर्नी जनरल, व्हाई डू यू वांट टू एग्जामिन डेविड हेडली, उनका एक सवाल था, हमने कहा कि भाई वो कॉन्स्पिरसी है साजिश है, हमने सही वजह नहीं बताया क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के खिलाफ इसके इस्तेमाल करना था। फिर हमने डेविड हेडली की, और जब बोले नहीं नहीं बोले व्हाई डू वांट टू डेज, ऐसे हमारे खिल गए। मैंने उनको कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल को, अगर आप नहीं देना चाहते डेविड हेडली की गवाही, नहीं हमें लेने देंगे, तो आप पैसा कह दीजिए, क्योंकि देर इज एग्रीमेंट प्ली बार्गेन में कि अगर उनको गवाही देनी पड़ेगी भारत में और पाकिस्तान में, अगर तुम नहीं देते हो तो हम शिकागो कोर्ट में अर्जी फाइल करेंगे, डेविड हेडली की जो प्ली बार्गेन है वो रद्द किया जाए, हम तो इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो बोले नहीं नहीं वी हैव नो ऑब्जेक्शन। देखो ये कैसा ट्रेंड बदला, फिर डेविड हेडली की गवाही ली, फिर डेविड हेडली ने हमें सब कुछ बता दिया, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स के नाम, क्योंकि ईमेल भेजा था उसको, ईमेल आया था आईएसआई के कर्नल बिरनल सब के नाम बताए थे।
0: तो जब आप पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में बिरयानी भी खाई थी आपने?
1: खाई थी
0: बिरयानी, खाई थी। तो यहाँ जो कसाब को बिरयानी खिलाई थी वो बराबर हो गया?
1: भाई कसाब को हमने बिरयानी नहीं खिलाई, ये बात तो सही है। ये भाई आप लोग क्या, आपको क्या लगता है आप मीडिया ही नैरेटिव सेट करते हैं?
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं हम भी नैरेटिव सेट करते हैं। जब कसाब के बारे में जब बवाल चल रहा था कि भाई कसाब को पकड़ के क्या इतना फजूल खर्चा क्यों कर रहा है, कसाब की ट्रायल क्यों चला रहे, वो तो असली गुनेगार अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे, ये कसाब तो फुट सोल जा रहे, कसाब तो आज ये उसको बहन की याद आ गई क्योंकि मैं राखी बांधी थी, आपको मालूम है ना, याद है ना भैया, क्योंकि जब मैं जलगांव से आया था तो मेरे हाथ में राखी बांधी हुई थी। तो कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है, तो मैंने कहा भाई ये बहन ने बांधी रहती है, तेरा भाग्य कहाँ है, तू तो जेल में मरने वाला है, फांसी तो तुझे होने वाली है। तब तक जेल जज साहब आ गए, जज साहब ने मुझे पूछा कि निकम क्या बोल रहा है कसाब, क्या बातचीत चल रही है। हमने जज साहब को बता दिया कसाब इस प्रकार की बात कह रहा है। तो देखो जज ने, जज और मेरी ये बात चल रही थी तब कसाब ने नीचे मुंडी कर दी और दोनों उंगली अपनी आंखों में गया, और आपके चैनल के लोगों ने बाहर तुरंत भाग के ब्रेकिंग न्यूज दे दी। उस वक्त तो ओबी वैन रहती थी ऑर्थन रोड के सामने, 20-25 ओबी वैन अलग अलग स्टेट की कवर कर रही थी। क्या ब्रेकिंग न्यूज दी, कसाब के आंखों में पानी, कसाब को बहन की याद आ रही, हालांकि कुछ नहीं आंखों में पानी, फिर भी आपने नैरेटिव सेट किया। फिर वो आपका चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया, देखो सरकार की क्या नाकामी हुई है कि सरकार असली गुनेगार को पकड़ के नहीं है, ये तो फुट सोल जा रही, इसको क्या कर रहे हैं, इसको आज तो ब्रेन वॉश हुआ था इसलिए इसको आज दुख हो रहा है। ये 5:15 बजे जब जैसा हो गया, जब मुझे बताया हमारे इंस्पेक्टर लोगों ने, सिक्योरिटी वाले ने, कि ऐसा इमोशनल वेव किया है, तो वहां कोर्ट के ऑर्थर रोड के सामने एक बड़ा पोडियम रखा था, 20-25 बूम रखे थे, तो मुझे गया मैं, जो हुआ वही बता रहा मीडिया को, मिस्टर निकम डोंट यू थिंक ये फेल्योर है गवर्नमेंट का, असली गुनेगार आप तो नहीं पकड़ के लाए, क्या बहादुर की इसमें ये कसाब के खिलाफ आप ट्रायल चला रहे। तो मैंने सबका सुन लिया, मैंने सिर्फ एक कहा, आपका सबके सवाल खत्म, तो बोले हाँ खत्म, मैंने एक ही बोला, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की, इमीडिएट चैनल पैनल नैरेटिव अलग हो गया, देखो कितना खुकार आतंकवादी है, इतनी मटन, इतने लोगों की जान लेगी, मटन बिरयानी की मांग कर रहा है, निकम जी बोल रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ सचमुच,
0: वो आंसू भूल गए,
1: तू भूल गए। फिर दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने सवाल खड़ा किया, जो काजमी वकील है, कोर्ट में उसने बोला कि सर मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर निगम जी ने बताया कि बिरयानी मांग रहा है, मैं उसका वकील है, मेरे पास मांगी नहीं, इनके पास कैसे मांगी। कोर्ट ने मुझे पूछा, यस मिस्टर निकम, अभी देखो आप जितने लोग होशियार रहते ना, वैसे हम भी आपसे सीखे हैं थोड़े,
0: आप बहुत होशियार।
1: अरे नहीं सर, हमने क्या किया, अभी देखो कसाब पंजाबी मुस्लिम था, हिंदी हिंदी इतना क्लियर नहीं समझता था, आज बातें कहने में कोई हर्ष नहीं मिले, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा कोर्ट के सामने, कोर्ट ने पूछा यस मिस्टर निकम यू सेड लाइक दैट कसाब इज आस्किंग फॉर मटन बिरयानी। मैंने कहा साहब कसाब पाकिस्तान से आया है, हमेशा उसका खाना नॉनवेज रहता है, और यहाँ तो जेल में तो उसको वेज खाना मिलता होगा, और मटन बिरयानी उसको अच्छी लगती क्या नहीं लगती, उसने मांगी क्या नहीं मांगी, वैसा घुमा के मांगी क्या नहीं मांगी, अच्छी लगती क्या नहीं लगती, कसाब देखता था मेरे पास, तो मंडला कसाब मेरे पास देखता था, मैंने कसाब के पास देखता था नजदीकी कसाब, ये खटड़ा है ना आपके, इसके लिए खड़ा बैठा था, तो मैं अच्छी लगती उसको मटन बिरयानी देना क्या नहीं देना क्या, कोर्ट का ऐसा मैं बार बार रिपीट किया, मतलब सर आप ही पूछ लो कसाब को मटन बिरयानी क्या कहे। जज ने पूछा क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास। अभी उसका कंफ्यूजन हो गया, उसको लगा कि मटन बिरयानी देने की सचमुच बात चल रही है, उसने कुछ बात नहीं बोला, उसने जवाब ही हाँ नहीं दिया, नहीं मैं भी बोला, कुछ बोला नहीं, मुंडी नीचे घूम दी, उसको शर्म आ रही थी ना, क्या बोलेगा मुझे मटन बिरयानी चाहिए, उसको मालूम है ये मीडिया बैठी है सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया मुझे देखने के बजाय वो कसाब के एक्शन को ही देखते थे ना, कसाब क्या करता है, कसाब कैसे मुंडी हलाता है। तो कसाब ने मुंडी नीचे कर दी, कसाब जज साहब ने दो बार कसाब को पूछा क्या कसाब तूने मटन बिरयानी की मांग की थी निकम साहब के पास, कसाब मैं क्या पूछ रहा हूं मटन बिरयानी की मांग की थी, कसाब कुछ बोला नहीं, पर्दा वही गिर गया, आखिर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की थी क्या नहीं मांग की थी, ये सिर्फ कसाब को मालूम है, मुझे मालूम है, और हमारी कल्चर संस्कृति ये कहती है जाने के बाद कोई मृत्यु होने के बाद उसकी बुराई नहीं की जाती, तो हम दो कल्चर को मानते ना, तो हम क्यों बोले।
0: बहुत देखा यहाँ पे भी आपने एकदम यही, इसीलिए कहते हैं हुनरमंद और अकलमंद वकील की खासियत है, लेकिन आपने जो नैरेटिव सेट हो रहा था एक आंसू की वजह से, उसमें आपने बिरयानी डाल दी, ठीक है, बिरयानी के बाद सब कुछ लोग भूल गए, लेकिन आपको पता उसके बाद क्या हुआ था, इस देश में उसी बिरयानी को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गए।
1: बिल्कुल सही है,
0: तो उसके जिम्मेदार तो आप।
1: हाँ देखिए, अच्छे काम के लिए अगर कुछ हो गया, हाँ, मुझे बुरा नहीं लगता। हमारे देश, हमारे राज्य के गृह मंत्री कांग्रेस के थे, आर पाटिल थे गृह मंत्री, और एक बड़ा फंक्शन था, मैं भी गेस्ट था उसमें, तो मैंने कहा, जयपुर में भी कहा था, ये सिक्योरिटी कमिश्नर के अजीत डोवाल जी के बेटे थे उस वक्त भी उपस्थित, मैंने कहा कि मीडिया को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किस प्रकार के नैरेटिव सेट करना चाहिए, हमने कहा था। और मटन बिरयानी कभी भी कसम ने मांगी नहीं थी, लेकिन हमने ये बात कही, और इसलिए कही कि हमारे देश में कुछ लोगों को बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाती है, फिर बोलते कसाब क्या बेचारा है, गरीब है, स्केप गोट है, तो मतलब कट करने के लिए हमने मटन बिरयानी की स्टोरी की।
0: लेकिन इसको उठाकर दूसरे, इसको पॉलिटिक्स इस तरह से किया गया कि देखो एक सरकार वो है जो उसे बिरयानी खिला रही थी,
1: हाँ चलाया गया, सही बात है,
0: तो जो आपने नैरेटिव सेट किया वो तो मकसद कहीं और चला गया,
1: फिर सच नहीं था ना साहब।
0: लेकिन सच नेताओं ने तो बना दिया।
1: देखिए वो नैरेटिव किसने चलाया, वो तो लोगों के मन में तो गुस्सा तो आ गया, मीडिया को भी गुस्सा आ गया, मीडिया ने कभी बोला कि नहीं नहीं झूठ है, कभी मीडिया ने ये तहकीकत की, शम साहब आप अगर रहते उस वक्त तो आप तहकीकत करते थे कि ये भी सच है क्या नहीं है, कसा मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, किसी ने इस पर सवाल नहीं किया, जिम्मेदारी किसकी
0: थी? तो कुल मिला के बिरयानी नहीं खाई उसने या खाई?
1: बिल्कुल नहीं,
0: नहीं
1: कैसे मिल ला सकती थी।
0: आपकी जिंदगी में बहुत सारे केस हैं और आप एक सरकारी वकील हैं, कहते हैं कि एक जो लिखा होता है ना कोर्ट के दस्तावेज पे, स्टेट वर्सेस, जैसे स्टेट वर्सेस कसाब, स्टेट वर्सेस फलाना, स्टेट वर्सेस इसलिए लिखा होता है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि अगर जो एक क्राइम होता है वो पूरे सोसाइटी और समाज के खिलाफ होता है, इसीलिए सरकार उसको लड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे केस आपने लड़ लिए, कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगता है कि आपके हाथ किसी गलत शख्स को सजा सुना दी गई?
1: बड़ा अहम सवाल है, एक केस है पर मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन तीन अभियुक्त थे, रेप एंड मर्डर की केस थी जिसमें दो बिल्कुल दोषी थे, एक तीसरा पुलिस ने पकड़ा था, मेरे ख्याल से वो निर्दोष था, पर सबूत सभी उसके खिलाफ थे, आई वॉज हेल्पलेस। लेकिन मैंने उसको कहा था कि भाई मुझे मालूम है कि तू निर्दोष है, पर मेरे हाथ बंधे हुए बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर अगेंस्ट यू, सो आई एम हेल्पलेस।
0: डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए?
1: पुलिस ने।
0: तो इसका मतलब पुलिस ने गलत बनाए?
1: हो सकता है।
0: तो सरकारी वकील होने की एक मजबूरी ये भी है कि आप चूंकि सरकार के वकील है तो पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकते?
1: जा सकता हूँ अगर एविडेंस नहीं होते। देखिए मैं केसेस बताता हूँ आपको। गेटवे ऑफ इंडिया 2003 में ब्लास्ट हुए थे, ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट, गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार,
0: बिल्कुल।
1: एक मुस्लिम फैमिली, हस्बैंड वाइफ, लड़की 17 साल की लड़की और उनका नेबर, उन्होंने 24 अगस्त को रेकी करके आए थे गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार टैक्सी से, और 25 अगस्त को उन्होंने प्लान किया था, ये केस थी हमारी आरडीएक्स, उन्होंने घर पे बनाया था। ये जब ट्रायल शुरू हुई तो मैंने देखा कि लड़की के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। मैंने ऑफिसर को पूछा कि क्या लड़की के खिलाफ क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा साहब वो रेकी कर रही थी। बोला यार रेकी करना इसका मतलब उसे मालूम था, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोले नहीं साहब गाड़ी में जा रहे थे। नहीं नहीं उन गाड़ी में कुछ बात हुई बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, ऐसा सबूत कहाँ है? तो ऐसा सबूत नहीं है। अच्छा लड़की इनोसेंट दिख रही थी? मैं फेस से देखने से बताता हूँ, अभी आप देखो कितने इनोसेंट दिखते है क्या नहीं है वो बात अलग है,
0: बिल्कुल,
1: पर फेसियल तो होते कभी कभी ये होते। तो मैंने स्टैंड लिया कि इस लड़की के खिलाफ बाकी कोई सबूत नहीं है। मैंने कोर्ट को कहा इसको डिस्चार्ज कर दिया, कोर्ट है डिस्चार्ज ऑन माई वर्ड। तो ये ताकत पब्लिक प्रोसिक्यूटर में होनी चाहिए कि अगर पुलिस ने किया हो, अगर सबूत नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड शो द करेज कोर्ट के सामने, क्योंकि अल्टीमेटली द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट।
0: तो आपने कभी कोई ऐसा करेज दिखाया कि जब गवर्नमेंट ने या पुलिस ने कहा नहीं यही सही है आपको यही करना और आपको पता है ये गलत है और आप उसके अगेंस्ट जाकर फिर आपने
1: किया?
0: इस लड़की के अलावा मैं पूछ रहा हूँ।
1: नहीं लड़की को तो छोड़ दिया ना,
0: छोड़ दिया।
1: इसके अलावा बताता कि अप्रोच अलकायदा का आतंकवादी जो नौ आकरा का अमेरिका का हल्ला हुआ हमला हुआ उसके बाद पहली बार हमारे देश में बंबई में एक अफरोज नवाज का एक शख्स को पकड़ा गया जिसने दावा किया था कि मैं अलकायदा का मेंबर हूं और मैंने एयर फ्लाइट ट्रेनिंग ली है और मैंने शिकागो में ट्रेनिंग ली, यूएस में गई, इंग्लैंड में गई, ये ट्रेनिंग की और मैं यहाँ से फ्लाइट यहाँ बॉम्बे पे डीजी ऑफिस पे गिराने वाला था और मंत्रालय पे गिराने वाला था। उसने मैजिस्ट्रेट सामने एक बाली बयान दे दिया और उसको लगा दिया पोटा पुलिसों ने। हमारे ये उसकी कहानी के बाद हमारे पुलिस कमिश्नर जो थे ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस वो अमेरिका चले गए देखने के लिए कि क्या सचमुच उसने ट्रेनिंग की थी। बड़ा हाईली पब्लिसाइज मैटर हुआ था और उन्होंने पाया कि यस ही हैड टेकन द ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग उसने ली है, तो उधर ली, इंग्लैंड में ली, सब इधर, सो दे वर कंफर्म कि ये अप्रोच ही है। चार्जशीट दर्ज होने के बाद हमने देखा कि जो अप्रोच बात कह रहा था जिसको पोटा लगाया था, प्रिवेंटिव टेररिस्ट एक्ट, ये पोटा कानून एने के पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तो पोटा को तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता, पीछे से नहीं लगता।
0: नहीं,
1: तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब ये पोटा हटा दीजिए, इसका पोटा। जज साहब ने बोला मुझे कि मिस्टर निकम दिस इज हाई प्रोफाइल मैटर, जस्ट सी कि लगता क्या नहीं। मुझे लगता है, लगता है वो। मतलब साहब आपको लगता है उधर लगा दीजिए, पर मेरा कहना ये लिख लीजिए कि पोटा इज नॉट एप्लीकेबल। तो जज साहब ने फिर उस दिन मैटर एडजर्न किया। दूसरे दिन जज साहब ने कहा कि नहीं, पोटा नहीं लगता है। पर ये पोटा नहीं लगता ये न्यूज से महाराष्ट्र में खलबल हो गई। वहां के हमारे होम मिनिस्टर का फोन आ गया मुझे,
0: और वो अलकायदा का पहला शख्स था जिसे
1: पहला शख्स था और कमिश्नर पुलिस वहां उनके साथ थे। अरे निकम जी, तुमने ये कैसे किया, केस कैसे क्यों विड्रॉ कर दिया, पुलिस कमिश्नर से भी नहीं पूछा तुमने? पुलिस कमिश्नर ये बात करो उनसे। पुलिस कमिश्नर मुझे बात करने लगे, एम एन सिंह साहब थे। बोले निकम जी, तुमने हमसे कभी बात नहीं की, पोटा विड्रॉ कर दिया, ऐसा कैसे किया, हम जाके ट्रेनिंग करके ले गए, हम क्या जवाब दें? मैंने उनको समझाया कि साहब पोटा नहीं लगता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। नहीं, पर हमको पूछना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज नॉट अ माउथ पीस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और जो मैंने बात सही कही, आपको लगता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये केस नहीं चलाता आगे भी। तो दे सेड नो, दैट इज, मतलब अगर ये मैं रखता भी था और कोर्ट में बाद में छोड़ देता था एविडेंस के बाद, किसकी बुराई होती थी?
0: बिल्कुल,
1: मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के नजदीक मानी जाती है ना, तो तुम एक्ट भी नहीं सीख लगा सकते। तो मैंने ये भी कहा कि मैंने आपकी रेपुटेशन बचाई है, फिर कुछ नहीं हुआ।
0: आपकी रेपुटेशन की ही एक और कहानी भी है कि चूंकि उज्जवल निगम जिस केस को लेते हैं, लिस्ट ही मैंने बता दी आपको, अराउंड 665 37, तो डेथ पेनल्टी है उसमें, बाकी उम्र कैद है। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब जो जादू की छड़ी है, उज्जवल निगम साहब को वकील बनाओ और आराम से काम हो जाएगा। हाल में भी ऐसे ही हुआ, एक पुणे में एक केस हुआ, सिया और केतन मर्डर केस। उसमें उनकी फैमिली वाले मुंबई गए थे सीएम साहब से मिलने के लिए, और उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है, जो केतन का केस है वो उज्जवल निगम साहब लड़ेंगे। मतलब फैमिली को एक तरह से गारंटी मिल गई कि अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। क्या ये सच है, आप सीए का केस लड़ेंगे?
1: भाई पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं जादू की कांडी बिंडी कोई नहीं है। मैं एंटीबायोटिक हूँ।
0: अच्छा, ओके, हाँ ये सही।
1: मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एंटीबायोटिक हूँ। जहाँ कहीं महाराष्ट्र में बड़ा हादसा होता है,
0: हाँ,
1: बड़ा हमला होता है, तो हमारे सीएम साहब बहुत होशियार है, फडणवीस साहब। पब्लिक की मांग रहती है कि साहब उज्ज्वल निकम को अपॉइंट किए, माहौल गुस्सा कम करने का रहता है, तो फडणवीस साहब इमीडिएट फोन करते हैं हमें और बता देते कि आपकी अपॉइंटमेंट कर रही है।
0: मतलब गुस्सा कम करने की भी गोली है
1: हम गोली है। सही में बता दें, उसमें कोई बुरा नहीं है भाई। तो हम बता देते हाँ, कहते हैं भाई इतना विश्वास मुख्यमंत्री साहब अपने पर रखते हैं तो हमें कहना है कि हाँ। तो फडणवीस साहब को मैं मानता इसलिए, वो इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन, ही नोज कि कहाँ कहाँ का प्लग कहाँ लगाना है, वेरी स्मार्टली ही हैंडल्स। तो इसलिए माहौल शांत हो जाता है। वैसे ही केस में हुआ, सिया के केस में। मैं बंबई में था, ये इन्होंने कुछ अर्जी दी उनके पास, उसके पिताजी ने, चेतन के,
0: अग्रवाल साहब,
1: केतन के पिता ने तो अर्जी दी। तो सीएम साहब का फोन आया, उज्जवल जी इनकी मांग है, आप ऐसा का, अभी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर सीएम साहब विश्वास रखते हैं, तो मैंने कहा हाँ करूंगा, तो मैंने एक्सेप्ट मॉरली तो कर दी है,
0: कर ली।
1: लेकिन ये केस में मैं चार्जशीट दर्ज होने के बाद अपीयरूंगा,
0: 3 महीने बाद।
1: हाँ, 3 महीने के बाद।
0: फिर भी आपने, आप चुके इतने जागरूक वो हैं, आपने मीडिया वीडिया के जरिए केस के बारे में जानकारी तो आपके पास पूरी होगी।
1: जानकारी देखिए मीडिया इसी है, जो मीडिया को जानकारी, जो मुझे जानकारी है, ये बात सब मीडिया को जितनी जानकारी।
0: मैं ये जानना चाहता हूँ निकम साहब, ऐसे बहुत सारे केस आपने अपने लाइफ में लड़े, ये वो केस है जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है, एक पहाड़ी पर सिर्फ 3 लोग हैं, एक केतन, एक चेतन और एक सिया। अब उसमें कहानी ये है कि या तो धक्का दिया गया, या वो कूद गया, या फिर फिसल गया, सारी कहानियां हैं। कोर्ट सबूतों के आधार पर चलेगा, फैसला भी देगा।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पे विटनेस तो है नहीं, कहानियां ही कहानियां हैं। तो फिर जब विटनेस है नहीं तो इस केस का अंजाम क्या होगा?
1: आपने देखा है क्या इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है क्या नहीं?

0: पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। जब फादर अगर मर्डर के निष्कर्ष पे आता तो उसके पास कोई होगा सबूत?
1: सबूत यह कि चेतन और इनके
0: रिश्ते। आप ये जो कह रहे हैं, देखो मीडिया में यही गलत बात होती है, मीडिया ड्रॉज इन्फरेंसेस।
1: सर मैं रिकॉर्ड से दो चीज कह सकता हूँ।
0: मैं हमेशा कहता हूँ आप यू आर अ वेरी एक्सपर्ट क्रिमिनल रिपोर्टर, आई नो अबाउट दैट। देखिए क्या होता है कि पुलिस अपने कभी पत्ते खोलती नहीं है और वे खोलना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहूंगा। सो वो जो एसपी है वो स्मार्ट है, वो सब थोड़े पत्ते खोलने वाला होगा।
1: मैं हटा देता हूं इस केस को, मैं सिर्फ एक कोई भी आम केस जिसमें आई विटनेस नहीं है उसको आप कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे?
0: ये देखो सबूत क्या है इस पे आधार पे होगा भाई साहब, मैं आज तो कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि कोई भी केस आने के बाद देखिए मेरे मेरा एकदम टारगेट फिक्स रहता है। इन्वेस्टिगेशन पेपर्स क्या है, ये जरूरी नहीं कि हर केस में कोई आई विटनेस हो या न हो।
1: हाँ ठीक,
0: केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रहती है। कई केसेस में ऐसा है कि आई विटनेस भी रहता है पर पुलिस नहीं बताती है।
1: ओके,
0: ऐसा भी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसा
1: उसकी सेफ्टी
0: कि उसके सेफ्टी के लिए अपने को मालूम नहीं आज, वी डोंट नो एनीथिंग।
1: बिल्कुल एग्री करता हूं।
0: और जब अगर मैं ये केस चलाने वाला हूं तो मुझे ये भी कहना, ये आपने अभी आपका रिस्पेक्ट करता हूं इसकी, मैं इसके बारे में इतना तो भी बोलता हूं, नहीं तो मैं किसी से बात भी नहीं करता हूं इस केस के बारे में।
1: बिल्कुल
0: मैं रियल आई एम टेलिंग यू।
1: बिल्कुल मैं,
0: आपने कभी जब भी चीफ मिनिस्टर ने पूछा बोला तभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी दिस इज अ चैलेंज, देयरफॉर आई एक्सेप्ट, दिस इज माय कॉशन वर्ड। और महाराष्ट्र की मीडिया को पता है कि मैं एक लक्ष्मण रेखा के बाहर जाता नहीं।
1: सर मैं भी जानता हूं।
0: नहीं आप जाते नहीं, आप जानते तो आप मुझे इतने सवाल नहीं करते। यू आर अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट रिपोर्टर,
1: आपसे ही सीखा लाइव। एक सब कोई जानना चाहता, आप चूंकि एक एक्सपर्ट है सर इसलिए इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक एक साल पहले एक केस हुआ था, सोनम रघुवंशी केस, इंदौर की एक थी जिसने हनीमून पे अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी को मार डाला था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया, 9 महीने जेल में रही। उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, फिर हाईकोर्ट ने दे दी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पहली चीज कि एक मर्डर केस में क्या 9 महीने के अंदर जमानत देना बड़ा नॉर्मल है? नंबर टू जो इसमें लॉजिक दिया गया वो ये कि पहले आईपीसी था, बीएनएस हो गया। बीएनएस में टोटल सेक्शन 358 है और मेघालय पुलिस की गलती से टाइपो एरर है, जो अपने एसजी साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि 403 लग गया, वो होना था 103। तो सिर्फ एक टाइपो एरर की वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके से जमानत दे सकती, इस केस को आप कैसे ले सकते?
0: गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से टाइपो मिस्टेक टू अर इज अ ह्यूमन थिंग, ये बात तो पहली है। मिस्टेक्स टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। अगर ये आपका रघुवंशी के केस में अगर गलती से ये 103 बदले में 403 आप बता
1: रहे हैं,
0: 403 लग गया, तो ये मिस्टेक है, ऑनेस्ट बोनाफाइड मिस्टेक, इसको तो नजरअंदाज करना चाहिए था।
1: लेकिन कोर्ट ने कहा कि 403 है नहीं, इसका मतलब है सोनम को आपने बताया नहीं कि उसका क्राइम क्या।
0: यू आर टू टेक्निकल। अरे बाकी तो बताया होगा ना, सेक्शन में नहीं बताया होगा 403 पर, बाकी तो कंटेंट तो बताया होंगे। कंटेंट तो ये है ना कि मर्डर किया, ये बताया क्या नहीं, क्या नहीं।
1: वकील साहब उनके यही कह रहे हैं कि हमें तो अपने क्लाइंट का क्राइम बताया ही नहीं।
0: भाई फॉरगेट 103, ये जरूरी नहीं है कि 103 क्या 403 बताना चाहिए। अगर ये जिस बताया होगा कि आपने इसका मर्डर किया है तो मर्डर तो आ गया ना।
1: तो आपको लगता है कि दो कोर्ट जमानत पे अभी बाहर है सोनम, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टाइपो एरर की वजह से वापस ये फैसला?
0: अगर ये आधार दिया होगा सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ने कि टाइपो मिस्टेक 403 से है, वो तो माने ही नहीं होंगे। वो तो उन्होंने जब बेल दी, जमानत दी, तो ये लिखा होगा उन्होंने कि भाई ऐसा 403 में ऑफेंस ही नहीं, हम कैसा है इसका ग्राउंड है, दैट इज रॉन्ग। क्या अगर जजमेंट में ये लिखा है कि अभियुक्त ने इसका मर्डर किया है और मर्डर के द्वारा ऐसी कट साजिश की है, तो 103 लिखो क्या न लिखो, 403 लिखो क्या मत लिखो, कंटेंट्स।
1: सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस ही 403 और 103 पे हो रही है।
0: बहस हो रही है तो फिर तुषार मेहता जी ने कहा ना, ये गलत मिस्टेक है। अगर तुषार मेहता जी ने ये भी बताया होगा, मुझे पता नहीं क्या आर्ग्यूमेंट क्या, कि भाई ये जो एफआईआर है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो लिखे है कि इसको अरेस्ट किया है कि मर्डर के इसमें किया है, तो इट्स अ मिस्टेक, गलती किससे नहीं होती।
1: निकम साहब एक इस तरह का मर्डर
0: जी,
1: इतना मतलब हर तरफ चर्चा में भी हो
0: जी,
1: और किसी भी आप मर्डर को लेकर, क्योंकि हीनियस क्राइम में मर्डर तो आता ही है, 8-9 महीने में बेल मिलना मतलब एक नॉर्मल है या ये लगता है कि

0: अलग चीज है। नहीं देखिए उसका रोल क्या था हमें पता नहीं है उस केस का।
1: जो आपकी कहानी चार्जशीट की कहानी, मैंने चार्जशीट इसकी पढ़ी,
0: चार्जशीट हो गया कि फाइल?
1: हाँ, चार्जशीट फाइल।
0: अच्छा,
1: उसमें चार्जशीट में यह है कि इसने दो लोगों को हायर किया था, पैसे दिए थे, गन भी लिया था और ले जाके धक्का दे दिया, इसलिए कि उसको ये लड़का पसंद नहीं था, लेकिन घर वालों से बताने में डरती थी और उसका एक किसी और के साथ अफेयर था। तो मेन आरोपी नंबर वन चार्जशीट में, उसमें सोनम रघुवंशी का नाम आरोपी नंबर वन। तो ऐसे केस में बेल, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप टाइपो एरर छोड़ दीजिए, नॉर्मल केस भी होता।
0: अगर मैं मेरे कॉमेंट्स रिजर्व रखता हूँ, इसलिए रिजर्व रखता हूँ कि अगर साजिश का आरोप है तो साजिश के लिए क्या सबूत है। सी, ये इट इज वेरी सेल्डम कि साजिश पे हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस मिले। अल्टीमेटली साजिश जो प्रूव होती है वो इररेजिस्टेबल इन्फ्रेंस है, और इररेजिस्टेबल इन्फ्रेंस कोर्ट कैसी निकालती है? सिलोजिज्म की लॉजिक से, ऑल मेन आर मॉर्टल, सर्व मानव मरते हैं, ऑल किंग्स आर मेन, सर्व राजे मेन है, और थर्ड इररेजिस्टेबल, ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मेन, देयरफॉर ऑल किंग्स आर मॉर्टल। ये जो थर्ड इररेजिस्टेबल इन्फ्रेंस हम लाते हैं ना, वो लॉजिकल डिडक्शन रहता है। तो इसके लिए ये देखना होगा उस केस में कि साजिश के लिए क्या क्या सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए। तो ये कहना भी गलत है लड़की है तो उसको लिए जल्दी मिलना बहुत आम बात में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह से प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किया, किस तरह से कोर्ट के सामने दलील पेश की, ये
1: मैं सोनम वोनम इन सबको छोड़ देता हूँ। 93 में आपका सबसे बड़ा बैकअप था, जब आपको 93 ब्लास्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चुना था, मुंबई पुलिस की तरफ से आप थे। वो दौर, क्योंकि अब करीब 35-30 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, अब लगता है सर उस टाइम में जो क्राइम जो था जिस तरीके का, आजकल हम जो कुछ पिछले 2-4 सालों से देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप वाले क्राइम, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड, जैसे भी जयपुर में एक बेटी ने अपनी माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी माँ की, ये इसको कैसे देखते हैं अचानक सोसाइटी में?
0: नहीं, हमारा कल्चर कम हो गया, और ये बात जरूर मैं कहूँगा बड़े दुख से, पेरेंट्स का अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं है। पेरेंट्स दे आर बिजी इन देयर प्रोफेशन एवोकेशन, और जो बच्चों और पेरेंट्स में एक रिलेशन चाहिए कि फादर एंड फ्रेंड नहीं, फादर और बच्चे नहीं, फ्रेंड्स का रिलेशन चाहिए। आपको ताज्जुब की बात है, मेरा लड़का अनिकेत, हम सुबह 4:30 बजे उठते, हम दोनों बातें करते सुबह 4:30-5 बजे, वो चाय बनाता मेरे लिए, मुझे चाय बनाना नहीं आता, ही प्रिपेयर द टी एंड गिव टू मी एंड वी डिस्कस। क्या डिस्कस करते हैं? कई बार तो फैमिली मैटर के डिस्कस करते हैं। मुझे वो मेरा लड़का है, मैं उसका पिता, ऐसा नहीं रिलेशन, वी आर लाइक द फ्रेंड्स। मुझे एट सम टाइम वी टॉक अबाउट हिज वाइफ ऑल्सो, ही टॉक्स अबाउट माई वाइफ ऑल्सो, बट म्यूचुअली वी एक्सचेंज अवर थॉट्स, किसकी बुराई नहीं हम करते, लेकिन किस तरह से मेंटेन रहना, ये जो रिलेशन रहता है, ये बॉन्डिंग, ये अच्छा रहे। मैं एक किस्सा बताता हूँ, मेरी ग्रैंडसन अरिंजे, मेरा बच्चे का बच्चा और लड़की की अहिल्या, दोनों लड़की की लड़की और ये बच्चे का बच्चा, एक दफे मैं जा रहा था कहीं पुना में केस में सर्किट में, तो उसने कहा देखो बच्चों लोगों का किस तरह से ट्रीट कर, मैं आई एम नॉट एजुकेटिंग योर व्यूअर्स बट आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस, कि वो गांव से आया था, उसके माँ साथ थी, पापा आई लव यू, मैंने कहा हाँ आई लव यू, अगेन उसने कहा पापा आई लव यू, मैंने कहा हाँ आई लव यू। अभी मेरे साथ पुलिस ऑफिसर, मैं आई वॉज जस्ट क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट हॉल, फिर उसने कहा पापा आई लव यू, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब अभी एक मजाक कर रहे हैं, पापा आई लव यू, मैं कुछ नहीं बोला। उज्ज्वल ने कहा आई लव यू, फिर मुझे ध्यान देना पड़ा, मतलब आई लव यू, उसके माँ ने उसको दटाया, मैंने कहा डोंट एंग्री ऑन हिम, उसने ध्यान में ये आ गया कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको कहा है। तो हमने अच्छी बातें नहीं, जैसे मेरी बच्चे की अहिल्या की, वैसे इसी तरह से ये बच्चे होशियार होते जा रहे। तो कहना क्या मात्र में, आज आप जो कह रहे कि ऐसे किस्से बढ़ रहे हैं, तो ये फैमिली बॉन्डिंग जो है, रिलेशंस बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एंड, वो नहीं रहे। हमारे जलगांव में मैं जब था तो हमारे पिताजी जब घर में रहते, हम पिक्चर भी नहीं देखने को जाते थे, हम देखते थे पिताजी कब गांव को जाते तब पिक्चर देखेंगे। आजकल के बच्चे ऐसे हैं क्या? नहीं, हम चलो पिक्चर को, हम जा रहे पिक्चर को, ऐसा होता है।
1: आपको धमकी भी मिली कभी?
0: मिली, पर है मिली।
1: अच्छा निगम साहब, आप चूंकि सरकारी वकील हैं तो आपको सबसे पहले चार्जशीट पढ़ने का मौका मिलता है जो तैयार होती है। जब चार्जशीट आप पढ़ते हैं किसी भी केस का, ये मैं अपने लिए भी जानना चाहता हूँ, तो उस चार्जशीट में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे पहले ढूंढते हैं?
0: नहीं, चार्जशीट के मैं पहले देखिए, पहले तो पोस्टमार्टम नोट्स में देखता हूँ।
1: पोस्टमार्टम नोट्स, उसकी वजह?
0: उसकी वजह ऐसा है कि कॉलम नंबर 17 में जो एक्सटर्नल इंजुरीज है वो क्या लिखा हुआ है देखता हूँ, और फिर आई विटनेस रहे तो आई विटनेस की स्टोरी क्या और ये इससे मैच हो रहा है क्या नहीं।
1: अच्छा,
0: अगर आई विटनेस की स्टोरी मैच उससे नहीं हो रही तो एक तो आई विटनेस ज्यादा बना रहा है कि उसके ध्यान में नहीं आया है, क्यों लक्ष्य नहीं था, एक वे फिर वो आई विटनेस कॉन्सेंट्रेट बाद में आ। दूसरी बात यह है कि अगर सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो चेन ऑफ सर्कमटेंसेस कैसे कनेक्ट होती है। तीसरी बात यह है कि कई बार मोटिव रहता नहीं, मारा क्यों इसके बारे में सबूत नहीं रहता। कानून यह कहता है कि आई विटनेस रहता तो मोटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो मोटिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल।
1: बिल्कुल, मकसद होना चाहिए,
0: मकसद होना चाहिए। पर मैंने यह भी देखा है कि सर्कमटेंशियल एविडेंस में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मोटिव नहीं मिलता है, वजह अलग अलग होगी, लेकिन अगर मोटिव नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आरोपी ने गुनाह नहीं किया है। सो यू हैव अ कन्विंसिंग पावर टू कन्विंस द जज। ऐसा है कि जज भी देखिए ह्यूमन बींग रहते हैं, कई बार उनको भी उनका ईगो ऑर्डर रहता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ईगोज एंड ऑर्डर, और तुमको ये नहीं दिखा सकते कि ये तुम गलत है हम बराबर है। सो इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो।
1: आपने अभी कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव बहुत जरूरी होता है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आई विटनेस से नहीं तो चलेगा। दो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो आप होते तो क्या होता। एक बहुत मशहूर है आरुषि मर्डर केस, और दूसरा है निठारी, जिसमें 16 बच्चियों की मौत हुई थी, और आरुषि और हेमराज का, इसमें कोई विटनेस नहीं था, लेकिन मोटिव कभी क्लियर ही नहीं पाया, अलग अलग कहानियां आई। आपके हिसाब से ये दो केस क्यों नहीं अपने अंजाम तक पहुंच पाए? क्योंकि आज भी आरुषि हेमराज का कातिल नहीं मालूम कौन है, आज भी निठारी में 16 बच्चों का कातिल कौन है मालूम नहीं, उसके दोनों अकेले सब बरी हो चुके, छूट चुके हैं।
0: इट्स अ बिग फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर क्या है? जब आप जो आरुषि की केस बात कर रहे हैं जिसमें वो जो खुली बंद थी, तब क्या हुआ उसमें से, क्या निकला क्या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें क्या है, मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बड़ा ध्यान नहीं दिया, और हमारे यहां कई पुलिस ऑफिसर को यह बुरी आदत लग गई है टू स्पीक विद द मीडिया एंड दे डिस्टॉर्ट द होल थिंग्स। हर कोई पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हम कैसे आए बाहर। सी टिल द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट दे शुड नॉट डाइवर्ज द इन्वेस्टिगेशन, पर होता नहीं आजकल।
1: चार्जशीट भी उनको ढंग से फाइल करना आता है सर पुलिस वालों को पूरा?
0: कई करते हैं पर बाकी के नहीं करते, कुछ लोग करते हैं अच्छी तरह से।
1: अगर ढंग से नहीं करते उसका नुकसान केस पे आता है
0: 100%, एक्यूज गेट बेनिफिट, चेन नहीं कनेक्ट करते, और सेंट्रल एजेंसी जब स्टेटमेंट लिखते हैं विटनेस के तो 4-4 पन्ने 5-5 पन्ने लिखते हैं, इतनी क्या जरूरत है?
1: इसको सुधार का क्या तरीका आपकी नजर में?
0: अरे अपने को कौन पूछता भाई, अब तो क्या है?
1: फिर भी सर, नहीं आपके चाहने वाले बहुत हैं, जाने बहुत सारे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं।
0: नहीं नहीं, पर ठीक है, आपने पूछा तो मैं बताऊं कि स्टेटमेंट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज। आजकल मैंने देखा है कि इन्वेस्ट पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट 4-4 लाइन का स्टेटमेंट एक एक लिखते, क्या जरूरत है? छोटे छोटे सेंटेंस रखो ना, नहीं रखते हो, उनकी आदत ही गिर गई है कि हमने बड़े बड़े स्टेटमेंट करते। ये सब के इधर देखिए, मैं महाराष्ट्र में तो देखता ही हूं, मैं कई पुलिस ऑफिसर को बताता हूं कि अरे स्टेटमेंट तुम ब्रीफ कंसाइज करो, 4-4 लाइन के क्यों रखते। कई जजेस को आदत रहती है बड़े सेंटेंस भी 3-3, 4-4 लाइन के जज सेंटेंस रहते, मतलब निकल जाता है ना, शुरुआत कहां से होती है और एंड कहां से होता है।
1: आखिरी सवाल आपसे निगम साहब ये कि आपकी जो लिस्ट है पूरी 665, उसमें 37 ऐसे लोग हैं जिनको आपने सजाए मौत यानी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया,
0: कई बार रिमिशन में ये भी
1: कुछ हुआ, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अगर गिनती करें तो उनमें से कितने लोगों को फांसी दे दी गई?
0: ये बड़ा अहम सवाल है। एक याकूब में पर,
1: हाँ,
0: और
1: कसाब,
0: हाँ, और बाकी तो प्रेसिडेंट के मर्सी, वो कोल्हापुर का बाल हत्याकांड, दो लेडीज को,
1: हाँ,
0: फांसी हुई थी,
1: लेकिन
0: सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म किया, प्रेसिडेंट ने, अच्छा सवाल किया आपने, प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया, तो फांसी होनी चाहिए थी क्या नहीं होनी चाहिए थी, मैं पूछ रहा हूँ आपको।
1: हाँ बिल्कुल,
0: सुप्रीम कोर्ट क्लियर कोल्हापुर सेशन कोर्ट रिजेक्टेड, हाई कोर्ट रिजेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन एंड प्रेसिडेंट रिजेक्टेड मजीद. फांसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई?
1: टाइम ज्यादा लग गया.
0: किसने, किसकी जिम्मेदारी थी
1: ये जो सब इसको फॉलो?
0: ब्लैक वॉरंट किस का कौन निकालता है?
1: ब्लैक वॉरंट जो मजिस्ट्रेट है यहाँ के, जो जिस
0: नहीं निकाला तो किसको, फिर क्यों इस किसको जिम्मेदार ठहराया आपने? नहीं ठहराया. ये सिस्टम ऐसी है.
1: तो उसका मतलब
0: मैंने ट्रायल चलाई वो कोल्हापुर
1: को, तो जुडिशरी पे ही आ गया ना मामला जहां से केस शुरू हुआ.
0: मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दे रहे थे.
1: ब्लैक वॉरंट उस जज को इशू करना है जहां का ये केस है.
0: फिर देखो ये लेडीज थी, ये लेडीज थी अंजना बाई गावित माँ, उनकी रेणुका एंड सीमा तीन बच्चे, और उनका हस्बैंड किरण शिंदे. क्या मोडस ऑपरेंडी थी? ये तीन तीन चार चार साल के बच्चे को अगवा कर लेते थे. कहां थे, कहां तक करते थे? कोल्हापुर, पुणे, नासिक, मुंबई, छोटे तीन तीन यात्रा वित्रा टेम्पल में गए कोई नहीं है देखे. बच्चों को अगवा कर लेते थे, भगा लेते थे. कई पुलिस स्टेशन में ऐसे 42 छोटे बच्चे इन्होंने मारे थे. 42. अनफॉर्चुनेटली कई बार उनकी कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई. पुलिस ने नहीं, क्योंकि गरीब लोग जाते ना दर्शन को, ब्रिशन को, पुलिस ने नहीं कॉग्निजेंस लिया. बट दे वर कन्फेसिंग कि दे हैव किल्ड 42 बॉयज. उस ट्रायल में हमने कुछ तो भी 7 के 10 लड़कियों के हमको FIR मिले, जो फैमिली जिन्होंने FIR की थी. वो बच्चे को किस तरह से मारते थे, बहुत हमने कोर्ट में उसका, किरण शिंदे को हमने माफी का गवाह बनाया, किरण शिंदे ने दे दिया. और मेरे लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट केस ये केस थी
1: जी,
0: कोल्हापुर. क्योंकि जब कोल्हापुर सेशन जज ने इनको फांसी सुनाई, तब कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बड़े हजारों तादाद में बच्चे लोग आए थे देखने, निकाल सुनने का, और मुझे शुगर शक्कर दे रहे थे, मुझे बांट रहे थे. दैट वॉज ए रिमार्केबल डे इन माई लाइफ कि बच्चों के चेहरे पर मैं खुशी देख रहा था कि ये राक्षसिनी को फांसी दी गई. अंजना भाई रेणुका सीमा हाईकोर्ट सेशन कोर्ट ने फांसी दी, अपील के अपील डिसमिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म की फांसी की सजा, प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन रिजेक्टेड हुआ. 5-6 साल उनको फांसी दी गई नहीं, ब्लैक वॉरंट निकाला नहीं गया. वो लेडीज इतने होशियार थे, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर दी कि साहब हमें हैंगिंग सोर्ट के अंदर है. हाईकोर्ट ने उनकी आजीवन कारावासन, मरने तक कारावासन. हमारे टैक्स पेयर के ऊपर वो जिंत रहे.
1: प्रेसिडेंट तक ने मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि आप एक खास तय सीमा के अंदर, वक्त के अंदर, आप ब्लैक वॉरंट निकालेंगे और ताकि उसको फांसी? कोई पूछने वाला है कानून कहीं?
0: आप
1: है?
0: ये सवाल पूछो अभी, मैं क्यों पूछूं?
1: आपके हिसाब से कहीं कानून में लिखा हुआ है?
0: नहीं, कहीं लिखा.
1: कोई डेडलाइन है उसमें?
0: नहीं, कोई डेडलाइन नहीं. इमीडिएट करना चाहिए था ना.
1: हरियाणा की एक सोनिया है, एक यूपी की शबनम है, इन लोगों ने अपनी फैमिली के साथ साथ लोगों को मारा ऊपर तक.
0: वैसे भाई साहब प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटीशन, वो भी तय नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में.
1: वो भी तय होना चाहिए. निर्भया में देखा कितनी बार सुप्रीम कोर्ट और वहां तक गया है मामला, रिव्यू पिटीशन, रेमिट पिटीशन.
0: ये संशोधन होना चाहिए इसमें.
1: तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं, कायदे से उज्ज्वल निगम साहब ने पूरी मेहनत करके दिन रात पढ़ा, आपने 37 लोगों को उनके किए के लिए सजाए मौत दिलवा दी, लेकिन उन 37 में से सिर्फ 2 को फांसी मिली, एक कसाब और एक याकूब मेहमत. 35 या तो कानून की
0: आजीवन कारावास में चेंज हो गए.
1: अब उनको पूरी जिंदगी पालना है.
0: बिल्कुल.
1: तो दुख होता होगा आपको कि नहीं?
0: 100% क्यों नहीं होता. ये कोल्हापुर का तो मैं कह रहा हूँ ना.
1: तब तो आप राज्यसभा में भी हैं, आप एक सरकार के अंग में भी हैं. तो अभी जो आपने कहा ये सारी चीजें, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट, क्यों ना जो मर्सी पिटीशन से लेके जो फिर मैजिस्ट्रेट है, इन सब के लिए एक, जैसे चार्जशीट के लिए 90 दिन होता है, इन लोगों के लिए क्या टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए?
0: होना चाहिए. कानून में ये बदलाव लाना चाहिए. आपके चैनल के माध्यम से आप सवाल खड़ा कीजिए, मैं लॉ मिनिस्टर से बात करूंगा.
1: मुझे उम्मीद है अगर आप आवाज उठाएंगे तो 100% होगा.
0: पसंद करूंगा, कानून में सुधार लाना चाहिए. और हमारे गृहमंत्री अमित शाह साहब से भी बात करूंगा इसके बारे में.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे ज्ञान बहुत बढ़े.
0: थैंक यू.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. Tune in's how to.
3: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
6: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
5: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
8: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
7: हैट्रिक का दावा।
8: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
7: विश्वास पूरा।
8: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
7: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams so Steely Dan, Loggins & Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: दोस्तों फॉर्मेट बदल गए, लेकिन टीम इंडिया की जो हार का सिलसिला है वो नहीं बदला है। पहले T20 और उसके बाद अब ODI में भी टीम इंडिया सीरीज हार गए हैं। हालांकि एक मैच जरूर जीते, लेकिन आज 27 रनों से टीम इंडिया हार गई है। रोहित शर्मा की 138 रनों की पारी बेकार, 77 रनों के शुभमन गिल की पारी बेकार, विराट कोहली के 74 रनों की पारी बेकार। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे विक्रांत गुप्ता भी जुड़े। विक्रांत, फॉर्मेट बदला लेकिन ये तो लग रहा था कि जीत सकते थे आप।
4: जीत जाते तो शायद राजीव ये इंडिया की सबसे अनबिलीवेबल जीत होती। मतलब यहां पर एक नैटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने 2002 में जीता था, आपको याद होगा। 325 रन चेज किए थे और वो वक्त था जहां से भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो जर्नी थी उसका आगाज हुआ था। आज हम 2026 में बैठे हैं, हो नहीं पाया, 288 रन चेज नहीं होते। लेकिन एक झलक फिर से दिखाई है किसने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। मतलब आज मैं जानता हूं कि ये दौरा ऐसा रहा, और ये दौरा सिर्फ वनडे मैचेस का नहीं, T20 का नहीं, अब आयरलैंड के दो T20 मैचेस भी देखिए। भारत 26 जून को पहला मैच खेला, आज आप 19 जुलाई को आखिरी मैच खेले हैं। इस दौरे पर भारत सिर्फ एक मैच जीता है, यानी कि इस दौरे ने आपसे कितना कुछ छीन लिया। इस दौरे ने आपको बताया कि नहीं, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक इंसान, रोहित शर्मा, राजीव आज रोहित शर्मा जी लास्ट मैच खेलेंगे। हम सबने कहा रोहित शर्मा को कोच ने, सिलेक्टरों ने कह दिया कि बस थैंक यू, आज के बाद आपकी जगह नहीं बनती, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं है। लेकिन एक ट्विस्ट आया, चलिए रोहित आज मैदान पर आए। रोहित ने आज जो बैटिंग की है राजीव, आज आप जो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल कह रहे थे वो उस खिलाड़ी के चलते कह रहे थे। आज इंडिया ये सीरीज जीत जाती तो मैं कहता हूं कि वो जो बार बार होता है ना इतिहास में कि रोहित शर्मा उन लोगों की नौकरियां बचा देते, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर्स हो, जो उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि रन नहीं बने, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विराट ने अपना काम किया। विराट पर खैर सवाल नहीं था, विराट पर अब सवाल होगा भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा पर बड़ा सवाल थे। और उस दबाव में जाकर जहां आपको मालूम है कि शायद ये आखिरी पारी है मेरी जिंदगी की, आग के बाद मुझे शायद ये टीम से ही बाहर निकाल देंगे, वहां जाकर इस तरह की पारी खेलनी जहां वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया आप कल से नहीं चाहिए, वो हाथ जोड़ के दुआ मांग रहे थे कि आज रोहित शर्मा जी आप ही मैच जिता देना।
5: खिलाड़ियों की तो बात हो रही है, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच गंभीर लेंगे? मतलब T20 के बाद अब तो ODI, अब उनके पास कहने के लिए क्या है?
4: नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ होगा। कहना तो आपको मालूम है कि जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो कहने की बहुत सी बातें आ जाती है। मैं तो हैरान हुआ था जब हम T20 सीरीज आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो उन्होंने आके कहा था कि टीम ट्रांजिशन में है। हाँ। उससे दो महीने पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और ट्रांजिशन की बात हुई थी। जहां तक वनडे की बात है राजीव, आज ना आपको एक बात क्लियर हो गई है, 2027 वर्ल्ड कप कहने को सवा डेढ़ साल है। ये रोहित शर्मा विराट कोहली की आप फिक्र ना करें, वो हैं, अगर वो चाहेंगे वो दोनों रहेंगे, लेकिन आपको फिक्र करनी है कि अगर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो इस बॉलिंग के साथ नहीं जीत सकते। आपको अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक फ्री रन दिया हुआ था कोच को, फ्री रन दिया हुआ था सिलेक्टर्स को, अब उसके ऊपर ना आपको एक वॉच डॉग चाहिए। कप्तान की बड़ी अहमियत है, शुभमन गिल मुझे लगता है हैज टू टेक द कॉल, क्योंकि शुभमन गिल ना कप्तान है, उनको यह समझना होगा टेस्ट मैच वनडे के अगर आप कप्तान है आपकी कॉल होनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑलराउंडर बना दो, वो आप एक्सपोज हो गए। इंजरीज क्यों हो रही है भाई, सवाल ये है कि इंजरीज क्यों हो रही है। आज आप कहोगे देखो जी हमारा तो बॉलिंग लाइनअप था बड़ा इनएक्सपीरियंस था, राजीव आप 388 चेज कर रहे थे, 388 चेज कर रहे थे पिछले चार घंटे में, आप भूल गए कि आपके गेंदबाजों ने 387 रन खाए हैं, क्यों खाए आपने, कैसे खाए। आप कहेंगे यार देखो हम क्या करें, हमारे पास तो अब तजुर्बे की थोड़ी कमी थी ना, बाहर ऑप्शंस नहीं थी, बुमराह नहीं थे, तो बुमराह नहीं होंगे तो क्या आपकी ये बॉलिंग होगी, कुलदीप यादव को आपने डिस्कार्ड किया है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट फैन आज अगर जागता है, इंडियन क्रिकेट चलाने वाले आज जागते हैं, तो उनको अब सवाल उठाने चाहिए आपकी मैनेजमेंट पर। आप कुलदीप यादव के पीछे क्यों हाथ धोके पड़े हो, आप रोहित शर्मा के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े थे, आप विराट कोहली के पीछे हाथ धोके क्यों पड़े थे, क्योंकि जो आपके पास है वो यही है, इनमें से बेस्ट आपको खिलाना है बस,
5: बाकी सब तो ऐसा लगता है ना कि उनके लिए आउटसाइड नॉइस है। लेकिन विक्रांत एक बार जल्दी से दिखा भी लेते हैं आज की झलक, मतलब कैसा गेम, कैसी गेम रही आज की टीम इंडिया की।
6: Short wide, and they needed that, and Gill needed that, just to wake the crowd up. Ooh, pulled away. In the air, but into the crowd.
7: Spelt right. Up and over, extra cover again. Pure cricketing shots in this knock of his. Sweep again, four again. 50 for Rohit Sharma. Yep.
6: Cramp. Brilliant. Slog sweet.
8: Original decision is out. Pitching in line. Impact in line. Going on to hit the wickets.
4: बैट्समैन तो रन्स बनाए हैं राजीव, लेकिन शुभमन गिल की दिक्कत क्या है, उनको एक मैच में क्रैम्प्स आ गए थे जब वो रिटायर्ड हो गए थे, आज फिर उनको क्रैम्प आ गया था, उसके बाद उन्होंने इस तरह की शॉट की। शुभमन गिल द कैप्टन, शुभमन गिल द बैट्समैन पर कोई मुझे नहीं लगता कि सवाल है, लेकिन भाई ये जो ये देखिए ये शॉटें देख रहे हैं आप, रोहित शर्मा ना आज अपने रंग में थे, और मैं फिर वही कहता हूँ बहादुरी है, मिल्खा सिंह की वो याद आती है कि मिल्खा ध्यान से भागना तुम्हारी आखिरी दौड़ हो सकती है, उसने कहा मैं दौड़ूंगा भी उसी तरह से, रोहित शर्मा तुम्हारी आखिरी पारी हो सकती है खेलूंगा भी उसी तरह से। आज इससे बड़ा थिएटर क्या होगा, ये तो थिएटर है ना, ये सिनेमा है, दुनिया पहुंची है और आधे लोग आपका अंत देखना चाहते हैं, एंड देन ही राइजेस लाइक अ फीनिक्स। ये शॉटें देखें आप, जब तक रोहित खेल रहे थे आप मैच जीते हुए थे, रोहित के बाद बात आ गई थी विराट पे, ये देखिए रोहित की शॉटें, रोहित तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम खेल रहे, और ये शायद टर्निंग पॉइंट हो गया, बट थोड़ा सा इनको भी ना दिक्कत आ गई थी, इनको भी थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग, इनकी क्रैम्प्स, और फिर मुझे यहां से लगा कि विराट विल टेक कंट्रोल, बिकॉज विराट इज अ चेज मास्टर, ये सारे जानते हैं कि विराट को यहां से आप हरा नहीं सकते, बट थोड़ा सा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना फंस गए, थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिनर को फंसे, हालांकि बाद में उन्होंने वो छक्के भी मारे, बट जैसे ईशान किशन आउट हो गए, जैसे ही उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, गेम वहां पर खत्म हो गई। वो होता है, बास दफा ऐसा लगता है कि 388 चेज कर रहे हैं हो जाएंगे, होता नहीं है।
5: लेकिन आज की हार के पीछे की वजह आपको क्या लग रही है, क्या टीम सिलेक्शन, क्या कुलदीप को ना खिलाना, और इन एक्सपीरियंस
4: बॉलिंग लाइनअप, जो 11 खेले हैं सबसे पहले वो जो 11 खेले आपका पॉप गन अटैक था, मतलब ये यार अगर बॉलिंग अटैक माइनस बुमराह, एक बुमराह ही नहीं है ना, अगर बुमराह के अलावा ये है इंडिया का बॉलिंग अटैक और ये हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो राजीव आई एम सॉरी टू से आपकी वहां पे भी पिटाई होगी, होती ही रहेगी भाई। आपने लॉर्ड्स में वनडे खेल रहे हैं और लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान है जहां पे स्लोप है, अगर आप पेविलियन एंड से बॉल डाल रहे हैं, कवर से लेके जो मिड विकेट बाउंड्री है तकरीबन 5 मीटर का स्लोप है, अगर आप मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ कवर से फील्डिंग कर रहे हैं, आपको मिड विकेट का फील्डर नहीं दिखेगा, वो आपको लगेगा जमीन के अंदर है, सो विकेट पे ऐसी स्लोप है, वहां पर गेंद करना आसान नहीं होता। आज आपके जो 4 फास्ट बॉलर आपने खिलाए, प्रिंस यादव पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, गुरनूर बराड पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, हरदीप सिंह पहली बार लॉर्ड्स में मैच खेले, प्रसिद्ध कृष्णा जिंदगी में लॉर्ड्स में एक ही मैच खेले, तो आपको तजुर्बा तो चाहिए ना।
5: लेकिन विक्रांत मतलब आप लोग मतलब लगातार ये तमाम जो भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं सब ये कह रहे थे कि भाई इनको बहुत पसंद है ऑलराउंडर्स। आज तो उन्होंने सिर्फ अक्षर पटेल को ही खिलाया, इसके अलावा ऑलराउंडर्स ने कंप्लीट बॉलर्स को खिलाया, अगर वो नहीं कर पाए तो गौतम गंभीर ने क्या।
4: ये कोर्स करेक्शन था, ऑलराउंडर होना चाहिए, बट इंडियन क्रिकेट में एक ही ऑलराउंडर है, सीमिंग ऑलराउंडर, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, वो इस टीम में नहीं है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट कहती है 10 ओवर जिस दिन हार्दिक डाल पाओगे तब बताना, तब हम आपको टीम में चुनेंगे। चलो जी, उन्होंने कहा अभी मैं नहीं डाल सकता, वो टीम में नहीं है। ऑलराउंडर्स के नाम पर आप वॉशिंगटन को भी खिला रहे थे, कभी किसी को खिला रहे थे, कभी किसी को खिला रहे थे, उसमें क्या है ना, 8 नंबर पर आपको 15 रन मिल जाएंगे, बट बॉलिंग कौन डालेगा। मेरे हिसाब से आज इंडिया ने ठीक किया, उन्होंने कहा 7 नंबर तक हमें अक्षर पटेल की बैटिंग चाहिए, कोई बात नहीं, आपने 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाए, वेरी गुड, बट 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स में आपने एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिला लिया, आपने प्रिंस यादव को गलत खिलाया, आज आप अक्षर के साथ कुलदीप को खिलाते। अब देखिए रन तो बहुत बने हैं, हमने अगर 388 खाए तो हमने बनाए भी हैं 360, वो बात नहीं है, बात यह है कि आपने एक गैर तजुर्बेकार बॉलिंग लाइनअप को उतार दिया। आप कहते हैं कि लॉर्ड्स में जो फास्ट बॉलर है ना उनकी फिगर्स बेटर होती हैं रादर देन स्पिनर्स, वो बड़ी सही बात है, पर आपने तो 50 साल का लॉर्ड्स का वनडे इतिहास उठाया, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 15 साल पहले, 10 साल पहले इंग्लैंड में ठंड पड़ती थी, लॉर्ड्स में ठंडा मौसम होता था, अब ये लंदन ऐसा हो गया है जहां पर आप कह रहे हो इंडिया से आ गर्मी है जी, वहां पे हीट वेव है, 50 लोग मर गए, वहां पे सड़क पिघल गई। सो आपको ये देखना चाहिए ना, अब सीमर्स को कितनी मदद मिलती है, अब वहां पर अगर विकेट ड्राई है, गर्मी है, धूप है, आप स्पिनर को खिलाएं। और बात फिर वही आ जाती है कि आप ना बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्लेयर्स को जज करते हैं, मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, बट आप जी जज हो गए आज, मैं कप्तान हूं आईसीसी 2 ट्रॉफी जिताने वाला, नहीं जी आपकी कप्तानी हमने ले ली है, हम आपको तो करेंगे जज, मैं जी सूर्य कुमार यादव हूं T20 वर्ल्ड कप जिता के आया हूं, नहीं जी आप भी जज हो गए, तो मैनेजमेंट जज क्यों नहीं होगी, मैनेजमेंट भी तो जज होनी चाहिए ना राजीव। आप आज खुश है, आज इंडिया क्यों खुश है, क्योंकि रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, लेकिन मैच तो आप हार गए, सीरीज आप हार गए, आप 26 जून से जो क्रिकेट आयरलैंड से इंग्लैंड लेके आए हैं, 2 मैच आपने वहां खेले, 3 वनडे यहां खेले और 5 T20 मुकाबले खेले, आप 10 में से 1 मैच जीते हो पूरे दौरे पे, वो मैच भी आपको नीचे जाके सुंदर और अक्षर ने अपनी बैट के साथ जिताया था। सो विच मींस कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कुछ फैसले गलत कर रहे हैं, शायद उनमें से मैं भी एक होऊंगा राजीव।
5: 27 तक मुझे लगता है कि अगर रोहित कोहली तो फिर भी रहेंगे, लेकिन रोहित को लेकर सवाल है ना, तो 27 की टीम आपकी ही रहेगी लगभग।
4: मैं ये जानना चाहता हूं कि एक 22 साल का लड़का हो, 23 साल का लड़का हो, 24 साल का लड़का हो, फिट है, उसको लेकर सवाल नहीं होंगे 2027 के लिए। 2027 की टीम मैं अभी भी मानता हूं कि रोहित शर्मा 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद, यार उनकी उम्र 40 होगी, लेकिन राजीव आज मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है, आज टीम मैनेजमेंट को ये सवाल पूछने का हक बिल्कुल नहीं है, जरा नहीं है। वाई? बिकॉज आज उस बंदे ने आपको पता, आप भूल जाओ उसकी उम्र कितनी है रोहित शर्मा की, आप उनकी उम्र भूल जाए, आप देखिए तो सही इस तरह की बैटिंग 24 साल का लड़का भी कर दे, चलो
5: फील्डिंग बड़ी शानदार की थी,
4: वही मैं कह रहा हूं ना, तो आप अभी आई नो बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरी वक्त पर जाकर अगर कोई इंजुरी वाला कंसर्न आ जाए रोहित का, या अचानक से उस वक्त फॉर्म का आ जाए, तो आप कहेंगे यार जायसवाल को हमने उतने मैच नहीं दिए, कोई बात नहीं, आप इंतजार तो कीजिए ना। अभी रोहित ने ना सिर्फ आपसे ये जंग जीती है, आज ये जंग जीती है उन्होंने, आज उनकी लड़ाई दुनिया से थी, और मैं तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली की वो लड़ाई याद करता हूं 2005-06-07 वाली, जब ग्रेग चैपल ने उनको टीम से बाहर निकाल दिया था, पूरा सिस्टम दुश्मन था, इंडियन क्रिकेट फैन दुश्मन, इंडिया का कप्तान दुश्मन, इंडिया का चीफ सेलेक्टर दुश्मन, ग्रेग चैपल कोच दुश्मन। उस बंदे ने जाके लड़ाई लड़ी, जीती और 2 साल और खेले और बैट उठाकर गए रोहित शर्मा। ऑब्वियसली ये कोई सीक्रेट नहीं है, वो आपके कुछ सिलेक्टर्स हो, वो आपके कोच हो, मैनेजमेंट हो, वो नहीं यार रोहित वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, विच इज फाइन, बट आपको सीरीज के दरमियान ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आप सीरीज के बीच में ये चीज नहीं बोल सकते थे, अभी यार दूसरा मैच चल रहा है और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है। आज खुशी इस बात की है कि चलो रोहित ने कम से कम ये दिखा दिया है कि आईना ये है आपकी क्रिकेट और ये हूं मैं। आप रोहित शर्मा को निकाल दें आज,
5: सिर्फ एक ही खुशी है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया है, वो है रोहित शर्मा। लेकिन बिल्कुल इस हार के बाद विक्रांत बहुत सारे सवाल भी उठे, जैसे हम उठा रहे हैं, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर हार का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या वो प्लेयर्स हैं,
4: खिलाड़ी है,
5: सिर्फ खिलाड़ी
4: है? नहीं, खिलाड़ी ही है, नहीं बट खिलाड़ी
5: प्लेइंग 11 चुनने वाले।
4: यस, मैं कहता हूँ प्लेइंग 11 चुनने वाले। आई थिंक मुझे लगा ऐसा कि हम थोड़े से ना आयरलैंड में हमने गलती क्या की थी, हम 24 तारीख को पहुंचे 26 का मैच खेलने के लिए। हम लोग जाते ना क्लब का मैच खेलने के लिए, टॉस हो जाता है फिर पहुंचते हैं, फिर फटाफट पैड बांधते हैं। आई थिंक इंडिया वहां पर दो कदम पीछे रह गया। हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट थे, हमें लगा हम तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं यार, आईपीएल में हमने देखा धूम धड़ाका, वैभव सूर्यवंशी आए हैं, ये हुआ वो हुआ। वहां पर हमने संजू सैमसन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, वो गलत था। और टीम में क्या होता है, इनसिक्योरिटी होगी। आपकी टी20 टीम में बहुत इनसिक्योरिटी थी। आपने पहले संजू को तीन मैच के बाद, फिर वैभव सूर्यवंशी को तीन मैच के बाद। और प्लेयर तो जो वहां पर टीम में एस्टैब्लिश होता है, कहता यार संजू सैमसन के साथ ये हो गया, वैभव सूर्यवंशी के साथ ये हो गया, तो मेरे साथ भी हो सकता है। सो टी20 आप जो हारे हैं, ए आप जो लास्ट दो वर्ल्ड कप जीते थे टी20 के, 24 वाला वेस्ट इंडीज में, 26 वाला इंडिया में, आप सब कॉन्टिनेंट जैसी कंडीशंस में जीते, तो मोमेंट आप वहां पर गए। हाँ। और आपको अगला वर्ल्ड टी20 खेलना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 28 में, उसके लिए पिचेस डिफरेंट हैं, आपकी कंडीशंस डिफरेंट है, आप स्किल पे भी मार खा गए। जहां बात वनडे की आई, आई थिंक बाय द टाइम आप ये वनडे के तीन मैच हुए, छोटी सी सीरीज थी, ए ये सवाल विराट नहीं चाहिए रोहित नहीं चाहिए, विराट नहीं चाहिए रोहित नहीं चाहिए, प्लस आप हार के आ रहे थे टी20। और माने ना माने, प्लेयर आपके अच्छे थे, ये वनडे टीम इंडिया की बहुत जबरदस्त है, बट इंग्लैंड वर अपबीट, उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया हुआ था, और आपके ड्रेसिंग रूम में सवाल थे। फिर आपकी जो सिलेक्शंस वाली बात आती है, वो भी वाजिब है, बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आपका ड्रेसिंग रूम इनसिक्योर था।
5: ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या है, क्या कोच है या सिलेक्टर अजीत अगरकर है, क्या उनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही है?
4: नहीं, मुझे नहीं पता कि लड़ाई है कि नहीं है। मतभेद और मनभेद, मैं हमेशा राजीव कहता हूं, दुनिया में ना एक मतभेद हो सकता है मेरा और आपका डिफरेंस ओपिनियन। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं थ्रू एंकरिंग, मैं यहां पे बैठा हूं, आपने एक बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा, मैंने आपको कहा नहीं यार राजीव ऐसा लगता है, फिर आपने मुझे काउंटर किया, उसको कहते हैं मतभेद। एक होता है मनभेद, जाओ राजीव मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, जाओ विक्रांत तुम्हें मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मैं नहीं बात करूंगा। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मतभेद होना बहुत अच्छी बात है। अगर पांचों सिलेक्टर कोच और कप्तान एक ही बात में हां हां हां कर दे, गलत फैसले पे हां करते, तो गलत हो गया ना। बट मैं चाहूंगा वो पांच सिलेक्टर, मैं चाहूंगा वो कोच, मैं चाहूंगा वो कप्तान बैठे, जिरा करें, बहस करें, आपस में मतभेद लेकर आए और फिर बेस्ट उसमें से निचोड़ें। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना हम लोग हो गए थे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, चोली दामन का साथ वाली बात हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आंखें हमारी खुलेंगी। सेक्टर भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, गौतम गंभीर भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, शुभमन गिल भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन अब somebody needs to, जैसे मैंने कहा ना, to be the watchdog, कि भैया ऐसा है, पर्सनल आप जो biases for और against उसको निकाल दें, आप कुछ प्लेयरों की तरफदारी करते हैं वो निकाल दें, आप कुछ प्लेयरों को लाइन पर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहित की ही बात थी या कुलदीप की बात है, वो भी निकाल दें। आई थिंक इस दौरे ने नतीजे के तौर पर आपको हिला दिया, लेकिन अब आपके हाथ में है राजीव कि आप यहां से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहते हैं, आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर ढाक के तीन पात आप वहीं पर वापस आ जाए।
5: ठीक, अब थोड़ा सा मैं बॉलिंग पर भी बात कर लेता हूं कि जसप्रीत बुमराह के अलावा क्या हमारे पास भविष्य की बॉलिंग है ही नहीं?
4: भविष्य की बॉलिंग आज आपके सामने थी, मैं मानता हूं इतनी बुरी नहीं है भाई, हमने उनको हाफ वे पे जज किया 387 पे, पर हमने भी बनाए उस पर 360 रन, सो ठीक है मैं मानता हूं, बट आपके पास ये तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ एक बुमराह के अलावा ये नहीं हो सकता। सवाल मेरा ये है कि मोहम्मद सिराज इस टीम में क्यों नहीं, आपको मालूम है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आईपीएल के वो जो मैच था उनका लास्ट मैच, उनके कंधे में खिंचा हुआ, उन्होंने लास्ट ओवर बड़ी मुश्किल से डाला। हाँ। उसके चार दिन बाद यार मोहाली में आपने गर्मी 46 डिग्री टेम्परेचर में एक टेस्ट मैच था आपका अहमदाबाद, दिन में आप उनसे बॉल डलवाते ही जा रहे हो, डलवाते ही जा रहे हो, डलवाते ही जा रहे हो, उनका कंधा चला गया, उनका कंधा चला गया। अब मोहम्मद, मैं कहता हूं इवन मोहम्मद शमी, आप क्यों उनको बार बार रिजेक्ट करते जा रहे हैं? सो रोहित ने आज क्या किया ना, आई थिंक रोहित ने इनको ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि हो सकता है कि कई और खिलाड़ियों के बारे में भी ये फोर्स किया हो कि यार अगर कोई इंसान फिट है, फॉर्म में है, उसको उम्र पे जज मत करो। मैं अभी मानता हूं मोहम्मद शमी अगर वनडे क्रिकेट नहीं तो कम से कम टी20 चार ओवर के लिए बड़े जबरदस्त बॉलर है, आईपीएल में भी आप देख रहे हो भाई, मोहम्मद शमी है, सिराज है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि इंडिया के पास नीचे वो स्पिनर्स नहीं है, ये फैक्ट है कि इंडिया के पास जो नीचे तेज गेंदबाज हैं उन्हें हम सिर्फ आईपीएल की बिना पे जज करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी स्किल को और बेहतर करना होगा।
3: विक्रांत थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीसीसीआई क्या सोचता है। आयरलैंड इंग्लैंड से टी20 और उसके बाद आप ओडीआई भी हार गए, थैंक यू सो मच। अब फीफा वर्ल्ड कप में भी सबकी निगाहें हैं, ओडीआई का तो नतीजा आ गया, टीम इंडिया हार गई, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में क्या होगा उस पर आपको दिखाते हैं खास पेशकश विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज के साथ।
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए।
12: आज है कयामत की रात, दिल की धड़कनों को काबू करने की रात, वर्ल्ड चैंपियन की ताजपोशी की रात। न्यूजर्सी में आज किसकी जमेगी थार, फिर चलेगा मेसी का मैजिक या यमाल की टीम करेगी धमाल, किसी का टूटेगा रिकॉर्ड तो किसी का टूटेगा दिल, अर्जेंटीना का अटैक जीतेगा या स्पेन का डिफेंस, फाइनल फाइट में दिखेगा किसका दम, कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ निखिल नाज है। 38 दिन 103 मैच और दो ऐसी टीमें जिनमें से आज एक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, उस खेल का जिसे कहते हैं द ब्यूटीफुल गेम फीफा वर्ल्ड कप। कयामत की रात है निखिल जी आज तो।
13: बिल्कुल, और आपने बताया कि 38 दिन और 48 टीमें थी, अब कितनी रह गई है, सिर्फ दो टीमें रह गई हैं। और दिलचस्प बात यह है विक्रांत कि एक तरफ है साउथ अमेरिका की चैंपियन, दूसरी तरफ है यूरोप की चैंपियन, एक है वर्ल्ड नंबर वन, दूसरी है वर्ल्ड नंबर टू। इससे बेहतर फाइनल की तो कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। दोनों टीमों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जैसे आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुन लेते हैं दोनों जो खेमे हैं इस वक्त वो क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में।

0: आज है सबसे बड़े खेल महाकुंभ का सबसे बड़ा मुकाबला, अर्जेंटीना बनाम स्पेन। 39 साल के मेसी बनाम 19 साल के यमार, लैटिन अमेरिकन बनाम यूरोप की टक्कर, फुटबॉल खेलने के दो अलग अंदाज की टक्कर। 39 दिन और 103 मैचों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तय होगा कि नया वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। क्या लगातार दूसरी बार मेसी की टीम ही बादशाहत बरकरार रखेगी या फिर 16 साल बाद स्पेन के सिर सजेगा ताज। स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरेगा। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के पास चौथी बार ट्रॉफी जीतने का मौका होगा। अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटीना की टीम इटली और ब्राजील के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। अर्जेंटीना की उम्मीदें इस बार भी मेसी पर ही टिकी रहेगी। न जाने कितनी ही बार उन्होंने चमत्कार करके टीम की वापसी कराई और विरोधी टीम को मायूस कराया। अब अर्जेंटीना के सामने है स्पेन और उसके स्टार खिलाड़ी यमाल। मेसी और यमाल की कहानी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। ये तस्वीर तब की है जब मेसी स्पेन के ही क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते थे। करीब 19 साल पहले बार्सिलोना के एक चैरिटी फोटोशूट में मेसी ने 3 महीने के यमाल को गोद में उठाकर नहलाया था। तब मेसी खुद 20 साल के थे। आज वही यमाल पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसी के सामने उतरेंगे और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। वैसे दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वर्ल्ड कप में दोनों का आमना सामना अब तक सिर्फ एक बार हुआ है। 1966 में हुए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था। इस बार की फाइनल फाइट अर्जेंटीना के लिए आसान नहीं होगी क्योंकि उसके सामने है स्पेन की वो टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल खाया है। यानी उसके डिफेंस को भेदना मेसी के लिए आसान नहीं होगा। स्पेन ने इस बार अपने अभियान का आगाज केप वर्डे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ से किया था। उसके बाद स्पेन ने लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। टीम ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया। गोलकीपर उनेई सिमोन ने वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा 6 क्लीन शीट का रिकॉर्ड बनाया। वहीं कप्तान रोड्री ने रिकॉर्ड 648 सफल पास पूरे किए। इधर अर्जेंटीना की टीम लगातार 7 जीत के साथ फाइनल में पहुंची है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन को हराया। इसके बाद केप वर्डे, मिस, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जिसका हर एक पल रोमांच की गारंटी लेकर आ रहा है और मेसी के फैंस के लिए तो यादों का खजाना ही खुल सकता है जो टीम को एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाने के साथ साथ गोल्डन बूट जीतने की जद्दोजहद भी करेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: भाई दुनिया ने पेले को देखा था, दुनिया ने मैराडोना को देखा, दुनिया आज मेसी की बात करती है। मैं जानता हूं कि आमतौर पर गोट आप गोल के हिसाब से करते हैं लेकिन फिर यह भी देखते हैं कि आपने अपने मुल्क को टाइटल्स कितनी दिलाई। मेसी 2016 में रिटायर हो गए थे, 26 आ गए, एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। क्या आज रात ये मेसी की रात है?
2: वैसे बड़ी एक दिलचस्प चीज ये भी है विक्रांत, जो मुकाबला हो रहा है मेट लाइफ स्टेडियम में, ये वही स्टेडियम है 2018 में लियोनेल मेसी रोते रोते, उन्होंने कोपा अमेरिका का फाइनल खेला था इस स्टेडियम पे और रोते रोते उन्होंने कहा था बस अब मैं अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलूंगा, मैं जितना दे सकता था दे चुका हूं, एक भी ट्रॉफी नहीं थी। उसके बाद वो 3 खिताब जीत चुके हैं, 2 कोपा अमेरिका, 1 फीफा वर्ल्ड कप। उस दिन कहानी खत्म होने वाली थी, क्या पता आज कहानी कुछ इस तरह से हो कि 2 टाइटल उनके नाम हो। देखें अगर आप मेरे से पूछेंगे मुकाबले के बारे में, ऑन पेपर मैन टू मैन आप तुलना करेंगे तो स्पेन की टीम बेहतर नजर आती है, ज्यादा युवा टीम है।
1: क्या बात कर रहे हो,
2: 2 सालों से आप मानेंगे 2 सालों से स्पेन की टीम एक मैच नहीं हारी है किसी भी लेवल पे।
1: आज रात
2: 27 मैचेस वो खेल चुके, नहीं 37 मैचेस खेल चुके और एक भी मैच वो नहीं हारे हैं। सबसे बेहतरीन जो रन है अनबीटन रन उन्होंने टाई कर लिया इटली के साथ, तो इतना उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा। लेकिन
1: प्लस उनका डिफेंस, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक ही गोल कंसीड किया है,
2: वो भी एक चीज है।
1: आपकी आज गोल लाइन क्या है, स्कोर लाइन क्या है?
2: देखिए उनका बेस्ट डिफेंस है, अर्जेंटीना का बेस्ट अटैक है क्योंकि सबसे ज्यादा गोल इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने किए 19, तो मुकाबला बेस्ट डिफेंस बेस्ट ऑफेंस का है। देखिए मैं जर्सी तो नहीं पहन के आया हूं लेकिन न्यू जर्सी में मुकाबला है तो मैंने पहना है नीला और सफेद। नीला और सफेद आपको पता है इस देश का रंग है, स्पेन खेलेगी लाल, में नीले और सफेद पहना होगा अर्जेंटीना की टीम ने, तो इसलिए मैंने जर्सी तो नहीं पहनी, लेकिन आपको ये बता दिया है कि अर्जेंटीना की टीम क्यों, क्योंकि लियोनेल मेसी अगर आपको याद हो आए थे भारत, है ना, आपने देखा भी था उनको, आप ये दिल्ली के स्टेडियम
1: पे देखा,
2: नहीं आप दिल्ली के स्टेडियम नहीं गए,
1: तो टीवी पे था ना,
2: लेकिन उन्होंने उसके बाद जाने से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था जय माता दी।
1: अच्छा।
2: अगर आपको याद हो उन्होंने दर्शन किए थे, कहा था जय माता दी, वो गुजरात गए थे जाने से पहले, और जब उन्होंने जय माता दी कह ही दिया है तो फिर उनको कप रोकने कोई नहीं रोक सकता इस वक्त, कि कप उनके हाथ में आना ही पड़ेगा।
1: रात को मुकाबला है और एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया खेलती है, एक ऐसा खेल जो पूरी दुनिया देखती है, और वहां पर जाकर जब दो ही टीमें रह जाती हैं तो फिर आप जानते हैं कि एक एक मिनट एक एक सेकंड सांसें ऊपर नीचे होती है। लेकिन अर्जेंटीना की एक बात यह भी रही है कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कई मुकाबलों में, खासतौर से जो नॉकआउट के मुकाबले हैं, उसमें कमबैक किया है। वो इजिप्ट का मैच उठाएं या फिर आप इंग्लैंड का मैच उठाएं, कि नीचे से ऊपर आए हैं, हारते हारते ये टीम जीती है। और कभी कभी ना ये जो करिश्माई जीते होती हैं वो आपको विश्वास ज्यादा देती है। अब बड़ा सवाल, वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा, और एक वर्ल्ड कप में सवाल जो बड़ा बन जाता है कि गोल्डन बूट किसे मिलेगा। अब गोल्डन बूट के लिए क्या होता है कि आपने कितने गोल किए हैं और आपने कितने असिस्ट किए हैं। लेकिन कल रात जो थर्ड पोजीशन मैच हुआ, हालांकि फ्रांस हार गया, इंग्लैंड जीत गया, लेकिन एम्बापे ने जो गोल किए और असिस्ट किया, अब अचानक से ये समीकरण बदल गया है। क्या मेसी को गोल्डन बूट मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है?
2: तो देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहली बात तो मेसी को दो गोल करने होंगे, बराबरी पे जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है, मेसी तो हर मिनट खेलते ही हैं, वो 90 मिनट अगर खेल गए तो उनका प्लेइंग टाइम एम्बापे से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो गोल मेसी करते भी हैं तो एम्बापे को मिलेगा गोल्डन बूट। मेसी को अब गोल्डन बूट अगर चाहिए तो दो गोल से काम नहीं चलेगा,
1: असिस्ट भी करना पड़ेगा
2: आपको, या तो एक असिस्ट करना पड़ेगा
1: या तीन गोल,
2: करने पड़ेंगे, ये दो चीजें हैं तभी उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप लियोनेल मेसी हो गए ना, वो कहेंगे गोल्डन बूट जाए भाड़ में, मुझे चाहिए ट्रॉफी, क्योंकि 2014 की बात है, फाइनल में खेलते हैं, जर्मनी से हार जाते हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला था उस टूर्नामेंट में, लेकिन ट्रॉफी तो नहीं मिली थी ना, तो उनकी दिल की चाह है कि वो ट्रॉफी को जीते और उस पर उनकी आज नजरें होंगी। फर्क बस इतना है कि अर्जेंटीना को अगर जीतना है तो मेसी को फॉर्म में होना पड़ेगा। स्पेन के लिए लामिन यमाल की बात हो रही है, अगर वो फॉर्म में नहीं भी होते तो स्पेन जीत सकती है। स्पेन सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है, अर्जेंटीना एक खिलाड़ी पर निर्भर है जिसका नाम है
1: अर्जेंटीना की। आपने एक खिलाड़ी की बात की, और आप जानते हैं कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में, अब दुनिया में ब्राजील और अर्जेंटीना फुटबॉल की बात आती है तो उनकी फैन फॉलोइंग तो बन ही जाती है। इंडिया में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अर्जेंटीना और मेसी, ये घर घर में पोस्टर लगे हैं, तो हिंदुस्तान तो शायद मेसी को, अर्जेंटीना को चीयर करेगा। और निखिल ने तो एक बता ही दिया कि वो जाते जाते इंडिया से कह के गए थे जय माता दी, अगर वर्ल्ड चैंपियन बने तो दोबारा आऊंगा। एक और चीज जो बन जाती है दिलचस्प वो ये है कि मैच है स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान, लेकिन मेसी ने ना सिर्फ अर्जेंटीना से अपना नाम कमाया है, उन्होंने स्पेन में भी अपना बड़ा नाम कमाया जब वो एफसी बार्सिलोना के लिए खेले। इनफैक्ट आज अगर वो हर बच्चे के हिंदुस्तान में फेवरेट है, बार्सा की वो टी शर्ट है, तो वो स्पेनिश वो जो लीग है ला लीगा उसके कारण है। अब सवाल ये आ जाता है कि मुल्क तो स्पेन को हर स्पेनिश करेगा, लेकिन क्या वहां पर भी ऐसा होता है जो सचिन के लिए होता था कि सचिन 100 बना लें और फला फला कंट्री जीत जाए? क्या लोग ये कह रहे होंगे कि यार भले ही मेसी दो गोल कर दे पर जीत स्पेन जाए? मैं स्पेनिश लोगों की बात कर रहा हूँ।
2: स्पेनिश लोग में भी सिर्फ जो कैटलूनिया है वहां ये शायद ऐसी हो सकती है कि हाँ मेसी के दो गोल हो जाए लेकिन जीत तो स्पेन को ही मिले। लेकिन जो बाकी स्पेन है, जो लार्जर स्पेन है, वो तो वैसे भी बार्सिलोना से नफरत करता है, तो मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं तो कोई चांस ही नहीं है। ये कांटे की टक्कर होने वाली है, ये वो टक्कर होगी जहां पर आप देखेंगे थोड़ी लड़ाइयां भी होंगी, थोड़े फाउल्स भी होंगे, गोल तो हम देखेंगे लेकिन वो जो थोड़ी सी एज होती है ना वो भी आपको देखना,
1: नीडलिंग
2: थोड़ी सी नीडलिंग।
1: कल रात तीसरे जगह के लिए मुकाबला हुआ। अब उस वक्त क्या होता है ना, दोनों टीमें सेमीफाइनल हारी होती हैं, फाइनल में नहीं जाती हैं, डिजेक्टेड होती हैं, और लोग कहते हैं यार इस मैच का क्या फायदा, दोनों तो हम फाइनल में जा नहीं रहे। लेकिन इंग्लैंड ने कल रात को जिस तरह से फ्रांस को हराया, कम से कम घर पे वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कि तीसरी जगह तो लेकर जा रहे हैं।

0: रोमांच की हदें पार कर गया ये मुकाबला। फ्रांस को 6-4 से बीट कर इंग्लैंड जीत गया ब्रॉन्ज मेडल। क्या नहीं था इस मैच, एक के बाद एक होते दन दना दन गोल। फ्रांस को मायूस करने वाली हैट्रिक और मेसी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाने वाले एम्बापे। आमतौर पर तीसरे पायदान के लिए होने वाले मैचों में रोमांच नदारद रहता है, लेकिन मियामी में खेला गया ये मुकाबला अलग ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। सेमीफाइनल में स्पेन से हारने के बाद उतरी फ्रांस की टीम शुरुआती हाफ में पूरी तरह बिखरी नजर आई, जिसका फायदा उठाकर इंग्लैंड ने 4-0 की एक तरफा और मजबूत बढ़त बना ली थी। फिर एम्बापे ने पासा पलटना शुरू किया। एम्बापे के इस दूसरे गोल की बदौलत फ्रांस ने स्कोर लाइन को 4-3 कर दिया था और वो मुकाबले में वापस आ चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कहां हार मानने वाली थी। तेज तर्रार फॉरवर्ड बुकायो साका एक के बाद एक गोल दागते चले गए और हैट्रिक जमाकर ही दम लिया। मैच के आखिरी पलों में डेम्बेल के गोल की मदद से फ्रांस ने स्कोर 5-4 कर दिया था और वो बराबरी के बेहद करीब थे, लेकिन इंजरी टाइम में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए बेलिंगहम ने कई डिफेंडर्स को छकाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और इंग्लैंड की 6-4 की जीत पर मुहर लगा दी। आज तक ब्यूरो।
1: लो जी, वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया। अब 12:30 रात को वर्ल्ड कप फाइनल। स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स टुडे हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लाइव रहेंगे मैच के दौरान वॉच अलॉन्ग। और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को और अंग्रेजी के लिए स्पोर्ट्स टुडे को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।

मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत सात बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गंवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार।

सिनवा हो या फिर पीओजे के। एक तरफ पाकिस्तान जहां चार हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता आटे के लिए तरस रही। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ईरान में पुल, पावर ग्रिड, रेल की पटरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचों पर रूसी हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया था। यहां तक कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, जो अमेरिका दूसरों को ज्ञान दे रहा था। अब वही पिछले 5 दिनों से ईरान के पावर ग्रिड, पुल और ऊर्जा ढांचों पर लगातार बम बरसा रहा है। जो नियम दुनिया के लिए है, क्या वो अमेरिका पर लागू नहीं होता। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। कार तक के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन खुद बना चुका है। जर्मनी की 742 करोड़ की ट्रेन के मुकाबले भारत ने केवल 112 करोड़ रुपए में ये स्वदेशी ट्रेन तैयार कर ली है और आज पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आखिर में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के बारे में बताएंगे, जिसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ज्यादा कमाई और भारत पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच कराने के लिए आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं तारीखें देती। ये तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब ये कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगें उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले एक साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध का को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का ये प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको यह आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है, और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है और जो बाकी

0: प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो डील की है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा, ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए बस। स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही है और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उससे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं।
1: ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस है।
2: कश्मीर के वारिस है, ये वतन, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत।
0: पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग 45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में यह परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है। इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल न हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में वो मुनाफा कमा सकें। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्कैसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहें। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। यह तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा?
3: आटा डीलर्स के मुताबिक होलसेल मार्केट में 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 3,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
4: इसको पूरे मुल्क में जो रोटी 14 रुपए में मिलती थी वो 20 से 25 रुपए में मिल रही है, और जो नान थे वो 30 से 35 रुपए में लोगों को मिल रही है।
5: अटक में मिलता है 1100 रुपए, और दूसरी तरफ क्यों दरिया सिंध क्रॉस करो 1500 हो जाता है।
6: कराची में 20 किलो आटा तकरीबन 1800 रुपए में मिलता था, इस वक्त वो तकरीबन 2900 रुपए में मिल रहा है।
0: आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही है। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे। और यह पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे, और ये उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे, सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। ये परिवार पहले बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में रहता था, और ये वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मयमनसिंह जिले से थी, और वो बताती हैं कि ये हिंदू परिवार बहुत पहले मयमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, और इस घटना के बाद यह हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। ये सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने इन नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया। और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। ये वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूख नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हो, बेवजह चिल्ला रहे। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती है कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थीं, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुसाए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। कई बार लगता है कि धर्म की यह लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यह हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इसराइल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए। यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इसराइल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इसराइल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए, जबकि कई इसराइली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई हैं और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं, जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इसराइल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेस्सी ने इसराइल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेस्सी इसराइल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और ये दौरा इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इजरायल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेस्सी को कुछ लोग इजरायल का एजेंट बताने लगे। 2014 में पोप फ्रांसिस की पहल पर रोम में एक मैच फॉर पीस आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का संदेश देना। मेस्सी ने इस पहल का समर्थन किया था, हालांकि चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए, जिससे उनकी मंशा पर फिर सवाल उठाए गए। और सवाल उठाने का कारण यह था कि इस मुकाबले में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन मेस्सी इसमें नहीं आए थे। 2016 में भी मेस्सी एक विवाद में तब फंस गए जब उन्होंने अपने फुटबॉल जूते एक चैरिटी के लिए दान किए। मिस्र में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो इसराइल समर्थक हैं। मिस्र फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने भी मेस्सी की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद में एक गलत दावा भी सामने आया कि मेस्सी यहूदी है। सच्चाई यही है कि मेस्सी कैथोलिक ईसाई है, यहूदी नहीं है, और यह कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है। लेकिन फिर भी लियोनेल मेस्सी को इसराइल और यहूदी बताकर उनके खिलाफ दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश स्पेन का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमाल फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और मैच के दौरान पहले मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा चुके हैं। यानी कहानी अब यह हो गई है कि अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को इसराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है और इसमें भी लियोनेल मेस्सी को लेकर खूब झूठ फैलाए जा रहे हैं।

आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहन कर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कॉन्टेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कॉन्टेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस एसओपी के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस एसओपी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन एसओपीज का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश है। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। यह सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई एसओपी बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये एसओपी धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही होते हैं, उनके कट्टरपंथ का संकेत उनके व्यवहार से पता चलता है। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियां ऐसे संकेतों को अपने लिए मददगार मानती हैं और ये भी पूछती हैं कि अगर उन्हें धार्मिक कट्टरवाद रोकना है तो वो बिना ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग के कैसे काम करें। और ये चुनौती सिर्फ भारतीय एजेंसियों के सामने नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी एसओपी बनाई है जिसे किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रोफाइलिंग हो सकती है और वहां है इस पर विवाद हुआ है। लेकिन दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां यही सवाल पूछती हैं कि जब कट्टरवाद धर्म के आधार पर फैलता है तो वो इसकी एसओपी कैसे बनाए। जब इस एसओपी को लेकर इतना विवाद है तभी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसमें कुछ संदिग्ध आतंकी न सिर्फ बम बना रहे थे बल्कि उनका बमों में विस्फोट करके उनका परीक्षण भी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अमीन शेरा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन और स्थानीय बाजार से गन पाउडर और दूसरी चीजें खरीदता था। आरोप है कि इन सामानों से ये लोग खुद बम बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसके छोटे छोटे धमाके करके ये सीखते थे कि विस्फोट कैसे किया जाता है। इस मामले में बिलाल नाम के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि करीब 3 साल पहले बिलाल ने अमीन को एक पेनड्राइव दी थी

और उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी वीडियो मौजूद थे। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी एक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि आरोपियों को किसी आतंकी संगठन से सीधे धमाका करने का आदेश मिला था। आरोप है कि वो अपने स्तर पर बम बनाने और उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें भी जांच की सबसे बड़ी कड़ी पाटन जिले के जमिया अब्दुल हसन वक्फ मदरसे तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इसी मदरसे में बम बनाने की प्रैक्टिस की जाती थी और आरोप है कि पास की नदी के किनारे जाकर छोटे छोटे विस्फोट करके उनका परीक्षण भी किया जाता था।

0: देख सकते हैं इसी मदरसा से जो पांच आरोपी हैं उसमें से कुछ आतंकी है जो इसी मदरसा से वो अभ्यास कर रहे थे। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी जुड़े थे। प्लस ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे।
1: हाँ, वो कर रहा था, मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं है।
2: आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 130,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले।
3: पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब ये बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है।

अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं, आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं, इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की GDP से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका ये कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है।

अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से चार साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता? आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए, जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है।

तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है अभी। इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे, जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता? दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए? ये सवाल पिछले साल इसराइल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इसराइल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच दो और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई। अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं, ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है।
अब ये तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला और इससे $1,00,000 से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और ये दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1,00,000 रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां ये भी सोचिए अमेरिका में ये हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इसे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों को का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है। 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए और न सिर्फ बचत की हमने बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया, और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच
89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे।

0: पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं, और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है, और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है, और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है।
1: अब यहाँ इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं, और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।
2: आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
3: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
4: The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
3: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
5: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
3: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
6: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
3: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
7: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
3: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गए है और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
8: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 एमपी यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
9: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
2: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
10: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया, लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी, इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
11: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है, आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही, आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये.
12: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है. आज तक ब्यूरो.
2: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से. मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है. कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है.
13: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है. मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा. इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है. ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है. हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है.
2: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है. अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
3: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा. हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है. उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है. डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे.
14: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे.
15: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम.
3: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है. याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो

0: आज से संसद का मानसून सत्र, एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि

0: इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
1: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs UBT को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, NDA की ताकत बड़ी है और ये 13 खास जो MPs है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
2: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे हैं साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य RSS VHP से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
3: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया, शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। SIT की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की ID के एक्सेस का इस्तेमाल कर VIP पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
5: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है, आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
4: उद्धव को जवाब देते हुए CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
6: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
4: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
7: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
8: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंटरवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
4: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से निशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
9: जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
10: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह खून से पत्र लिखना सैकड़ों बार आवेदन निवेदन सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं धमकी देना डराना मारना पुलिस के ऊपर मारना हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे ऐसा कर रहे जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
11: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पेंसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर, प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है, जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
4: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप ये है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
4: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
12: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
4: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
12: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे, चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
4: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं, जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
13: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया, शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
14: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहां पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
13: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
15: खौफ बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
13: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
14: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है तपलू नदी जो उफान पर थी रात को, और इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
13: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है, जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
16: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
16: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़े देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
4: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हाजियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 1 अभी भी लापता है। 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन देखिए, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ, जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के अलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
6: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
5: हैट्रिक का दावा,
6: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
5: विश्वास पूरा,
6: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
5: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसू मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गए है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 एमपी यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
8: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी इन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार, मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया, शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना ही आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
1: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
1: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
11: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
12: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
1: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से अनिशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
13: जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
14: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनसन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर है जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं, तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
1: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप ये है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
1: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं। ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
15: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
1: मगर सवाल है क्यों? आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
15: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति हैं वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे? चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
1: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
16: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
17: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
16: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
18: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
16: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
16: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
19: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
20: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
19: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
1: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही हैं मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यह हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 1 अभी भी लापता है। 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के 2 लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी।

0: बाकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने दो साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत सात बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम न आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अगली खबर

0: शिवसेना से जुड़े हुए स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है और उसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
1: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और ये 13 खास जो MPs है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
2: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए, मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य RSS VHP से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है, दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
3: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया, लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया, शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। SIT की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी, इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की ID के एक्सेस का इस्तेमाल कर VIP पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
5: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है, आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही, आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाही आहे।
4: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
6: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
4: वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
7: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
8: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
4: सोनम वांगचुंग की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुंग को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुंग की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से निशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चेता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
9: जी, ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
10: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है, उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
11: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर, प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है, जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
4: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
4: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
12: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
4: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
12: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति हैं वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी, हम तो चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
4: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं, जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
13: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
14: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहां पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
13: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
15: खौफ बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
13: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
14: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है तपलू नदी जो उफान पर थी रात को, और इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
13: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है, जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
16: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
16: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
4: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हाजियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ, जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के अलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत सात बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम न आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करे। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करे, हंगामा ना करे, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, एनडीए की ताकत बड़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
8: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना ही आमच्या राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
1: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा और कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
1: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
11: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
12: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
1: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से अनिशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया है। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
13: ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
14: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज़्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी एक दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज़्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं, तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
1: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
1: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं। ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की हैं। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
15: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
1: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
15: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति हैं वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे। चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
1: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
16: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। हालात ऐसे है कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
17: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
16: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
18: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घूमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है। बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
16: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है तपलु नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
16: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई है।
19: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
20: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
19: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
1: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार आठवीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हाजियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। ये टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गंवाई वन डे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसू मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय

0: उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, एनडीए की ताकत बड़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
1: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे हैं साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे हैं साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
2: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
3: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
5: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
4: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
2: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
6: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
2: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगाकर कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
4: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
7: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
8: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
4: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से निशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया है। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
9: अगर जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
10: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी एक दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
9: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर, प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
2: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
4: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
2: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
4: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
11: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
4: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
11: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति हैं वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हम तो चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
4: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
2: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
12: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया, शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, हालात ऐसे है कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
13: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
12: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
14: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
12: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं, भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
13: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है तपलू नदी जो उफान पर थी रात को, इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई, मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है गाड़ी है किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
12: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर, जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है, पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई है।
15: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है, कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ, अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
16: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
15: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है, रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
4: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार आठवीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात रूस यूक्रेन देखिए, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत सात बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा, चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गंवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम न आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और उसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 एमपी यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बड़ी है, एनडीए की ताकत बड़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
8: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत। मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
1: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगाकर कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
1: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है, उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
11: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
12: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
1: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से निशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया है। तड़के भारी पुलिस बल ने धरास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
13: जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
14: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं, तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
1: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
1: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
15: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
1: मगर सवाल है क्यों? आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
15: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे। चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
1: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
16: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
17: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
16: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
18: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
16: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं, भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है तपलू नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
16: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई है।
19: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
20: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
19: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
1: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार आठवीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। चार अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम न आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे,
5: सहयोग करे। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करे, हंगामा ना करे, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और उसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 एमपीस यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अब ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको

0: शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
1: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
2: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
4: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
3: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
1: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
5: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
1: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा और कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
3: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
6: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
7: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
3: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से निशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया है। तड़के भारी पुलिस बल ने धरास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
8: ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
9: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है, उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
8: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनशन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने, जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं। तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
1: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
3: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
1: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप यह है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
3: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं। ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
10: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
3: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा? तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
10: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे, चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
3: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
1: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
11: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
12: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
11: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मानसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
13: खौफ बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
11: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं, भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
12: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
11: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मौत राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
14: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
15: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
14: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
3: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखलाकर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के 4 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत 7 बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी एक झलक सर्वदलीय बैठक में दिख गई, जिसका कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से बॉयकॉट किया।
1: संसद का मानसून सत्र शांति से बीते इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया।
2: द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द टेबल ऑफिस इज शोन टू बी 28 मेंबर्स। दीज सो कॉल्ड रेबल 20 एमपीस, देयर मर्जर हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द स्पीकर।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।
3: जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ यो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया।
1: विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा।
4: आज ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को, उन्हें सम्मान दिया गया।
1: हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करें,
5: सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे।
1: सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसू मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है और इस फैसले के बाद से लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। और इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा है।
6: बीट टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये 6 MPs यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है और ये 13 खास जो MPs है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे।
7: जो अभी सांसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं।
0: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने यह जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो ऐसे में ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा कि इस मामले पर चुप्पी भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी।
8: दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया, शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के बाद से ही उसने चढ़ावा चोरी करनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, खुलासा यह भी हुआ है कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को थी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही उसने चढ़ावे की चोरी शुरू कर दी थी। मनीष यादव ने पूछताछ में टिन्नू यादव की भूमिका का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी टिन्नू यादव को दी जाती थी। इसके साथ ही चोरी के पैसों से महंगे उपहार और जमीन खरीदने की भी बात सामने आई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये है कि पूछताछ में टिन्नू यादव ने स्वीकार किया है कि उसी ने मनीष को नौकरी लगवाई थी और उसे चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूल की है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर तो बन चुका है लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए हमें नया आंदोलन शुरू करना होगा।
9: तरी राम रक्षा करना है आमचा राम भक्तांचा काम है। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि राम रक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव हे आमचं हिंदुत्व नाहीये।
1: उद्धव को जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम उद्धव ठाकरे को राम की याद तो आई, अब मामला गरमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।
0: अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
10: आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
0: सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से मना कर दिया है। अलबत्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग मुख्य अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
1: सोनम वांगचुक का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही चलेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल वांगचुक को कोई राहत नहीं दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने का सरकार का फैसला सही है। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर सोनम की सहमति से ही मेडिकल फैसले लेंगे।
11: अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे।
12: और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
1: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। याचिका में वांगचुक की तुरंत रिहाई या डिस्चार्ज की भी मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें ना तो अपने वकील से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उन डॉक्टरों से जो पिछले 20 दिनों से उनकी जांच कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कह दिया कि फिलहाल वांगचुक का इलाज सफदरजंग में ही चलेगा। दिल्ली से अनिशा माथुर और सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहा चिता और जल सत्याग्रह खत्म कर दिया गया है और इसे खत्म करवाया गया है। तड़के भारी पुलिस बल ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसे खाली करवाया। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर को अस्पताल में भेजा गया। प्रदर्शनकारी इसे कार्रवाई नहीं बल्कि गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
13: जी ये जो व्यवस्था आपने यहाँ लगाई है, ये लगाने की नौबत क्यों पड़ रही है?
14: क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं और हमने सब कुछ हंगर स्ट्राइक से लेके जल सत्याग्रह, खून से पत्र लिखना, सैकड़ों बार आवेदन निवेदन, सारा सब कुछ करके देख लिया। इसके बाद हमने चिता आंदोलन भी किया था अप्रैल में, जिसे 6 तारीख से 15 अप्रैल तक चला और झूठे आश्वासन के बाद तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमको जो है 250 से ज्यादा केसेस लगा दिए। मेरे ऊपर भी 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथ रहने वाली महिलाएं, लड़कियां जो दिव्या अहरवार है उसके ऊपर भी 8 से ज्यादा केस हैं। साबी राजपूत और सारे साथियों पे केसेस हैं। इससे आप गंभीर धाराओं में हम लोग कहीं थे भी नहीं। झूठी झूठी धाराएं, धमकी देना, डराना, मारना, पुलिस के ऊपर मारना, हम लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम तो गांधी को मानते हैं।
13: भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एनविजन किया गया। अब जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो पन्ना और छतरपुर जिले के गांवों के आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ज्यादातर लोगों में से वैसे लोग हैं जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जो फांसी आंदोलन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि या तो न्याय दो या फिर हमें मार दो। इसी तरह की तस्वीरें हर दिन छतरपुर के इस नदी में आपको देखने को मिलता है, जहां पर डौढ़न डैम बनकर आएगा और ये सारा इलाका डूब जाएगा। इन ग्रामीणों का दावा है और आरोप है कि सरकार ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, कॉम्पनसेशन कम मिला है। आज तक इकलौता मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है जो इस वक्त ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, ताकि एक और आमरण अनसन देश में हो रहा है। आपने सोनम वांगचुक की कहानी तो दिल्ली में सुनी, लेकिन यहाँ अमित भटनागर हैं जो हर दिन इसी तरह से केन नदी की ट्रिब्यूटरी में छतरपुर जिले में लेट जाते हैं चिता पर प्रदर्शन करते हुए, ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग इन आदिवासी ग्रामीणों की आवाज को सुने जो कभी सूली पर लटक कर अपनी आवाज पहुंचाते हैं, कभी चेहरे पर मिट्टी लगाकर आवाज पहुंचा रहे हैं, तो महिलाएं चिताओं पर लेट के यहाँ का जो स्थानीय पेड़ है उसके पत्तों को लेकर लेट कर प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, फेयर कॉम्पनसेशन दिया जाए।
0: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चंद रुपयों के मोबाइल फोन के लिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में डाल दी गई। खबर रायपुर की है, जहां पर मोबाइल चोरी के एक आरोपी को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया।
1: पहली नजर में यह तस्वीर हैरान करती है। लाल टी शर्ट पहने यह शख्स ट्रेन में लटका हुआ है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, इसके साथ कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। रायपुर में उरकुरा मांडर रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस में लटके हुए इस आदमी को देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोगी के भीतर से ये आदमी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जब पकड़ नहीं पाता तो ट्रेन में लटके इस आदमी को लात मारता है। लात मारने के बाद इस आदमी ने ट्रेन का जो हिस्सा पकड़ रखा है, ये आदमी उस पर प्रहार करता है। हाथ पर जब लात चला तो ट्रेन से इसका हाथ छूट गया और ये नीचे गिर गया। आरोप है कि ट्रेन में लटके हुए इस आदमी ने लात मारने वाले इस आदमी का मोबाइल चुरा लिया था, लेकिन चोरी करके वो ट्रेन से बाहर जाता तब तक लोग जान गए। बचने के खातिर ये ट्रेन से लटक गया और अपना मोबाइल पाने के लिए इस आदमी ने इसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इस तमाशे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया, लात मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और घायल आदमी की तलाश जारी है। महेंद्र नामदेव, रायपुर आज तक।
0: अब आपको लखनऊ की खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटा। आरोप ये है कि रंगदारी न देने के चलते उसकी पिटाई की गई।
1: एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, तीन लोग उसे लाठी डंडे और रॉड से मार रहे हैं, ये इस शख्स को बेतहाशा पीट रहे हैं। इस आदमी को इतना पीटा गया कि ये अचेत हो गया और पीटने वाले दबंग इसे मरा समझकर भाग गए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बजरंग चौराहा की है। जिनके पिटाई की जा रही है उनका नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश शाम को अपने घर आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन्हें जान से मार डालने की कोशिश की, सुनिए।
15: एक का चेतराम नाम है, एक का विपिन रावत और एक का सूरज रावत।
1: मगर सवाल है क्यों आरोपियों ने इस कदर इन्हें क्यों पीटा, तो जवाब है कि पीटने वाले ये दबंग अखिलेश कुमार से हर महीने 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दी इसीलिए इन पर जानलेवा हमला हो गया।
15: दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के व्यक्ति है वो, अब उनके अंदर क्या मंशा रही होगी हमसे, चेतराम तो वो 10,000 की रंगदारी महीने मांग रहा था।
1: अखिलेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। आशीष के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ आज तक।
0: अब आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का हाल दिखाते हैं, जहां पर बादल फटा उससे तबाही मची है। राजौरी में तमाम नदी नाले उफान पर हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लगातार बारिश के चलते संकट बढ़ता जा रहा है।
16: मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया, शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ी और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया।
17: यहां पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड।
16: बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मॉनसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है।
18: खौफ बहुत ज्यादा था, हमने सोचा पत्नी कौन से राजौरी बह गया सारा, लेकिन अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हमने घुमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ, मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि हालात बड़े कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है, बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो।
16: बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं, भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
17: आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को, और इस नदी के उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में।
16: मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट ना बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने बरपाया कहर, जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो चुकी है, पुंछ में 10 लोगों की जान गई है जबकि एक मात्र राजौरी में हुए है। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।
19: लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है, कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए, बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए उफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ, अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं।
20: और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया, अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे।
19: सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए, नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है, रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को सूरज निकलने से पहले ही अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी शुरू की, मिसाइलें दागी, जिसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया।
1: अमेरिका ने ईरान में फिर से तबाही मचा दी है, फिर से दागी जा रही है मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा, लगातार 8वीं रात किए गए इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करना है। साथ ही इन हमलों का मकसद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की उन ताकतों को तुरंत सजा देना है जिन्होंने कल रात जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए थे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शादेगन के पास जबरदस्त बमबारी की। ईरान के बंदर अब्बास और केशम में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने हादियाबाद शहर के पास के इलाके को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने सिरिक के पास भी मिसाइलें दागी हैं। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है जबकि एक अभी भी लापता है। 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये तय है कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब दे रहा है। ताजा हमला रूसी राजधानी मॉस्को में हुआ जहां पर यूक्रेन ने रूस के दो लॉजिस्टिक केंद्रों, तेल भंडार और रूसी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ है।

0: दुनिया में युद्ध के इस चार साल से भी पुराने मोर्चे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। शनिवार देर रात और रविवार सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। मिसाइल हमलों के बाद राजधानी कीव में कई जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने सोशल मीडिया पर बताया कि एक डॉर्मेट्री, एक रिहायशी इमारत और एक सुपरमार्केट में आग लग गई। क्लिट्सको ने कहा कि हमले में कई गैर रिहायशी इमारतों और गोदामों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खड़ी कारें और ऑफिस की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। रूस के ताजा हमले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत और 9 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने शनिवार को रूस पर दोहरे हमले किए थे। एक तरफ राजधानी मॉस्को में एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ रूसी जहाजों पर भीषण हमला हुआ। इन हमलों में रूस में जान माल का भारी नुकसान हुआ। शनिवार को मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टाल शहर में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हुए। मॉस्को में एक तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए और पास के एक अस्पताल को एहतियातन खाली कराया गया। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले का एक बार फिर वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी जहाज पर ड्रोन हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि की। यूक्रेन ने रूस के 2 ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों पर हमला किया जहां ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी पुर्जों और नेविगेशन उपकरणों की आपूर्ति की जाती थी। एक तेल भंडारण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन रूस पर लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन रूस पर 21वें प्रतिबंध की तैयारी में जुटा है, लेकिन ग्रीस की एक मांग की वजह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीस ने रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर पहले से तय प्रतिबंधों में बदलाव की मांग की है। यूक्रेन के हमलों से बौखला कर आज रूस ने कीव में कोहराम मचा दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे रुकने वाले नहीं। खबर यह भी आ रही है कि रूस यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जे की योजना बना चुका है। मतलब साफ है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होने वाला है। आज तक ब्यूरो।
1: भारत के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी है।
2: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

साथ ही संसद का मानसून सत्र एफसीआरए विधेयक समेत सात बिल पेश करेगी सरकार। सुबह पीएम मोदी का संबोधन, चढ़ावा, चोरी, पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल तक की जेल। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड से अब तक 11 की मौत। नागालैंड में लैंडस्लाइड से 3 की गई जान। देहरादून, हरिद्वार और पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट। टी20 के बाद इंग्लैंड के हाथों टीम इंडिया ने गवाई वनडे सीरीज। लॉर्ड्स में 27 रनों से मिली हार। काम ना आया रोहित शर्मा का शतकीय प्रहार।